0: है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
1: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
2: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई इस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
1: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
3: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
4: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
3: बाद पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की, बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए, इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है। ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत हम रात 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बारी फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से, वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात वियतनाम से आए एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
5: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और हो ची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में

0: मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकुओक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अब आज कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की, टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
2: टोरंटो में सालसाउन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव सालसाउन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक देखते रहो।
1: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है, कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान

0: पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: Destroyed their, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोल बंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: Which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil because maybe we'll take over Kharg Island. You know, we may take over Kharg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लगी भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक, राहत बचाव कार्य जारी। अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक, केशन द्वीप पर धमाकों की आवाज, ईरान ने भी कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग, वहीं आज खत्म हो रही 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, प्रदेश अध्यक्ष राजावाड़ी को हटाने पर अड़ा चन्नीगुड़, रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आलाकमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। विंबलडन में इटली के योनिक सिन्नर की बादशाहत बरकरार, जर्मनी के अलेक्जेंडर जरेव को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता।

आशा, सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह की 6 ताजा खबरों के साथ मैं आपके साथ। और सबसे पहले आपको बताएंगे इन 6 खबरों में, पहली बड़ी खबर है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आधी रात को एक पब में आग लग गई, कोहराम मच गया। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर कहां कहां हमले किए जिससे एक बार फिर खाड़ी में युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। तीसरी बड़ी खबर है कि अमेरिकी हमलों पर पलटवार करते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट के किन देशों पर निशाना बनाया, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर यह होगी कि यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए भारत का प्लान आखिर अब है क्या। पांचवी बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या मांग की गई हम आपको यह भी बताएंगे। और आखिर में यह भी बताएंगे कि विंबलडन मेंस में किस देश के खिलाड़ी ने जीत दर्ज की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक बड़ी खबर आ रही है जहां आधी रात को एक पब में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आग आधी रात को लगी और तेजी से पूरे पब में फैल गई। फायर ब्रिगेड टीमों ने कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बैंकॉक में रात में यह घटना हुई है और 27 लोगों की दुखद घटना में मौत हो चुकी है। ये एक पब था और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर फाइटर्स को बुलाया गया, जो रेस्क्यू इमरजेंसी फोर्स है उसे भी बुलाया गया। एक पब था ये और जाहिर है कि चूंकि वीकेंड का समय था, रविवार की रात थी, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकॉक जिसे दुनिया का पार्टी कैपिटल कहा जाता है वहां कितनी बड़ी संख्या होगी। और ये लोग जो अपना बेहतरीन वक्त बिताने गए थे अपने अपनों के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये जश्न की रात मातम की रात में तब्दील हो जाएगी। कड़ी मशक्कत के बाद पब में से लोगों को निकाला गया, 27 लोगों की मौत हुई है, 63 लोग अभी भी घायल हैं। क्योंकि आधी रात को ये हुआ और कई बार आग लगने की जब शुरुआत होती है आपको समझ में आता है कि जो क्लब हैं या पब हैं वहां इतना शोर होता है, इतनी आवाजें होती हैं कि कई बार बाहर अगर कोई घटनाक्रम हो रहा हो तो चीख पकार नहीं सुनी जा सकती। और संभवतः इसमें एक बड़ी वजह यह होगी कि अंदर से लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो बड़ा जहां पर यह हादसा हुआ, भीषण आग लगी, लोगों को बचाया गया। और ऐसे में जब तक पता चल पाया कि आग कहां लगती है, अब देखिए पब और क्लब की बनावट किस तरह की होती है कि आग अगर किसी एक हिस्से में लगी है उसको अंदर पहुंचने में समय नहीं लगता, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर लाइट होती है, हैवी केबलिंग होती है, और ऐसे में आग को फैलने के लिए वो पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां क्लब या पब में होती हैं जिससे आग तेजी से बढ़ सके। और राहत बचाव कर रहे चूंकि इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री प्लान ज्यादातर पब या क्लब में भी नहीं होते हैं, और ऐसे में उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिल पाया जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। और जब तक आग बुझाने का काम खत्म होता तब तक ये घटना हो चुकी थी। 63 लोग झुलस चुके हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और पूरी कोशिश अब ये होगी प्रशासन की कि ये 27 का आंकड़ा आगे ना बढ़े। लेकिन एक ऐसा पब क्लब, 27 लोगों की मौत, सोचिए अपनों के साथ जो लोग वहां पर गए थे। तो ये बर्निंग पब आखिर कैसे, एक क्लब जहां पर आप सेलिब्रेशन करने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, वो कैसे एक बर्निंग पब में तब्दील हो गया। आधी रात को ये पब में आग लगती है, लोग वहां पर शहर, रविवार शनिवार की रात आप देखेंगे इन शहरों में क्लबों में भीड़ बढ़ जाती है। 27 लोगों की इसमें मौत हो गई, ये वो लोग थे जो वहां पर जश्न मनाने गए थे। और जब आग की चपेट, आग का दायरा पूरा बढ़ा, इन लपटों का तस्वीरों को आप देख तो समझ पाएंगे कैसे 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई लोग गंभीर रूप से घायल होंगे। मतलब स्ट्रक्चर होता है, आप जाते हैं कई बार नैरो पैसेज होता है, जब कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर आग कैसे लगी, क्या गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ केबल में, या फिर आग लगने की कोई और वजह है। कई बार पब और क्लब में फायर का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है, क्या उस लापरवाही से कहीं हादसा हुआ। 27 लोगों की मौत अपने आप में बहुत बड़ी घटना। स्ट्रक्चर को देखिए, जब राहत बचाव कार्य किया गया, ये आप देख रहे हैं ये सारे वो शव हैं जो लोग अंदर रविवार की रात जश्न मनाने गए थे, सेलिब्रेट करने गए थे। लेकिन जब ये आग बुझाई गई, जब रेस्क्यू फाइटर फोर्स ने जब अपना ऑपरेशन पूरा किया तो ये अंदर से शव निकले और उसके बाद 27 लोगों की वो गिनती, 63 लोग घायल जिन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। तो आधी रात का ये हादसा था। और ऐसे में हमने कहा कि जो कई बार पब या क्लब में इस कदर शोर होता है कि अंदाजा नहीं चल पाता कि बाहर किसी तरह का हादसा हुआ है, अगर कोई चीख पुकार है वो भी नहीं सुनाई पड़ती। और ऐसे में बैंकॉक अपने आप में
पार्टी कैपिटल माना जाता है, थाईलैंड का सबसे हैपनिंग शहर माना जाता है। और इस हादसे के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सोचिए, द बर्निंग पब जहां पर लोग थिरकने गए थे और वीकेंड का लुत्फ उठाने गए थे, उसके बाद आधी रात को यह हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, 27 लोगों की मौत हो जाती है, 63 घायल हो जाते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर दरअसल ये कि कैसे मिडिल ईस्ट में तनाव आगे बढ़ रहा है, जंग क्या दोबारा शुरू होगी। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। बीते 4 दिनों में यह चौथा लगातार बड़ा हमला है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास केशन द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई थी। गुरुवार को हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सोमवार तक जारी। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में धमाके सुनाई दिए हैं। वहीं केशन द्वीप के अवाला जास में भी हमले हुए हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक सिरिक के पास धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। केशन द्वीप, जास, सिरिक, बंदरअब्बास, ये वो इलाके हैं जो फिर एक बार अमेरिका के निशाने पर आए हैं। सेंट्रल कमांड ने यह कहा भी है कि वो लगातार ईरान की क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान के पास से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और एक बार फिर ईरान ने जहां हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा किया, उसे कंट्रोल करने का दावा किया, तो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका का हमला हुआ। तो ताजा घटनाक्रम क्या हुआ है, क्यों मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग रहा है? दरअसल महायुद्ध रिटर्न हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज के पास ही अमेरिका ने हमला किया है। और ठीक 24 घंटे पहले ईरान ने ऐलान किया कि हॉर्मुज पर अब उसका नियंत्रण हो, उसे बंद कर रहा है। कहां हमले हुए हैं? बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक को उसने निशाना बनाया। ये वो शहर है जिसको अमेरिका ने निशाना बनाया, केशम और जास द्वीप। यानी न सिर्फ ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि उसकी जो सैन्य ताकत है, जहां से वो अपनी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पर भी हमले हुए। देखिए नक्शे पर आपको दिखा देते हैं, ये रहा बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक, ये तमाम वो इलाके हैं जो दरअसल दक्षिण पश्चिम ईरान का हिस्सा है। ये वो स्ट्रेटेजिक ईरान है। इसी के साथ साथ जास का आइलैंड, आपको याद हो जास का आइलैंड जो कि ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से वो न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी नियंत्रण कर सकता है और सिरिक के साथ साथ उसकी नौसैनिक गतिविधियां भी आगे जाती हैं। यहां से आगे हम देखेंगे ओमान का गल्फ इलाका है और बिल्कुल इस इलाके पर जहां अमेरिका की बाड़ेबंदी थी, लेकिन उसने निशाना किसको बनाया? बंदर अब्बास को। इसी के पास सबसे पहले जो है शुक्रवार को हमला चाबहार के पास उसने किया था। और उसके बाद अब खासकर यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो दक्षिण ईरान का हिस्सा है उसमें इस बार उसने जास का आइलैंड को यानी दक्षिण पूर्व को निशाना बनाया। उसके बाद दक्षिण में जो इसने निशाने बनाए उसमें सिरक और उसी के साथ साथ केशम द्वीप है। ये दोनों आइलैंड है जहां पर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसी के साथ साथ उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सबसे ज्यादा जहां से वो पूरी गतिविधियों को आगे यूएई खाड़ी देशों को कंट्रोल कर सकता है मूवमेंट को, वो है बुशहर शहर, जहां पर यह माना जाता है कि ईरान की सैन्य ताकत का बड़ा जमावड़ा है, उसका इंटेलिजेंस कंट्रोल भी है। तो इस बार उसने दक्षिण पश्चिम में बुशहर शहर को भी निशाना बनाया है। नक्शे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने लक्ष्य तय किए हुए हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे कि गुरुवार को जो हमले का दौर शुरू हुआ था, इन्हीं सारे इलाकों को अमेरिका लगातार निशाना बना रहा है। दरअसल ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक और बड़ी खबर, अमेरिका के हमले को लेकर ईरान ने दावा किया है कि केशम द्वीप पर 10 से 11 मिसाइलें गिरी हैं। तो केशम द्वीप पर मिसाइलें गिरी हैं और उसी के साथ गवर्नर हुसैन अमीर तैमूरी, जो कि केशम द्वीप, जो केशम आइलैंड है उसके गवर्नर हैं, उनका दावा है कि 10 से 11 होस्टाइल प्रोजेक्टाइल गिरे हैं, एनिमी के मिसाइल्स गिरे हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक तैमूरी ने यह भी कहा है कि सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे, इनमें से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में भी कई धमाकों की खबर दी है। तो केशम द्वीप कहां, आपको यही बता रहे थे कि केशम द्वीप पर जहां पर हमला किया गया है, जहां पर ईरान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो सिर्फ अमेरिका के हमले ही नहीं है बल्कि बड़ी खबर यह भी है कि ईरान अमेरिका के जंग को लेकर के अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान ने भी पलटवार किया है। IRGC ने कुवैत पर ड्रोन से हमला किया है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया है। अमेरिका के हिमार्स मिसाइल लॉन्चर्स गोला बारूद के ठिकानों पर हमला किया गया है। इन हमलों को लेकर के कुवैत की सरकार ने इसे मुल्क पर हमला बताया है, आपराधिक गतिविधि करार दिया है। और इस हमले में बॉर्डर के 3 सेंटर, समंदर में स्थित तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी नुकसान पहुंचा है, इसमें एक कर्मचारी घायल भी हो चुका है। तो कुवैत ने भी इस हमले को स्वीकार किया कि ईरान की ओर से हमला हुआ है, अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को निशाना बनाया है। और इसी के साथ साथ ही एक फ्यूल ड्रिलिंग या जो एनर्जी ड्रिलिंग है, क्रूड ड्रिलिंग
सेंटर है, प्लेटफॉर्म है, उसको भी निशाना बनाया है। यानी जैसे हमने देखा था पहले दौर के उस महायुद्ध में जब ईरान लगातार खाड़ी देशों के ऊर्जा संस्थानों को निशाना बना था, इस बार भी उसने फिर एक बार अमेरिका पर पलटवार किया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर तनावपूर्ण मुहाने पर जाता हुआ, और ऐसे में यह आशंका है कि क्या एक बार फिर इस महायुद्ध की शुरुआत हो रही है। और अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट की दावेदारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में भारत की दावेदारी की शुरुआत करेंगे। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम में भारत की दावेदारी का ये ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही वे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। इस अभियान के जरिए भारत खुद को विकासशील देशों की आवाज के तौर पर पेश करेगा, जो ग्लोबल फैसले लेने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका चाहते हैं। भारत साल 2028 और 29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर दावेदारी पेश कर रहा है। इसके लिए अगले साल जून में वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए भारत ने समर्थन जुटाना भी शुरू कर दिया है। यानी जो सुरक्षा परिषद के मुल्क हैं, जब वो इस पर भारत के पक्ष में वोट करेंगे तो यूनाइटेड नेशन में यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता भी अपने आप में उसकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहले दावेदारी पेश करना और उसके बाद प्रक्रिया ये होगी कि दुनिया के तमाम वो मुल्क जिनसे भारत की मित्रता है वो उनके पक्ष में वोट करें। चलिए अगली बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के है। वो ये कि चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, विशेष एसआईटी के गठन और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। इन मांग को लेकर के चीफ जस्टिस की जो 3 सदस्यीय बेंच है वो इस मामले पर फैसला करेगी, इस पर सुनवाई होगी। तो बता दें चंदा चोरी मामले में दरअसल एक एसआईटी गठित की गई यूपी सरकार द्वारा, जो किसी तरह अपनी जांच कर रही है। उसने अपनी रिकमेंडेशन उसी ट्रस्ट को सौंप दिया है जिस ट्रस्ट के सदस्यों पर चंदा चोरी में लिप्त होने का आरोप है, और अब इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपियों ने यह बताया है कि वो चढ़ावा चोरी की सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। एक खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके जरिए आप समझेंगे कि आखिर कैसे चढ़ावा चोरी की इवनिंग शिफ्ट के बाद अब सीईओ के नाम पर ट्रस्ट किस पर ट्रस्ट करेगा, और ऐसे में आरोपियों से पूछताछ में आगे कौन से राज निकलेंगे।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: तो एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के जांच चल रही है, दूसरी ओर इस पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग गा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई इस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बीजेपी में उथल पुथल इसलिए है कि उसकी पिच पर केजरीवाल उतर पड़े खेलने के लिए, लेकिन कलह सिर्फ दिल्ली में नहीं है, कलह पंजाब में भी है। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे पर पहुंचे, 6वें दिन छत्तीसगढ़ लौटे, करीब 92 नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनके वापस लौटते ही चन्नी और वडिंग गुट के नेता फिर से बयानी जंग के अखाड़े में आ डटे।
0: स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है।
7: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਦੀਵਾਰੋਂ ਮੇਂ ਦਰਾਰ ਅਬ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬ ਸਭ ਕੁਛ ਕੈਮਰੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੋ ਭਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਏ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਪਰ ਹੈ।
8: आप चाहते हैं कि राजा बड़िंग
9: नहीं, नहीं बड़े राजा बड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूं, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी है।
0: तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है।
10: यार ठीक रह गए भी क्या कर लेंगे, वहाँ भगवत मान जी की लहर है।
0: इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया।
11: आपस में लड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में हम इसी तरीके से सरकार बनाते रह गए।
0: 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है, और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।
2: संग्राम सिर्फ पंजाब में नहीं है, एक संग्राम बिहार में भी होने वाला है। तो बात करेंगे पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने वाले हैं, 3 अगस्त को इसके परिणाम आएंगे, लेकिन बांकीपुर के चुनावी संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सभी दल यहां अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजर दरअसल इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से। अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: और अब खबरें खेल जगत से। बात करेंगे विंबलडन के मेंस सिंगल खिताब की। इटली के यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 4 सेटों से हरा दिया। अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया। इस जीत के साथ विश्व नंबर 1 सिनर ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना दिए हैं, जिनमें लगातार दूसरा विंबलडन खिताब, 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच की जीत और करियर का 30वां ATP टाइटल शामिल है। फाइनल में यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से हराया। लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
6: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
7: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
7: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
9: Jai Hind friends, Isaiyat, Sona, Masala ya Vistar, 1498 mein kya thi Vasco da Gama ki mancha? Madhumakhi jaise gore jo shahad lekar aa rahe the, Bharat ko dank marna shuru kar diya. और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम सिर्फ ललन टॉप पर।
10: YouTube पर अब देखिए आज तक वर्टिकल।
11: अरे भाई फिर घुमा रहे हैं,
10: छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब आज तक वर्टिकल।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

की भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक, राहत बचाव कार्य जारी। अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक, किशनदीप पर धमाकों की आवाज, ईरान ने भी कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग, वहीं आज खत्म हो रही 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, प्रदेश अध्यक्ष राजावाडी को हटाने पर अड़ा चन्नीगुड़, रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आलाकमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। विंबलडन में इटली के योनिक सिनर की बादशाहत बरकरार, जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता।

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पब में लगी भीषण आग, कम से कम 27 लोगों की जान गई। अधिकारियों के अनुसार बचाव दल के पहुंचने तक आग पूरे परिसर में फैल चुकी थी। आग की शुरुआत स्टेज से हुई थी। हादसे में 63 लोग घायल हुए हैं। फायर फाइटर्स की टीम ने काफी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। हादसे के बाद प्रशासन ने इस घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास केशम द्वीप पर कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरान की मेयर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की थी। चढ़ावा चोरी के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ किया। देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष को औरंगजेब की औलाद बताया। उन्होंने कहा कि क्या हज और मस्जिद के चंदे में गड़बड़ी पर विपक्ष चुप क्यों है। ज्ञानवापी विवाद विशेष लोक अदालत में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से समाधान पर जोर दिया था। 21 से 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार इस 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र चलेगा। उसके पहले विपक्ष के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। नीट पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। ईशा शर्मा मौत केस में दिल्ली एम्स ने सीबीआई को फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंप दी है। जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यू के निशान मिले हैं। बेल्ट का इस्तेमाल फंदे के रूप में हुआ है। पुणे में केतन हत्याकांड में परिवार का दर्द झलका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने दर्द भरा पत्र लिखा है। इंसाफ के लिए सीधे महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज पटना में हेली एयर टूरिज्म का शुभारंभ किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर इससे आसान हो जाएगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास जलस्तर बढ़ने से दहशत में है लोग। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को किनारे जाने से मना किया गया है। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी मलबा गिर गया। सड़कें बंद हो गई। धनबाद में एक साल भी नहीं टिक सकी 44 करोड़ रुपए से बनी सड़क। दो विधानसभा इलाकों का संपर्क टूट गया। पथ निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है। देवास में बारिश के बाद बन रहे पुल की रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। जांच के आदेश दिए गए। सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे सड़क धंस गई। 15 फीट गहरे गड्ढे में टायर फंस गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के बदरपुर इलाके में चाकू मारकर एक युवक की हत्या हो गई। जांच में पुलिस जुटी है। वाराणसी में मुख्य पर्यटन स्थल दशाश्वमेध की एक इमारत में आग लग गई। वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। विंबलडन 2026 में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वरेव को हरा दिया है। सिनर ने लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। 14 जुलाई को अब फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। मेसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं मेसी। तो बड़ी खबर थाईलैंड से। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आधी रात को एक पब में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 63 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आग आधी रात को लगी और प्रथम दृष्टया जांच में यह पता चला है और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग स्टेज के पास से लगी थी। स्टेज के पास आग की शुरुआत हुई, तेजी से पूरे पब में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंचती तब तक आग काफी फैल चुकी थी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। इस हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेज के पास ये आग लगी थी
और चूंकि पब था, क्लब था, जब तक शोर शराबे में लोगों को पता चलता, जब तक राहत बचाव कार्य की टीम या रेस्क्यू टीम या फायर फाइटर्स पहुंचते, तब तक आग काफी फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। तो जो चश्मदीद कह रहे हैं कि स्टेज के बेहद पास, स्टेज वो इलाका जहां पर जो डीजे होता है उसकी व्यवस्था होती है, उसी के आसपास के इलाकों पर, यानी यहां पर अगर डीजे खड़ा है तो इन इलाकों में लोग खड़े होते हैं। तो आधी रात को इस पब में हादसा हुआ। दरअसल रविवार शनिवार की वो रात जो बैंकॉक दुनिया का पार्टी कैपिटल माना जाता है, भारी भीड़ होती है, तो जब आग की चपेट में लोग आए, 63 लोग घायल हुए हैं, 27 लोग मर गए जल करके। आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी। और खासकर बैंकॉक, पटाया, फुकेट, ये वो इलाके हैं थाईलैंड के जो पार्टी कैपिटल माने जाते हैं। शनिवार रविवार को बेतहाशा भीड़ होती है, स्थानीय लोग होते हैं, पर्यटक होते हैं जो इन क्लबों में, पबों में जाते हैं। और ये क्लब पब जो जश्न के लिए था, जहां लोग अपनों के साथ खुशियां मनाने गए थे, जश्न मनाने गए थे, वो एक बर्निंग पब में तब्दील हो गया। देखिए तस्वीरें भी जो आ रही हैं अंदर, जहां पर आग लगी की घटना थी। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि पब और क्लब जो इसका निर्माण होता है, अंदर ज्यादातर बहुत ज्यादा तेज रोशनी नहीं होती है, उसकी बनावट ऐसी होती है, जिस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, वुडन क्राफ्ट वर्क बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आग को फैलने में काफी मदद मिलती है। उनकी डिजाइनिंग, उनकी बनावट, उनकी केबलिंग, क्योंकि जिस तरह की आपने देखता है जगमग करती बिजली लगी होती है, जो लाइट होती है, उसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं केबल। तो जो चश्मदीदों ने बताया कि स्टेज के बेहद पास आग लगी थी, जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक काफी देर थी, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, 27 लोगों की मौत, 63 घायल। दूसरी बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट में। क्या एक बार फिर महायुद्ध 2 शुरू होने वाला है? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुवार से शुरू हुआ जो सिलसिला था वो आज भी नहीं रुका है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। ईरान के केशम द्वीप, बुशहर, सिरिक, जास्क आइलैंड, बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है और बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका ने हमला किया है। और लगातार सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि हम ईरान की उन क्षमताओं को निष्क्रिय कर रहे हैं जिससे वो किसी सिविलियन जहाज पर या किसी वाणिज्य जहाज पर, यानी जो शिप हैं जो वहां से क्रूड लेके गुजरते हैं उनको, और इसी में ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। केशम द्वीप के अवाला जास में भी हमले हुए हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक सिरिक के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो लगातार ये बड़ा हमला और ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर के एक और बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका के हमले को लेकर के ईरान ने दावा किया है कि केशम द्वीप पर 10 से 11 मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के केशम द्वीप के गवर्नर हुसैन अहमद तमरूरी ने दावा किया है कि इस द्वीप पर, यानी आइलैंड पर, 10 से 11 होस्टाइल प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक तमरूरी ने यह भी कहा है कि हमले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे और इनमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि ईरानियन डिफेंस ने उसे मार गिराया। इस बीच ईरानी मीडिया ने दक्षिण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में कई धमाकों की खबर दी है। तो एक बार फिर जिन इलाकों को लेकर के हमला हुआ, हम आपको नक्शे पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमले कहां हुए हैं और क्यों इन्हीं इलाकों को हमला निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए बंदर अब्बास है, ये दक्षिण ईरान का सबसे क्रिटिकल इलाका बंदर अब्बास, न सिर्फ एनर्जी और उसी के साथ साथ जास्क आइलैंड, इसी जास्क आइलैंड पर जहां पर उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो जास्क आइलैंड में पिछले 4 दिनों से लगातार निशाने पर। इसी के साथ जैसे आते हैं दक्षिण पश्चिम का दूसरा बड़ा शहर सिरिक, सिरिक जो कि उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है, और उसके साथ साथ बुशहर, बुशहर के साथ लेकर के, यानी इस इलाके से अगर आप देखें तो खाड़ी के साथ होते हुए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आज जो अमेरिका ने अब ताजा हमले किए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वो 3 बड़े शहर जिसमें सिरिक शामिल है, केशम आइलैंड और बंदर अब्बास, जहां से रणनीतिक तौर पर और कमर्शियल एक्टिविटी के साथ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। तो इन हमलों के बीच, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि कुवैत पर ड्रोन से हमले किए गए, जिसकी जानकारी कुवैत की ओर से भी आई है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से ईरान ने निशाना बनाया है और वहां पर अमेरिका के हिमार्स मिसाइल लॉन्चर्स, गोला बारूद, इन सब के एमिनेशन डेपो को ईरान ने निशाना बनाया है। इस हमले को लेकर के कुवैत सरकार ने इसे आपराधिक कृत्य बताया है और कहा है कि हमले में बॉर्डर के 3 सेंटर, समंदर में एक उसका तेल ड्रिलिंग यानी ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, उसको भी नुकसान पहुंचा है और एक कर्मचारी इसमें घायल हुआ है। यानी ईरान का पलटवार खाड़ी देशों के तमाम इलाकों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कल सबसे बड़ा हमला कुवैत पर हुआ। अब ये युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन, UAE समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है, एनर्जी सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया है। देखिए रिपोर्ट।

टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार। ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम। हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एदेयर, जास और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत

0: सामने। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की यह तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट टू और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: दरअसल हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोलबंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, तो ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा है। उसने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेंगे, अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: We're not attacking at the highest level. The highest level, the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity in there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kargil last night. We knocked out a piece.

0: I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Kirk Island. You know, we may take over Kirk Island.
1: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त ब्रेक का है, खबर जारी, आप देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: क्या कुंडली में राजयोग होने से सफलता जल्दी मिल जाती है? क्या कुंडली में दुर्योग होने से जीवन मुश्किलों में बीतता है? क्या होते हैं राजयोग और दुर्योग और कैसा होता है इनका जीवन पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: ओह सॉरी।

आधी रात को बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक, राहत बचाव कार्य जारी। अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशैर, सिरिक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन दागे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग, आज खत्म हो रही है 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नीगुड़, रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आलाकमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। विंबलडन में इटली के यानिक सिनर की बादशाहत बरकरार, जर्मनी के अलेक्जेंडर जोरेव को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो छोटी सी जगह से ऊंचाइयों तक व्यक्ति को पहुंचा देते हैं, और कुछ ऐसे अशुभ योग या दरिद्र योग भी होते हैं जो ऊंचाइयों से व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। आज बात करेंगे इन्हीं राजयोगों के बारे में, दरिद्र योगों के बारे में और अशुभ योगों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

13 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:49 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 5:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के राज योग और दरिद्र योग या शुभ योग और अशुभ योगों के बारे में। आखिर ये योग होते क्या हैं? राजयोग क्या है, दरिद्र योग क्या है, पहले ये समझते हैं। दो या दो से अधिक ग्रहों के संयोग को योग कहते हैं। दो या दो से ज्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन हुआ तो इसको योग कहा जाता है। किसी ग्रह का किसी अन्य ग्रह से या किसी राशि से विशेष संबंध बन जाए तो इसको भी योग कहते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता, धन, नाम और यश दिलाते हैं। इनको आप शुभ योग भी कह सकते हैं और इनको राजयोग भी कह सकते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को जीवन में समस्या झेलनी पड़ती है, कदम कदम पर कठिनाई आती है और हर कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनको अशुभ योग या दुर्योग या दरिद्र योग कहा जाता है। अगर राजयोग कुंडली में है लेकिन आप उसके समय का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो राजयोग होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी राजयोग होना बड़ी बात नहीं है, उसके समय का सही इस्तेमाल करने पर तब आपको राजयोग का फायदा मिलेगा। और अगर दुर्योग का समय है और उसका ठीक से निदान किया जाए, उसका ठीक से उपचार किया जाए तो इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यानी देखिए, राजयोग या दुर्योग होना बड़ी बात नहीं है, राजयोग भी सही समय पर काम करेंगे और उस समय में आपको पूरी मेहनत करनी है। दुर्योग भी अपने समय पर काम करेंगे, उस समय में आपको उपाय करना है और सावधानी रखनी है। राजयोग और दुर्योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

सुधार होगा, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, वैसे तो बड़े सारे राजयोग हैं। डॉक्टर बीवी रमन की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस, उसमें बहुत सारे राजयोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन मोटे तौर पे हम आपको प्रमुख राजयोगों के बारे में बताते हैं और इनकी महिमा बताते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा से बड़े ताकतवर राजयोग बनते हैं अनफा, सुनफा, दुर्धरा, वेशी, वाशी और उभयचारी। पंच महापुरुष योग भी राजयोगों में सबसे ऊंचाई पर हैं। पांच ग्रहों से बनते हैं अलग अलग, और अगर ये कुंडली में हैं तो इनका फल पूरे जीवन में मिलता है आपको। हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्र बृहस्पति का योग या संबंध जिसको गजकेसरी योग कहा जाता है। चंद्र और मंगल का संबंध या चंद्र मंगल का योग जिसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। शुक्र और बुध के योग को भी आप धन योग या लक्ष्मी योग कह सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर प्रमुख राजयोग हैं जो अगर कुंडली में हैं तो आप जीवन में विशेष जरूर बनेंगे। आगे दुर्योगों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सिमरन ने हमें लिखा है और सिमरन हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 16 जुलाई 2010 का जन्म है, जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। सिमरन कह रही हैं कि मैं अभी 10वीं की पढ़ाई कर रही हूं, आगे मैं 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूं। क्या मेरा विदेश जाना बेहतर रहेगा? क्या मैं विदेश में सेटल हो सकती हूं? सिमरन, आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना जरूर बनती है कि आप आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकती हैं और लंबे समय तक वहां रह सकती हैं, लेकिन आपके विदेश में सेटलमेंट की संभावना नहीं बनती है। और दूसरी बात, जब तक आप 12वीं पास करके विदेश जाएंगी, अगर दुनिया भर के हाल ठीक रहेंगे तो आप विचार करिएगा। करियर आपका अच्छा है, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट, इस तरह के क्षेत्रों में आप अच्छा करियर बना सकती हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए ताकि आप स्वस्थ रहें, करियर में आपको सफलता मिलती रहे। तो जिस तरह से बहुत सारे राजयोग होते हैं उसी तरह से बहुत सारे दुर्योग भी होते हैं। और कुछ दुर्योग कौन से हैं, इनका प्रभाव क्या है, ये भी जानते हैं। चंद्रमा से बनने वाले दुर्योग में पहले नंबर पर है केमद्रुम योग और ग्रहण योग। अगर इनमें से कोई भी योग कुंडली में प्रभावशाली है, दरिद्रता के अलावा आपको मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। सूर्य से बनने वाला योग ग्रहण योग, अगर सूर्य का ग्रहण योग कुंडली में है, सेहत का सत्यानाश होगा और आप जीवन में अपयश के शिकार होंगे। बेवजह का अपयश भी सूर्य दे सकता है खराब योग होने पर। बृहस्पति से बनने वाला दुर्योग है चांडाल योग, सेहत खराब करेगा, अपयश देगा, चरित्र को कमजोर करेगा। और अगर बृहस्पति बुरे हालात में है तो आप कितनी भी ऊंचाई पर हो आपको नीचे ले आएगा। शनि से बनने वाला योग नंदी योग, इसको बहुत सारे लोग शाप भी कहते हैं, कुछ लोग पिशाच योग भी कहते हैं, शनि और राहु के साथ में बैठने से बनता है। और शनि अगर नकारात्मक हो गया, करियर में आप कभी स्थिर नहीं होंगे, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। राहु और केतु से बनता है ग्रहण योग, अंगारक योग और कुंडली के तमाम तरीके के शाप राहु और केतु से बनते हैं, जो जीवन के बड़े दुर्योग माने जाते हैं। आजकल दुनिया में एक नया दुर्योग आ गया है, काल सर्प योग, और इसको लेकर भी मार्केटिंग जबरदस्त है। लेकिन काल सर्प योग जो राहु केतु से लोग बनाते हैं, ये वास्तव में कोई योग नहीं होता,
तो ना तो ये होता है ना तो कोई दुर्योग है। लेकिन राहु और केतु से बहुत सारे दुर्योग बनते हैं अलग अलग ग्रहों से संबंध रखने पर, और अच्छे योग भी बनते हैं। लेकिन ज्यादातर नकारात्मक योग जिनसे लोग परेशान होते हैं उनके पीछे ज्यादातर राहु और केतु की भूमिका पाई जाती है। अगर कुंडली में दुर्योग है तो उसके लिए क्या उपाय करें, क्या उसका निवारण होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

में नई शुरुआत हो सकती है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए कोई भी कुंडली हो उसमें दुर्योग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की भी कुंडली हो उसमें दुर्योग ही ना हो, ऐसा तो होना असंभव है। तो कुंडली में दुर्योग होना स्वाभाविक सी बात है, अच्छे योग भी और दुर्योग भी। तो अगर आपकी कुंडली में दुर्योग है तो इससे बचने के लिए क्या करें, अपने घर के मेन डोर पर दरवाजे के दोनों तरफ दाहिने भी और बाएं भी, राइट और लेफ्ट साइड में लाल रंग का स्वस्तिक किसी शुभ मुहूर्त में या मंगलवार को लगाइएगा। माता पिता और अपने जीवन साथी का सम्मान करिएगा, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो जीवन के दुर्योग दूर होंगे। एक तीन धातु का छल्ला बनवा लीजिए, सोना चांदी और तांबा, इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहने, या तीन धातु का एक कड़ा बनवाकर दाहिनी कलाई में धारण करें। कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्योग हो, कितना भी मुश्किल समय चल रहा हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए आर्त्र भाव से, यानी ये सोच करके पाठ करिए कि अब मेरा ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं है। इस भावना से अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और निरंतर करें तो दुर्योग नष्ट हो जाएंगे। धन की अगर दरिद्रता है, धन का दुर्योग है, तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें रोज सुबह और रोज शाम को नियमित रूप से। वैसे ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरह का दुर्योग हो, शाप हो, दोष हो, बुरा योग है, उसके नाश के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। देखिए दुर्योग है और समय भी खराब है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप भगवान की शरण में जाइए और जैसा पहले बताया कि सिर्फ इस भाव से जुड़िए कि अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे इस विपत्ति से निकालो। इस भावना के साथ जब आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, दुर्योगों के प्रभाव कम होने शुरू हो जाएंगे। देखिए कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ और राजयोग बनते हैं शुक्र और चंद्रमा से। अगर किसी राजयोग में शुक्र और चंद्रमा इन्वॉल्व हैं और सही समय मिल जाए तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दुर्योग सबसे ज्यादा बनते हैं राहु और केतु से। अगर राहु केतु के दुर्योगों का समय पर इलाज ना किया जाए, समय पर उपचार ना किया जाए, तो ये जीवन की मुश्किलें बढ़ा देते हैं और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद व्यक्ति के जीवन में समस्याएं पैदा कर देते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

होगी, संपत्ति का लाभ होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोग ऐसा तर्क देते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाएं उनकी पूजा भी ना करें, उनको स्पर्श भी ना करें। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हैं, और कोई भी महिला उनकी पूजा करती है ईश्वर के रूप में, पिता के रूप में, या भाई के रूप में, या सहारा देने वाले भगवान के रूप में। तो ऐसी स्थिति में किसी भी महिला को हनुमान जी की पूजा करने से आप नहीं रोक सकते, ये अतार्किक बात है। इसलिए अगर कोई महिला हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे, हनुमान जी के व्रत रखना चाहे, हनुमान जी की पूजा करना चाहे, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। एक, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, परीक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, परिवार में मंगल कार्य होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है,
कोई बड़ी मीटिंग है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

मिथुन राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य ना करें। लेकिन आज शिव जी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए आज शिव जी की पूजा करें, कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में भीषण आग लगी, कम से कम 27 लोगों की जान गई। अधिकारियों के अनुसार बचाव दल के पहुंचने तक आग पूरे परिसर में फैल चुकी थी। आग की शुरुआत स्टेज से हुई थी। हादसे में 63 लोग घायल हुए हैं। फायर फाइटर्स की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास केशम द्वीप पर कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। केशम द्वीप के अलावा जास्का आइलैंड पर भी हमले हुए हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक सिरे के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी। जवाबी कार्रवाई में IRGC ने कुवैत में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, उनके गोला बारूद भंडार को निशाना बनाया। कई ड्रोन हमले किए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक एक आपराधिक हमले में 3 सीमा चौकियों, समंदर में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। इसमें एक कर्मचारी घायल हुआ है। अमेरिका ने ईरान में करीब 140 ठिकानों पर हमला किया। युद्ध मंत्री ने कहा कि ईरान को चुकानी होगी इसकी कीमत। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया है। अमेरिकी हमले के दौरान फरमाबाद में IRGC ने क्रूज मिसाइल को मार गिराया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की, बदल दिया गया था काउंटिंग का सिस्टम। चढ़ावा चोरी के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ किया। देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल पर बीजेपी निशाना साधते हुए चुनावी हिंदू कहा कि चुनाव करीब आने पर भगवान राम की याद आती है। अयोध्या राम मंदिर में दान की चोरी पर संघ ने दुख जताया, कहा भविष्य में ऐसा ना हो, SIT जांच पर उन्हें भरोसा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, मंदिर के नए CEO की शक्तियां और जिम्मेदारियां पूरी तरह से मंदिर ट्रस्ट तय करेगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हम भगवान राम को बीजेपी से बचा रहे हैं, बीजेपी अब बाबर जनता पार्टी बन चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष को औरंगजेब की औलाद बताया, कहा हज और मस्जिद के झंडे में गड़बड़ी पर विपक्ष चुप क्यों है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक 21 जून से 3 जुलाई के बीच पिछले साल की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ मंदिर समिति के CEO को निर्देश दिया, दान चोरी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। नागौर में 140 दिन की जांच में बुटाटी धाम मंदिर समिति पर 22 करोड़ के गबन का खुलासा। 11 पदाधिकारियों पर FIR की सिफारिश की गई है। ज्ञानव्यापी विवाद विशेष लोक अदालत में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से समाधान पर जोर दिया है। 21 से 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होनी है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र होगा। बीजेपी ने PM मोदी के विदेश दौरे की उपलब्धियां गिनाई, 10 बड़े फायदे बताए, कहा इंडो पैसिफिक में भारत एक बड़ी ताकत बना है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किया। खास तौर पर गिफ्ट पर उत्तराखंड, कश्मीर और उड़ीसा की झलक दिखाई दी। न्यूजीलैंड के नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गिफ्ट पर UP के CM ने खुशी जताई, कहा लखनऊ की विश्वविख्यात हस्तशिल्प जरी कुशल शिल्पकारों की साधना है। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान, हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं, धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। झांसी में UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया नमाजवादी पार्टी का, 2014 से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साफ हो रही है। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों की भीड़ जुटी। राजभर ने महारैली में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बरसों तक SP ने प्रजापति समाज के अधिकारों की अनदेखी की। मणिपुर संकट को लेकर के कांग्रेस से केंद्र पर निशाना साधा, कहा PM जवाबदेही की बजाय अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में UCC को लेकर के बनी 7 सदस्यीय कमेटी पर AIMIM का बयान, UCC को असंवैधानिक बताया, कहा बनाई गई कमेटी में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले नरोत्तम मिश्रा, दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन पर सफाई दी। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि या तो सबूत दो या फिर माफी मांगो। उमर अब्दुल्ला ने अपने विधायकों को बीजेपी से 30 करोड़ रुपए ऑफर देने का आरोप लगाया था। नया वोटर बनने के लिए चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए हैं। फॉर्म 6 में नया कॉलम जोड़ दिया गया, SIR की भी जानकारी अब देनी होगी। बीजेपी उपाध्यक्ष रविंद्र चौहान और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की रणनीति सफल रही। ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर महायुति का कब्जा हो चुका है। नासिक में ग्राम विकास की अनोखी मिसाल देखने को मिली। ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश पगारे ने आवास, स्वच्छता और शिक्षा से ग्रामीणों की जिंदगी बदल दी है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना में हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी के बाद सांसद दिनेश चंद्र यादव का अभिनंदन। मधेपुरा से JDU सांसद की स्थानीय लोगों ने तारीफ की।
नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का उद्घाटन किया। करीब 9 लाख वर्ग फुट में बनकर तैयार हुआ है। पुणे में केतन हत्याकांड में परिवार का दर्द छलका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दर्द भरा पत्र लिखा। इंसाफ के लिए गुहार लगाई। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर आसान होगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास जल स्तर बढ़ चुका है। दहशत में लोग हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। चमोली जिले के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा गिरा। सड़कें उससे बंद हो गई। धनबाद में एक साल भी नहीं टिक पाया। 44 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़क दो विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क टूट गया। पथ निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया। देवास में बारिश के बाद बन रहे पुलिया की रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गुवाहाटी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कुछ स्थानों पर जलभराव और धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे सड़क धंस गई। 15 फीट गहरे गड्ढे में टायर फंस गया। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पालघर में ड्रोन में ऐतिहासिक तांदुलवाड़ीगढ़ पर तबाही का मंजर कैद हुआ। भारी भूस्खलन से पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। दबे कई वाहन। आज तक ने 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया था। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों प्रभावित रहा ट्रैफिक। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बिना वजह यात्रा करने की अपील की है मौसम विभाग ने। बिहार के रोहतास में मांझरकुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कचरा और गंदगी के बाद वन विभाग ने फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ किया। एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित हुआ यह महाअभियान। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम अभियान बना जन आंदोलन। अब तक 280 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण का महाकुंभ हुआ। 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास रचा गया। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ माह के नाम अभियान में इंदौर के दूसरे चरण में 21 लाख पौधारोपण किया गया। अहमदाबाद में मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण करके शुरुआत की। दिल्ली के मधुविहार में एक बिजली के खंभे में आग लग गई। कोई हताहत नहीं हुआ। वाराणसी में मुख्य पर्यटन स्थल दशाश्वमेध की एक इमारत में आग लगी। वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में युवक युवती के साथ भीड़ ने बुरी तरह मारपीट की। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोनीपत में बैटरी चोरी के शक में बच्चे को करंट देकर तालिबानी सजा दी गई। थर्ड डिग्री का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में चाकू मारकर एक युवक की हत्या हुई। पुलिस अब जांच में जुटी है। करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में पिछले 4 घंटे से बिजली गायब है। महिलाएं 2 से 3 दिन के बच्चों को लेकर बाहर बैठी नजर आईं। पश्चिम यूपी के सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग का अपहरण करके हत्या की गई। नहर में शव को फेंका गया। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में ईंधन की चोरी और मिलावटखोरी के खिलाफ एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन एथनॉल शील्ड के तहत शातिर आरोपियों को दबोच दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर हथियार विस्फोटक कैश और सोना बरामद। यूपीएससीएफ का बड़ा एक्शन। ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वाराणसी में 2 अभ्यर्थियों समेत सॉल्वर गैंग के कुल 13 सदस्य एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं। बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई। बिजनौर में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिली तो ससुराल वालों ने दुल्हन की हत्या कर दी। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना में शराबबंदी के बावजूद नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद उसे जेल भेजा गया। गुजरात के पाटन में नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजकोट में ब्रांडेड मसालों के नाम पर सेहत से खिलवाड़। फूड एंड ड्रग्स विभाग की कार्रवाई में 42 लाख रुपए के संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त किए गए। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदा, फिर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान ले ली। दिल्ली के अलीपुर में बड़ा हादसा हुआ। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। यूपी के ललितपुर में पुलिस के सामने 2 गुटों में मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, 6 लोग घायल हुए। उधम सिंह नगर के दापका नदी के किनारे गोलियां चली। आपसी विवाद में युवक घायल हो गए। 2 पक्ष फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा दी। एक शख्स से चाकू से गोद कर मारने वाले 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार कार की चपेट में एक शख्स आया, उसकी जान चली गई। पुलिस ने कार्यवाही शुरू की।
वाराणसी के तेलनाला इलाके में गेस्ट हाउस संचालक ने एक शख्स को पीट दिया। तीन साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। भोपाल के बैरागढ़ थाना इलाके में स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को टक्कर मारी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई, साइकिल सवार बुजुर्ग की। हरिद्वार के सप्तर्षि इलाके में ऑटो की रिक्शा से टक्कर हुई, इसमें कई यात्री घायल हो गए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के वैशाली में महिला सिपाही और उसकी बहन को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप, आरोपी का महिला से पहले होमगार्ड सिपाही के साथ प्रेम प्रसंग था। पटना में थार चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, ट्रैफिक पुलिस ने थार चालक को घेर कर पकड़ लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेंशनभोगी के खाते में अचानक आए 759 करोड़ रुपए, बैलेंस चेक करते उसके होश उड़े, 10 मिनट बाद खाते में बैलेंस जीरो हो गया। बिहार के समस्तीपुर में 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति की चोरी हुई, पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब इस मामले में जांच में जुटी है। बिहार के रोहतास में 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, पुलिस ने छत्तीसगढ़ का एक ट्रक भी जब्त किया। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। मेसी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए मेसी। अर्जेंटीना ने 112वें मिनट में दूसरा गोल कर दिया, साबित हुआ वो एक निर्णायक गोल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा अर्जेंटीना का मुकाबला, 15 जुलाई को खेला जाएगा नया मुकाबला। 14 जुलाई को आमने सामने होंगे फ्रांस और स्पेन, ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लॉर्ड्स में इतिहास बनाने की दहलीज पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, टेस्ट के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए चाहिए 4 विकेट, मेजबान इंग्लैंड लक्ष्य से 327 रन दूर है। इंग्लैंड के सामने 457 रनों का विशाल लक्ष्य रखने के बाद गेंदबाजी में भारत ने दमदार प्रदर्शन किया, दूसरी पारी में 130 रन पर इंग्लैंड के 6 विकेट झटके। विंबलडन 2026 में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हरा दिया, सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने 5वां ग्रैंड स्लैम जीता, विंबलडन फाइनल में ज़वेरेव को हरा दिया। मुंबई की सड़कों पर घूमे द ओडिसी के स्टार, स्पाइडरमैन का किरदार निभाने वाले टॉम हॉलैंड ने की पी कटिंग शायद।

0: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी. वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स. इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
2: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
4: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Vimal, bolo zuban kesri. Hint, bade aaram se.
6: Jai Hind friends. Isaiyat, sona, masala ya vistar. 1498 mein क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया. लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया. कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए. मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर.
7: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का है. लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा. आप देखते रहिए आज तक.
8: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं. सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी. इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था. कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है. जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है. इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई. इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी. टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई. बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है.
9: अयोध्या पुलिस ने आप रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है. इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था. ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई.
8: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है. पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी. नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6

0: बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: सॉरी।

0: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल ते कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
1: स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है, वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं मजबूत नेता चाहिए, यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है। तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया, 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। यहीं से पंजाब में कांग्रेस की सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। चन्नी और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है। राजनीति में विरोधी हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के भीतर बैठा होता है। पंजाब कांग्रेस आज उसी दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है जो पंजाब में अपनी पैठ बनाने की फिराक में है। इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है, और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो,
2: उन्होंने कहा था राम, उन्होंने कहा था किलेदार जी ने, बंसी के लीडर ने, कि सिद्धि विनायक को धोके और वाप उठते थे खोके। अब ये मेरा नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला है, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका दाखिला मैंने दिया है। अभी राम रक्षा तो मैंने बता दिया कि ये तमाम करोड़ों राम भक्तों की एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जो हुआ है उसकी जांच शुरू है और उसमें कोई भी नहीं छूटेगा। आपको को पता है कि मोदी जी की भूमिका क्या है? ना मैं खाऊंगा ना मैं किसको खाने दूंगा। चोरी तो करने की दिली को मजदूर की बात है, इसलिए मोदी जी और योगी जी जिन्होंने इसमें गलत काम किया होगा उनको जेल में बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे अंदर डाल देंगे, ये विश्वास है। ये करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का ये संवेदना का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है।
3: देखो, सिद्धि विनायक ट्रस्ट ये हमारे दिल के बहुत करीब है। ये मंदिर हमारे लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया है, गरीब लोगों को इतनी सहायता दी है, आपको मालूम है, जाकर देखिए आप। और हमारे अभी भी वहाँ लोग है, वो अभी जो उनका नया न्यास बना है वो राम मंदिर ट्रस्ट जैसा है, लूटने वाले लोग बैठे, उनके चोरी को हम नियंत्रित कर रहे हैं आज भी, इसलिए उनका वो गुस्सा है इतना शिंदे का, हम उनको चोरी नहीं करने दे रहे सिद्धिविनायक मंदिर में।

भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन मिसाइल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग आज भी खत्म हो रही है, आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, पर्चा दाखिल करेंगे जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर, बीजेपी से नीरज सिन्हा का भी नॉमिनेशन।

0: पर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सकता है। सबसे पहली खबर बैंकॉक से जुड़ी, क्योंकि वहां पर पब में आग लगी है। कैसे ये भयानक आग लगी है पूरी डिटेल आपको देंगे, पब की आग में कैसे खत्म हो गई है 27 लोगों की जिंदगी, बात करेंगे इस पर। वही ईरान युद्ध में बरसते बम बारूद की भी खबर आपको दिखाएंगे। तीसरे राउंड की लड़ाई बारूदी चढ़ाई पर पहुंची। वहीं खामेनेई के जनाजे में वो कौन मास्क मैन था जिसको लेकर शक पैदा हो रहे हैं। तो वही मिडल ईस्ट के बीच इसराइल में आम चुनाव हो रहे हैं और ये नेतन्याहू के भविष्य का भी चुनाव कैसे होगा ये आपको बताएंगे। बात हिमाचल से उत्तराखंड की भी करेंगे। पहाड़ पर बारिश हो रही है भीषण, वही आसमानी आफत पहाड़ी मुसीबत लेकर आई है, वो आपको पूरी डिटेल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां पर आधी रात को एक पब में भीषण आग लगी। इस पूरे हादसे में करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही करीब 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो आग आधी रात को लगी थी और तेजी से पूरे पब में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया और अब मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे के बाद अब प्रशासन ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि किन कारणों की वजह से ये आग लगी है, इसकी जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है कि किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ। आधी रात को पब में भीषण आग लगी है बैंकॉक में, द वार्निंग पब जिसमें आग लगी, जिसमें 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस पूरे हादसे में आग की चपेट में आने के कारण 63 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं वहां पर और फिलहाल कड़ी मशक्कत करनी पड़ी उस आग पर काबू पाने के लिए और कई लोगों को बचा भी लिया गया है। शिवानी हमारी सहयोगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के लिए। शिवानी, अभी तक क्या कारण पता चल पाया कि किस कारण से वहां पर आग लगी, कितने लोग वहां पर उस वक्त पब में मौजूद थे? 27 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। शिवानी, आंकड़ों का भी अपडेट दीजिएगा।
1: पूजा, देखिए जो खबर मिल रही है उस हिसाब से यहाँ पर लगभग 150 से 200 लोग थे और ये एक बहुत ही बिजी इलाका है बैंकॉक का, जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे माना जाता है। और ये जो पब है, इस पब का नाम था ना ला ट्राओ पब और ये इस कैपिटल के उत्तरी इलाके में है। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो वहां पर परफॉर्म कर रहे थे म्यूजिशियन, उन्होंने एक सर्किट से धुआं उठता हुआ देखा। यानी कि जो शुरुआती जांच है उसमें ये पता चल रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है, लेकिन ये जो पूरा इलाका था यहाँ पर ना ही फायर एग्जिट था पूजा, ना ही यहाँ पर पर्याप्त जगह थी कि लोगों को निकाला जा सके। और ये आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों में ये पूरी तरह से फैल गई, इसने इस पूरे पब को अपनी चपेट में ले लिया और लोग बचने के लिए भागते हुए नजर आ रहे थे। और रेस्ट रूम का जो इलाका है, जो इस पब के पीछे की तरफ था, वहां पर बहुत सारे डेड बॉडीज मिली हैं। तो 27 लोगों की जाने जा चुकी हैं, 22 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, यानी कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जबकि 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं वहां, उन्होंने जानकारी दी है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर क्या वजह रही इस आग की। और शुरुआत में यही लग रहा है कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था या जो रिस्पॉन्डिंग इक्विपमेंट होना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं था। और जो म्यूजिशियन,
0: ठीक है शिवानी, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में जारी जंग की। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया है और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान की मेयर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। केशम द्वीप के अलावा जास्क में भी हमले हुए हैं, सिरी के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। वहीं ईरानी मीडिया की माने तो नए हमलों में अमेरिका ने अब तक ईरान के 14 प्रांतों को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास, बुशहर और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, 14 प्रांतों को निशाना बनाया गया है। तो वही ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका के हमले को लेकर ईरान ने दावा किया है कि केशम द्वीप पर 10 से 11 मिसाइलें गिरी। ईरान के केशम द्वीप के गवर्नर हुसैन अमीर तैमूरी ने दावा किया है कि द्वीप पर 10 से 11 दुश्मन प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी के एक मुताबिक तैमूरी ने कहा है कि सभी हमले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए और इनमें किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में भी कई धमाकों की खबर दी है, सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं।
2: फिर बरसने लगे गोला बारूद। अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। एक सौ चालीस से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। आखिर दुनिया को जिसका डर था वही होने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूट चुका है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों पर हमले को लेकर अमेरिका भड़क चुका है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक बैक टू बैक हमले किए हैं। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और HIMARS मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से तीन लोग घायल हो गए। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। खाड़ी में जंग की इन तस्वीरों ने इतना साफ तो कर दिया है कि अब युद्ध और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो ईरान अमेरिका के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ रही है, ईरान के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर हमले किए गए हैं, जहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, चलिए अब आपको वो बताते हैं। कहा यह जा रहा है ईरानी मीडिया के द्वारा कि 14 प्रांतों को निशाना बनाया गया, लेकिन किबुशेर, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, जास्क द्वीप और सिरी की वो इलाके हैं जहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। ईरान में यहां पर मिसाइल गिरी है, ऐसा ईरानी मीडिया दावा कर रहा है। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बुशेहर, सिरिक और जास्क द्वीप, इसी के साथ ईरानी मीडिया ने यह भी कहा है कि 14 ऐसी जगहें और हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। फिलहाल ईरान भी इसको लेकर पूरा जवाब अमेरिका को दे रहा है। प्रणय हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, वो कौन से 14 प्रांत है जिसका दावा ईरानी मीडिया कर रहा है कि जहां पर निशाना बनाया गया, साथ ही ईरान अब इसका जवाब किस तरीके से दे रहा है? प्रणय,
3: देखिए, अगर आप देखें तो ईरान की दक्षिणी इलाके की जो 1800 किलोमीटर की पूरी तटरेखा है, उसके अलग अलग इलाकों के ऊपर इस समय अमेरिका की तरफ से बमबारी की जा रही है और यहां पर ही ईरान के वो 14 प्रांत लगते हैं। चाहे आप बुशर की बात करें, बंदर अब्बास की बात करें, चाहे सिरिक की बात करें, कशम प्रांत की बात करें, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो कि इन 14 प्रांतों के अंदर भी आते हैं और साथ ही ईरान की तटरेखा पर मौजूद है। और ये इनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है, यहां पर टारगेटिंग अमेरिका की तरफ से इसलिए की जा रही है ताकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जहाजों की आवाजाही को प्रभावित कर पाए। और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका या ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जेपर्डाइज नहीं करने देगा और साथ ही ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसको इस स्तर तक कम किया जाएगा ताकि जो जहाजों की आवाजाही है वो प्रभावित न हो पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अब से कुछ मिनट पहले ही ईरान के IRGC की तरफ से एक बयान आया है पूजा, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ईरान पलटवार कर रहा है और उसने अमेरिका के जो अलग अलग इलाके
0: जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने बहरीन और कुवैत पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया गया तो वहीं कुवैत में अमेरिका के मिसाइल लॉन्चर्स और गोला बारूद के ठिकाने पर हमला किया गया। वहीं हमले को लेकर कुवैत की सरकार ने इसे आपराधिक हमला भी बताया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान भी लगातार हमले कर रहा है जिसमें कुवैत को भी निशाना बनाया गया। तो वही अब बात कर लेते हैं आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में दिखे नकाबपोश शख्स की। अब उसके सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचा ये शख्स मोस्तबा नहीं बल्कि आयतुल्ला का सबसे बड़ा पोता मोहम्मद जवाद खामेनेई था, जो कि आयतुल्ला अली खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा का बेटा है। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई समेत उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई थी और इस पूरे हमले में जवाद खामेनेई को भी कई चोटें आई थी। उनका चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई, उनके निशान देखे गए और इन्हीं चोटों की वजह से जवाद ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था।
2: खामेनेई के जनाजे में दिखा नकाबपोश। नकाबपोश शख्स को लेकर दुनिया भर में हुई चर्चा। अब सस्पेंस से उठ चुका है पर्दा। रिपोर्ट्स की माने तो खामनेई के जनाजे में पहुंचा नकाबपोश शख्स कोई और नहीं, मुस्तफा का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद जवाद था। 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में खामनेई समेत उसके परिवार के कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हमले में जवाद खामनेई को भी कई गंभीर चोटें आईं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके चेहरे पर गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से जवाद ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। मोस्तवा को लेकर भी अब अटकलों का बाजार गर्म है। खामनेई की श्रद्धांजलि सभा में मोस्तवा के सामने आने के आसार। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तवा खामनेई एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल वो छिपकर अपना इलाज करा रहे हैं। खामनेई को इमाम रजा की दरगाह परिसर में बने मकबरे में दफनाया गया। वहीं खामनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद मोस्तवा का बयान सामने आया है, जिसमें बदला लेने और अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधी धमकी दी गई है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में ये जारी जंग कब खत्म होगी। आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं इसराइल की, जहां पर जंग के बीच चुनावी बिगुल बज चुका है। इसराइल में अगले आम चुनाव की तारीख तय हो गई है और देश में 27 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। तो वहीं उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। खास बात यह है कि 38 साल बाद चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में जाएगी और ऐसे में सबकी नजर इस बात पर होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू फिर से सत्ता में लौटते हैं या जनता किसी नए नेतृत्व पर भरोसा जताती है। पिछले हफ्ते चैनल 12 न्यूज के सर्वे में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और साथ ही गादी अंजन कोट की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई गई और दोनों दलों को 120 सदस्य संसद में 23-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इससे साफ है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है।

0: जंग के बीच इजराइल में बजा चुनावी बिगुल, 38 साल बाद तय वक्त पर डाले जाएंगे वोट। 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कर रही है कार्यकाल। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में चुनाव का ऐलान हो गया है। इजराइल में 27 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सबकी नजर नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने पर होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के साथ साथ चुनाव तय समय पर कराने का फैसला भी लिया गया है। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। आपको बता दें, इजराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। अक्सर गठबंधन टूटने, बहुमत खोने और वक्त से पहले चुनाव कराने पड़े हैं, लेकिन इस बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में उतर रही है। ऐसा 53 साल बाद हो रहा है। चैनल 12 न्यूज के सर्वे की माने तो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और गादी आइजनकोट की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों दलों को 120 सदस्यीय संसद में 23-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इससे साफ है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के दावेदारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में भारत की दावेदारी की शुरुआत करेंगे। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम में भारत की दावेदारी का ऐलान करने वाले हैं। इसके साथ ही वो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलेंगे। इस अभियान के जरिए भारत खुद को विकासशील देशों की आवाज के तौर पर पेश करेगा, जो कि ग्लोबल फैसले लेने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका चाहते हैं। भारत साल 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर दावेदारी पेश कर रहा है और इसके लिए अगले साल जून में वोट होंगे, जिसके लिए भारत ने समर्थन जुटाना भी अब शुरू कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं मानसूनी आफत की। मैदानी इलाकों में कोहराम मचाने के बाद अब पहाड़ी इलाकों में मानसून का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड और सड़कों पर मलबा आने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। लैंडस्लाइड और सड़कों पर मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, क्योंकि मलबा सड़कों पर आने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को वहां करना पड़ रहा है। हिमाचल से उत्तराखंड तक कुदरत का मानो कोहराम समझा हुआ है। एक तरफ मौसम सुहावना हुआ है तो काफी ज्यादा मुश्किल लोगों के लिए लेकर आया है।
0: पहाड़ों पर मॉनसून का बरसने लगा कहर। भारी बारिश के बीच दरक रहे हैं पहाड़। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप। लगातार हो रही बारिश के चलते अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। किन्नौर के नेशनल हाईवे पर चट्टानों का गिरने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से भारी चट्टाने और मलबा गिर रहा है। चट्टाने गिरने की गूंज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते आवाजाही को रोक दिया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड भी लैंडस्लाइड से अछूता नहीं रहा। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बारिश का कहर साफ देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड और मलबा आ जाने से हाईवे को बंद करना पड़ा। वहीं विकासनगर में भारी बारिश के चलते लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हुआ। कई गाड़ियां और मशीनें मलबे में दब गईं। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि हादसे के वक्त सभी कर्मचारी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे। किन्नौर से विश्वेश्वर नेगी, चमोली से कमल नयन और विकासनगर से टीना साहू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: सक्रिय मॉनसून सिस्टम के बावजूद भारत के ज्यादातर हिस्सों से बादल गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से अचानक से गर्मी बढ़ गई है। मॉनसून ब्रेक से दिल्ली में वायु प्रदूषण भी अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया है।
2: भारत में मॉनसून सक्रिय है, लेकिन एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है। सक्रिय मॉनसून सिस्टम के बावजूद भारत के ज्यादातर हिस्सों से बादल गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से पश्चिम, मध्य, उत्तर और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून ब्रेक कर गया है।
3: ज्यादातर जो भारत के हिस्से हैं, वहां से बादलों की मूवमेंट कहां चली गई है, तो ये पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे बादलों की आवाजाही दिखाई देती है, लेकिन जो सैटेलाइट रेडार तस्वीरों बताती हैं कि उत्तर भारत का हिस्सा, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, ये ज्यादातर वो इलाके हैं जहां से बादलों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह, देखिए पूरा इलाका ब्लैंक है, यहां से बादल जो है पूरब की तरफ, जिसकी वजह से आने वाले जो कुछ दिन है वो यहां पर आप देखेंगे बंगाल, असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में तो अच्छी जो बारिश है वो दिखाई दे रही है, इन इलाकों में तो बारिश होगी, लेकिन ज्यादातर इलाका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसी के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों से बारिश अचानक जैसे मानिए गायब हो गई।
2: जुलाई में सिर्फ 24% बारिश हुई है। मॉनसून अनिश्चितता पर अलनीनो का भी प्रभाव है। अलनीनो प्रभाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी बुलाई है, जिसमें देश भर के किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलेंगे। इस बैठक में कंटिंजेंसी प्लान को लेकर चर्चा होगी। अलनीनो के प्रभाव और उससे पैदा हो रही कृषि परिस्थितियों पर सरकार की लगातार नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा रामदेव के उस बयान की जिसको लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। योग गुरु ने कहा है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला।
3: योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है।
4: ऋषि मुनि है, उनकी बात को मानो, तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था,
3: बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है उसे हमें अपनाना चाहिए।
4: हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ।
3: बाबा रामदेव के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पहचान संविधान है और सभी धर्मों और मान्यताओं की सुरक्षा उसी के दायरे में सुनिश्चित है। वहीं शिया धर्म गुरु ने कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और देश संविधान के अनुसार चलता है।
1: तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, विशेष एसआईटी के गठन और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी मांग की गई है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह 2026 शुरू किया है और सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर न्यायपालिका ने पहल की है कि देश में जो संवेदनशील विवाद है उनको आपसी सुलह समझौते के जरिए सुलझाया जाए, इसमें काशी, मथुरा, संभल के मामले भी शामिल हैं।
3: धार्मिक मान्यताओं से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई पहल शुरू की है। न्यायपालिका ने विशेष लोक अदालत के जरिए मामलों को सुलझाने की कोशिश शुरू की है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपसी बातचीत के माध्यम से किसी सहमति तक पहुंच सकते हैं। इसी उद्देश्य से 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। कल यानी 14 जुलाई को वाराणसी के ज्ञान व्यापी केस की सुलह वार्ता को लेकर भी सुनवाई होगी। ये पहल सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह 2026 अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुराने और संवेदनशील मामलों में संवाद के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद और संभल के हरि मंदिर मस्जिद विवाद को भी विशेष लोक अदालत के लिए भेजा गया है। हालांकि मथुरा मामले में सुलह की पहली कोशिश नाकाम रही क्योंकि मुस्लिम पक्ष वार्ता में शामिल नहीं हुआ। अब सभी की नजरें अगस्त में होने वाली विशेष लोक अदालत पर हैं, जहां इन संवेदनशील मामलों के शांतिपूर्ण समाधान की एक और कोशिश की जाएगी।
1: अब बात कर लेते हैं विंबलडन के मेन सिंगल खिताब की। इटली के यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 4 सेटों में हराकर अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम जीता और इस जीत के साथ विश्व नंबर 1 सिनर ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें लगातार दूसरा विंबलडन खिताब, 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत और करियर का 30वां एटीपी टाइटल शामिल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। पटना के कोचिंग कॉम्प्लेक्स के पावर ग्रिड में लगी भीषण आग, दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली के मधुविहार में एक बिजली के खंभे में लगी आग, कोई हताहत की खबर नहीं। वाराणसी में मुख्य पर्यटन स्थल दशाश्वमेध की एक इमारत में लगी भीषण आग, वक्त रहते आग पर पाया गया काबू। पटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक युवती के साथ भीड़ ने की मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। सोनीपत में बैटरी चोरी के शक में बच्चे को करंट देकर दी तालिबानी सजा, 3rd degree का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने शुरू की जांच। पटना में थार चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, ट्रैफिक पुलिस ने थार चालक को घेर कर पकड़ा। विजयवाड़ा के ऑटोनगर में मैकेनिकल शेड में आग लगी, कई बसें जलकर खाक। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Tune in has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
9: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
8: It was to live sports action.
10: To the near side corner, to wrap around, he scores!
8: And your favorite music.
11: You and I stargazing.
8: Tune in has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play Tune In.
12: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
13: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
12: ओ, अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
14: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
15: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: आधी रात को बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग हुए घायल, 22 की हालत नाजुक, राहत बचाव काम जारी। अमेरिकी हमले से फिर से दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशेहर, सिरिक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज, ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन मिसाइल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग, आज ही खत्म हो रही है 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, पर्चा दाखिल करेंगे जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर, बीजेपी से नीरज सिन्हा का भी नॉमिनेशन। विंबलडन में इटली के यानिक सिन्हा के बाद चाहत बरकरार, जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: अमेरिका ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज वार्ता पर ईरान का बड़ा आरोप, ओमान पर दबाव डालकर अमेरिका ने समझौते की राह रोकी। ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि हॉर्मुज वार्ता में अमेरिकी दखल का आरोप लगाया गया। दक्षिणी ईरान के मशर प्रांत में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव, IRIB का दावा, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, उड़ानें रोके जाने की भी खबर। ईरान की खाड़ी तनाव बढ़ा, ईरानी मीडिया का दावा, कुवैत में धमाकों की आवाज सुनी गई, बुशेहर से 4 मिसाइल लॉन्च की गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी, रॉयटर्स के मुताबिक क्रूड 3.3% बढ़कर करीब $79 प्रति बैरल पर पहुंचा। IRGC ने कुवैत में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर्स और उनके गोला बारूद भंडार को बनाया निशाना, कई ड्रोन हमले किए गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फोर्स के मुताबिक एक आपराधिक हमले में 3 सीमा चौकियों और समुद्र में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा, 1 कर्मचारी घायल। अमेरिका ने ईरान में करीब 140 ठिकानों पर किया हमला, रक्षा मंत्री बोले ईरान को चुकानी होगी कीमत। ईरान ने अमेरिका पर किया पलटवार, अमेरिकी हमले के दौरान खारमबाद में IRGC ने एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर किया बड़ा हमला, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर ईरान के कई इलाकों में धमाके किए गए। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भयंकर आग, कम से कम 27 लोगों की गई जान। अधिकारियों के अनुसार बचाव दल के पहुंचने तक आग पूरे परिसर में फैल चुकी थी, आग की शुरुआत स्टेज से हुई थी, हादसे में 63 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू और अब मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, हादसे के बाद अब प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब तक की जांच में खुलासा, 40 दिन में हुई 70 बार चोरी, सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की, बदल दिया काउंटिंग सिस्टम। चढ़ावा चोरी के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सुंदरकांड, देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना बताया चुनावी हिंदू, कहा चुनाव करीब आने पर ही भगवान राम की आती है इन्हें याद। अयोध्या राम मंदिर में दान की चोरी पर संघ ने जताया दुख, कहा भविष्य में ना हो ऐसा, SIT जांच पर भरोसा। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, मंदिर के नए CEO की शक्तियां और जिम्मेदारियां पूरी तरह से मंदिर ट्रस्ट ही करेगा तय, सरकार का नहीं होगा कोई हस्तक्षेप। शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हम भगवान राम को बीजेपी से बचा रहे, बीजेपी अब बाबर जनता पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष को बताया औरंगजेब की औलाद, पूछा हज और मस्जिद के चंदे में गड़बड़ी पर विपक्ष चुप क्यों है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक 21 जून से 3 जुलाई के बीच पिछले साल हुई तुलना में सबसे ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ मंदिर समिति के CEO को दिया निर्देश, दान चोरी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई। नागौर में 146 दिन की जांच में बुटाटी धाम मंदिर समिति पर 22 करोड़ के गबन का खुलासा, 11 पदाधिकारियों पर FIR की सिफारिश। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन, प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा आज भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने बदला बांकीपुर का उम्मीदवार, अभिषेक बंटी की जगह नीरज सिन्हा को मिला टिकट। पटना मारपीट मामले में फैजल खान की जमानत पर सुनवाई आज, सिविल कोर्ट में आएगा फैसला। तमिलनाडु में सियासी वार पलटवार, DM के विधायक का दावा 6 महीने में खत्म हो जाएगी विजय की सरकार। डीएमके का विजय पर हमला, अनिता राधाकृष्णन बोले राजनीति में जरूरत के हिसाब से बदलते हैं चेहरे। ज्ञानवापी विवाद विशेष लोक अदालत में भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से समाधान पर दिया जोर, 21 से 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत, मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक, 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र। बीजेपी ने गिनाई पीएम मोदी के विदेश दौरे की उपलब्धियां, बताए 10 बड़े फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किए खास तोहफे, गिफ्ट पर उत्तराखंड, कश्मीर, ओडिशा की दिखी झलक। न्यूजीलैंड के नेता प्रतिपक्ष की पीएम मोदी की तरफ से दिए गए गिफ्ट पर यूपी के सीएम ने जताई खुशी, कहा लखनऊ की विश्व विख्यात हस्तशिल्प जरी कुशल शिल्पकारों के साथ। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान, हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। झांसी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया नमाजवादी पार्टी, कहा 2014 से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो रही है साथ। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों की जुटी भीड़, राजभर ने महारैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा बरसों तक एसपी ने प्रजापति समाज के अधिकारों की अनदेखी की। मणिपुर संकट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा पीएम जवाबदेही के बजाय अपनी छवि पर ध्यान दे रहे। महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर बनी 7 सदस्यीय कमेटी पर एआईएमआईएम का बयान, यूसीसी को बताया संवैधानिक, कहा बनाई गई कमेटी में एक भी मुस्लिम नहीं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, आज पटना में हेली एयर टूरिज्म सेवा का करेंगे शुभारंभ। मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी के बाद सांसद दिनेश चंद्र यादव का अभिनंदन, मधेपुरा में जेडीयू सांसद की स्थानीय लोगों ने की तारीफ। नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का उद्घाटन किया, हेल्थ सिटी का उद्घाटन किया गया, करीब 9,00,000 वर्ग फुट में बनकर तैयार। पुणे में केतन हत्याकांड में परिवार का छलका दर्द, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा दर्द भरा पत्र, इंसाफ के लिए लगाई गुहार। ग्रेटर नोएडा के शाबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर होगा आसान, जाम से मिलेगी मुक्ति। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास जल स्तर बढ़ा, दहशत में लोग, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में गिरा भारी मलबा, सड़कें हुई बंद। धनबाद में एक साल भी नहीं टिक सकी 44 करोड़ की सड़क, 2 विधानसभा क्षेत्रों का टूटा संपर्क, पथ निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को ठहराया जिम्मेदार। देवास में भारी बारिश के बाद बन रहे पुल की रिटेनिंग वॉल हुई क्षतिग्रस्त, पुलिया की जांच के आदेश दिए गए। गुवाहाटी के कई हिस्सों में हो रही है भारी बारिश, कुछ स्थानों पर जलभराव और धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे धसी सड़क, 15 फीट गहरे गड्ढे में फंसा टायर, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पालघर में ड्रोन में कैद ऐतिहासिक तांदुलवाड़ी गढ़ पर तबाही का मंजर, भारी भूस्खलन से पहाड़ का बड़ा हिस्सा धसा। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, दबे कई वाहन, आज तक ने 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को अलर्ट भी किया था। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों प्रभावित हुआ ट्रैफिक, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बिना वजह यात्रा करने से बचने की मौसम विभाग ने की अपील। बिहार के रोहतास में मांझर कुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए एक हफ्ते के लिए बंद, कचरा और गंदगी के बाद वन विभाग ने लिया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ किया, एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित हुआ ये महाअभियान। सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम अभियान बना जन आंदोलन, अब तक 280 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। यूपी में पर्यावरण का महाकुंभ रचा गया, 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान में इंदौर के दूसरे चरण में किए 21,00,000 पौधारोपण। अहमदाबाद में मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण कर के इसकी शुरुआत। दिल्ली के मधुविहार में एक बिजली के खंभे में लगी भीषण आग, कोई हताहत की खबर नहीं। वाराणसी में मुख्य पर्यटन स्थल दशाश्वमेध की एक इमारत में लगी भयंकर आग, वक्त रहते आग पर पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक और युवती के साथ भीड़ ने की बुरी तरह से मारपीट, वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। सोनीपत में बैटरी चोरी के शक में बच्चे को करंट देकर दी तालिबानी सजा, थर्ड डिग्री का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली के बदरपुर इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में पिछले 4 घंटे से लाइट गायब, महिलाएं 2 से 3 दिन के बच्चों को लेकर बाहर बैठी नजर आई। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग का अपहरण कर हत्या कर दी गई, नहर में फेंका गया शव, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में ईंधन की चोरी और मिलावटखोरी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन एथेनॉल शील्ड के तहत 4 शातिर आरोपियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर हथियार, विस्फोटक, कैश और सोना बरामद। यूपीएसटीएफ का बड़ा एक्शन, ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार किए गए। वाराणसी में दो अभ्यर्थियों समेत सॉल्वर गैंग के कुल 13 सदस्य एसटीएफ ने किए गिरफ्तार। बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। बिजनौर में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिली तो ससुराल वालों ने दुल्हन की कर दी हत्या, तीन लोग गिरफ्तार। पटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो हो रहा है वायरल, मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। गुजरात के पाटन में नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार। राजकोट में ब्रांडेड मसालों के नाम पर सेहत से खिलवाड़, फूड एंड ड्रग्स विभाग की कार्रवाई में 42 लाख रुपए में संदिग्ध मिलावटी मसाले। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदा, फिर ट्रेन के सामने कूद कर दी अपनी जान। दिल्ली के अलीपुर में बड़ा हादसा, पानी से भरे गड्ढे में डूबने के कारण दो बच्चों की मौत हुई। राजस्थान के डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने गए चार बच्चों की डूबकर मौत हुई। यूपी के ललितपुर में पुलिस के सामने दो गुटों में मारपीट और पत्थरबाजी, छह लोग घायल। उधम सिंह नगर के दापका नदी के किनारे चली गोलियां, आपसी विवाद के कारण युवक घायल, दोनों पक्ष फरार। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई एक गुत्थी, एक शख्स को चाकू से गोदकर मारने वाले पांच नाबालिग गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार कार की चपेट में आया शख्स, गई जान। वाराणसी के तेलियानाला इलाके में गेस्ट हाउस संचालक ने एक शख्स को पीटा, तीन साथियों के साथ वारदात को दिया गया अंजाम, एफआईआर दर्ज। भोपाल के बैरागढ़ थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर ही साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हुई। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में ऑटो की ई रिक्शा के साथ टक्कर हुई, कई यात्री घायल हुए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जुलाई 2026, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:49 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 5:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे।

बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

शुरुआत हो सकती है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

होगा लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां दो पालियों में काउंटिंग का काम होता था। दो शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी। सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा यह भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है, उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में यह सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है। ये केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR हुई। सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी।
2: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उससे बहुत अहितकर हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जाँच है इससे कुछ निकलेगा नहीं। लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए।
3: क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे MLA को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के 1 MLA ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का BJP का एक अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, BJP का अहदेदार मेरे एक जम्मू के MLA को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। हमको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में गया 100 करोड़ में अपनी आबादी मां बेचने के लिए जा रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं
4: कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

आधी रात को बैंकॉक एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 की मौत, 63 घायल, 22 की हालत नाजुक, चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटे। अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन मिसाइल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग, आज ही खत्म हो रही है 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, पर्चा दाखिल करेंगे जन सुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर, बीजेपी से नीरज सिन्हा का भी नॉमिनेशन। विंबलडन में इटली के यानिक सिनर की बादशाहत बरकरार, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता।

हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का, आपके साथ हूं मैं रिहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज शो। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर खबरों की झलकियों पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम सुनवाई। किसने डाली है ये याचिका, याचिकाकर्ता ने क्या मांग रखी है ये आपको दिखाएंगे। केतन मर्डर मामले में पिता की राष्ट्रपति से गुहार, सिर्फ एक फाइल बनकर ना रह जाए मेरे बेटे का मर्डर केस। चिट्ठी में और क्या है, केतन के पिता ने क्या लिखा है बताएंगे आपको विस्तार से। लॉर्ड्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम रिकॉर्ड बनाने की कगार पर, ऐतिहासिक जीत से 4 विकेट दूर है भारत। पूरी रिपोर्ट इस बुलेटिन में शामिल होगी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए भीषण अग्निकांड की खबर के साथ, जहां पर आधी रात को एक पब में आग लगने से 27 लोगों की जान चली गई है, 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भीषण अग्निकांड में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आधी रात को आग लगी और तेजी से पूरे पब में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अब मौके पर राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये भीषण अग्निकांड, आप देख सकते हैं कैसे लाशों का अंबार लग गया, 63 लोगों के घायल होने की भी खबर है। अभी फिलहाल यह आकलन किया जा रहा है कि दरअसल आग कैसे लगी, लेकिन देखिए अचानक ये आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरे क्लब को, पूरे पब को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए धुआं ही धुआं और ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी जगहों पर सिर्फ एक ही एग्जिट होता है, एक ही एंट्री पॉइंट होता है, जिससे लाक्षाग्रह में ये पब तब्दील हो गया। लोग मौज मस्ती के लिए पब में जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये उनके जीवन की आखिरी रात थी। आधी रात को ये मौत का तांडव देखिए, धीरे धीरे ये आग फैल गई और अचानक इसने एक विकराल रूप ले लिया। और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कैसे लाशों का अंबार लग गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम अब भी मौके पर ही मौजूद है, रेस्क्यू का काम जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 9-10 घंटे बीतने के बावजूद अभी तक वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। और अब बात पश्चिम एशिया की जंग के, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया गया है, वहीं ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर कई धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में ये धमाके हुए हैं। केशम द्वीप के अबाला जास्क में हमले हुए हैं, सिरिक के पास धमाकों की आवाज हुई है। ईरानी मीडिया की माने तो नए हमलों में अमेरिका ने अब तक ईरान के 14 प्रांतों को निशाना बनाया है।

0: मिडल ईस्ट में फिर बरसने लगे गोला बारूद। अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। 140 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। आखिर दुनिया को जिसका डर था वो होने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर अब टूट चुका है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों पर हो रहे हमले से अमेरिका भड़क चुका है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक बैक टू बैक हमले किए। ये दक्षिण ईरान का सबसे क्रिटिकल इलाका बंदर अब्बास न सिर्फ एनर्जी और उसी के साथ साथ जास्का आइलैंड। इसी जास्का आइलैंड पर जहां पर उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो जास्का आइलैंड भी पिछले चार दिनों से लगातार निशाने पर। इसी के साथ जैसे आते हैं दक्षिण पश्चिम का दूसरा बड़ा शहर सिरिक जो कि उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है, और उसी के साथ साथ बुशहर के साथ लेकर के, यानी इस इलाके से अगर आप देखें तो खाड़ी के साथ होते हुए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आज जो अमेरिका ने अब ताजा हमले किए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वो तीन बड़े शहर जिसमें सिरिक शामिल है, केशम आइलैंड और बंदर अब्बास। ईरान ने दावा किया 10 से 11 मिसाइलें केशम द्वीप पर गिरी, वहीं बंदर अब्बास में भी कई धमाकों की खबर है। जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को करारा जवाब देने की कसम खाई है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैन्य ठिकानों का रुख किया। अमेरिका का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरानी क्रूज मिसाइल और अटैक ड्रोन को मार गिराया। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान पर नए हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि कार्रवाई का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुजरती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हॉर्मुज के पास स्थित बंदर अब्बास, सिरिक और केशम द्वीप के आसपास धमाकों और मिसाइल हमलों की आवाजें सुनी गई। इस बीच ईरान ने अमेरिका पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। ओमान की मध्यस्थता में चल रही बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बढ़ते सैन्य तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर तुरंत दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3% से ज्यादा बढ़कर लगभग $79 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड में भी 3.5% के आसपास तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित रही तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल मध्यपूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई लगातार तेज हो रही है, दूसरी ओर दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मामला है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। आज तक ब्यूरो।
1: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये महायुद्ध की जो वापसी हो गई है, जाहिर तौर पर वैश्विक तौर पर इसका असर तो देखा ही जा रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आर्थिक तौर पर भी देखें तो क्या ईरान और अमेरिका दोनों ही सक्षम है इसे सस्टेन करने के लिए लॉन्ग रन में?
2: लेकिन यहाँ अगर आप सैन्य ताकत की बात करें या आर्थिक ताकत की बात करें तो कोई मैच नहीं है अमेरिका और ईरान के बीच में। और ईरान का ये कहना है कि ये युद्ध उसके ऊपर लादा गया है, इसलिए उसके पास डिफेंस के अलावा किसी तरीके का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर ईरान की जो तटरेखा है, जो कि करीब करीब दक्षिणी तटरेखा करीब 1800 किलोमीटर की है, यानी इराक के साथ लगी सीमा से लेकर और पाकिस्तान से लगी सीमा तक का जो पूरा इलाका है 1800 किलोमीटर का, उसकी पूरी तटरेखा के अलग अलग इलाकों को इस समय अमेरिका निशाना बना रहा है। और खास तौर पर जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ अरब सागर की तरफ लगने वाली जो ईरान की तटरेखा है, और यहां पर अमेरिका की टारगेटिंग इसलिए हो रही है ताकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके, क्योंकि लगातार दबाव अमेरिका पर इसी चीज को लेकर यहां बना हुआ है कि इतने सब कार्रवाई के बावजूद, पूरे सैन्य अभियान के बावजूद, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उस तरह से नहीं खुल पाया है जितना दावा अमेरिका कर रहा है। और इसीलिए शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी नीति में और अपने पैंतरों के अंदर कुछ बदलाव किया है। स्ट्रैटेजी के तहत पिछले 36 घंटों के अंदर कई जो इलाके हैं ईरान के, और खासतौर पर उसकी जो कोस्टलाइन है, उसको टारगेट किया गया। अब से कुछ देर पहले जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड का बयान आया नेहा, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ईरान की जो अंडर वाटर जो सी ड्रोन कैपेबिलिटी है उसको भी टारगेट किया गया है, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। अमेरिका ये बताना चाहता है कि वो इस खतरे को भी न्यूट्रलाइज करने की स्थिति में है। अब क्या वाकई में इस कार्रवाई से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इन तमाम चीजों, इन तमाम बयानों के बावजूद ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खुल पाया है और ना ही अभी पूरी तरह से बंद है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बात अब आयतुल्ला खामेनेई के जनाजे में दिखे नकाबपोश शख्स की करेंगे। उसके सस्पेंस से अब पर्दा उठ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचा शख्स मोश्तबा नहीं बल्कि आयतुल्ला खामेनेई का सबसे बड़ा पोता मोहम्मद जवाद खामेनेई था, जो कि आयतुल्ला खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा का बेटा है।
3: खामेनेई के जनाजे में दिखा नकाबपोश। नकाबपोश शख्स को लेकर दुनिया भर में हुई चर्चा। अब सस्पेंस से उठ चुका है पर्दा। रिपोर्ट्स की माने तो खामेनेई के जनाजे में पहुंचा नकाबपोश शख्स कोई और नहीं, मुस्तफा का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद जवाद था। 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में खामेनेई समेत उसके परिवार के कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हमले में जवाद खामेनेई को भी कई गंभीर चोटें आईं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके चेहरे पर गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से जवाद ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। मोस्तवा को लेकर भी अब अटकलों का बाजार गर्म है। खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा में मोस्तवा के सामने आने के आसार। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तवा खामेनेई एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल वो छिपकर अपना इलाज करा रहे हैं। खामेनेई को इमाम रजा की दरगाह परिसर में बने मकबरे में दफनाया गया। वहीं खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद मोस्तवा का बयान सामने आया है, जिसमें बदला लेने और अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधी धमकी दी गई है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में ये जारी जंग कब खत्म होगी। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट की दावेदारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में भारत की दावेदारी की शुरुआत करेंगे। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम में भारत की दावेदारी का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही वो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलेंगे। इस अभियान के जरिए भारत खुद को विकासशील देशों की आवाज के तौर पर पेश करेगा, जो ग्लोबल फैसले लेने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका चाहते हैं। भारत साल 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर दावेदारी पेश कर रहा है। इसके लिए अगले साल जून में वोट होंगे, जिसके लिए भारत ने समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ी खबर की। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, विशेष एसआईटी के गठन और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। विशेष एसआईटी के गठन की भी इस याचिका में मांग की गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और अन्य ने अर्जी लगाई है। सीबीआई की अगुवाई में बहुस्तरीय जांच की मांग की गई है। अभी तक एसआईटी इसकी जांच कर रही थी, अब यह कहा जा रहा है कि सीबीआई इसकी जांच करे और ट्रस्ट की अनियमितताओं की भी जांच की जाए। ट्रस्ट के लेन देन का ऑडिट किया जाए, जो अब तक हो रहा था, लेकिन उसमें कई सारी गड़बड़ियां और घोटाले सामने आए। सुधाकर सिंह ने अपनी अर्जी में यह लिखा है कि इस ट्रस्ट की कार्रवाई कैसे होती है, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आपसे जानना चाहेंगे याचिका में क्या कुछ लिखा गया है, डिटेल में बताइए।
4: ये 4 याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। 3 याचिकाएं पहले थी, 1 याचिका अभी बस कुछ घंटों पहले दाखिल हुई है, जो रामराज्य परिषद की तरफ से है। तो ऐसे में तमाम याचिकाओं की अगर हम बात करें तो इनका ये कहना है कि या तो सीबीआई से जांच कराई जाए इस पूरे मामले की, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी रिटायर्ड जज को इसमें अगुआ बनाए, लेकिन कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बड़ा है और इसका असर भी काफी बड़ा है, लिहाजा इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो कोर्ट में यही मांग की गई है। और इसमें देखना दिलचस्प होगा कि जब एसआईटी की जांच चल रही है, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को एंटरटेन करता है, या फिर वो कहता है कि तब तक आप इंतजार कीजिए जब तक इसकी रिपोर्ट ना आ जाए। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले में क्या रहता है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी की जांच रिपोर्ट में एआई आधारित निगरानी तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया जा सकता है। तो चोरी रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल संभव है, ये बड़ी खबर। चढ़ावा चोरी मामले से एसआईटी रिपोर्ट में एआई तकनीक इस्तेमाल की सिफारिश संभव है। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, एआई से कैसे कनेक्ट किया गया है चढ़ावा चोरी को?
5: नया देखिए, अभी एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को 15 जुलाई को सौंपनी है, और उससे पहले सूत्रों के मुताबिक एसआईटी कुछ ऐसे सजेशंस भी कहीं ना कहीं सरकार और ट्रस्ट को दे सकती है, जिससे कि जो गणना प्रक्रिया है उसमें बेहतरी हो। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां पर आई, वहां गणना में ही आई कि कोई भी आकर काउंटिंग कर रहा था, मोबाइल फोन्स उनकी जेब में थे। तो ऐसे में एक सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जो है वो एआई का एक जरिया सुझा सकती है कि एआई की सहायता ली जाए काउंटिंग करने के लिए उस डोनेशन को जो राम लला को चढ़ाया जाता है। राम मंदिर में अलग अलग जगहों से आए श्रद्धालु चढ़ाते हैं, एआई के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है वो आएगी, कम समय में काउंटिंग होगी। इस तरह की चीजें जो है सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट में इस तरीके के सजेशंस जो है वो सरकार को या यूं कहें ट्रस्ट को दे सकती है। अब देखना यह होगा कि अगर इस तरह के सजेशन एसआईटी के द्वारा दिए जाते हैं तो धरातल पर इन्हें इन पर अमल कैसे किया जाएगा, नंबर एक। और नंबर दो, 22 जुलाई को जो बैठक बड़ी ट्रस्ट की होनी है, क्या उसमें इसको इस पारदर्शिता भरे जो एआई के फॉर्मूले को एसआईटी पेश कर सकती है उस पर मोहर लग सकती है? क्योंकि अगर लगती है तो शायद पहला ही मंदिर होगा जिसमें इस तरीके से काउंटिंग प्रोसीजर होगा, और अगर यहां बेहतर तरीके से चीजें फॉर्मूला लागू होता है तो आने वाले वक्त में अन्य जो मंदिर है वहां भी लागू किया जा सकता है। आप देखें ना, एआई को जगह जगह इस वक्त सरकार आगे लाने की कोशिश कर रही है। अब हाईवेज की बात कर ले, कहीं की बात कर ले, जहां जहां पॉसिबिलिटी है वो वर्क फोर्स को कम करता है और काम आसानी से करता है। तो ऐसे में जो काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, गणना में जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसके समाधान के तौर पर भी एआई को देखा जा रहा है। यानी कि कम समय में पारदर्शिता के साथ कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है डोनेशन की वो हो सके, इसके तहत सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ये एक सजेशन जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट में सरकार और ट्रस्ट को सुझा सकता है। जी नया,
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हो रही सियासत की, क्योंकि विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में भी मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया। नितेश राणे ने विपक्षी दलों को औरंगजेब का वंशज बताया। नितेश राणे ने कहा कि विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तो आरोप लगाता है, लेकिन मस्जिदों के चंदे और हज यात्रा में धन की गड़बड़ी पर चुप्पी साध लेता है।
6: जेव्हा जेव्हा मस्जिदीमध्ये अशा पद्धतीचे घोटाळे झाले, दान चोरी झाली, हज यात्रामध्ये असंख्य यात्रेबद्दल असंख्य तक्रारी आल्या, तेव्हा हे ना मस्जिदीच्या बाहेर जाऊन इस्लाम रक्षा चे पुस्तक किंवा कुराणचं वाचण्याचे हे लोकांना कुराण वाचणारं काही लोकांना वाटलं नाही। हिंदू धर्माची बदनामी करण्याची कुठलीही संधी, हे औरंगजेबची जी पिलावळ आहेत, टिप्याचे जे पिलावळ आहेत, ते कधीच सोडणार नाही। इस हिंदू राष्ट्र को जिसको हम भारत कहते हैं, जहां 90% हिंदू रहते हैं, उनको उस भारत देश को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना, यही इसको ही गजवा हिंद कहते हैं, और उसके अंडर ये सारे एक्टिविटीज शुरू है। मगर देश में, केंद्र और राज्य में हिंदुत्व की सोच की सरकार है, इसके बारे में हम लोग अलर्ट है। कोई भी अगर हमारे हिंदू समाज के युवाओं की तरफ अगर गंदी नजर से देखता होगा तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी जगह दिखाएगी, इतना विश्वास से मैं कह सकता हूँ।
1: अरे बात हिंदू राष्ट्र पर बाबा रामदेव के एक वायरल बयान की करेंगे। डीयू के एक कार्यक्रम के दौरान रामदेव का भाषण सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। यहां बाबा रामदेव ने कहा कि चाहे दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी पहनो, हमारे पूर्वज एक ही हैं और वो सनातनी हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों से डरने की जरूरत नहीं है।
7: हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को।
1: और बात पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर मामले की, इस पूरे मामले में पिता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इंसाफ की गुहार लगाई अपने ईमेल के जरिए। उन्होंने कहा है कि बेटे की हत्या के बाद उनका पूरा परिवार बिखर सा गया है, उनके बेटे का केस सिर्फ एक फाइल ना बन जाए बल्कि दोषियों को सख्त सजा मिले, ये ईमेल के जरिए राष्ट्रपति से गुहार है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भेजा गया ये ईमेल है केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल का। देश की संवेदना को हिला देने वाले पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में इस ईमेल के जरिए एक बार फिर केतन के पूरे परिवार का दर्द सामने आया है। बेटे को खो चुके पिता विशाल अग्रवाल ने अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भावुक ईमेल में इंसाफ की गुहार लगाई है। अपने पत्र में विशाल अग्रवाल ने लिखा है, वो किसी उद्योगपति या प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक टूटे हुए पिता के रूप में ये अपील कर रहे हैं। केतन की बेरहमी से हत्या के बाद उनका पूरा परिवार बिखर गया। हर सुबह एक ही दर्द के साथ होती है और हर रात एक ही सवाल के साथ खत्म होती है, आखिर मेरे बेटे को इंसाफ कब मिलेगा। राष्ट्रपति से इंसाफ की गुहार करते हुए विशाल अग्रवाल ने यह भी बताया कि बेटे की मौत का सदमा उनके पिता सहन नहीं कर पाए और महज 20 दिनों के भीतर उनका भी निधन हो गया। एक ही महीने में उन्होंने अपना बेटा और पिता दोनों को खो दिया। विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति से मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि समाज में ये संदेश जाए कि निर्दोष की हत्या करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लिखा, मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत ना कर सके।
1: सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
0: राष्ट्रपति को भेजे ईमेल में एक पिता का दर्द साफ नजर आ रहा है। केतन के पिता ने लिखा है, हमारे परिवार ने सब कुछ खो दिया है, अब सिर्फ एक उम्मीद बची है, इंसाफ। कृपया मेरे बेटे के मामले को सिर्फ एक और फाइल बनाकर मत रहने दीजिए, इसके पीछे एक बर्बाद परिवार का दर्द छिपा है। पुणे के इसी लोहागढ़ किले से धक्का देकर केतन अग्रवाल की हत्या की गई थी। इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। श्री कृष्ण पांचाल, पुणे आज तक।
2: और इस बीच आपको बता दें कि साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर के मोलड़बंद इलाके में प्रेम संबंध को लेकर विवाद में 17 वर्षीय किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आरोपी है कि किशोर को उसकी प्रेमिका के भाई ने बातचीत के बहाने बुलाया, उसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही ये हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इस दौरान किशोर के सीने और पेट में चाकू से कई वार किए गए। गंभीर हालत में उसे एम्स में भर्ती कराया गया, वहां ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बात मानसूनी आफत की करेंगे। मैदानी इलाकों में कोहराम मचाने के बाद अब पहाड़ी इलाकों में मानसून का कहर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते लैंडस्लाइड और सड़क पर मलबा आने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है।
3: अब पहाड़ों पर मानसून का बरसने लगा कहर। भारी बारिश के बीच दरक रहे हैं पहाड़। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप। लगातार हो रही बारिश के चलते अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। किन्नौर के नेशनल हाईवे पर चट्टानों का गिरने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से भारी चट्टाने और मलबा गिर रहा है। चट्टाने गिरने की गूंज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते आवाजाही को रोक दिया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड भी लैंडस्लाइड से अछूता नहीं रहा। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बारिश का कहर साफ देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड और मलबा आ जाने से हाईवे को बंद करना पड़ा। वहीं विकास नगर में भारी बारिश के चलते लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हुआ। कई गाड़ियां और मशीनें मलबे में दब गईं। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि हादसे के वक्त सभी कर्मचारी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे। किन्नौर से विश्वेश्वर नेगी, चमोली से कमल नयन और विकास नगर से टीना साहू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और बांग्लादेश में भी बारिश से भारी तबाही मची है। कम से कम 51 लोगों की जान जा चुकी है, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं।

0: ढाका की सड़कें समंदर बनी हुई हैं। ये ढाका का केंद्रीय इलाका है, सड़कों का हाल देखिए, पानी से लबालब। मूसलाधार बारिश के बाद ढाका के कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के बंदरबन जिले की हैं, जहां उफनती नदियों ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। लगातार बारिश के बीच सड़कें पानी में समा गई हैं और कई जगह भूस्खलन ने संपर्क पूरी तरह काट दिया है। लोग नावों के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। कई परिवार चार दिनों से अपने घरों में फंसे रहे। पानी कुछ कम होने पर लोग लौटे तो घरों में कीचड़, बर्बाद सामान और भारी नुकसान उसका इंतजार कर रहा था। कई लोगों की महीनों की कमाई कुछ ही घंटों में बह गई।
1: তো আজকে তিন চার দিন পরে একটু পানিটা অবনীত হয়েছে। ওই আমার বন্ধু বান্ধব বা প্রতিবেশী মিলে আমরা ঘরটা পরিষ্কার করতেছে। তাই আমরা এখনো কয়েকদিন ধরে খেয়ে না খেয়ে আছি, খুব অবস্থা খারাপ। আমরা একটু সাহায্য বা
0: बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन ने भी तबाही मचाई है। पहाड़ी इलाकों में कई लोगों की जान मलबे में दबने से गई, हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए। जिनके घर बच भी गए उनमें पानी और कीचड़ भर गया है।
2: बात क्रिकेट की, इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन से भारतीय पुरुष टीम की किरकिरी हो रही है, लेकिन उसी इंग्लैंड में क्रिकेट का मक्का कहलाने वाली लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम आज इतिहास रचने वाली है। टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय महिलाएं ऐतिहासिक जीत से महज चार विकेट की दूरी पर है। इंग्लैंड लक्ष्य से 327 रन पीछे है। भारतीय टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय महिलाओं की पहली जीत होगी। भारत इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन तीसरे दिन खेल खत्म होने तक मेजबान टीम 130 रन पर 6 विकेट खो चुकी है। इसके पहले कल भारत की यास्तिका भाटिया ने इतिहास रचा, वो लॉर्ड्स के मैदान में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन मिसाइल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग, आज ही खत्म हो रही 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। आज बांकीपुर से पर्चा भरेंगे जनसुराज और प्रशांत किशोर। बीजेपी ने नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन, एमपी के दतिया से आशुतोष तिवारी करेंगे नामांकन। आज तक से कहा नाराज नहीं है नरोत्तम। लॉर्ड में 149 साल बाद हो रहा है महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने को तैयार है भारत की बेटियां। इंग्लैंड पर अभूतपूर्व विजय से सिर्फ 4 विकेट की दूरी पर है हिंदुस्तान की विमेन्स टीम।

बैंकॉक पब अग्निकांड में 27 की गई जान, धधकती आग से मची भगदड़, 22 की हालत गंभीर, धुएं से दम घुटने से कई मौतें। अधिकारियों के अनुसार बचाव दल के पहुंचने तक आग पूरे परिसर में फैल चुकी थी। आग की शुरुआत स्टेज से हुई, हादसे में 63 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अब मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, हादसे के जांच के दिए गए हैं आदेश। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर कई धमाके सुने गए। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में धमाकों की गूंज, प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। अमेरिका ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज वार्ता पर ईरान का बड़ा आरोप, ओमान पर दबाव डालकर अमेरिका ने समझौते की राह रोकी। ईरान ने ट्रंप के दावे खारिज किए, हॉर्मुज वार्ता में अमेरिकी दखल का लगाया आरोप। दक्षिण ईरान के मशहर प्रांत में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा, उड़ाने प्रभावित होने की खबर। ईरान खाड़ी तनाव बढ़ा, ईरानी मीडिया का दावा, कुवैत में धमाकों की आवाज, 4 मिसाइल लॉन्च। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 3% ज्यादा की बढ़ोतरी, क्रूड ऑयल 3.3% बढ़कर करीब $79 प्रति बैरल पर पहुंचा। IRGC ने कुवैत अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर, उनके गोला बारूद भंडार को बनाया निशाना, कई ड्रोन हमले किए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फोर्स के मुताबिक एक आपराधिक हमले में 3 सीमा चौकी और समुद्र में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया गया, 1 कर्मचारी घायल। अमेरिका ने ईरान में करीब 140 ठिकानों पर किया हमला, रक्षा मंत्री बोले ईरान को चुकानी होगी कीमत। ईरान ने अमेरिका पर किया पलटवार, हमले के दौरान खुर्रमाबाद और IRGC ने क्रूज मिसाइल को मार गिराया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब तक की जांच में खुलासा, 40 दिन में हुई 70 बार चोरी। चढ़ावा चोरी के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सुंदरकांड, देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल को बीजेपी का निशाना बताया, चुनावी हिंदू का चुनाव करीब आने पर ही भगवान राम याद आते हैं। राम मंदिर में दान की चोरी पर संघ ने दुख जताया और कहा भविष्य में ना हो ऐसा, SIT जांच पर है भरोसा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा का बयान, मंदिर के नए CEO की शक्तियां और जिम्मेदारियां पूरी तरह से मंदिर ट्रस्ट तय करेगा, सरकार का नहीं होगा हस्तक्षेप। शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हम भगवान राम को बीजेपी से बचा रहे हैं, बीजेपी अब बाबर जनता पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष को बताया औरंगजेब की औलाद को जहाज और मस्जिद के चंदे में गड़बड़ी पर विपक्ष क्यों चुप है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक 21 जून से 3 जुलाई के बीच पिछले साल की तुलना में ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ मंदिर समिति के CEO को दिया निर्देश, दान चोरी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई। नागौर में 140 दिन की जांच में बुटाटी धाम मंदिर समिति पर 22 करोड़ के गबन का खुलासा, 11 पदाधिकारियों की FIR की सिफारिश। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन, प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा आज भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने बदला बांकीपुर का उम्मीदवार, अभिषेक बंटी की जगह नीरज सिन्हा को मिला टिकट। पटना मारपीट मामले में फैजल खान की जमानत पर सुनवाई आज, सिविल कोर्ट में आएगा फैसला। तमिलनाडु में सियासी वार पलटवार, DMK विधायक का दावा, 6 महीने में खत्म हो जाएगी विजय की सरकार। DMK का विजय पर हमला, अनीता राधाकृष्णन बोली राजनीति में जरूरत के हिसाब से बदलते हैं चेहरे। ज्ञानवापी विवाद विशेष लोक अदालत में भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से समाधान पर दिया जोर, 21 से 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत। मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक, 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र होगा। बीजेपी निगरानी, PM मोदी के विदेश दौरे की उपलब्धियां, बताए 10 बड़े फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत। PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किए खास तोहफे, गिफ्ट में उत्तराखंड, कश्मीर, उड़ीसा की दिखी झलक। न्यूजीलैंड के नेता प्रतिपक्ष को PM मोदी की तरफ से दिए गए गिफ्ट पर UP के CM ने जताई खुशी, कहा लखनऊ की विश्वविख्यात हस्तशिल्प जरी कुशल शिल्पकारों की साधना। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान वायरल, हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते। झांसी में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया नमाजवादी पार्टी, कहा 2014 से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो रही है साफ। आजमगढ़ में ओमप्रकाश राजभर के समर्थकों की जुटी भीड़, राजभर ने महारैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा बरसों तक SP ने प्रजापति समाज के अधिकारों की अनदेखी की है। मणिपुर संकट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा PM जवाबदेही के बजाय अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में UCC को लेकर बनी 7 सदस्यीय कमेटी पर AIMIM का बयान, UCC को बताया असंवैधानिक, कहा बनाई गई कमेटी एक भी मुस्लिम उसमें शामिल नहीं है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, आज पटना में हेली एयर टूरिज्म सेवा का करेंगे शुभारंभ। मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी के बाद सांसद दिनेश चंद्र यादव का अभिनंदन।
नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट में बनकर हुआ है तैयार। पुणे में केतन हत्याकांड में परिवार का छलका दर्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, इंसाफ के लिए लगाई गुहार। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर होगा आसान, जाम से मिलेगी मुक्ति। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास जलस्तर बढ़ा, दहशत में लोग, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गिरा भारी मलबा, सड़कें हुई बंद। धनबाद में एक साल भी नहीं टिक सकी 44 करोड़ की सड़क, 2 विधानसभा क्षेत्रों का टूटा संपर्क। पथ निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को ठहराया जिम्मेदार। देवास में बारिश के बाद बन गए पुलिया को रिटेनिंग वॉल, हुए क्षतिग्रस्त, जांच के दिए आदेश। गुवाहाटी के कई हिस्सों में हो रही बारिश, कुछ स्थानों पर जलभराव और धीमी यातायात की स्थिति देखने को मिली। सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे धंसी सड़क, 15 फीट गहरे गड्ढे में फंसा टायर। पालघर में ड्रोन में कैद ऐतिहासिक तांदुलवाड़ी गढ़ पर तबाही का मंजर, भारी भूस्खलन से पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंसा। दिल्ली अमरोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, दबे कई वाहन। आज तक ने 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को किया था अलर्ट। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों प्रभावित रहा ट्रैफिक, पर्यटक और स्थानीय लोगों से बिना वजह यात्रा करने से बचने की मौसम विभाग ने की अपील। बिहार के रोहतास में मांझरकुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए एक हफ्ते के लिए बंद, कचरा और गंदगी के बाद वन विभाग ने लिया फैसला। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 को किया चालू, एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित हुआ ये महाअभियान। सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम अभियान बना जन आंदोलन। यूपी में पर्यावरण का महाकुंभ रचा गया, 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान में इंदौर के दूसरे चरण में 21 लाख पौधारोपण। अहमदाबाद मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण करके की शुरुआत। दिल्ली के मधु विहार में एक बिजली के खंभे में लगी आग, कोई हताहत होने की खबर नहीं। वाराणसी में मुख्य पर्यटन स्थल दशाश्वमेध की एक इमारत में लगी आग, वक्त रहते आग पर पाया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक युवती के साथ भीड़ ने की मारपीट, वीडियो वायरल। सोनीपत में बैटरी चोरी के शक में बच्चे को करंट देकर दी तालिबानी सजा, थर्ड डिग्री का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली के बदरपुर इलाके में चाकू मारकर युवती की हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में पिछले 4 घंटे से लाइट बंद, महिलाएं और 2-3 दिन के बच्चों को लेकर बाहर बैठी नजर आई। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग का अपहरण कर हत्या, नहर में फेंका गया शव, प्रेमी को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में ईंधन की चोरी और मिलावटखोरी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन इथेनॉल शील्ड के तहत 4 शातिर आरोपियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सिलेंडर करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर हथियार, विस्फोटक, कैश और सोना बरामद। यूपीएसटीएफ का बड़ा एक्शन, ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में 2 अभ्यर्थियों समेत सॉल्वर गैंग के कुल 13 सदस्य एसटीएफ ने किए गिरफ्तार, बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। बिजनौर में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिली तो ससुराल वाले ने दुल्हन की कर दी हत्या, 3 लोग गिरफ्तार। पटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, मेडिकल जांच की पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। गुजरात के पाटन में नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजकोट में ब्रांडेड मसालों के नाम पर सेहत से खिलवाड़, फूड एंड ड्रग्स विभाग की कार्रवाई में 42 लाख रुपए के संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। मेसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने मेसी। अर्जेंटीना 112वें मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ निर्णायक गोल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा अर्जेंटीना का मुकाबला, 15 जुलाई को खेला जाएगा ये मुकाबला। 14 जुलाई को आमने सामने होंगे फ्रांस स्पेन, खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला। लॉर्ड्स में इतिहास बनाने की दहलीज पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, टेस्ट के आखिरी दिन भारत की जीत के लिए चाहिए 4 विकेट। इंग्लैंड के सामने 457 रन का विशाल लक्ष्य रखने के बाद गेंदबाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन, दूसरी पारी में 130 रन पर झटके इंग्लैंड के 6 विकेट। विंबलडन 2026 में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने जीता 5वां ग्रैंड स्लैम, विंबलडन फाइनल में ज्वेरेव को हराया। मुंबई की सड़कों पर घूमे द ओडिसी के स्टार्स, स्पाइडरमैन का किरदार निभाने वाले टॉम हॉलैंड ने पी कटिंग चाय। विजय की फिल्म जन नायकन को मिला सेंसर बोर्ड से हरी झंडी, नए पोस्टर में रौबदार अंदाज में नजर आए थलापति। मुंबई में चार बन मस्का का लुत्फ उठाते दिखे क्रिस्टोफर नोलान, टॉम हॉलैंड, मैट डेमन ने किया देसी नाश्ता। ओटीटी पर रिलीज होगी तीसरी बेगम, 18 जुलाई से स्ट्रीम होगी केसी बुकाडिया की फिल्म। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने सतलुज के निर्माताओं को चैलेंज दिया था 25,000 वाले आंकड़े को साबित करें। धुरंधर फेम सिंगर जासमी सैंडला से कॉन्सर्ट बीच मंगेतर से कराया परिचय, सगाई की अंगूठी दिखाई।

0: और अब बात आसमानी आफत की। बादल फाड़ तबाही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मची है। यहाँ कई जगह सड़कें टूट गई हैं, कई इलाकों से संपर्क कट गया है।
1: मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ों पर मानसूनी आफत। बादल फटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कें टूट चुकी हैं, कई इलाकों का संपर्क कट चुका है, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में जहां लोग सुकून ढूंढते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारी बारिश और बादल फटने से उसी जन्नत जैसे नजारे को डर और तबाही की तस्वीरों में बदल दिया गया है। शनिवार की रात को बादल फटने के बाद पहलगाम के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खेत डूब गए, बागों में मलबा भर गया। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिसने भी यह मंजर देखा वह इसे शायद कभी भूल नहीं पाएगा। अचानक आए फ्लैश फ्लड ने पहलगाम इलाके में भारी तबाही मचा दी है। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है और अब नुकसान का पूरा आंकलन किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। टिकते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
1: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
13: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
14: वाह वाह वाह वाह।
13: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
15: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
16: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
19: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
18: Vimal, bolo zubaan.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
5: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
6: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
4: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

0: नहीं होना चाहिए।
1: स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है, वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं, मजबूत नेता चाहिए। यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है। तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं, बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया, 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। यहीं से पंजाब में कांग्रेस की सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। चन्नी और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है। राजनीति में विरोधी हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के भीतर बैठा होता है। पंजाब कांग्रेस आज उसी दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है, जो पंजाब में अपनी पैठ बनाने की फिराक में है। इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है। और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो, तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।

सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल ते कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर

अब अमेरिकी हमलों की जद में आए ईरान के तटीय ठिकाने। एक के बाद एक बंदरगाहों पर अमेरिका लगा रहा निशाने। तेज हुआ ईरान की आर्थिक ताकत तोड़ने का अभियान। तेल की लड़ाई हॉर्मुज से होते हुए ईरान के समुद्री सीमा से लगे तमाम शहरों तक पहुंच गई है और अमेरिका एक के बाद एक बंदरगाहों पर हमले कर रहा है। अभी तक अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर हॉर्मुज से सटे इलाके ही आमतौर पर आते थे, लेकिन इस हफ्ते अमेरिका ने उन तमाम तटीय इलाकों को बर्बाद करने के लिए बम बरसाए हैं जो ईरान के तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था में मजबूत किरदार निभा रहे हैं। अमेरिकी सेना दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रही है जहां से खाड़ी देशों में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब उसके निशाने पर ईरान की वो पोर्ट सिटी आ गई है जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इनमें से एक है बंदर अब्बास, जो तेल के निर्यात के लिहाज से अहम ठिकाना है। इसके अलावा नेचुरल गैस के लिहाज से अहम कंगन, समुद्री इकोनॉमी के लिहाज से अहम बंदर एदेयर एनर्जी और पेट्रोकेमिकल के लिहाज से अहम असालुये क्रूड ऑन ऑयल पाइपलाइन की वजह से महत्वपूर्ण माने जाने वाला जास्क, हॉर्मुज के करीब होने की वजह से सैन्य अहमियत वाले सिरिक और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार पोर्ट। पिछले 24 घंटों में इन सभी पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कंट्रोल टॉवर से लेकर अहम उपकरणों तक को तबाह किया है। चाबहार पोर्ट तो आर्थिक के साथ साथ सामरिक और कूटनीतिक तौर पर भी इतना अहम है कि भारत तक ने इसमें करोड़ों रुपए का निवेश किया था। इतना ही नहीं, खार्ग को लेकर भी अमेरिका लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के तेल निर्यात का करीब 90% हिस्सा खार्ग के जिम्मे ही है और ये ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में अहम किरदार निभाता रहा है। इसीलिए अमेरिका लगातार इस पर भी हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के तटीय शहर ही बमबारी का शिकार हो रहे हों। ईरान का दावा है कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर भारी हमला किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव डलवाकर ओमान के पास जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया समुद्री मार्ग तैयार करा रहा है। इससे हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर हो सकता है, लिहाजा ईरान ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाकर वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर निगाहबानी का फरमान जारी कर दिया है। तटीय शहरों पर बढ़ते हमलों का असर सिर्फ ईरान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: आधी रात को बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक, चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटे। अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशहर, सिरीक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर दागे ड्रोन और मिसाइल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग। आज ही खत्म हो रही 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। आज बांकीपुर से पर्चा भरेंगे जन सुराज प्रशांत किशोर। बीजेपी से नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन, एमपी के दतिया से आशुतोष तिवारी करेंगे नामांकन। आज तक से कहा नाराज नहीं है नरोत्तम। लॉर्ड्स में 149 साल बाद हो रहे महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने को तैयार है भारत की बेटियां। इंग्लैंड पर अभूतपूर्व विजय से सिर्फ 4 विकेट दूर है हिंदुस्तानी वेमेन्स टीम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। आज सुबह में एक बार फिर से हाजिर है। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की, जिसे लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। इसके साथ चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में रण छिड़ गया है। साथ ही बात होगी बांकीपुर उपचुनाव की भी, जहां प्रशांत किशोर और बीजेपी प्रत्याशी आज अपना पर्चा भरेंगे। वहीं दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में कई दिग्गज शामिल होंगे। तो ये सब बातें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में आयकर विभाग की एंट्री हो गई है। चोरी की रकम की वित्तीय कड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस ने आयकर विभाग से मदद मांगी है। अयोध्या पुलिस ने गबन किए गए पैसों का पूरा रूट पता लगाने के लिए आईटी विभाग से मदद मांगी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, क्या पता चल रहा है इस मामले में?
1: अंजलि, देखिए, एक बड़ी खबर अयोध्या से कही जाएगी, क्योंकि आप खुद सोचें, अभी तक अयोध्या पुलिस खुद के स्तर पर जांच कर रही थी, एसआईटी भी सरकार के द्वारा बनाई गई और एसआईटी भी इस मामले में जांच कर रही थी, लेकिन अब अयोध्या पुलिस ने आयकर विभाग से मदद मांगी है। और मदद मांगने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो 8 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस को ऐसा लगता है कि उन्होंने खातों के जरिए जो चुराया गया पैसा है उसको अपने रिलेटिव जो है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके अकाउंट्स में भी ट्रांसफर किया है, और उसके वाया जो है कहीं ना कहीं उस धन को सफेद करने की कोशिश की गई है। आसान भाषा में कहें तो काले धन को सफेद करने की कोशिश उन अकाउंट्स के जरिए की है। अकेले पुलिस के लिए बैंक में जाकर खंगालना, सारी डिटेल्स निकालना उतना आसान नहीं है। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश इस मामले में की है डे 1 से, और कई बैंक्स में जाकर विजिट करा है, कई बैंक कर्मियों के अब बयान भी लिए हैं। जो खाते हैं, 50 के ऊपर खाते जो हैं वो तक फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि शायद इतना इनफ अभी नहीं है। इससे लंबा एक फाइनेंशियल ट्रेल है जिसको पुलिस पकड़ना चाहती है, और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्प ली गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं 2022 से इनके और इनके लगभग 50 रिश्तेदार जो 8 आरोपी हैं उनके पूरे बैंक अकाउंट्स को खंगालेगा और एक एक डिटेल निकालेगा कि आखिर कहां कहां से मनी ट्रेल जो है, जो फाइनेंशियल ट्रेल खासकर है, जो वित्तीय इनकी इनकम बढ़ी या कहीं कहीं एक बार में इकट्ठा ट्रांजैक्शन हो गया, वो कैसे हुआ, किसके थ्रू हुआ, और जिसके थ्रू हुआ वहां तक भी जो है पुलिस और आईटी साथ में पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल अब अयोध्या पुलिस ने आईटी डिपार्टमेंट से हेल्प मांगी है। तो कुल मिलाकर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस अयोध्या चंदा चोरी में आपको आने वाले वक्त में इन्वॉल्व होता नजर आएगा। और कहीं जो हम देवन से कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, अकाउंट खंगाले जा रहे हैं,
0: जी, इस पर रहेगी हमारी नजर। समर्थ, आप हमारे साथ बने रहे, लगातार आपके पास बड़ी खबरों के लिए आते रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी रोकने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एआई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी की जांच रिपोर्ट में एआई आधारित निगरानी तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया जा सकता है। उधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच कार सेवक रहे संतोष दुबे आज सीईओ ऑफिस जाएंगे और चढ़ावा चोरी मामले में साक्ष्य पेश करेंगे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का रुख करते हैं। समर्थ, क्या मंशा है संतोष दुबे की?
1: देखिए अंजलि, संतोष दुबे वो किरदार है जो शुरुआत से जो राम जन्मभूमि का जो संघर्ष रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव रहे हैं अयोध्या में, और जब से ये घटना हुई है वो काफी आहत है। कई बार वो कैमरे के सामने भी आकर अपने जो उनके आंसू हैं वो बात करते हुए छलके हैं, उनका दर्द दिखाया। तो उनका ये दावा शुरुआत से रहा है कि भाई हमारे पास साक्ष्य हैं, आप गिरफ्तारियां कीजिए। और बड़ी बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने संतोष दुबे के जो बैक टू बैक बयान सामने आए उसके बाद एसआईटी ने संतोष दुबे के बयानों को भी कंसीडर किया है और संतोष दुबे से भी पूछताछ की है। यानी कि ये पूछताछ एक आरोपी के तौर पर बिल्कुल भी नहीं है, आसान भाषा में कह सकता है कि एक विटनेस के तौर पर जरूर कही जा सकती है, जिनके पास कुछ साक्ष्य हैं और कुल मिलाकर वो पुलिस की या एसआईटी की मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे में संतोष दुबे से भी एसआईटी ने पूछताछ की है, क्या निकला है क्या नहीं निकला है वो हमें फाइनल रिपोर्ट में पता चलेगा।
0: 15
1: जुलाई को आने की संभावना है,
0: लेकिन
1: फिलहाल संतोष दुबे के पास जो साक्ष्य हैं वो आज वो सीओ कार्यालय पहुंच रहे हैं 12 बजे और वो पुलिस
0: जी इस पर रहेगी हमारी नजर, आप हमारे साथ बने रहे समर्थ। अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ी खबर की, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, विशेष एसआईटी के गठन और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है याचिकाओं में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा का। संजय, क्या क्या मांगे हैं जो इन याचिकाओं में की गई है और कब तक शुरू हो सकती है ये सुनवाई?
2: सबसे पहले तो मांग की बात करें तो इन याचिकाओं में ये गुहार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से कि ये पूरा मामला बहुत गंभीर है, लिहाजा इसकी जांच स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी यानी सीबीआई जैसी एजेंसी से कराई जा सकती है या फिर कोर्ट अपनी निगरानी में एसआईटी बनाए जिसमें तमाम विशेषज्ञ विभागों के विशेषज्ञ शामिल हों और उनकी निगरानी में ये जांच कराई जाए। जो जिस एसआईटी से सरकार जांच करा रही है, राज्य सरकार, वो बहुत अनुकूल या बहुत समुचित नहीं है। इसमें और भी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए, सिर्फ पुलिस के विशेषज्ञ नहीं, बाकी आर्थिक विशेषज्ञ, एआई विशेषज्ञ, तमाम विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, यानी समयबद्ध जांच का टाइम फ्रेम तैयार किया जाए और कोर्ट अपनी निगरानी में, यानी कोर्ट चाहे तो रिटायर्ड जस्टिस के जजेस की निगरानी में कमेटी बनाए और वो विशेषज्ञ कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे और समयबद्ध तरीके से इसकी रिपोर्ट आए। चौथी याचिका आज दाखिल हो गई है जिसमें आज 3 जजों की पीठ है जिसमें चीफ जस्टिस अगुवाई कर रहे हैं, इसके अलावा जस्टिस बागची हैं और अभी हाल में ही जिनकी नियुक्ति हुई है जस्टिस एसवी मोहना, वो भी इस पीठ का हिस्सा रहेंगी। और चूंकि 21 नंबर से 23 नंबर मैटर है तो उम्मीद की जा रही है कि ये मैटर 11:30 बजे से पहले तक आ जाए।
0: जी शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत भी गरमाई हुई है, विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने विपक्षी दलों पर पलटवार कर दिया है। नीतीश राणे ने विपक्षी दलों को औरंगजेब का वंशज बता दिया है। नीतीश राणे ने कहा है कि विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तो आरोप लगाता है, लेकिन मस्जिदों के चंदे और हज यात्रा में धन की गड़बड़ी पर चुप्पी साध लेता है।
3: जेव्हा जेव्हा मस्जिदीमध्ये अशा पद्धतीचे घोटाळे झाले, दान चोरी झाली, हज यात्रामध्ये असंख्य यात्रेबद्दल असंख्य तक्रारी आल्या, तेव्हा ह्यांना मस्जिदीच्या बाहेर जाऊन इस्लाम रक्षा चे पुस्तक किंवा कुराणचं वाचण्याचे कुराण वाचणार वाटलं नाही। हिंदू धर्माची बदनामी करण्याची कुठलीही संधी, हे औरंगजेबाची जे पिलावळ आहेत, टिप्याचे जे पिलावळ आहेत, ते कधीच सोडणार नाही। इस हिंदू राष्ट्र को जिसको हम भारत कहते हैं, जहां 90% हिंदू रहते हैं, उनको उस भारत देश को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना, यही इसको ही गजवा हिंद कहते हैं और उसके अंडर ये सारे एक्टिविटीज शुरू है। मगर देश में, केंद्र और राज्य में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, इसके बारे में हम लोग अलर्ट है। कोई भी अगर हमारे हिंदू समाज के युवाओं की तरफ अगर गंदी नजर से देखता होगा तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी जगह दिखाएगी, इतना विश्वास से मैं कह सकता हूँ।
0: और अब रुक करते एक और विवादित बयान का। बाबा रामदेव का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ या कैसी भी टोपी पहनो, पगड़ी पहनो, हमारे पूर्वज एक ही हैं और वो सनातनी हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान बाबा रामदेव ये भी कहते हैं कि जो अपने बाप का नहीं वो क्या हो, किसी और का क्या ही होगा, इसलिए अपने पूर्वजों जैसे बनिए। देखिए उनका वीडियो।
4: हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को।
0: और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर में बीती शाम कुछ इस तरह का वीडियो सामने आया है, जब लोगों ने एक युवक युवती की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट में युवक युवती को साथ देखने के बाद कुछ लोगों ने युवक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम उस वक्त आशु शर्मा बताया। हालांकि कुछ ही देर में पता चला कि वो युवक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, जिसके बाद लोगों ने युवक और युवती की पिटाई कर दी। पिटाई की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक युवती को भीड़ से निकालकर थाने ले गई।
5: देखिए 112 के माध्यम से एक सूचना संज्ञान में आई थी, जिसमें हमारी टीम द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच कर जो युवक है, जो पीड़ित युवक है, उसको थाने पर लाया गया। उसको मजरूबी चिट्ठी दी गई, उसका अभी इलाज करवाया जा रहा है और उस पर जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस तहरीर के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, उसमें जो है कार्रवाई विधि कार्रवाई अमल में लाई गई।
6: लड़की के साथ भी बहुत पूरी तरह से मारपीट की,
5: जैसा मैंने बताया कि मेडिकल दोनों ही लोगों को करवाया जाएगा, जो कि साक्ष्य सामने आएंगे, तहरीर सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई अमल में।
0: बुलेटिन में सबसे एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं यूपी की सियासत की बड़ी खबर। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावी संग्राम से के पहले गठबंधन पर खींचतान तेज होती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे मुस्लिम नेताओं का विरोधी बता दिया है। साथ ही इमरान मसूद ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ही यूपी में गठबंधन के लिए शोर मचा रही है।
7: हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलते लास्ट अपॉर्चुनिटी तक कोई एक्शन नहीं होना चाहिए।
8: एक और बड़ी बात है सर, आप सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उमर अब्दुल्ला साहब ने चिट्ठी लिख के कहा कि आप छत्र मंत्र पर इकट्ठा हो, स्टेटहुड के लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये भी कहा कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश है। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री।
0: तो इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी ने अब पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है, इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इमरान मसूद को लेकर कुछ भी नहीं बोला गया है।
9: समाजवादी पार्टी में भी 37 सांसद हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके के कोई बयानबाजी गठबंधन को लेके नहीं करी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी चलाने के समय कुछ नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है। गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना है, हम बार बार बोल चुके हैं कि हमारे लिए सीट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जीत जरूरी है। और जब तक ये मंत्र वो अपने अंदर नहीं बैठा लेते हैं, तब तक ये इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है।
0: तो बड़ी खबर यह है कि सांसद इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी पर हमले के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बयान दे दिया है। अजय राय ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा।
10: देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हम पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा और कितने पे होगा।
0: और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव का। समर्थी, कैसा गठबंधन है, आपस में ही ये बयानबाजी किए जा रहे हैं और बयानबाजी बढ़ती ही जा रही है।
1: अंजलि, देखिए, अभी कुल मिलाकर कहें तो इमरान मसूद के आप अगर पिछले 3 महीने का ही बयान अगर निकाल कर देखें तो लगातार वो समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर वो चाहे आजम खान के जरिए हो, सीट्स को लेकर हो, या जो पुराने परफॉर्मेंसेस सपा के रहे हैं उसको लेकर हो, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी का भी जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सपा के जो नेता हैं वो भी अब खुलकर फुल स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। आज के बयान से एक बात साफ होती है, सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने साफ कहा है कि इमरान मसूद जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में गए, फिर सपा में गए और अब कांग्रेस में है, तो एक तरीके से जो उनका सियासी सफर रहा है सपा उसको टारगेट करते हुए कह रही है। बड़ी बात तो यह है कि आखिर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इमरान मसूद को क्यों नहीं रोक रहा है, जबकि पिछले 3 से 4 महीने से जब से सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू हुई है तब से लगातार इमरान मसूद इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सपा के नेता ये भी अब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई सपा से है या बीजेपी से है, जिस तरीके के बयान इमरान मसूद के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को आप देखें,
0: बिल्कुल इस तरह के बयान सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर हो क्या रहा है गठबंधन में। उधर उत्तर प्रदेश में चुनावी समर से पहले लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दावा भी करते रहे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब एक और बड़ा दावा कर दिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि 22 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और तभी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी।
11: आप बताओ, महिला बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? ये बता रहा हूं, टीएमसी ने विरोध किया, टीएमसी टूट गई थी। शिवसेना ने विरोध किया, शिवसेना टूट गई। विरोध किया है समाजवादी पार्टी, 22 तारीख को मानसून सत्र चलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, देख लेना।
0: और अब बात करते हैं उपचुनावों की, बिहार की सियासत की करते हैं, जहां बांकीपुर सीट के उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सभी की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि आखिरी मोमेंट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और अब जन सुराज पार्टी के खिलाफ खड़े हैं नीरज सिन्हा। उधर मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल दतिया सीट के लिए भी आज बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी खुद शामिल होने वाले हैं। और दतिया सीट पर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया, जिस पर भारी बवाल भी हुआ था। हालांकि अब बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को दतिया उपचुनाव में जीत मिलेगी।
12: क्या उम्मीद थी कभी कि माई जिस जगह पर है वहां से आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि आपने पहले कोशिश की थी लेकिन वो दूसरी विधानसभा थी, लेकिन दतिया से मौका मिलना, इसे कैसे देखते हैं आप?
13: इसीलिए मैंने बोला है कि माई का ही बलुआ है और माई ने सेवा के लिए बुलाया है। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि जाओ माई की सेवा करो। मैं विनम्रता से पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैंने उनके निर्देश को स्वीकार किया है। माई की सेवा करूंगा, जनता के बीच में हमेशा रहूंगा, आम मतदाताओं के बीच में रहूंगा, कार्यकर्ता परिवार के बीच में रहूंगा और उन सबकी सेवा करूंगा।
12: हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती आई है और जहां पे दतिया में मान के चला जा रहा था कि इकलौता चेहरा जो है भाजपा के पास वो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही है, लेकिन जैसे ही आपका नाम आया तो सब हैरान हो गए कि अरे ये क्या हुआ अचानक से।
13: एक चौंकाने वाली बात अपने इसलिए नहीं मानना चाहिए कि अन्य राजनीतिक दलों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत परिवारवाद के आधार पर निर्णय होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है। कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है नेतृत्व तय करता है। आम जन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है, नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है।
12: आपकी बात हुई नरोत्तम मिश्रा से, क्योंकि दतिया से लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे, आपकी बात हुई उम्मीदवारी के बाद?
13: लगातार मेरी बातचीत हो रही है, लगातार चुनावी दृष्टि से उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारे परिवार के वो अभिभावक हैं। हमने लंबे समय से उनके साथ में काम किया है, साथ साथ काम किया है, तो कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारे बहुत आत्मीयता के रिश्ते हैं, कहीं कोई बात नहीं।
0: और इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कहते हैं, आइए सुनिए।
12: जीतू जी, कैसे देख रहे हैं दतिया के इस बार के चुनाव को आप, क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होते तब दतिया कांग्रेस के खाते में गई थी?
14: नहीं, बात है, इससे पहले एक उपचुनाव हुआ था विजयपुर का, वो हम ही जीते थे। इससे पहले जितने तीन और उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी को टेबल पे हराया गया 1000-2000 इस तरीके से। ये चुनाव पार्टी 25,000 से जीतेगी। दतिया की जनता बदलाव का सबसे अग्रीण जो पंक्ति में खड़े होकर प्रदेश को देश को मैसेज देना है, वो काम, वो दायित्व दतिया की जनता को मिला है। मैं मानता हूँ लोगों में बहुत परिवर्तन है, पार्टी और राहुल गांधी के प्रति बहुत विश्वास है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और जनता का एक तरह से हमारे प्रति आकर्षण है, पार्टी के प्रति आकर्षण है, वो महसूस कराता है कि ये सीट 25,000 से कांग्रेस की झोली में आना चाहिए।
12: आपको क्यों लग रहा है कि परिवर्तन चाह रही थी जनता यहाँ की दतिया की, जो 2023 में हुआ और अभी भी होगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
14: नहीं, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है।
0: और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी ने दान अधिकारी प्रमोद नौटियाल को हिरासत में ले लिया है। कल रात 8 बजे प्रमोद नौटियाल को देहरादून से हिरासत में लेकर बद्रीनाथ लाया गया। चढ़ावा और दान अधिकारी प्रमोद नौटियाल पर कई गंभीर आरोप लगे थे। माना जा रहा है कि जल्द ही एसआईटी कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
16: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। टू टैप्स लेटर क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
15: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with
18: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
19: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
5: सोच बदलो और बैंक भी
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार देश के हीरो की पहली पसंद
7: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील TMT से बना
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR। ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
3: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

आधी रात को बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग। हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक। चिंगारी दिखी, लाइट गई और फिर उठी उस विस्फोटक लपटे। अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान। बंदर अब्बास, बुशेहर, सिरिक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन और मिसाइल। चढ़ावा चोरी की रकम का रूट जानने के लिए इनकम टैक्स विभाग से मांगी गई मदद। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग। कोर्ट में पेश होंगे 8 आरोपी। आज बांकीपुर से पर्चा भरेंगे जनसुराज के प्रशांत किशोर। बीजेपी से नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन। एमपी के दतिया से आशुतोष तिवारी करेंगे नामांकन। आज तक से कहा नाराज नहीं है नरोत्तम मिश्रा। लॉर्ड्स में 149 साल बाद हो रहे महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने को तैयार हैं भारत की बेटियां। इंग्लैंड पर अभूतपूर्व विजय से सिर्फ 4 विकेट दूर है हिंदुस्तानी विमेंस टीम।

बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की जो इस समय पूरी दुनिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहली खबर थाईलैंड की, वहां की राजधानी बैंकॉक से है, और दूसरी खबर मिडिल ईस्ट से है जहां फिर से युद्ध शुरू हो गया है। बैंकॉक में पब में आग लग गई, बड़ी तबाही हुई है। तो वहीं मध्यपूर्व में तीसरे राउंड की लड़ाई हो रही है। पहले अमेरिका मारता है, फिर ईरान पलटवार कर देता है। कोई भी पक्ष रुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है। लेकिन शुरुआत करेंगे बैंकॉक अग्निकांड से।

0: तो इस वक्त बड़ी खबर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से है, जहां आधी रात को एक पब में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही करीब 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बैंकॉक में बड़ा हादसा हुआ है, पब में जश्न के माहौल में मातम छा गया है, जब वहां रात को आग लग गई। आधी रात को आग लगी और तेजी से पूरे पब में फैल गई। स्थिति इतनी तेजी से बदली कि किसी को भी भागने का मौका तक नहीं मिला। लोग अंदर फंस गए, जैसे तैसे कुछ लोग ही निकल सके। जो निकल गए वो किस्मत वाले निकले। बाद में पता चला कि लोग जान बचाने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़े, लेकिन उधर भी कोई एग्जिट रूट नहीं मिला। सबसे ज्यादा शव बाथरूम एरिया से ही निकाले गए हैं, वहां दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस भयानक आग की, जो आधी रात बैंकॉक के पब में लगी। किस तरीके से वहां आग की लपटें बाहर निकल रही हैं, सोचिए क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का जो इस पब के अंदर मौजूद थे। भागने का कोई रास्ता उनको नहीं मिला, लाइट चली गई, अंधेरा घुप हो गया, धुआं फैल गया। लोग पब जाते हैं पार्टी करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन खुशियों के पल मातम में तब बदल गए जब वहां आग लग गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और भागे तो भागे कहां, आग चारों तरफ फैल चुकी थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था।
1: पब में आग, पार्टी में अफरा तफरी। रविवार की रात, छुट्टी का पल, मौज मस्ती में मौत की दस्तक। न बचने की जगह, न भागने का रास्ता, आग लगी, पब में दम घुटा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जिसे ईस्ट एशिया पार्टी कैपिटल कहा जाता है, वहां एक पब में आग लग गई। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग की लपटें मेन गेट से बाहर निकलने लगीं और पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से भर गया। पब में आग इतनी तेजी से फैली कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कई लोग जान बचाने के लिए पब के पिछले हिस्से और वॉशरूम की ओर भागे, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई आपातकालीन रास्ता नहीं था। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में लोग अंदर ही फंस गए। बैंकॉक प्रशासन के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 63 लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 22 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश में जुटे हैं। जान बचाने के लिए जब लोग वॉशरूम की तरफ भागे तो वहां से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वॉशरूम में कई लोगों की मौत दम घुटने से हो गई।
2: रात को 11:57 का समय था। दुनिया में पार्टी कैपिटल कहे जाने वाले बैंकॉक के पब में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, थिरक रहे थे, लेकिन अचानक ही देखते ही देखते पूरा पब आग की लपटों के हवाले हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, फायर फाइटर्स पहुंचते, तब तक आग इतनी विकराल हो गई थी कि कई लोग जलकर मर गए। अब इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जांच की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिसमें 27 से ज्यादा लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल हो गए। इस पूरी घटना ने पूरे थाईलैंड को हैरत में डाल दिया है।
1: यह हादसा हाल के वर्षों में बैंकॉक के सबसे भीषण अग्निकांडों में से एक माना जा रहा है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने मृतकों की पहचान और घायलों के इलाज को प्राथमिकता दी है, जबकि जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। एक ऐसी रात जो जश्न के लिए शुरू हुई थी कुछ ही पलों में दर्दनाक त्रासदी में बदल गई। साल 2022 में भी बैंकॉक में इसी तरह का अग्निकांड हुआ था, उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के हादसों को टाला क्यों नहीं जा सकता? आज तक ब्यूरो।
0: और बाद मिडिल ईस्ट में जारी जंग की, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर किया है बड़ा हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के अंदर बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। केशम द्वीप के अलावा जास्क में भी हमले हुए हैं। सिरी के पास भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरानी मीडिया की माने तो नए हमलों में अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 14 प्रांतों को निशाना बनाया है।

0: तो आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमले वहां पर जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया लगता है, और ये जो पूरा हमला हो रहा है अमेरिका की तरफ से वो होर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास के इलाकों पर केंद्रित है, जैसे कि बंदर अब्बास, बुशेर, सिरिक, इन इलाकों को लगातार अमेरिका निशाना बना रहा है। साथ ही कुछ ऐसे द्वीप भी जो अहम है ईरान के लिए, उसके ऑयल सप्लाई के लिए, उसके ऑयल प्रोडक्शन के लिए, उन्हें भी अब निशाना बनाया जा रहा है। आप इस मानचित्र पर देखिए किस तरीके से एक कोस्ट लाइन की पे ही लगातार सटीक निशाने किए जा रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उसमें आवाजाही एक बार फिर से खुल जाए। तो बड़ी बात यही है कि अमेरिका ने एक बार फिर से निशाने दागे हैं और जवाब दे रहा है ईरान। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त कुवैत से है। ईरान ने कुवैत पर हमला कर दिया है। इस ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने कुवैत के आसमान में हाहाकार मचाया हुआ है। कुवैती एयरफील्ड सिस्टम काउंटर कर रहे हैं और फायर कर रहे हैं, लगातार सायरन भी बज रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं उनका। ये कहा जा रहा है कि तीसरा दौर शुरू हो गया एक बार फिर से युद्ध का, लेकिन जो अटैकिंग पैटर्न है उसको थोड़ा समझाएं, और क्या इसे हम पूरी तरह से सीज फायर का टूटना अब मान लें?
1: दरअसल तो अंजलि घोषणा तो की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब कोई सीज फायर नहीं है ईरान के साथ, लेकिन अभी भी जो है संयम बरता जा रहा है दोनों तरफ से। जहां एक तरफ कार्रवाई की जा रही है अमेरिका की तरफ से स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए, उन सभी ताकतों को निशाना बनाया जा रहा है जो अमेरिका के मुताबिक स्टेट ऑफ होर्मुज में बाधा डाल रहे हैं नेविगेशन में, वहीं पर जवाबी और पलटवार जो है वो ईरान का भी जारी है। अब लोगों का मरना जो है और कैजुअलिटी जो है वो दोनों तरफ से सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ ईरान का दावा है कि उनका एक जो टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर है वो मारा गया है अमेरिका के हमलों में, जो कि स्टेट ऑफ होर्मुज के तट के पास ईरान के इलाकों पे हो रहे हैं, और वहीं पर जो जवाबी कार्रवाई हुई है करीब युद्ध के सीज फायर की घोषणा के बाद और एमओयू के बाद पहली बार अमेरिका के फौज को भी नुकसान उठाना पड़ा है। कुवैत में 12 सैनिक जो हैं अमेरिकी वो घायल हुए हैं, उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको इलाज के लिए जर्मनी की यूएस बेस पर लिया गया है। लेकिन जाहिर है कि जो मुद्दा ही नहीं था इस युद्ध में स्टेट ऑफ होर्मुज, अब कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही अब बड़ा मुद्दा।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया भर की चिंताएं इस वजह से बढ़ गई हैं। उधर बहरीन में भी सायरन बज गया है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइलें दाग दी हैं। बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्टिव हो चुका है। ईरान की ओर से आ रहे प्रोजेक्टाइल्स को रोकने की कोशिश के लिए काउंटर फायरिंग कर रहा है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, और तेज धमाकों की आवाजें आ रही हैं। मनामा और आसपास के इलाकों में ये आवाजें सुनी जा रही हैं। ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के हमले को लेकर ईरान का दावा है कि केशम द्वीप और 10-11 मिसाइलें गिरी, और ईरान के केशम द्वीप के गवर्नर हुसैन अमीर तैमूरी ने दावा किया है कि द्वीप पर 10-11 दुश्मन प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं।
2: फिर बरसने लगे गोला बारूद। अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। ₹140 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। दुनिया को जिसका डर था वही होने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूट चुका है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। होर्मुज पर तेल टैंकरों पर हमले को लेकर अमेरिका भड़क चुका है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक बैक टू बैक हमले किए हैं। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और HIMARS मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। खाड़ी में जंग की इन तस्वीरों ने इतना साफ तो कर दिया है कि अब युद्ध और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों

0: ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की यह तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट टू और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
6: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
9: I have no idea how this election is going to play out,
8: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है। ये केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR हुई। सरकार निष्पक्ष जाँच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी।
15: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा, और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहित हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जाँच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक ले जाए।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां दो पालियों में काउंटिंग का काम होता था। दो शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी। सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा यह भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है, उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में यह सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या, आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Truth.
1: आधी रात को बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 की मौत, 63 घायल, 22 की हालत नाजुक, चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटें।
2: अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशेर, सिरिक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन मिसाइल।
1: चढ़ावा चोरी की रकम का रूट जानने के लिए इनकम टैक्स विभाग से मांगी गई मदद, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग, कोर्ट में पेश होंगे 8वां आरोपी।
2: आज बांकीपुर से पर्चा भरेंगे जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी से नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन, एमपी के दतिया से आशुतोष तिवारी करेंगे नामांकन, आज तक से कहा नाराज नहीं है नरोत्तम।

0: डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूँ मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ। अरुणाचल में बाढ़ का कहर, कुरुंग कुमे में पारसी पार्लो कस्बा जलमग्न, कुमे नदी खतरे के निशान के ऊपर। इस भारी बारिश के चलते अरुणाचल बेहाल, पारसी पार्लो में सड़कें बनी नदी, भूस्खलन के चलते संपर्क मार्ग बंद। कुमे नदी का रौद्र रूप दिखा अरुणाचल में सीमावर्ती कस्बे में, बाढ़ से हालात बहुत गंभीर, प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह। उत्तरकाशी में भी बाढ़ बारिश से तबाही, हर की दून वैली का मुख्य मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद होने के चलते 5 गांव का जनजीवन प्रभावित। लोगों को राशन, दैनिक उपयोग की सामग्री और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर है लोग। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास में जलस्तर बढ़ा है, दहशत में लोग, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा गिरा है, सड़क बंद हो गई। धनबाद में एक साल भी टिक नहीं सके 44 करोड़ की सड़क, दो विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है, पथ निर्माण विभाग ने BCCL को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। देवास में बारिश के बाद बन रहे पुलिया को रिटेनिंग वॉल, इसकी क्षतिग्रस्त हुई, जांच के आदेश दिए। गुवाहाटी के कई हिस्सों में हो रही बारिश और कुछ स्थानों पर जल भराव, धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी, पुलिस ने फंड की हेराफेरी का पता लगाने के लिए आयकर विभाग की मदद मांगी। पुलिस ने गिरफ्तार किए 8 आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े लगभग 50 बैंक खातों की जांच कर रही है, साथ ही 2022 में हुए लेन देन पर नजर। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के साथ परिवारजनों के बैंक स्टेटमेंट, KYC रिकॉर्ड, नॉमिनी की जानकारी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, CBI जांच, SC मॉनिटरिंग और फोरेंसिक ऑडिट की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। राम मंदिर दान गड़बड़ी मामले में 8 गिरफ्तार, SIT जांच जारी, RSS ने जताई चिंता। चंदा चोरी मामले पर बोले RSS प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर, कहा राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, फोरेंसिक ऑडिट और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा, मंदिर ट्रस्ट या CEO के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा असली दोषियों को बचाया जा रहा है, सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ियों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक सजा न मिले संघर्ष जारी रहेगा।
1: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच में कार सेवक रहे संतोष दुबे आज CO ऑफिस जाएंगे और चढ़ावा चोरी मामले में साक्ष्य पेश करेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौथी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, हिंदू धर्म परिषद ने कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग की। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी गड़बड़ी मामले में पुलिस के एक्शन, आरोपी प्रमोद नौटियाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर मचा सियासी घमासान, SP प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं SP पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रहे। SP प्रवक्ता ने इमरान मसूद के बयान को गठबंधन के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कोई उन्हें टास्क दिया गया हो। बैंकॉक पब अग्निकांड में 27 लोगों की मौत, धधकती आग से मची भगदड़, 22 की हालत गंभीर, धुएं से दम घुटने से मौत। अधिकारियों के मुताबिक बचाव दल के पहुंचने तक आग पूरे परिसर में फैल चुकी थी, आग की शुरुआत स्टेज से हुई थी, हादसे में 63 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसे के बाद अब प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास केशम द्वीप पर कई धमाके हुए। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की।
0: अमेरिका ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज वार्ता पर ईरान का बड़ा आरोप, ओमान पर दबाव डालकर अमेरिका ने समझौते की राह रोकी। ईरान ने ट्रंप के दावे खारिज किए, हॉर्मुज वार्ता में अमेरिकी दखल का लगाया आरोप। दक्षिण ईरान के मेशर प्रांत में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 4 अन्य घायल। मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा, उड़ाने प्रभावित होने की खबर। ईरान खाड़ी तनाव बढ़ा, ईरानी मीडिया का दावा, कुवैत में धमाकों की आवाज, बुशहर से 4 मिसाइल लॉन्च। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 3% ज्यादा की बढ़ोतरी, रॉयटर्स के मुताबिक क्रूड ऑयल 3% बढ़कर करीब $79 प्रति बैरल पहुंचा। IRGC ने कुवैत में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर्स और उनके गोला बारूद भंडार को बनाया निशाना, कई ड्रोन हमले किए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक एक आपराधिक सीमा में आपराधिक हमले में 3 सीमा चौकियों और समुद्र में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा, 1 कर्मचारी घायल। अमेरिका ने ईरान में करीब 140 ठिकानों पर किया हमला, रक्षा मंत्री बोले ईरान को चुकानी होगी कीमत। ईरान ने अमेरिका पर किया पलटवार, अमेरिकी हमले के दौरान खुर्रमाबाद में IRGC ने क्रूज मिसाइल को मार गिराया।
1: बागीपुर उपचुनाव में नामांकन का अंतिम दिन, प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा आज भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने बदला बांकीपुर का उम्मीदवार, अभिषेक बंटी की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। पटना मारपीट मामले में फैसल खान की जमानत पर सुनवाई आज, सिविल कोर्ट में फैसला आएगा। तमिलनाडु में सियासी वार पलटवार, डीएम के विधायक का दावा 6 महीने में खत्म हो जाएगी विजय की सरकार। डीएमके का विजय पर हमला, अनिता राधाकृष्णन बोले कि राजनीति में जरूरत के हिसाब से बदलता है चेहरा। ज्ञान बापी विवाद विशेष लोक अदालत में भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से समाधान पर दिया जोर, 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत है। मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक, 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र। बीजेपी ने गिनाए पीएम मोदी के विदेशी दौरे की उपलब्धियां, बताए 10 बड़े फायदे का, इंडो पैसिफिक में भारत बड़ी ताकत बना। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों से भेंट की, खास उनको तोहफे दिए, गिफ्ट पर उत्तराखंड, कश्मीर, ओडिशा की झलक। न्यूजीलैंड के नेता प्रतिपक्ष को पीएम मोदी की तरफ से दिया गया गिफ्ट, यूपी के सीएम ने इस पर जताई खुशी, कहा कि लखनऊ के विश्वविख्यात हस्तशिल्प कुशल शिल्पकारों के साथ ना इसमें देखें।
0: योग गुरु बाबा रामदेव का बयान, हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं, धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते हैं। झांसी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया नमाजवादी पार्टी, कहा 2014 से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो रही है साफ। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों की जुटी भीड़, राजभर ने महारैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। मणिपुर संकट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम जवाब दे के बजाय अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर बनी 7 सदस्यीय कमेटी पर AIIMM का बयान, यूसीसी को बताया असंवैधानिक। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, 4200 करोड़ की लागत से तैयार, सफर होगा आसान। यूपी को मिलेगी हाई स्पीड कनेक्टिविटी, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से 40 मिनट में पूरा होगा सफर। बागपत में निकाह से पहले हलफनामा अनिवार्य, जमीयत उलेमा ने इमामों को कानूनी विवाद से बचने की पहल की। निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को देना होगा शपथ पत्र, बागपत में जमीयत उलेमा ने लागू की नई व्यवस्था। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 668 अंक फिसला, निफ्टी में 200 अंक की गिरावट के साथ निवेशकों पर दबाव।
1: सूरत में चलती BRTS बस के नीचे धंसी सड़क, 15 फीट गहरे गड्ढे में फंसा टायर, ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। पालघर में ड्रोन में कैद ऐतिहासिक तांदुल बड़े गढ़ पर तबाही का मंजर, भारी भूस्खलन हुआ है, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, दबे कई वाहन, आज तक ने 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को बकायदा अलर्ट किया था। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों प्रभावित हुआ ट्रैफिक, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। प्यार के रोहतास में मानझर कुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद, कचरा और गंदगी के बाद वन विभाग ने लिया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का किया भव्य शुभारंभ, एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित हुआ ये महाअभियान। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम अभियान अब जन आंदोलन बना, कहा कि 280 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। यूपी में पर्यावरण का महाकुंभ रचा गया, 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान में इंदौर के दूसरे चरण में 21 लाख पौधारोपण हुआ है। अहमदाबाद में मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण करके शुरुआत की।
0: दिल्ली के मधु विहार में एक बिजली के खंभे में लगी आग, कोई हताहत नहीं। वाराणसी में मुख्य पर्यटन स्थल दशाश्वमेध घाट में इमारत में लगी आग, वक्त रहते आग पर पाया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक युवती ने भीड़ के साथ भीड़ ने की मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। सोनीपत में बैटरी चोरी के शक में बच्चे को करंट देकर दी तालिबानी सजा, 3rd degree का वीडियो आया सामने। दिल्ली के बदरपुर इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। करनाल में जिला नागरिक अस्पताल में 4 घंटे से लाइट गायब, महिलाएं और बच्चे को लेकर बाहर बैठी दिखाई दी। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिका अपहरण कर हत्या, नहर में फेंका गया शव, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में ईंधन की चोरी और मिलावटखोरी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन इथेनॉल शील के तहत 4 शातिर आरोपियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर हथियार विस्फोटक कैश और सोना बरामद। यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार।
1: वाराणसी में 2 अभ्यर्थियों से सॉल्वर गैंग के कुल 13 सदस्य एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, और बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास से बना। बिजनौर में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिली तो ससुराल वालों ने दुल्हन की हत्या कर दी, 3 लोग गिरफ्तार। पटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। गुजरात के पाटन में नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजकोट में ब्रांडेड मसालों के नाम पर सेहत से खिलवाड़, फूड एंड ड्रग विभाग की कार्रवाई, 42 लाख रुपए के संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त किए गए। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। मेसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने मेसी। अर्जेंटीना ने 112वें मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ यह निर्णायक गोल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा अर्जेंटीना का मुकाबला, 15 जुलाई को खेला जाएगा यह मुकाबला। 14 जुलाई को आमने सामने होंगे फ्रांस स्पेन, खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच।
0: लॉर्ड्स में इतिहास बनाने की दहलीज पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, टेस्ट के आखिरी दिन भारत की जीत के लिए चाहिए 4 विकेट, मेजबान इंग्लैंड लक्ष्य से 327 रन दूर। इंग्लैंड के सामने 457 रन का विशाल स्कोर, गेंदबाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन, दूसरी पारी में 130 रन पर झटके इंग्लैंड के 6 विकेट। विंबलडन 2026 में यानिक सिन्हा ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, सिन्हा ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिन्हा ने जीता 5वां ग्रैंड स्लैम, विंबलडन फाइनल में ज्वेरेव को हराया। विजय की फिल्म जन नायकन को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, नए पोस्टर में रौबदार अंदाज में नजर आए थलापति। मुंबई में 4 बन मस्का का लुत्फ उठाते दिखे क्रिस्टोफर नोलान, टॉम हॉलैंड, मैट डेमन ने किया देसी नाश्ता। ओटीटी पर रिलीज होगी तीसरी बेगम, 18 जुलाई को स्ट्रीम होगी केसी बुकाडिया की फिल्म, वास्तविक घटना पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने सतलुज के निर्माताओं को दिया चैलेंज, का 25,000 वाले आंकड़े को साबित करो। धुरंधर फेम सिंगर जैस्मिन सैंडलर ने कॉन्सर्ट के बीच मंगेतर को कराया परिचय।

0: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में साल 2024 में राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हुई थी। लाइब्रेरी बेसमेंट चल रही थी, आज के बाद एक्शन हुआ, बेसमेंट चलने वाली कई लाइब्रेरी बंद कर दी गई। लेकिन आज से लगभग 2 साल बाद इन इलाकों में चलने वाली इन लाइब्रेरियों का क्या हाल है, बच्चे किस स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज तक की टीम राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर पहुंची।
1: तो ये जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह से केबिन बने हुए हैं और उसमें ये तमाम जो होनहार छात्र हैं, इसमें से आने वाले दिनों में कोई इस वक्त मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हूं और तकरीबन 1 साल पहले इसी इलाके में एक हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की लाइब्रेरी है, यहाँ पर जो छात्र है वो तैयारियां करते हैं। लाइब्रेरी है, जरा देखिए कितनी पतली संकरी लाइब्रेरी है जिसमें अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ लकड़ी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अलमीरा है वो सब कुछ लकड़ी का है। एंट्री एग्जिट गेट एक ही है यहाँ पर, ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। बच्चे तो बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, पैसे देते हैं, जहां तैयारी करने को मिलेगा वहां पर तैयारी करेंगे। जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरामैन संजय के जरिए। संजय आप इधर आइए। और हमारी जो एंट्री हुई है वो इस जगह से हुई है, इस जगह से। ये एक पतला सा रास्ता है, यहां से हम आते हैं और इस तरीके से हम अंदर की तरफ आते हैं। तो एग्जिट एंट्री गेट यहां पर एक ही है और कुल मिलाकर 37 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। और यहां से हम नीचे की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। एग्जिट एंट्री गेट ये है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब बच्चे जो पढ़ाई करते हैं कुछ इस तरीके से हम नीचे की तरफ आपको जाकर दिखाते हैं। जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कैमरे के सामने हाथ मारा जा रहा है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका और इस तरह से कई यहाँ पर कोचिंग सेंटर है। जब हादसा हो जाता है उसके बाद चीख पुकार मचती है। इसमें फायर की जो एंट्री है, संजय आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये रेवोल्यूशनरी लाइब्रेरी है, न्यू ब्रांच सेटअप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ग्राउंड हकीकत है यहाँ की। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। आज आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। अमूमन जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही इस तरह की चीजें वो सामने आती हैं। हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
2: किसने का?
1: रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें।
2: किसने कहा?
1: मैंने कहा।
2: आप कौन है?
1: मैं पत्रकार हूँ।
2: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
1: अच्छा
2: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
3: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
1: रियलिटी
3: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने? आपने पढ़ाई चल रही है यहाँ पे?
1: पढ़ाई कर रहे
3: हैं। चलो हो गया, हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। चलो
1: रिपोर्टिंग हो गई,
3: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो।
4: तो आपने देखी इनकी दादागिरी, देखना यह होगा कि इनकी दादागिरी पर क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मानसूनी आफत की। मैदानी इलाकों में कोहरा मचाने के बाद अब पहाड़ी इलाकों में मानसून का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश हो रही है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर आकर गिर रहे हैं, जिसके चलते लोगों में भी दहशत का माहौल है।

0: पहाड़ों पर मॉनसून का बरसने लगा कहर। भारी बारिश के बीच दरक रहे हैं पहाड़। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप। लगातार हो रही बारिश के चलते अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। किन्नौर के नेशनल हाईवे पर चट्टानों का गिरने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से भारी चट्टाने और मलबा गिर रहा है। चट्टाने गिरने की गूंज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते आवाजाही को रोक दिया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड भी लैंडस्लाइड से अछूता नहीं रहा। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बारिश का कहर साफ देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड और मलबा आ जाने से हाईवे को बंद करना पड़ा। वहीं विकास नगर में भारी बारिश के चलते लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हुआ। कई गाड़ियां और मशीनें मलबे में दब गईं। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि हादसे के वक्त सभी कर्मचारी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे। किन्नौर से विश्वेश्वर नेगी, चमोली से कमल नयन और विकास नगर से टीना साहू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: विकास की गाड़ी पर सवार उत्तर प्रदेश की आज एक और एक्सप्रेस में उन्हें मिलने वाला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहु प्रतीक्षित कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 4 फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास बनाए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद कानपुर लखनऊ की दूरी पहले के मुकाबले महज 35 से 45 मिनट रह जाएगी। हालांकि मजेदार बात यह है कि जिस एक्सप्रेसवे को कानपुर लखनऊ के बीच कहा जा रहा है, वो असल में कानपुर से शुरू नहीं होता है। इसकी शुरुआत होती है कानपुर के करीब स्थित शुक्लागंज उन्नाव के एक इंटरसेक्शन बाईपास से। वहीं इसका अंत होता है लखनऊ के शहीद पथ पर, जो कि लखनऊ के बाहरी क्षेत्र में मौजूद है और मुख्य ट्रेन या बस स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित है।
2: तो ये एक्सप्रेस पे इसमें क्या क्या है, क्या खासियत है, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि ये कैमरोस लेसेस हो, वो भी AI से चलने वाले ये कैमरे हैं और 35 से 45 मिनट का जो सफर है वो अब रह जाएगा। 10 से 15 मिनट में इसमें आपात सेवा भी उपलब्ध इस एक्सप्रेस वे पर रहेगी।
1: रुकेंगे आज छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
7: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
9: You're listening to MSNBC.
7: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
10: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
11: AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पापा
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: In association with
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबा केसरी हिंद बड़े आराम से।
9: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत सोना मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बनाया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
10: हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम मौजूद हैं मंकी हिल, जहां पर भूस्खलन हुई है, क्योंकि यहां पर 327 mm से ज्यादा पिछले 4 घंटों में बरसात हुई है। करीब 85 से ज्यादा रेल सर्विसेज इफेक्ट हुए हैं, बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हुई। ऐसे 3 और स्थल हैं और आज तक वो इकलौता चैनल है जो इस स्पॉट तक पहुंचा है। कैमरा पर्सन स्वराज दीक्षित के साथ दिव्येश सिंह, लोनावला आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: कुवैत, कतर और बहरीन ने अमेरिकी ठिकानों पर दागे ड्रोन मिसाइल।
1: चढ़ावा चोरी की रकम का रूट जानने के लिए इनकम टैक्स विभाग से मांगी गई मदद। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग। कोर्ट में पेश होंगे 8 आरोपी।
0: आज बांकीपुर से पर्चा भरेंगे जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर। बीजेपी से नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन। एमपी के दतिया में आशुतोष तिवारी भरेंगे पर्चा। आज तक से कहा नरोत्तम नाराज नहीं है।
1: लॉर्ड्स में 149 साल बाद हो रहे महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने को तैयार है भारत की बेटियां। इंग्लैंड पर अभूतपूर्व विजय से सिर्फ 4 विकेट दूर है हिंदुस्तानी वुमेन्स टीम।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर मात्र।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस की बेंच में आज चार याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है।
1: तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने भी चिंता जताई है। बेलगावी में बैठक में यह चिंता सामने भी आई है और इस मामले में एसआईटी जांच अभी चल रही है और जल्दी फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, उस पर निगाह है। लेकिन इस बीच में अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि चंदा चोरी के मसले पर इतना हाई तौबा क्यों मचाया जा रहा है और अतीत में मंदिरों को तो तोड़ा जा चुका है, ये टिप्पणी उन्होंने की। सबसे पहले चढ़ावा चोरी मामले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम सुनवाई जिस पर सबके निगाहें हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उस पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, बहुत तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट सुनवाई, चीफ जस्टिस की ही बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
0: आपको बता दें कि अलग अलग याचिकाएं जिन पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग प्रमुख तौर पर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ठीक तरीके से चढ़ावा का ऑडिट किया जाए ताकि उसमें कोई गड़बड़ी आगे आने वाले समय में ना हो।
1: हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, मांग ये कि सीबीआई इस मामले में जांच करे क्योंकि जो मौजूदा जांच है उस पर शायद भरोसा नहीं है, लेकिन अब तक की सुनवाई में क्या क्या हुआ है?
2: अभी तक की सुनवाई में फिलहाल तो ये मामला सुनवाई के लिए आना है। तीन जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस कर रहे हैं। इनके अलावा जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस एस बी मोहना इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और जहां तक मांग है तो चार याचिकाएं अब तक हो गई हैं, जिसमें तीन याचिकाएं पहले से थी, एक याचिका कुछ घंटों पहले ही दाखिल हुई है जिसमें राम राज्य परिषद की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है। चारों याचिकाओं का में मांग है वो एक तरह की है कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, कोशिश की जाए कि सीबीआई से जांच हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, और इसके साथ ही कोर्ट चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर जिसमें सभी विभागों के जो इस मामले से संबंधित है उन विभागों के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाए और इस कमेटी से जांच हो जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद करे, चाहे स्वयं से या फिर रिटायर्ड जस्टिस को इसमें इसकी अगुवाई दी जाए और उनकी निगरानी में सारी जांच हो। तो ये सारी मांगे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करता है या मौजूदा जांच चल रही है उससे संतोष जताता है।
0: इसके अलावा संजय, आज ही तय कर लिया जाएगा कि याचिकाओं पर क्या एक्शन लिया जाना है या इसमें वक्त लग सकता है?
2: या बिल्कुल, आज अगर इस मामले में नोटिस हो जाता है तो याचिका सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगी और अगर कोर्ट सुनवाई से इनकार कर देता तो फिर आज ही मामला या फिर कोई अन्य व्यवस्था देता है तो फिर उससे ये समझ में आएगा कि इस मामले की दशा और दिशा कैसी होगी।
1: जी संजय, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है, उस पर जो जो होगा अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में आयकर विभाग की एंट्री हो गई है। इनकम टैक्स की चोरी की गई रकम की वित्तीय कड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस ने अब इनकम टैक्स से मदद मांगी है। अयोध्या पुलिस ने गबन किए गए पैसों का पूरा रूट पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग से मदद मांगी है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस अब इनकम टैक्स के पास पहुंचेगी। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, वो जो रूट है, जो चोरी की गई रकम है वो पता लगाना है, तो उसके लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। यानी कि एक बड़ा सवाल है इनकम टैक्स की मदद लेना, क्या पुलिस अब तक उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई है इसीलिए इनकम टैक्स विभाग के पास पुलिस को जाना पड़ रहा है?
0: इसके अलग अलग कारण है दरअसल राजीव, क्योंकि चोरी की गई रकम का इस्तेमाल गाड़ियों को खरीदने में, जमीन अर्जित करने में, कई अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल किया गया और ऐसे में इनकम टैक्स की यहाँ पर कार्रवाई काफी बड़ी मदद कर सकती है। राम मंदिर की आरएसएस की बैठक में चिंता इस पर व्यक्त की गई। बैठक में कहा गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा और गहरी आस्था पर आघात हो।
3: बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया है। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो।
1: राम मंदिर पर साध्वी रतंभरा का भी बयान आया, उन्होंने भी चिंता इस पर व्यक्त की है।
4: गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे तो हम उससे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते, अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनीयों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है।
0: वही अभिनेता अनुपम खेर पिछले दिनों अयोध्या गए, उन्होंने कहा कि अतीत में मंदिरों पर अनगिनत हमले हुए, उन्हें तोड़ा गया, उस पर क्यों नहीं आवाज बुलंद हुई? चोरी से राम मंदिर की प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती है?
5: इसकी जो प्रतिष्ठा है टेंपल की खराब हो गई, मेरा सिर्फ उसमें मुझे इशू है कि कैसे खराब हो गई। जो चोर है वो तो चोर ही है और उसको पकड़ा जाएगा, वो या पकड़े जाएंगे फिर उनको सजा भी होगी। बट वाई आर वी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ओ माई गॉड राम मंदिर में चोरी हो गई? ऑफकोर्स हो सकती है, जिनकी इच्छा शक्ति चोरी करने की है, जिनके जिनका जहन ऐसा है, जिनके विचार ऐसे हैं, वो चोरी करने से नहीं कतराते हैं। उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। और ऑफकोर्स देर इज अ कलर बींग गिवन टू इट। माई पॉइंट इज that our temples have been destroyed for so many years, whether it's in Kashmir, Somnath, we were ruled for 800 years by Mughals, they destroyed each and every temple. ये तो चोरी है, होनी नहीं चाहिए और सजा मिलनी चाहिए जो भी पकड़ा जाएगा। मगर मेरे खुद के कश्मीर में हर टेम्पल तोड़ा गया है, हर टेम्पल की स्थापना दोबारा की गई है। सो What are the people trying to sort of trying to say? I'm not understanding that.
1: सोशल मीडिया पर मीम भी चल रहा है कि पहले तो आक्रांत आए थे उन्होंने तोड़ा था, इस बार तो आक्रांताओं की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस बार जो मंदिर के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ही लूट कर दी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की, जहां पर हो रहे उपचुनाव में आज नामांकन का दिन है। ये सीट बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने इस पर दावा ठोंका था, लेकिन चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया, बवाल भी मचा। नरोत्तम के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, हाईकमान को भी इस पर दखल देना पड़ा।
0: आज बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के नामांकन में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार शामिल होंगे, लेकिन सबकी नजरें नरोत्तम मिश्र पर रहने वाली है।
1: आज तक ने नामांकन से पहले आशुतोष तिवारी से बातचीत की, उनका कहना था कि उन्हें सबका समर्थन मिल रहा है, नरोत्तम मिश्रा तो उनके अभिभावक की तरह है।

0: अच्छा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती आई है, और जहां पे दतिया में मान के चला जा रहा था कि इकलौता चेहरा जो है भाजपा के पास वो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही हैं, लेकिन जैसे ही आपका नाम आया तो सब हैरान हो गए कि अरे ये क्या हुआ अचानक से।
1: एक चौंकाने वाली बात अपने इसलिए नहीं मानना चाहिए कि अन्य राजनीतिक दलों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत परिवारवाद के आधार पर निर्णय होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है, और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है। लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है, कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है, नेतृत्व तय करता है। आम जन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है, नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है।
0: आपकी बात हुई नरोत्तम मिश्रा से, क्योंकि दतिया से लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे, आपकी बात हुई उम्मीदवारी के बाद?
1: लगातार मेरी बातचीत हो रही है, लगातार चुनावी दृष्टि से उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, और हमारे परिवार के वो अभिभावक हैं, हमने लंबे समय से उनके साथ में काम किया है, साथ साथ काम किया है, तो कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है, हमारे बहुत आत्मीयता के रिश्ते हैं, कहीं कोई बात नहीं।
0: जब हिंसा हुई तब ये माना जा रहा था कि बात बिगड़ गई, दतिया हाथ से निकल गया, लेकिन आप दो दिनों से लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिला अध्यक्ष से मिल रहे हैं, सबकी नाराजगी दूर हो गई अब आपसे मिलने के बाद जो इस्तीफे दिए थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने वाले, आप भी लगातार दो दिनों से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, आपकी बात हो गई सबसे, अब सब ठीक है यहाँ पे?
1: सभी से मेरी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलती है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी कार्यकर्ता के मन में अगर कोई बात आई है तो वो कार्यकर्ता कहे, नेतृत्व सुनता है, पर एक कार्यकर्ता का समर्पण रहता है, वैचारिक प्रतिबद्धता रहती है कि नेतृत्व जब निर्देश देता है, नेतृत्व तय करता है कि अब इस भूमिका को आगे निभाना है, तो कार्यकर्ता स्वीकार करता है, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे लगातार संपर्क संवाद है, कल भी आपके ध्यान में आया होगा 700-800 कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत वगैरह होकर के चुनावी रचना पर के आगे कहां कैसे क्या करना है, तो सब लोग साथ साथ में ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबसे लगातार संवाद है। हमारे अपने परिवार के ही लोग हैं, वरिष्ठ हैं, कार्यकर्ता हैं, सब आत्मीय हैं, और सब लोगों से लगातार संवाद है।
2: और इस बीच मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, रवीश पाल सिंह। रवीश, किसका पलड़ा भारी लग रहा है दतिया में?
0: देखिए अभी तो जल्दबाजी होगी ये कह पाना कि किसका पलड़ा फिलहाल भारी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम कल से जब यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है, क्योंकि अब तक तो एक तरफा मुकाबला होता था, 2008 हो, 2013 हो, 2018 का विधानसभा चुनाव हो, नरोत्तम मिश्रा लगातार यहाँ से चुनाव जीतते गए, हालांकि पिछले चुनाव में 2023 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को उतारा है मैदान में। हालांकि वो संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो एक पुराना चेहरा है, संभागीय संगठन प्रभारी रह चुके हैं वो आशुतोष तिवारी ग्वालियर चंबल अंचल के, तो जाहिर सी बात है संगठन में तो वो एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन सक्रिय राजनीति में ये पहला उनका एक बड़ा चुनाव है, तो एक तरीके से नया चेहरा माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ घनश्याम सिंह हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं दतिया से ही, तो स्वाभाविक सी बात है एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, उनकी अपनी सरकार है, तो उन्होंने नए चेहरे को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार 20 साल से विपक्ष में बैठी हुई है मध्य प्रदेश की सत्ता में, 23 साल से, उसने एक बार फिर से भरोसा जताया है अपने पुराने नाम पे, घनश्याम सिंह पे, तो मुकाबला कहीं ना कहीं फिलहाल काफी दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन सबकी नजरें तो इसी बात पे टिकी है कि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, जिनका दावा किया जा रहा है कि अब सब कुछ सही है, बात हो गई है, वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में रहेंगे, तो क्या वो मन से इस चुनाव प्रचार में?
3: बिल्कुल निगाह नरोत्तम मिश्रा पर ही है, लेकिन रविश उनका बयान भी आया, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में तो मैं जरूर शामिल हूंगा।
4: बड़े नेताओं से मुलाकात?
5: किसी भी नेता से नहीं हुई
4: सर, नितिन नवीन जी से मुलाकात
5: नहीं हुई।
4: क्या बात की हुई है, दिल्ली बुलाया गया था?
5: नहीं, बुलाया भी नहीं गया
4: सर। कल क्या?
5: मैं गया था, ये सही है
4: सर, कल नामांकन में शामिल होंगे?
5: 100% शामिल होऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में, माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा।
4: सर गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए?
5: नहीं मांगा।
2: वहीं कांग्रेस इस बार घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है, उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी ने।
0: जीतू जी, कैसे देख रहे हैं दतिया के इस बार के चुनाव को आप, क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब दतिया कांग्रेस के खाते में गई थी,
6: नहीं बात है, इससे पहले एक उपचुनाव हुआ था विजयपुर का, वो हम ही जीते थे। इससे पहले जितने तीन और उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी को टेबल पे हराया गया 1000-2000 इस तरीके से। ये चुनाव पार्टी 25,000 से जीतेगी। दतिया की जनता बदलाव का सबसे अग्रीण जो पंक्ति में खड़े होकर प्रदेश को देश को मैसेज देना है वो काम, वो दायित्व दतिया की जनता को मिला है। मैं मानता हूँ लोगों में बहुत परिवर्तन है, पार्टी और राहुल गांधी के प्रति बहुत विश्वास है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और जनता का एक तरह से हमारे प्रति आकर्षण है, पार्टी के प्रति आकर्षण है, वो महसूस कराता है कि ये सीट 25,000 से कांग्रेस की झोली में आना चाहिए।
0: आपको क्यों लग रहा है कि परिवर्तन चाह रही थी जनता यहाँ की दतिया की, जो 2023 में हुआ और अभी भी होगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
6: नहीं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। क्या परिवर्तन आया 25 साल में दतिया में, मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आया? प्रदेश की कानून व्यवस्था में, यहाँ की आर्थिक स्थिति में, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में, यहाँ की शिक्षा की सेवाओं में क्या परिवर्तन है? जितना जहाँ थे उससे नेगेटिव चले गए। तो दतिया की जनता को नहीं दिखता कि मेरा बेटा बेरोजगार क्यों है, मेरा बेटा नशा क्यों करता है, मेरे बेटे के साथ रिवेंज क्यों लिया जाता है।
0: किस चीज का रिवेंज?
6: ये राजनीतिक रिवेंज, यहाँ घर घर में राजनीतिक रिवेंज के शिकार है लोग।
0: तो उनके परिवार में से किसी को मौका नहीं दिएगा? घनश्याम सिंह आया अचानक से,
6: जो
0: उनसे बात हुई,
6: जो टिकट हुआ सबकी सहमति से हुआ, सबको साथ लेके हुआ, सबने मिलके किया, जनता की भावनाओं के अनुरूप किया, पूरी पार्टी एकजुट है।
0: घनश्याम सिंह जीतेंगे
6: 25,000 वोट से।
3: और अब बात करते हैं बिहार की सियासत के, जहां पर बांकीपुर सीट के उपचुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक बी के प्रशांत किशोर अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे। बांकीपुर सीट जिस

0: फिर उनका नामांकन वापस होना, तो एक प्रशांत किशोर कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के मूड में नजर आते हैं। और देखिए प्रशांत किशोर चूंकि यहाँ पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे नामांकन करने के लिए। राजीव
1: और बात यूपी की सियासत की, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी संग्राम से पहले गठबंधन पर खींचतान तेज है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए मुस्लिम नेताओं की विरोधी बताया। साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी यूपी में गठबंधन के लिए शोर मचा रही है। इमरान मसूद का यह बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर, उनका कहना है कि मुस्लिम नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाती।
2: हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है।
3: सांसद हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके के कोई बयानबाजी गठबंधन को लेके नहीं करी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी चलाने के समय कुछ नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है। गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना है, हम बार बार बोल चुके हैं कि हमारे लिए सीट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जीत जरूरी है। और जब तक ये मंत्र वो अपने अंदर नहीं बैठा लेते हैं तब तक ये इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है।
4: और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, आप देखते रहिए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
10: उन्होंने कहा था राम, उन्होंने कहा था किलेदार जी ने, बंसी के लीडर ने, कि सिद्धि विनायक को धोके और वापुर से थे खोके। और ये मेरा नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला है, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका दाखिला मैंने दिया है। अभी राम रक्षा तो मैंने बता दिया कि ये तमाम करोड़ों राम भक्तों की एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जो हुआ है उसकी जांच शुरू है और उसमें कोई भी नहीं छूटेगा। आपको को पता है ते मोदी जी की भूमिका क्या है, ना मैं खाऊंगा ना मैं किसको खाने दूंगा, चोरी तो करने की दिली को बदूर की बात है। इसलिए मोदी जी और योगी जी जिन्होंने इसमें गलत काम किया होगा उनको जेल में बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे अंदर डाल देंगे, ये विश्वास है। ये करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का ये संवेदना का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है।
11: देखो सिद्धि विनायक ट्रस्ट ये हमारे दिल के बहुत करीब है, ये मंदिर हमारे लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया है।

गरीब लोगों को इतनी सहायता दी है, आपको मालूम है, जाकर देखिए आप। और हमारे अभी भी वहाँ लोग हैं, वो अभी जो उनका नया न्यास बना है वो राम मंदिर ट्रस्ट जैसा है, लूटने वाले लोग बैठे, उनके चोरी को हम नियंत्रित कर रहे हैं आज भी, इसलिए उनका वो गुस्सा है एकनाथ शिंदे का, हम उनको चोरी नहीं करने दे रहे सिद्धिविनायक मंदिर में।

0: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1: ਸਲੀਪਰ ਸੈਲ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है, वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं, मजबूत नेता चाहिए। यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है। तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं, बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया, 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। यहीं से पंजाब में कांग्रेस की सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। चन्नी और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है। राजनीति में विरोधी हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के भीतर बैठा होता है। पंजाब कांग्रेस आज उसी दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है, जो पंजाब में अपनी पैठ बनाने की फिराक में है। इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है। और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो, तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
3: Bharat ki apni electric sawari Sokudo
2: Durable pipes fittings and tanks a complete range of sanitary solutions Chogan perfumes the French edition for him and her

बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक, चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटें। अमेरिकी हमले से फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशेहर और सिलिकॉन के शम द्वीप पर धमाकों की आवाज, ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। दिल्ली की कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने दी एमसीडी अधिकारियों को क्लीन चिट, राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट, कहा चूक के सबूत नहीं। आज बांकीपुर से पर्चा भरने पहुंचे जनसुराज प्रशांत किशोर, बीजेपी से नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन, एमपी की दतिया से आशुतोष तिवारी का नामांकन, आज तक से कहा नाराज नहीं है नरोत्तम। लॉर्ड्स में 149 साल बाद हो रहे महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं भारत की बेटियां, इंग्लैंड पर अभूतपूर्व विजय से सिर्फ 4 विकेट दूर है हिंदुस्तानी टीम।

0: नमस्कार 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर में पहली रिपोर्ट दिल्ली की है, जो बेहद सनसनीखेज है। दिल्ली के कांस्टेबल पर अपनी पत्नी की गोली मारकर जान लेने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड में तैनात कांस्टेबल मनीष कुमार का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान उसने पिस्टल से पत्नी को गोली मार दी, उसके बाद फरार हो गया। मृतक महिला का नाम प्रियंका है, वो स्कूल में टीचर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर जा रहा था। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि स्कूटी एक जगह पर खड़ी होती है, पति और पत्नी में फिर बहस होती है, उसके बाद पति पिस्टल निकालता है, पत्नी को गोली मार देता है और फिर फरार हो जाता है।
1: पूर्वी दिल्ली इलाके में बेहद सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जहां देर रात 3 बजे दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को गोली मारी और मौके से फरार हो गया। दरअसल 3 बजे रात को एक महिला सड़क पर तड़प रही थी, आसपास के लोग पहुंचे तो देखा महिला को गोली लगी हुई है। मौके पर एक डिलीवरी बॉय मौजूद था, वो महिला को उठाता है और दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाता है, जहां पर इलाज के दौरान महिला दम तोड़ देती है। मृतक महिला का नाम प्रियंका था। जांच में पता चला कि पूर्वी दिल्ली में ही तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष ने अपनी पत्नी प्रियंका को गोली मारी थी। जांच में पता चला है कि दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पति पत्नी स्कूटी पर जा रहे हैं और अचानक एक जगह पर स्कूटी रुकती है, दोनों के बीच कहासुनी होती है, उसके बाद कांस्टेबल मनीष अपनी पिस्टल निकालकर प्रियंका को गोली मारता है और स्कूटी के साथ फरार हो जाता है। अब पुलिस आरोपी कांस्टेबल को तलाश करने में जुटी हुई है।
0: दिल्ली से ही अगली खबर है। अलीपुर थाना इलाके के हिरंगी गांव के पास बड़ा हादसा हुआ है। यहां यमुना नदी में कल नहाते समय 4 नाबालिग तेज बहाव में बह गए। फायर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, दूसरी एजेंसियां सर्च और सर्च ऑपरेशन में अभी 2 बच्चों के शव बरामद कर चुके हैं, लेकिन कल अंधेरा हो गया था, इस वजह से सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन आज फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक लापता बाकी 2 बच्चों का सुराग नहीं लगा है। एनडीआरएफ, डीडीएमए, फायर डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस इस समय मौके पर मौजूद है।
2: दिल्ली के अलीपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चों की यमुना में डूबने से शायद मौत हो गई है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, बच्चों को अभी तक ढूंढा जा रहा है। बच्चे यहाँ यमुना में नहाने आए थे, जिसके बाद पानी का बहाव तेज होने की वजह से चारों के चारों बच्चे यहाँ से बह गए। इस वक्त उनके परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि उनके बच्चे शायद वापस मिल जाए। अगर आप इस पूरे इलाके को भी देखें एक तरीके से, तो ये पूरा इलाका जो है खेत है, खेतों के साथ में ये यमुना नदी है, जिसका जलस्तर कल बढ़ा हुआ था। 14-15 साल के 4 बच्चे यहाँ आते हैं, नहाने के लिए घुसते हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो चारों बच्चे इस पानी में बह जाते हैं। कहाँ है ये बच्चे ये अभी तक पता नहीं लगा पाया गया है। बताया ये जा रहा है कि रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो यहाँ पहुंची हैं और बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक इन बच्चों का कोई अता पता नहीं है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में दिल्ली से एक और रिपोर्ट है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई 2024 को राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा था, 3 लोगों की मौत हुई थी। CBI ने दिल्ली कोर्ट में सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। MCD के सीनियर अधिकारियों की भूमिका के बारे में क्लोजर रिपोर्ट CBI ने दी है 2 सिविक अधिकारियों को। इसमें क्लीन चिट दे दी गई है, क्लीन चिट दी है, और CBI का कहना है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इन 2 सीनियर अधिकारियों की कोई चूक साबित हो। हमारे संवाददाता सृष्टि ओझा हमारे साथ जुड़ गए। सृष्टि, क्लोजर रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, क्लीन चिट देते हुए समर्थन में क्या क्या बातें हैं?
3: जी बिल्कुल, इस मामले में जो विक्टिम थे उनमें से एक विक्टिम के परिवारजन ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट के सामने फाइल करते हुए कहा था कि CBI ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से नहीं करी और काफी सीनियर MCD ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एविडेंस मौजूद है। कोर्ट ने उसके बाद CBI को इस मामले में जांच करने को कहा और CBI ने अब इस मामले में दो सीनियर अधिकारियों के लिए एक क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है। एक तरीके से क्लीन चिट उन्हें दिया है इस मामले में, ये कहते हुए कि बेसमेंट जो एक इलीगल तरीके से चल रहा था वहां पे बिना किसी परमिशन के, उनकी जानकारी इन दोनों सीनियर ऑफिशियल्स को नहीं थी। इनमें से एक है करोलबाग जोन के डिप्यूटी कमिश्नर और दूसरे हैं एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। कोर्ट का कहना है कि उनके जो जूनियर अफसर थे सुपरिटेंडेंट, उनके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस बारे में जानकारी उन दोनों सीनियर ऑफिशियल्स को नहीं दी थी, उन्हें इस बारे में पता नहीं था और कोई भी एविडेंस अभी इस उनके सामने नहीं है कि इस मामले में उन्हें एक तरीके से ये बोला जा सके कि कोई चूक उन सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 2 से 3 ऑफिशियल्स की गलती थी, ये सीबीआई ने उस रिपोर्ट में अपनी सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट में कोर्ट को बताया है। साथ में ये भी कहा है कि ऑलरेडी जो है एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स एमसीडी द्वारा उनके खिलाफ चालू कर दी गई है।
0: और शुक्रिया सृष्टि, ऐसा लगता है गलती उन तीनों की थी जिनके जान गए, एमसीडी की तो कोई गलती नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, विशेष एसआईटी के गठन करने और मंदिर में दान प्रबंधन से जुड़े हुए अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है।
4: अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ आज इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं और पीठ में जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस एसवी मोहना भी हैं। और इस मामले में 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिन 4 याचिकाओं में मुख्य मांग ये है कि इस पूरा मामला काफी गंभीर है, आरोप काफी गंभीर है, लिहाजा इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए या फिर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी यानी सीबीआई जैसी कोई एजेंसी हो वो इस मामले की जांच करे, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की स्वयं अपनी निगरानी में जांच करे। यानी एक याचिका में ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनकी निगरानी में जांच चले, और साथ ही ये कहा गया कि जो एसआईटी जांच करे वो नाकाफी है, इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के विशेषज्ञों की एक विशेष टीम होनी चाहिए, विशेषज्ञ टीम, और वो विशेषज्ञ टीम इस मामले की समयबद्ध तरीके से जांच करे, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाए। अभी देखना दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई में इस मामले को दशा और दिशा कैसी मिलती है, तो इसके लिए तमाम लोग उत्सुकता भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टों में अगली रिपोर्ट यूपी से। यूपी को आज मिलने जा रहा है एक और एक्सप्रेस वे का तोहफा। आज कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव में इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेस वे के ट्रायल टेस्ट के लिए तीनों नेता खुद कार से ही उन्नाव से लखनऊ सरोजनी नगर तक सफर करने वाले हैं और इस एक्सप्रेस वे के खुलने से यूपी में 2 महानगरों कानपुर और लखनऊ के बीच में जो सफर है महज 3 घंटे की जगह 40 मिनट में तय हो सकेगा।
5: प्रदेश का एक और एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया और आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुल जाएगा। आज इस एक्सप्रेसवे पर उन्नाव से लेकर लखनऊ तक तीनों बड़े नेता, जिसमें नितिन गडकरी जो कि भूतल परिवहन मंत्री हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह जिनका यह क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीनों नेता अपनी गाड़ी से उद्घाटन के बाद इस पूरे 63 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करेंगे। यानी कि आज ये जनता के लिए खुल जाएगा, आज ये जनता को समर्पित होगा और लखनऊ से लेकर कानपुर तक का 63 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच ये एक एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है और हरी झंडी दिखाने के साथ ही तीनों नेता इस पर सफर करेंगे। बता दें कि तकरीबन 420 करोड़ रुपए से ये बना है, 63 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन कैमरे इस पर लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 500 मीटर दूरी तक ये कैमरे बहुत नज़दीक से इसको देखेंगे। इंटरचेंज पर कई जगह कैमरे लगाए गए हैं। 120 से ज़्यादा की स्पीड नहीं होगी और सिर्फ चौपहिया वाहनों को ही इसमें चलने की अनुमति होगी।
0: 12 बजे 12 रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आज नामांकन का दिन है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह आज नामांकन करने वाले हैं।
6: दतिया उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आज का दिन दतिया विधानसभा सीट पर हाई प्रोफाइल दिन रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार भी आज दतिया विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। दरअसल आज नामांकन के जरिए दोनों दल अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दतिया से ही पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा मौजूद होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह के नामांकन के लिए दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी दतिया पहुंच चुके हैं। दरअसल इस हाई प्रोफाइल सीट पर नजर इसलिए टिकी है क्योंकि यहां पर पिछले कई बार से विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा यहां से बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही उनको लेकर के जो इंटरनल फीडबैक दतिया विधानसभा सीट से आ रहा था वो उनके खिलाफ गया और इसीलिए विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने कोई जोखिम ना लेते हुए नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया।
0: नामांकन से पहले दोनों ही दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे भी करते दिख रहे हैं।
7: 31-32 साल हो गए तो सार्वजनिक जीवन में हमें जो सीखने का अवसर मिला है पार्टी के नेतृत्व में, विचार परिवारों में, अन्य भूमिकाओं में मैं रहा हूं, तो जो सीखा हूं उस पर अमल करने का व्यवहारिक दृष्टि से आगे प्रयास रहेगा और उसी सीखने के आधार पर जो बेहतर कर सकता हूं करने का प्रयास करूंगा।
8: पूरा आश्वस्त हूं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी दूसरी तीसरी बार दतिया आए हैं और वो कह रहे थे चुनाव में आगे भी कम से कम 8-10 दिन तो फुल टाइम यहाँ रहेंगे। प्रदेश के तमाम पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सीनियर लीडर्स करीब 60-65 लोग यहाँ डेरा डाले हुए।
0: अब बात बढ़े के केतन अग्रवाल मर्डर केस के। केतन अग्रवाल के पिता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इंसाफ की गुहार लगाई है। एक ईमेल में केतन के पिता ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि बेटे की हत्या के बाद उनका पूरा परिवार बिखर गया है। उनके बेटे का केस सिर्फ एक फाइल बनकर ना रह जाए बल्कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा भी मिले।
9: महाराष्ट्र पुणे के लौरगढ़ किले में केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में बड़े स्तर पर उनके पिता विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखते हुए यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो जिससे कि उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने पत्र लिखते हुए ये कहा कि वह यह पत्र एक बिजनेसमैन और प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर नहीं लिख रहे हैं बल्कि एक ऐसे पिता के तौर पर लिख रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। साथ ही उन्होंने इसी पत्र में यह भी जानकारी दी कि महज 20 दिनों के अंदर उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया है क्योंकि पोते की मौत के बाद जिस तरीके से उनके पिता बहुत ही टेंशन में रहते थे, साथ ही उनकी स्थिति काफी खराब थी, ऐसे में उनकी भी मौत हो गई है। ये भावुक पत्र लिखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी तरफ से गुजारिश की गई है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होगी तो उनके परिवार को न्याय मिल सकेगा।
0: 12 बजे 12 रिपोर्ट में अगले रिपोर्ट झारखंड से। झारखंड के गुमला में एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। नाबालिग से रेप का मामला दबाने के लिए पंचायत ने आरोपी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम से पार्टी भी कर दी, लेकिन पार्टी में पहुंच गई पुलिस और पूरी खबर बता रहे सत्यजीत कुमार।
10: झारखंड के गुमला से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घाघरा थाने के तहत पलमा गांव में एक 3 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना होती है और मामले को रफा दफा करने के लिए पंचायत का काला चेहरा सामने आता है। पंचायत आरोपी के ऊपर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। पहली किस्त जो 20,000 रुपए दी जाती है उससे मटन और दारू पार्टी किया जाता है। इसी बीच एक प्रबुद्ध नागरिक ने थाने को खबर कर दिया। थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि जैसे वो पहुंचते हैं जश्न में खलल पड़ता है और वो आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जैसे ही पुलिस पहुंची, मोहन कुमार बताते हैं थाना प्रभारी कि मां के बयान पे उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की, यानी एफआईआर रजिस्टर होता है और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
0: अब बात करते हैं पश्चिम एशिया में छिड़ी हुई लड़ाई की। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया तो ईरान ने भी अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला करके पलटवार किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान के मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। केशम द्वीप के अवाला जास्क में भी हमला हुआ है। सिरी के पास भी धमाके हुए हैं। ईरानी मीडिया की अगर माने तो नए हमलों में अमेरिका ने अब तक ईरान के 14 प्रांतों को टारगेट किया है।
11: ईरान और अमेरिका के बीच हुआ शांति समझौता उतनी भी कीमत अब नहीं रखता जितनी उस कागज की है जिस पर उसे उतारा गया था। इस शांति समझौते के 20-22 दिनों बाद हालात एक बार फिर पश्चिम एशिया में जंग के हैं, लड़ाई के शोले भड़क रहे हैं। अमेरिका ईरान के तटरेखा के कई इलाकों के ऊपर लगातार बमबारी कर रहा है बीते तीन दिनों से। वहीं ईरान भी पलटवार की कार्रवाई में अमेरिका के उन तमाम ठिकानों को निशाना बना रहा है जो खाड़ी के देशों में मौजूद हैं। और इस टकराव की वजह वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसे अमेरिका पूरी तरह से खुलवाना चाहता है, तो वहीं ईरान उसे बंद करके अमेरिका को झुकाना चाहता है। इस पूरे संघर्ष के दौरान अभी तक न तो ईरान अमेरिका को पूरी तरह से रोक पाया है, न अमेरिका ईरान को झुका पाया है। और इस टकराव के दौरान लगातार दुनिया की अर्थव्यवस्था संसद के अंदर है और मुश्किलें झेलने को मजबूर नजर आ रही है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए भीषण अग्निकांड की बात करते हैं। बैंकॉक में आधी रात को एक पब में भीषण आग लगी। इस हादसे में लगभग 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें 63 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।
12: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में आग लग जाने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 60 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने का शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है और थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस पूरे मौके का मुआयना किया। ये पता चल रहा है कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त वहां पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था। बैंड इक्विपमेंट की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं था। रात में ये हादसा हुआ जिसकी वजह से पावर कट हुआ और लोग अंधेरे में बाहर निकलने के लिए जूझते रहे। इस पब के पीछे की तरफ जो रेस्ट रूम्स थे वहां पर सबसे ज्यादा जली हुई लाशें मिली हैं। इसका मतलब लोग कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है थाईलैंड में जहां सबसे ज्यादा पर्यटक इस वक्त मौजूद थे। 150 से 200 लोग इस पब के अंदर मौजूद थे जब ये आग लगी।
0: मॉनसून आने के बाद भी पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों से बादल गायब हैं। बारिश की उम्मीद थी लेकिन ज्यादातर इलाकों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। जुलाई के महीने में औसत 24% बारिश कम हुई है। अगले 4 से 5 दिनों में बारिश की संभावना भी बेहद कम है। बादलों का मूवमेंट पूर्वी भारत की ओर है जिसकी वजह से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
13: एक तो पहले से ही मॉनसून में देरी थी और ऊपर से जब मॉनसून ने दस्तक दी तो लोगों को अब चिंता सता रही है कि आखिर बरसात कहां गायब हो गई, क्यों दक्षिण से लेकर के मध्य ज्यादातर भारत के हिस्सों में उमस भरी गर्मी। उसका जवाब मिलता है मौसम विभाग की रेडार सैटेलाइट तस्वीरों से जिसमें दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर जो भारत के हिस्से हैं वहां से बादलों की मूवमेंट कहां चली गई है। तो अब ये पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे बादलों की आवाजाही दिखाई देती है लेकिन जो सैटेलाइट रेडार तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर भारत का हिस्सा, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, ये ज्यादातर वो इलाके हैं जहां से बादलों की जो आवाज आई है वो पूरी तरह, देखिए पूरा इलाका ब्लैंक है यहां से बादल जो है पूरब की तरफ, जिसकी वजह से आने वाले जो कुछ दिन है वो यहां पर आप देखेंगे बंगाल, असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में तो अच्छी बारिश है वो दिखाई दे रही है। इन इलाकों में तो बारिश होगी लेकिन ज्यादातर इलाका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसी के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों से बारिश अचानक जैसे मानिए गायब हो गई। मानसून का सिस्टम सक्रिय है, पूरे भारत पर छा चुका है लेकिन कमजोर मानसून के चलते ऐसी स्थिति बनी है कि अब एक गैप और इस गैप के चलते अगले कुछ दिनों में जो बारिश की संभावना वो खत्म होगी लेकिन जब तापमान ज्यादा होगा तो फील्ड टेम्परेचर है जो कि 45 से 50 डिग्री हो सकता है।
0: अब बात करते हैं क्रिकेट के। क्रिकेट का मक्का कहलाने वाले लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम आज इतिहास रचने वाली है। टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय महिला ऐतिहासिक जीत से महज 4 विकेट दूर है जबकि इंग्लैंड लक्ष्य से 327 रन पीछे। भारतीय टीम अगर ये मैच जीतती है तो लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय महिलाओं की यह पहली जीत होगी।
14: लॉर्ड्स के मैदान में खेले जा रहे एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत हासिल करने के एकदम नजदीक है। भारत ने अपनी दोनों पारियों में बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और नतीजा ये हुआ कि टोटल जो रन थे बोर्ड पर भारत के लिए वो 457 थे। दूसरी पारी में यष्टिका भाटिया का 100 आया जिसकी वजह से 341 रन पर भारतीय टीम ने 7 विकेट खोए और पारी को डिक्लेयर कर दिया। जवाब में इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और इस वक्त उनको चाहिए 327 रन इस मैच को बचाने के लिए, जीतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारत को चाहिए सिर्फ 4 विकेट, यानी कि एक कदम आगे भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में चल रही है और हम उम्मीद यही करते हैं कि लॉर्ड्स में आज भारत अपना तिरंगा जरूर लहराएगा क्योंकि ये 4 विकेट इन भारतीय गेंदबाजों के लिए कोई टेढ़ी खीर साबित नहीं होनी चाहिए। भारत ने यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि भारत आज इस मैच को जीतने में कामयाब जरूर होगा।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में रुकेश से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Chogan Perfumes.
17: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
21: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: पूरे भारत में मॉनसून सक्रिय है, लेकिन एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है। सक्रिय मॉनसून सिस्टम के बावजूद भारत के ज्यादातर हिस्सों से बादल गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से पश्चिम, मध्य, उत्तर और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून ब्रेक कर गया है।
1: ज्यादातर जो भारत के हिस्से हैं, वहां से बादलों की मूवमेंट कहां चली गई है, तो अब ये पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे बादलों की आवाजाही दिखाई देती है, लेकिन जो सैटेलाइट रेडार तस्वीरों बताती हैं कि उत्तर भारत का हिस्सा, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, ये ज्यादातर वो इलाके हैं जहां से बादलों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह, देखिए पूरा इलाका ब्लैंक है, यहां से बादल जो है पूरब की तरफ, जिसकी वजह से आने वाले जो कुछ दिन है वो यहां पर आप देखेंगे बंगाल, असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में तो अच्छी बारिश है वो दिखाई दे रही है, इन इलाकों में तो बारिश होगी, लेकिन ज्यादातर इलाका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसी के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों से बारिश अचानक जैसे मानिए गायब हो गई।
0: जुलाई में सिर्फ 24% बारिश हुई है। मानसून अनिश्चितता पर अलनीनो का भी प्रभाव है। अलनीनो प्रभाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी बुलाई है, जिसमें देश भर के किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलेंगे। इस बैठक में कंटिंजेंसी प्लान को लेकर चर्चा होगी। अलनीनो के प्रभाव और उससे पैदा हो रही कृषि परिस्थितियों पर सरकार की लगातार नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बताया मुस्लिम विरोधी, तो मचा सियासी घमासान। एसपी प्रवक्ता ने किया पलटवार, कहा लगता है कांग्रेस जीतना नहीं चाहती, एसपी से लड़ना चाहती। एसपी प्रवक्ता ने इमरान मसूद के बयान को गठबंधन के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें कोई टास्क दिया गया हो। अनुराग भदौरिया ने भी इमरान मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सस्ते लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, वो कुछ भी बोलने के आदी हैं। चंद्रशेखर आजाद और इमरान मसूद के बयान पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, विरोधी पार्टी का एजेंट करार देते हुए कहा कि न्याय संविधान और कानून के बल पर मिलता है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जारी घमासान के बीच में दिया बड़ा बयान, कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा, कितनी सीटों पर होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच जारी है, पुलिस ने फंड की हेराफेरी का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स की मदद मांगी। पुलिस गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए लगभग 50 बैंक खातों की जांच कर रही है, साथ ही 2022 में हुए लेन देन पर भी नजर। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के साथ साथ परिवार वालों के बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड्स, नॉमिनी की जानकारी, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मांगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग या फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई। राम मंदिर दान गड़बड़ी मामले में 8 गिरफ्तार, एसआईटी जांच जारी, आरएसएस ने भी जताई चिंता। चंदा चोरी मामले पर बोले आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर, कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में अनियमितताओं की घटना ने दुख किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले कि चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, फॉरेंसिक ऑडिट और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के कामकाज में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा कि असली दोषियों को तो बचाया जा रहा, सच्चाई सामने आनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सूचना के बाद पुलिस बल ने चलाया सर्च अभियान, एक ईमेल पहुंचा था। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का दावा, काशी के बाद अब मथुरा में भी वो मथुरा भी मुक्त होगी, बोले कि जनता की यही इच्छा है। यूपी चुनाव 2027 की तैयारी में कांग्रेस, अजय राय बोले कि जिले से लेकर बूथ स्तर तक के संगठन तैयार है अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, एक एक कार्यकर्ता एकजुट। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे आज जनता को सौंप दिया जाएगा, 63 किलोमीटर का सफर 40 मिनट में होगा पूरा, 4200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है हाई स्पीड रूट नेटवर्क। कौशाम्बी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, 4 गिरफ्तार, हथियार और बछड़ा भी बना। हापुड़ होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका के साथ मिले पति को पत्नी ने परिवार वालों के साथ पकड़ा, वीडियो वायरल।

और अब इस वक्त ये बड़ी खबर आपको देते हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या चंदा चोरी मामले पर सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में आज 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले की सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की गई है। विशेष एसआईटी के गठन और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। अब अयोध्या की खबरों से आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान कर दिया गया है। हरिद्वार में संतों ने यह ऐलान किया कि आने वाले 9 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कार सेवा की जाएगी, जिसके लिए देश भर से साधु संतों और कृष्ण भक्तों को बुलाया गया है।

0: personlar yapmamız.
1: अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई है और अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है।
2: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है उसको बना के रहेंगे।
3: कार सेवा की बात सामने
2: बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहां जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
1: ये महंत रविन्द्रपुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
4: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
1: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है कि इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा बुलाया जा रहा है उसमें क्या क्या जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालती रोक है।
5: अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे और उसके बाद उसका केवल मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने।
1: खबरों के मुताबिक साधु संतों के मथुरा मार्च की शुरुआत दिल्ली से किए जाने की योजना है जिसमें पहले अयोध्या और हरिद्वार में संतों की बैठक बुलाई जाएगी और 9 अगस्त को दिल्ली से पैदल मार्च करते हुए ब्रजधाम की ओर कूच करेंगे। मथुरा में प्रायोजित कार्यक्रम को लेकर चित्रगुप्त पीठ के स्वामी सच्चिदानंद और अन्य संतों की एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है जिसमें कार सेवा को लेकर आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि साधु संतों के इस आह्वान पर बड़ी संख्या में साधु संत ब्रज की ओर पहुंच सकते हैं।
5: हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज के सानिध्य में, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सानिध्य में हजारों नहीं मतलब लाखों की संख्या में संत महापुरुष उस कार्य सेवा में भाग लेंगे और सभी के मन में एक ही बात रहेगी केवल केवल हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है वो मुक्त हो और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बने।
1: दरअसल अयोध्या के चढ़ावा कांड में बीजेपी पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव को पिछले दिनों सीएम योगी ने ही मथुरा आंदोलन में शामिल होने की चुनौती दी थी।
6: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है।
1: सीएम योगी ने ये नहीं बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए किस आंदोलन में अखिलेश को शामिल होना है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने उस आंदोलन का आह्वान कर दिया है जिसमें कार सेवा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का लक्ष्य तय कर रखा है। आज तक ब्यूरो।
7: साधु संन्यासियों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा में कार सेवा का ऐलान करके एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है, क्योंकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ चल रहे अदालती विवाद में कोर्ट की ओर से पाबंदियां लगाए गए हैं। विवाद स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण या तब्दीली की इजाजत नहीं है। ऐसे में अखाड़ा परिषद ने जो मथुरा चलो आंदोलन का आह्वान किया है उस कार सेवा में दरअसल कोई तोड़फोड़ या निर्माण की तैयारी फिलहाल नहीं हो सकती। खबर है कि अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर पैदल मार्च करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा का जो है माखन मिश्र से भोग भी लगाया जाएगा और इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन करेंगे और चालीसा पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है। अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से बीएचपी ने अभी तक दूरी बनाए रखी है। वीएचपी ने इस विवाद के लिए अदालती फैसले का इंतजार करने की बात कही है, जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने शांति भंग करने का सीधा सीधा आरोप लगाया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर भी आपको बता दें, मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से इनकार कर दिया है। 4 जुलाई को ही बड़ी खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी लोक अदालत में सुलह की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने तो सुनवाई का बहिष्कार कर दिया है। अब इस तरह मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में समझौते की कोशिश फिलहाल असफल दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों को सुलह की बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने मौजूद रहने से इनकार कर दिया और उनके मौजूद नहीं रहने की वजह से अब बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद अदालत ने सुलह प्रक्रिया को नाकाम भी करार दे दिया। दरअसल मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई 7 विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा की विशेष लोक अदालत में भेजी गई थी। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। विशेष लोक अदालत में ईडीजे 11 सुरेंद्र प्रसाद की अदालत में सुबह वार्ता की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष के वादी अदालत में पहुंचे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी मौजूद ही नहीं हुआ। इसी वजह से बातचीत नहीं हो सकी और सुलह की कोशिश अधूरी रह गई। विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत ने सुलह वार्ता विफल होने का आदेश पारित कर दिया। श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से जुड़े हुए इस पूरे विवाद में अब तक कुल 18 मुकदमों की मुख्य सुनवाई इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। पिछले दिनों 7 विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने लोक अदालत के जरिए समझौते का यह प्रयास करने को कहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, अब सवाल है कि क्या उम्मीद है? मुस्लिम पक्ष ने लोक अदालत में सुनने से तो सीधे सीधे इनकार कर दिया, तो ऐसे में अब 21 से 23 अगस्त के बीच में सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?
0: सुप्रीम कोर्ट में अब ये लोक अदालत की तरफ से क्या रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई निर्भर करती है, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से बहुत सारे मुकदमों को लोक अदालत में भेजा था ताकि मामले पे जल्दी फैसला आए और सभी के इमिकेबल यानी दोनों दो तरफा सहमति से इस मामले में इसका हल निकाला जाए। आपको याद होगा कि राजीव की सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर अयोध्या विवाद था उस समय भी उस पे आपसी सहमति बनाने के लिए कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के सामने इस मामले को भेजा गया था, जिसमें बात बनी नहीं। इसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े हैं। और इस मामले में तो ये हुआ कि काशी विश्वनाथ का मामला जो वहाँ का ज्ञानवापी विवाद है उसका, और संभल का और मथुरा, ये तीनों विवाद के को लोक अदालत में भेजा गया है, जिसमें मथुरा विवाद में लोक अदालत में मुस्लिम पक्षकार पेश नहीं हुए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी काशी और संभल वाले मामले पर क्या रुख रहता है इनका।
7: बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। इस बीच में साधु संत ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट में हो रही देरी की वजह से हमें ही कार सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा। अयोध्या मथुरा से आगे अब बात करेंगे सनातन धर्म की। सनातन की बाबा रामदेव का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ या कैसी भी टोपी पहनो, पगड़ी पहनो, हमारे पूर्वज तो एक ही हैं, वो है सनातनी। अब इसके साथ ही वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुस्लिमों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान बाबा रामदेव ये भी कहते हैं कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी और का क्या होगा, इसलिए अपने पूर्वजों के जैसा बनिए।
8: हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओन हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को।
7: बाबा रामदेव के बयान को लेकर खैर बीजेपी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। कोई इसे दरार डालने की कोशिश बता रहा है, कोई रामदेव के बयान को लेकर बाप दादाओं वाले बयानबाजी कर रहा है।
9: सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना, तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या है और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें।
10: सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर दो, बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। बात नंबर तीन, अभी आपने कहा कि जो पूर्वज थे, तो बाबा मैं बोलूं फिर, हमारा भी ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के।
7: एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, बड़ी खबर मिल रहे हैं अयोध्या चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है, सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। यह बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बकायदा केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ के, संजय क्या क्या मांगा गया, क्या क्या डिटेल्स मांगी गई केंद्र सरकार से?
0: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके ये कहा है कि अब तक एसआईटी ने जो जांच की है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दे, स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, उसमें किसी छेड़छाड़ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। बहुत ही संक्षिप्त सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अपनी तरफ से कोर्ट पूरे सारी फाइलें जो याचिकाएं थी उनको देख कर ही पहुंची थी और कोर्ट ने सुनवाई के साथ ही ये कहा कि हमने सारी चीजों का अध्ययन किया है, सारी याचिकाओं को देखा है और उसके मुताबिक हम इस पे स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हैं, साथ ही नोटिस जारी करते हैं। अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में कोर्ट को अवगत कराया जाए। तो कुल मिलाकर ये मामला अब आगे सुनवाई के लिए आएगा, जैसी कि आशंका लोग जता रहे थे कि ऐसा ना हो कि कोर्ट एक जांच चल रही है इस पर कोर्ट फिर आगे कहे कि पहले वो जांच आ जाए, लेकिन कोर्ट ने अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और ये बताया कि अब तक क्या चीजें सामने आई हैं जांच में, उसको उससे कोर्ट को अवगत कराया जाए। यानी अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। इन 7 दिनों में एसआईटी जांच रिपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी, अब तक जांच में मिले तथ्यों की, और कोर्ट को सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में बताई जाएगी।
7: संजय, क्या ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है और इस बीच में सॉलिसिटर जनरल ने विरोध भी बताया जा रहा है कि नोटिस का किया?
0: सॉलिसिटर जनरल ने जरूर कहा कि अभी चूंकि जांच चल रही है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पैरेलल कार्रवाई से जांच प्रभावित हो, लेकिन कोर्ट ने इससे बिल्कुल अप्रभावित दिखा और कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास एसआईटी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसमें जवाब तलब किया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ट्रस्ट बनाने के आदेश के बाद, केंद्र सरकार ने उसी आदेश के मुताबिक ट्रस्ट बनाया था, तो जाहिर है कि ट्रस्ट के कार्यकलापों को लेकर केंद्र सरकार भी जवाब देगी और साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास भी इस पे जवाब देगा और साथ ही स्टेटस
7: जवाब कब तक दिया जाएगा, कितना समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने?
0: एक हफ्ते का समय है, अगले सोमवार को अगली सुनवाई है, तो जाहिर है सोमवार से पहले जवाब आ जाएगा, स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट आएगी और उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है ये किसी को पता नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट को पता चल पाएगा क्योंकि कोर्ट में ही उस रिपोर्ट की सील खोली जाएगी तीनों जजों के सामने।
7: संजय, थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस किस को, ट्रस्ट को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, किस किस को नोटिस गया है और किस किस से क्या क्या जानकारियां, क्या क्या कहा गया है जानकारी देने के लिए?
0: इसमें केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है, इसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को नोटिस जारी हुआ है और साथ ही एसआईटी से रिपोर्ट

0: है कोर्ट जो है नोटिस, पहले नोटिस इशू कर रहा था जिसपे सॉलिसिटर का ये कहना था कि नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस पे, जिसपे कोर्ट ने वापस जो है इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया और साथ ही साथ जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल की है और वापस मंडे को सुनवाई रखी है।
1: तो इसमें कौन कौन से पक्षकार हैं जिनको नोटिस जारी हुआ? एक तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, केंद्र सरकार है, और भी
0: देखिए ट्रस्ट को हुआ है और बाकी स्टेट से जो है बिना नोटिस किए ही स्टेटस रिपोर्ट मंगाया गया है और मंडे को स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि जो है इस पे आगे क्या किया जाए।
1: यानी सीबीआई
2: संजय आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
7: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
8: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
7: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
10: Money, money, money, money every month.
11: सोच बदलो और बैंक भी.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
4: Talk Sport presents The S-Word with Will Gavin and Master Tesfacion.
5: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
6: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
5: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
6: Remember, around here, we use the F-Word.
5: Never the S-Word.
4: The S-Word, available now on TuneIn,
7: wherever you get your podcasts,
4: and on the S-Word YouTube channel.
8: योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है।
9: ऋषि मुनि है, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र

0: अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था,
1: बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है उसे हमें अपनाना चाहिए।
0: हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ।
1: बाबा रामदेव के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पहचान संविधान है और सभी धर्मों और मान्यताओं की सुरक्षा उसी के दायरे में सुनिश्चित है। वहीं शिया धर्म गुरु ने कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और देश संविधान के अनुसार चलता है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर मांगा जवाब। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। ट्रस्ट को भी नोटिस। सोमवार को अगली सुनवाई। आधी रात को बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग। हादसे में 27 की मौत, 63 घायल, 22 की हालत नाजुक। चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटे। अमेरिकी हमले से फिर गैला ईरान। बंदर अब्बास, बुशेहर, सिरिक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने दी एमसीडी अफसरों को क्लीन चिट। राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट का चूक के सबूत नहीं। आज बांकीपुर से पर्चा भरने पहुंचे जन सुराज प्रशांत किशोर। बीजेपी से नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन। एमपी के दतिया से आशुतोष तिवारी का नामांकन। आज तक से कहा नाराज नहीं है नरोत्तम ना।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने ट्रस्ट और यूपी सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो अब तक की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, अगली सुनवाई तक ये स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। हालांकि सीबीआई की कार्रवाई की जाएगी नहीं, इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज तलब किए गए हैं। और अब रुक करेंगे नॉनस्टॉप 100 का।

राम मंदिर चंद्राचोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और सीबीआई जांच की मांग वाली पीआईएल पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से अब तक हुई जांच की सीरियस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। ट्रस्ट को भी नोटिस, अगले सोमवार को सुनवाई। राम मंदिर चौराहा चोरी मामले में जांच जारी, पुलिस ने फंड की हेराफेरी का पता लगाने के लिए आयकर विभाग की मांगी मदद। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े लगभग 50 बैंक खातों की जांच कर रही है, साथ ही 2022 से हुए लेन देन पर नजर। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के साथ परिवारजनों के बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड, नॉमिनी की जानकारी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगी है। चंदा चोरी मामले पर बोले आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर, कहा राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती में अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, फोरेंसिक ऑडिट और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा, मंदिर ट्रस्ट या सीसी के कामकाज में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, का असली दोषियों को बचाया जा रहा है, सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक सजा नहीं मिलेगी संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बताया मुस्लिम विरोधी, तो मचा सियासी घमासान। एसपी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा लगता है कांग्रेस जीतना नहीं एसपी से लड़ना चाहती है। एसपी प्रवक्ता ने इमरान मसूद के बयान को गठबंधन के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें कोई टास्क दिया गया। अनुराग भदौरिया ने भी इमरान मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान, वो कुछ भी बोलने के आती है। चंद्रशेखर आजाद और इमरान मसूद के बयान पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, विरोधी पार्टी का एजेंट करार देते हुए कहा न्याय संविधान और कानून के बल पर मिलता है। अजय राय ने जारी किए घमासान के बीच बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा और कितनी सीटों पर होगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच कार सेवक रहे संतोष दुबे आज सीओ ऑफिस जाएंगे और चढ़ावा चोरी मामले में साक्ष्य पेश करेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौथी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, हिंदू धर्म परिषद ने कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग की। बनीराज चढ़ावा गड़बड़ी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी प्रमोद नौटियाल से पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए। नोएडा भूमि मुआवजा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 मामलों की जांच विजिलेंस को सौंपी। नोएडा भूमि मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के आगे की जिम्मेदारी खत्म की, एसआईटी के पास सभी रिकॉर्ड्स और दस्तावेज विजिलेंस विभाग को सौंपे जाएंगे। बैंकॉक पब अग्निकांड में 27 लोगों की मौत, धधकती आग से मची भगदड़, 22 की हालत गंभीर, धुएं से दम घुटने से कई मौतें। अधिकारियों के अनुसार बचाव दल पहुंचने तक पूरे परिसर में आग की शुरुआत स्टेज से हुई, हादसे में 63 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम से कई मशक के बाद आग पर पाया काबू, अब मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। हादसे के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर किया बड़ा हमला, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास और केशम दुई पर कई धमाके हुए। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में धमाकों की गूंज, प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। अमेरिका ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज वार्ता पर ईरान का बड़ा आरोप, ओमान पर दबाव डालकर अमेरिका ने समझौते की राह रोकी। ईरान ने ट्रंप के दावे खारिज किए, हॉर्मुज वार्ता में अमेरिकी दखल का लगाया आरोप। दक्षिण ईरान के मेशहर प्रांत में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल। मिडल ईस्ट में चनाव चरम पर, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा, उड़ाने प्रभावित। ईरान खाड़ी तनाव बढ़ा, ईरानी मीडिया का दावा, कुवैत में धमाकों की आवाज, बुशहर से 4 मिसाइल लॉन्च। अमेरिका ईरान के बीच तनाव के कारण कच्चे तेल कीमतों में 3% का इजाफा, क्रूड ऑयल 3% बढ़कर $79 प्रति बैरल पहुंचा। आईजीसी ने कुवैत में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर और उनके गोला बारूद भंडार को बनाया निशाना, कई ड्रोन हमले किए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक एक आपराधिक हमले में 3 सीमा चौकी और समुद्र में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान। अमेरिका ने ईरान में करीब 140 ठिकानों पर किया हमला, रक्षा मंत्री बोले ईरान को चुकानी होगी कीमत। ईरान ने अमेरिका पर किया पलटवार, अमेरिकी हमले के दौरान खुर्रमाबाद में आईजीसी ने क्रूज मिसाइल को मार गिराया। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे तैयार, आज होगा लोकार्पण, 4200 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। यूपी को मिलेगी हाई स्पीड कनेक्टिविटी, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे 40 मिनट में पूरा होगा सफर। बागपत में निकाह से पहले रफ्तनामा अनिवार्य, जमीयत उलेमा ने इमामों को कानूनी विवाद से बचने की पहल की। निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को देना होगा शपथ पत्र, बागपत में जमीयत उलेमा ने लागू की नई व्यवस्था। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 668 अंक फिसला, निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन, प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा आज भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने बदला बांकीपुर का उम्मीदवार, अभिषेक बंटी की जगह नीरज सिन्हा को मिला टिकट।
पटना कोचिंग विवाद मामले फैजल खान को मिली जमानत, दोनों बॉडीगार्ड बेल पर रहा। तमिलनाडु में सियासी वार पलटवार, डीएमके विधायक का दावा 6 महीने में खत्म हो जाएगी विजय की सरकार। डीएमके का विजय पर हमला, अनीता राधाकृष्णन बोली राजनीति में जरूरी है हिसाब से बदलते हैं चेहरे। रायसेन में मोटर चोरी के शक में युवा को खंभे से बांध करंट देने का वीडियो वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में 3 साल की मासूम के दुष्कर्म पर पंचायत का शर्मनाक फैसला, 1 लाख रुपए में तय किया समझौता। आसनसोल में पत्नी के शक से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने सुरक्षित निकाला। अलवर के एक तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गए थे दोनों बच्चे। दिल्ली पुलिसकर्मी ने पत्नी को बीच सड़क गोली मारकर उतारा मौत के घाट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बेगूसराय के होटल में सगाई से पहले बड़ी चोरी, कारोबारी ने कमरे से 3 लाख नकद और महंगा मोबाइल लेकर फरार हुआ चोर। बेगूसराय में आरजेडी नेता और पूर्व जिला पार्षद को बदमाशों ने मारी 2 गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में 2 तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, 4 गिरफ्तार। दिल्ली के हिरंकी गांव में यमुना में नहाने गए 4 नाबालिग डूबे, 2 शव बरामद, 2 की तलाश जारी। झारखंड के झरिया में शराब दुकान पर बरातियों और पुलिस में भिड़ंत, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अलवर में बुजुर्ग व्यापारी हत्याकांड, पुलिस ने आरोपियों से कराया क्राइम सीन रिक्रिएट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। खरगोन में वेल्डिंग के दौरान टैंकर भीषण ब्लास्ट, 1 की मौत, 2 घायल, 500 मीटर दूर तक गिरे टैंकर के टुकड़े। गढ़वा में दबंगों की दबंगई, बीच सड़क युवक से मारपीट, पेट्रोल पंप पर रंगदारी मांगने का आरोप। ग्रेटर नोएडा डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सूचना के बाद पुलिस बल ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग के बेसिन में पानी भरने से मौत मामले में सीबीआई ने एमसीडी अफसरों को दी क्लीन चिट। अरुणाचल में बाढ़ का कहर, कुमे जिले का पारसी पार्लो कस्बा जलमग्न, कुमे नदी खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश से अरुणाचल बिहार पारसी पार्लो में नरसट के बनी नदी भूस्खलन से संपर्क मार्ग बंद। कुमे नदी का रौद्र रूप, अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से हालात गंभीर, प्रशासन अलर्ट पर, लोगों को किनारे से दूर रहने की सलाह। उत्तरकाशी में बाढ़ बारिश का कहर, हरकीदून वैली का मुख्य मार्ग पिछले 10 दिन से बंद होने के कारण 5 गांव का जनजीवन प्रभावित। लोगों को राशन, दैनिक उपयोग की सामग्री, अन्य जरूरी कार्यों के लिए भारी दिक्कत, जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास जलस्तर बढ़ा, दहशत में लोग, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गिरा, भारी मलबा, सड़कें हुई बंद। धनबाद में 1 साल भी नहीं टिक सकी 44 करोड़ की सड़क, 2 विधानसभा क्षेत्रों से कहा टूटा संपर्क, पथ निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को ठहराया जिम्मेदार। देवास में बारिश के बाद बन रहे पुलिया का रिटेनिंग वॉल हुई क्षतिग्रस्त, जांच के आदेश। गुवाहाटी के कई हिस्सों में हो रही बारिश,

सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे धसी सड़क, 15 फीट गहरे गड्ढे में फंसा टायर, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पालघर में ड्रोन में कैद ऐतिहासिक तालदुलवाड़ी गढ़ पर तबाही का मंजर, भारी भूस्खलन से पहाड़ का बड़ा हिस्सा धसा। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का लैंडस्लाइड, दबे कई वाहन, आज तक 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को किया था अलर्ट। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों प्रभावित हुआ ट्रैफिक, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बिना वजह यात्रा करने से बचने की अपील। बिहार के रोहतास में मांझरकुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए एक हफ्ते के लिए बंद, कचरा और गंदगी बाद वन विभाग ने लिया फैसला। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। मेसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना ने 112 मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ निर्णायक गोल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा अर्जेंटीना का मुकाबला, 15 जुलाई को खेला जाएगा मुकाबला। 14 जुलाई को आमने सामने होंगे फ्रांस स्पेन, खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला। लॉर्ड्स में इतिहास बनाने की दिल्ली शुरुआत में महिला क्रिकेट टीम, टेस्ट के आखिरी दिन भारत की जीत के लिए चाहिए 4 विकेट, मेजबान इंग्लैंड लक्ष्य से 327 रन दूर। इंग्लैंड के सामने 457 रन का विशाल लक्ष्य रखने के बाद गेंदबाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन, दूसरी पारी में 130 रन पर झटके इंग्लैंड के 6 विकेट। विंबलडन 2026 में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने जीता 5वां ग्रैंड स्लैम, विंबलडन फाइनल में ज्वेरेव को हराया। विजय की फिल्म जन नायकन को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, नए पोस्टर में रौबदार अंदाज में नजर आए थलापति। मुंबई में चार बर्मस का कलो सुथात्र के क्रिस्टोफर नोलान, टॉम हॉलैंड, मैट डेमन ने भी किया देसी नाश्ता। ओटीटी पर रिलीज होगी तीसरी बेगम, 18 जुलाई को स्ट्रीम होगी केसी बुकाड़िया की फिल्म। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिटू ने सतलुज के निर्माताओं को चैलेंज दिया, कहा 50,000 वाले आंकड़े को साबित करो। धुरंधर फेम सिंगर जैस्मीन सैंडर ने कॉन्सर्ट के बीच मंगेतर से कराया परिचय।

0: 30 दिन गिरफ्तारी में रहने पर पीएम सीएम या मंत्रियों को पद से हटाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आज तक मिली जानकारी के अनुसार जेपीसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई अहम संशोधन किए गए हैं। स्थायी रूप से पद से हटाने के बजाय अस्थायी तौर पर पद से हटाने का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। यानी तय समय के भीतर मंत्री बड़े हो जाते हैं, छूट जाते हैं या अभियोजन पक्ष कार्रवाई नहीं करता है तो वो फिर से अपने पद पर बहाल हो सकते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, प्रावधान जो सुझाए गए हैं उनसे तो यही साबित हो रहा है कि पद का दुरुपयोग ना किया जाए और जो बरी होने पर फिर से बहाल करने का सुझाव है, ये कहां तक सही दिख रहा है?
1: देखिए बिल्कुल, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर आप जो है 30 दिन किसी भी केस के अंदर जेल में रहते तो 31वें दिन आप अपने आप पदमुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपकी बेल हो जाए और आपके ऊपर चार्जशीट में आपको दोषी ना करार दिया जाए तो आप फिर से उस पद पर आ सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो या मंत्री का हो। ये इसलिए भी है क्योंकि आप अगर जेल में है तो जेल में रहते हुए आप अपने पद का जो है वो दुरुपयोग ना करें, इसलिए ये जो है संविधान में 130वां संशोधन लाया गया है। सबसे बड़ी बात नेहा ये भी है क्योंकि हमने पूर्वोत्तर में ये भी देखा है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो या बालाजी हो जो तमिलनाडु सरकार के अंदर मंत्री थे, वो जेल में रहते हुए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था और इसको लेकर एक बड़ी जो है बहस छिड़ गई थी कि अगर आप जेल में है तो जेल में रहते हुए मंत्री कैसे रह सकते हैं। इसके कई उदाहरण है, चाहे लालू यादव हो जब जेल गए तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो जेल भी गए लेकिन उन्होंने मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो उसी लिए ये संविधान में संशोधन 130वां जो है वो लाया गया और इसमें ये भी प्रोविजन डाले गए हैं, ये प्रावधान है कि अगर आप दोषी करार नहीं होते तो आप अपने पद पे दोबारा आ सकते हैं, आपकी सांसदी या विधायकी जो है वो नहीं जाएगी अगर आप अपने पद से हटाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोविजन है वो डाले गए हैं और 17 जुलाई को जो है इस जेपीसी की बैठक है जिसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट की जाएगी और ड्राफ्ट रिपोर्ट पे जितने सदस्य हैं उनके सजेशन और उनके डिसेंट नोट जो है वो आने के बाद ये रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को सौंप दी जाएगी। उसके बाद ये दोबारा कैबिनेट पे ये बिल जाएगा और कैबिनेट के अंदर जो जेपीसी के सुझाव है उन सुझावों के आधार पर जो है नया कैबिनेट बिल लाया कैबिनेट में बिल लाया जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में संविधान में 130वां जो संशोधन बिल है वो सरकार लेकर आएगी और जेपीसी की जितनी रिकमेंडेशन है उसको माना भी जाएगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात दिल्ली के अलीपुर इलाके की करेंगे। यहाँ पर अलीपुर थाना क्षेत्र के हिरंकी गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ यमुना नदी में कल नहाते समय 4 नाबालिग बच्चे तेज बहाव में बह गए। फायर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां साझा सर्च ऑपरेशन में 2 बच्चों के शव बरामद कर चुकी हैं, लेकिन कल अंधेरे की वजह से सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज फिर से शुरू किया गया है लेकिन अब तक लापता बाकी 2 बच्चों का सुराग नहीं मिला है। एनडीआरएफ, डीडीएमए, फायर डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस मौके पर मौजूद है।
2: दिल्ली के अलीपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर नहाने आए 5 में से 4 बच्चों की यमुना में बहने से मौत हो गई है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ नहाने आए थे करीब 14-15 साल के बच्चे थे वो यहाँ नहाने आए थे कल शाम को 6:15 बजे और यहाँ अपने कपड़े उतार के एक चेन बना करके वो यमुना में उतरते हैं और नहाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के चलते और जलस्तर जो था वो भी बढ़ा हुआ था करीब 1 से 1.5 फीट और अगर आप यहाँ देखें तो अभी भी देख के समझ में आ रहा है कि जलस्तर जो कल था वो काफी बढ़ा हुआ था और पानी का जो फ्लो था वो भी काफी तेज था, जिसके वजह से बच्चे यहाँ नहाने आते हैं, चेन बना करके पत्थर पकड़ के नदी में उतरते हैं, लेकिन जल की जो स्पीड थी वो इतनी तेज थी कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से बहते हुए चले जाते हैं। 4 बच्चे उतरे थे, 1 बच्चा बाहर था, जो 5वां बच्चा था वो लोगों से मदद मांगता है और तब यहाँ पर कुछ देर बाद लोग आते हैं और उसके कुछ देर बाद प्रशासन आता है, लेकिन जब तक प्रशासन आता है तब तक जो ये 4 बच्चे थे इनका कोई अता पता नहीं रहता। अब ये बड़ा सवाल ये है कि अभी 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, दिल्ली सरकार और एनडीआरएफ की जो बोट्स हैं वो अभी भी यमुना में उतरे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन 4 बच्चों का किसी भी तरीके से अता पता नहीं लग पाया है। परिवार का ये आरोप है कि पुलिस को कंप्लेन करने के बाद, प्रशासन को कंप्लेन करने के बाद भी पुलिस प्रशासन का जो रवैया था वो काफी लूज था, काफी ढीला था और अगर उसी समय बच्चों को ढूंढ लिया जाता तो शायद बच्चे मिल जाते। लेकिन अब 12 घंटे ज्यादा का समय बीत चुका है, जलस्तर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी तक इन चारों बच्चों का कोई अता पता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: और दिल्ली के एक कांस्टेबल पर अपनी पत्नी को गोली मारकर जान लेने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड में तैनात कांस्टेबल मनीष कुमार ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और आरोप यह है कि इस दौरान उसने पिस्टल से अपनी पत्नी को गोली मार दी और फरार हो गया। मृतक महिला का नाम प्रियंका है, वो स्कूल में टीचर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर जा रहा था। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्कूटी एक जगह खड़ी होती है, पति पत्नी में बहस होती है, उसके बाद पति पिस्टल निकालकर पत्नी को गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है।
3: पूर्वी दिल्ली इलाके में बेहद सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जहां देर रात 3 बजे दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को गोली मारी और मौके से फरार हो गया। दरअसल 3 बजे रात को एक महिला सड़क पर तड़प रही थी, आसपास के लोग पहुंचे तो देखा महिला को गोली लगी हुई है। मौके पर एक डिलीवरी बॉय मौजूद था, वो महिला को उठाता है और दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाता है, जहां पर इलाज के दौरान महिला दम तोड़ देती है। मृतक महिला का नाम प्रियंका था। जांच में पता चला कि पूर्वी दिल्ली में ही तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष ने अपनी पत्नी प्रियंका को गोली मारी थी। जांच में पता चला है कि दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पति पत्नी स्कूटी पर जा रहे हैं और अचानक एक जगह पर स्कूटी रुकती है, दोनों के बीच कहासुनी होती है, उसके बाद कांस्टेबल मनीष अपनी पिस्टल निकालकर प्रियंका को गोली मारता है और स्कूटी के साथ फरार हो जाता है। अब पुलिस आरोपी कांस्टेबल को तलाश करने में जुटी हुई है।
0: बाद अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले की वहां पर बाढ़ आई है। कुमे नदी यहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इस वजह से पारसी पार्लो शहर पर गंभीर बाढ़ का खतरा है। बढ़ते जलस्तर और कनेक्टिविटी में रुकावटों का सामना ये शहर कर रहा है। लगातार बारिश के कारण स्थानीय प्रशासन ने निवासियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया, क्योंकि पास की कुमे नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। नदी बहुत तेज बहाव के साथ बह रही है। कुमे नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे सीमावर्ती शहर पारसी पार्लो जलमग्न हो गया। लगातार बारिश के चलते स्कूल, दफ्तर और घरों में पानी भर गया है। इलाकों की कई कॉलोनियों और गांव तक सड़कें पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रही है। पूरा रिहायशी इलाका दरिया में तब्दील हो चुका है। भूस्खलन और कटाव ने सड़कों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। घाटी के जरूरी पुलों को बंद कर दिया गया है। पारसी पार्लो को जिला मुख्यालय कोलोरियांग से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता स्थायी रूप से बंद हो गया।
4: पानी बहुत बड़ा हो गया, पूरा ब्रिज को लेके चला गया।
0: और अब बात महाराष्ट्र कल्याण में हुए भीषण हादसे की। कल्याण के योगी धाम के पास स्थित गोलप नगर में री डेवलपमेंट के लिए खाली कराई गई एक इमारत को गिराने का काम चल रहा था और इसी दौरान अचानक इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत के गिरते पूरे इलाके में धूल फैल गई और वहां पर घने धुएं का धूल का गुबार देखा गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इमारत को कुछ ही पलों में ढहते हुए और उसके बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार फैलते हुए साफ देखा जा सकता है। वक्त एक ब्रेक का चला है, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
8: आगे आगे
10: उधर
8: उधर गया।
10: करेक्ट करेक्ट
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार देश के हीरो की पहली पसंद।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
5: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
7: जय हिंद फ्रेंड्स ईसाइयत सोना मसाला या विस्तार 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया कैसी थी लड़ाई कौन थे इसके महानायक तलवारें चली या भजन चला अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम सिर्फ ललन टॉप पर
8: वो हॉस्पिटल है तकरीबन 470 जो पेशेंट थे पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मारे गए जो वो पेशेंट्स थे उनके रहने की जो व्यवस्था वहां पे थी पूरे कंपाउंड में जो है प्लान्ड बॉम्बिंग हुई और कोई यहां का कोना हिस्सा नहीं है जो बचा सब कुछ तबाह हो गया मीर फरीद काबुल आज तक

0: जंग के बीच इसराइल में बजा चुनावी बिगुल, 38 साल बाद तय वक्त पर डाले जाएंगे वोट। 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कर रही है कार्यकाल। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल में चुनाव का ऐलान हो गया है। इसराइल में 27 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सबकी नजर नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने पर होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के साथ साथ चुनाव तय समय पर कराने का फैसला भी लिया गया है। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। आपको बता दें, इसराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। अक्सर गठबंधन टूटने, बहुमत खोने और वक्त से पहले चुनाव कराने पड़े हैं, लेकिन इस बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में उतर रही है। ऐसा 53 साल बाद हो रहा है। चैनल 12 न्यूज के सर्वे की माने तो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और गादी आइजनकोट की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों दलों को 120 सदस्यीय संसद में 23-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इससे साफ है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर मांगा जवाब, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब, ट्रस्ट को भी नोटिस, सोमवार को अगली सुनवाई। आधी रात को बैंकॉक एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक, चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटे। अमेरिकी हमले से फिर जला ईरान, बंदर अब्बास, बुशेहर, सिरिक और केशम द्वीपों पर धमाकों की आवाज, ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया। कोचिंग के बेसिन में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने दी एमसीडी अफसरों को क्लीन चिट, राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट का चूक के सबूत नहीं।

नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। अब बात करेंगे नॉनस्टॉप वॉर की। अरब में महायुद्ध लॉक एंड लोडेड है, मतलब अब दोनों खेमों के एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयारी दिख रही है। अमेरिका हमले कर रहा है तो वहीं ईरान भी अटैक कर रहा है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। 14 दिन के सीज फायर का मेंटेनेंस रिपेयरिंग चल रही है, रिफ्यूलिंग पीरियड ये चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान एक बार फिर से पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। और इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है, IRGC या फिर चुनी हुई सरकार। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास और केशव द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई। केशव द्वीप के अवाला जास्क में हमले हुए हैं। सिरिक के पास धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरानी मीडिया की माने नए हमलों में अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 14 प्रांतों को निशाना बनाया।

0: इस बीच बड़ी खबर कुवैत से, ईरान ने कुवैत पर भी हमला किया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन कुवैत के आसमान पर देखे गए। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम काउंटर फायर कर रहा है, लगातार सायरन बज रहे हैं। बहरीन में एक बार फिर से सायरन बजा, तीसरी बार बहरीन में जंगी सायरन बजा। ईरान ने बहरीन पर मिसाइलें दागी, बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ईरान की ओर से प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए काउंटर फायरिंग की गई। तेज धमाकों की आवाजें मनामा और आसपास के इलाकों में सुनी गई। ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका के हमले को लेकर ईरान का यह दावा है कि केशम द्वीप पर 10-11 मिसाइल्स गिरी। ईरान के केशम द्वीप के गवर्नर हुसैन अमीर तैमूरी ने दावा किया कि द्वीप पर 10 से 11 दुश्मन प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं।
1: मिडिल ईस्ट में फिर बरसने लगे गोला बारूद। अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। एक 140 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। आखिर दुनिया को जिसका डर था वही होने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूट चुका है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों पर हमले को लेकर अमेरिका भड़क चुका है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक बैक टू बैक हमले किए हैं। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और HIMARS मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। खाड़ी में जंग की इन तस्वीरों ने इतना साफ तो कर दिया है कि अब युद्ध और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तब महायुद्ध लॉक्ड एंड लोडेड है। अमेरिका ईरान की लड़ाई अब नए सिरे से शुरू हो चुकी है। संघर्ष विराम के बाद ईरान पूरी ताकत से हमले कर रहा है। ईरान के सटीक हमलों ने ट्रंप और दुनिया को चौंकाया है। अमेरिका यह दावा कर रहा था कि ईरान में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन 14 दिन के ब्रेक के बाद ईरान खतरनाक हथियारों के साथ वापसी कर चुका है।

0: लॉक्ड एंड लोडेड, मतलब हमले के लिए एकदम तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 11 जुलाई को ये कहा था कि 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं। एक आदेश पर ईरान में ऐसी तबाही मचाएंगे कि जो दुनिया ने नहीं देखी होंगी। लेकिन अब ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो लॉक्ड एंड लोडेड है। बम के बदले बम, मिसाइल के बदले मिसाइलें, ड्रोन के बदले ड्रोन चलेंगे। अमेरिका और ईरान का सीजफायर खत्म हो चुका है। 14 दिन के संघर्ष विराम के बाद जंगी सायरन फिर से बज गए हैं। पहले अमेरिका हमला करता है, फिर ईरान पलट के मार देता है। लेकिन इस बार ईरान जो हमले कर रहा है वो पहले ज्यादा सटीक और गाइडेड है। कहां तो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान का एयर डिफेंस गया, नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, मिसाइल 80% तक खत्म हो गई। लेकिन ईरान ने 14 दिनों के अंदर ही घातक हथियारों से निकला है और एक एक करके अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है।
1: And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed, 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: ईरान ने हमलों के लिए कद्र, एमाद, खैबर शेकन, फतेह 110 और जुल्फिकार जैसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें सटीक हमला करने के लिए जानी जाती हैं। इनमें एडवांस गाइडेड सिस्टम लगा है। ये मिसाइलें ठोस और तरल दोनों ईंधन इस्तेमाल करती हैं।
2: अमेरिका और ईरान के बीच में 14 दिन बीत चुके हैं जब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU दोनों देशों के बीच साइन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ना ही तनाव में कमी आ रही है, ना ही एक दूसरे पर हमलों में। एक तरफ से जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि सीज फायर अब खत्म हो गया है, वहीं पर अमेरिका में सूत्रों का कहना है कि बातचीत भी जारी है, लेकिन इस बातचीत के बीच भी स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर महायुद्ध जारी है, जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से स्टेट ऑफ हार्मोन्स के तटीय इलाकों पर भीषण बमबारी हो रही है, वहीं पर इसका पलटवार ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन से दे रहा है। यहां तक कि ईरान ने अब दायरा जो है इन हमलों का खाड़ी के सभी देशों में फैलाया है और US बेसिस पर लगातार बम बरसा रहा है।
0: युद्ध विराम का खात्मा और अमेरिकी हमलों पर ईरानी मीडिया लिख रहा है कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया, अब लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। ईरानी अखबार आखिर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ईरानी मीडिया दुनिया को बता रही है कि सिर्फ 14 दिनों में ही तेहरान ने फिर से विध्वंसक हथियार हासिल कर लिए हैं? अमेरिकी हमलों के जवाब में इस ईरान ने 7 अरब देशों पर हमला किया, जिसमें जॉर्डन, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन शामिल हैं। इन हमलों में जिस कदर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलो वारहेड्स ले जा सकती है। ट्रंप के करीबी और अमेरिकी संसद सदस्य लिंडसे ग्राहम की मौत पर भी ईरानी मीडिया ने मजाक उड़ाया। ईरानी मीडिया ने फ्रंट पेज पर लिंडसे की तस्वीर छापी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ग्राहम की फोटो दिखाई गई। उनके पीछे नेतन्याहू, इजरायली अफसर और ट्रंप प्रशासन के अफसरों को भी हताश और परेशान दिखाया गया। साथ ही ये भी लिखा कि इस तरह की अचानक मौत के लिए तैयार रहो। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत के पीछे ईरान का हाथ है? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो धमकी दे रहे हैं कि ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे, दूसरी तरफ ईरान है कि जो पड़ोसी देशों पर हमला भी कर रहा है और बातचीत भी। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में ओमान के पोर्ट को भी निशाना बनाया, लेकिन ओमान से बातचीत भी कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्कत में ओमान से बातचीत जारी है, हुर्मुज में कैसे संचालन करना है इसको लेकर चर्चा हुई। अमेरिका का कहना है कि हुर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसमें किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ओमान और ईरान प्लान बना रहे हैं कि कैसे मरीन ट्रैफिक का संचालन करें। ईरान शुरू से ही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसके हमले अरब देशों पर नहीं अमेरिकी बेसों पर है, और अब अमेरिकी हमलों के बीच ओमान से बातचीत भी कर रहा है। ट्रंप के करीबी सांसद की अचानक मौत हो जाती है, ईरानी मीडिया मजाक उड़ाती है। आखिर ईरान ने इन 14 दिनों के सीजफायर में क्या ऐसा हासिल कर लिया? आज तक ब्यूरो।
3: और एक अमेरिकी थिंक टैंक है सोफान सेंटर, उससे खबर ये आ रही है कि ईरान के सत्ता केंद्र में खींचतान मची हुई। ईरान इस्लामिक सेना और चुनी हुई सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सेना युद्ध चाहती है तो सरकार डील चाहती है। सवाल यह कि आखिर ईरान में फैसले कौन ले रहा है, क्योंकि मुश्तबा खामनेई तो अब तक दिखे नहीं है, कहां है, किस हालत में। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि कल मुश्तबा जनता के सामने आएंगे।

0: क्या ईरान की कमान पूरी तरह से IRGC के हाथ में चली गई है? क्या ईरान की इस्लामिक सेना चुनी हुई सरकार की बात नहीं सुन रही है? मिडिल ईस्ट में दोबारा युद्ध शुरू होने से ईरान की सरकार और सेना में भी तकरार हो गई है। ईरान में इस समय युद्ध के फैसले कौन ले रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा लड़ाई छिड़ गई है। इस बार ये लड़ाई शुरू हुई हॉर्मुज में अमेरिकी झंडे वाले जहाज पर हमले को लेकर। ईरान ने अमेरिकी जहाज गैलेकी को निशाना बनाया। ट्रंप को खबर लगी तो वो भड़क गए और ईरान पर जवाबी हमले का आदेश दे दिया। इधर अमेरिका ने बम बरसाए तो ईरान ने भी जवाबी हमले किए। लेकिन सवाल ये है कि ईरानी लीडरशिप अगर बातचीत से मामला सुलझाना चाहती है तो फिर ये हमला क्यों हुआ? न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक सोफान सेंटर की माने तो ईरान के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC के कट्टरपंथी कमांडर किसी भी कीमत पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई रखने के पक्ष में है। वहीं दूसरी ओर ईरान की निर्वाचित मसूद पजिश्किन सरकार बातचीत के जरिए संकट का समाधान चाहती है। ईरान के पावर सेंटर में इस समय दो अलग अलग सोच काम कर रही है। IRGC के शीर्ष कमांडर और कट्टरपंथी हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मान रहे हैं, जबकि चुनी हुई सरकार डिप्लोमेसी के पक्ष में है।
1: ईरान इस समय दो नीतियों पर काम कर रहा है। सबसे पहले IRGC ये चाहती है कि वो अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जान का बदला ले ताकि एक बार फिर से कोई भी देश ईरान पर हमला करने की हिमाकत ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ कई लीडरशिप के लोग ऐसे भी हैं जिसमें अराक्ची के साथ साथ गालिबाफ भी हैं, जो ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही समाधान को निकाला जा सके। इसी वजह से ओमान से बातचीत की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और बाकी लोगों से बातचीत कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सके।
0: ईरान में खींचतान मची है। कट्टरपंथी खेमे का युद्ध प्रेम पूरे रीजन को अस्थिरता में डाल दिया है। इस बीच खबर ये भी है कि मुश्तवा खामनेई मंगलवार को पब्लिक के सामने आ सकते हैं। मंगलवार को तेहरान में युद्ध में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा है। माना जा रहा है कि उसमें सुप्रीम लीडर मुश्तवा खामनेई भी आ सकते हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है किसी ने मुश्तवा को देखा नहीं है। खबरें यहाँ तक आई कि मुश्तवा घायल है, रूस में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन किसी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन अब मुश्तवा खामनेई के सामने आने की बात कही जा रही है। इधर मुश्तवा के सामने आने की चर्चा है। इन सब के बीच अली खामनेई के जनाजे में एक नकाबपोश ने सबको चौंका दिया। आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में दिखा नकाबपोश कौन है? इस नकाबपोश शख्स को लेकर दुनिया भर में हुई चर्चा, लेकिन अब सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो खामनेई के जनाजे में पहुंचा नकाबपोश शख्स कोई और नहीं, मुश्तवा का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद जवाद था। 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में खामनेई समेत उसके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में जवाद खामनेई को भी कई चोटें आई थी। रिपोर्ट्स की माने तो चेहरे पर गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से जवाद ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। अब सारा दारोमदार मुश्तवा खामनेई पर है। अभी तक वो पब्लिक के सामने आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी है। तो क्या ये माना जाए कि IRGC और मुश्तवा ईरान में एक पक्ष है और मसूद पजिश्किन की चुनी हुई सरकार दूसरा पक्ष है? आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाह पर बम बरसाए, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरेन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार। ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम। हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने
1: अमेरिका ने ईरान पर हमले की रणनीति में बदलाव किया है। वो सिर्फ सैन्य अहमियत वाले इलाकों को ही निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ने का हर नुस्खा अपना रहा है। खासतौर पर उसके निशाने पर वो पोर्ट सिटी हैं, जिन पर ईरान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।

अब अमेरिकी हमलों की जद में आए ईरान के तटीय ठिकाने। एक के बाद एक बंदरगाहों पर अमेरिका लगा रहा निशाने। तेज हुआ ईरान की आर्थिक ताकत तोड़ने का अभियान। तेल की लड़ाई होर्मुज से होते हुए ईरान के समुद्री सीमा से लगे तमाम शहरों तक पहुंच गई है और अमेरिका एक के बाद एक बंदरगाहों पर हमले कर रहा है। अभी तक अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर होर्मुज से सटे इलाके ही आमतौर पर आते थे, लेकिन इस हफ्ते अमेरिका ने उन तमाम तटीय इलाकों को बर्बाद करने के लिए बम बरसाए हैं जो ईरान के तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था में मजबूत किरदार निभा रहे हैं। अमेरिकी सेना दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रही है जहां से खाड़ी देशों में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब उसके निशाने पर ईरान की वो पोर्ट सिटी आ गई है जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इनमें से एक है बंदर अब्बास, जो तेल के निर्यात के लिहाज से अहम ठिकाना है। इसके अलावा नेचुरल गैस के लिहाज से अहम कंगन, समुद्री इकोनॉमी के लिहाज से अहम बंदर एदेयर एनर्जी और पेट्रोकेमिकल के लिहाज से अहम असालुये क्रूड ऑन ऑयल पाइपलाइन की वजह से महत्वपूर्ण माने जाने वाला जास्क, हॉर्मुज के करीब होने की वजह से सैन्य अहमियत वाले सिरिक और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार पोर्ट,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him.
2: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or, you know, the big three of
6: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
0: And her.
10: जीतू जी कैसे देख रहे हैं दतिया के इस बार के चुनाव को आप, क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब दतिया कांग्रेस के खाते में गई थी।
11: नहीं, बात है, इससे पहले एक उपचुनाव हुआ था विजयपुर का, वो हम ही जीते थे। इससे पहले जितने तीन और उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी को टेबल पे हराया गया 1,000-2,000 इस तरीके से। ये चुनाव पार्टी 25,000 से जीतेगी। दतिया की जनता बदलाव का सबसे अग्रीण जो पंक्ति में खड़े होकर प्रदेश को, देश को मैसेज देना है, वो काम, वो दायित्व दतिया की जनता को मिला है। मैं मानता हूँ लोगों में बहुत परिवर्तन है, पार्टी और राहुल गांधी के प्रति बहुत विश्वास है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और जनता का एक तरह से हमारे प्रति आकर्षण है, पार्टी के प्रति आकर्षण है, वो महसूस कराता है कि ये सीट 25,000 से कांग्रेस की झोली में आना चाहिए।
10: आपको क्यों लग रहा है कि परिवर्तन चाह रही थी जनता यहाँ की, दतिया की, जो 2023 में हुआ और अभी भी होगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
11: नहीं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। क्या परिवर्तन आया 25 साल में दतिया में, मध्य प्रदेश में? क्या परिवर्तन आया प्रदेश की कानून व्यवस्था में, यहाँ की आर्थिक स्थिति में, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में, यहाँ की शिक्षा की सेवाओं में? क्या परिवर्तन है? जितना जहाँ थे उससे नेगेटिव चले गए। तो दतिया की जनता को नहीं दिखता कि मेरा बेटा बेरोजगार क्यों है, मेरा बेटा नशा क्यों करता है, मेरे बेटे के साथ रिवेंज क्यों लिया जाता है।
10: किस चीज़ का रिवेंज?
11: ये राजनीतिक रिवेंज, यहाँ घर घर में राजनीतिक रिवेंज के शिकार है लोग।
10: तो उनके परिवार में से किसी को मौका नहीं दिया? घनश्याम सिंह आया अचानक से,
11: जो
10: उनसे बात हुई,
11: जो टिकट हुआ सबकी सहमति से हुआ, सबको साथ लेके हुआ, सबने मिलके किया, जनता की भावनाओं के अनुरूप किया, पूरी पार्टी एकजुट है।
10: घनश्याम सिंह जीतेंगे
11: 25,000 वोट से।

सीसीटीवी सुरक्षित रखने की मांग पर मांगा जवाब, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब, ट्रस्ट को भी नोटिस, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। आधी रात को बैंकॉक के पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत है नाजुक, चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटे। अमेरिकी हमले में फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशेर, सिरिक और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज, ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से किया अटैक। दिल्ली के कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने दी एमसीडी अफसरों को क्लीन चिट, राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, कहा चूक के सबूत नहीं। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन, पर्चा भरने से पहले जबरदस्त रोड शो, नामांकन से पहले तेज प्रताप की पार्टी से उम्मीदवार वीना देवी गिरफ्तार।

0: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज की जो इस समय बिहार से आ रही है। बांकीपुर सीट पर नॉमिनेशन भरा जा रहा है और इसी बीच जो तेज प्रताप यादव की पार्टी की एक उम्मीदवार को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि पुराने मामले को लेकर पुलिस वहां पहुंची थी और वीणा देवी ज्योति जब अपना नामांकन भर रही थी उसी समय उनको गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि एक पुराने मामले को लेकर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। हम आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनावों में नॉमिनेशन भरा जा रहा है जहां बीजेपी और कई पार्टियों की तरफ से आज उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भरे। इसी बीच जनशक्ति जनता दल की टिकट पर नॉमिनेशन भरने गई वीणा मानवी को भी गिरफ्तार करने पहुंच गई पुलिस, जिसके बाद वहां भारी हंगामा भी हुआ।
1: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है,
2: आपको लग रहा
1: कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया। मैंने जितने केसेस थे सब मैंने डाले हैं, लेकिन वारंट किस केस में मुझे पता ही नहीं है। पता नहीं मुझे, मुझे पता भी तो होना चाहिए किस केस में। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता।
3: सर, भारतीय जनता दल के उम्मीदवार वीणा मानवी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस पटना कलेक्टोरेट से वीणा मानवी को गिरफ्तार करके अब यहां से निकल गई है। हालांकि जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीणा मानवी है वो कह रही थी कि बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीणा मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहां हो गई। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा वो भी नामांकन करेंगे, तो बेहद अफरा तफरी की स्थिति यहां पे इस वक्त, जबकि जनशक्ति जनता दल की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन किया और उसके बाद उसी समय जब वो बाहर निकली नामांकन के बाद तो उनकी गिरफ्तारी यहां पे हुई है, और इसको लेकर के यहां बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला है। किस मामले में गिरफ्तारी हुई बताया है पुलिस ने?
4: इंसाफ चाहिए। भरत तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने, निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की, पर आज फाइनल हो गया नॉमिनेशन, तो अरेस्ट वारंट।
3: आशंका जता रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये वीणा मानवी की बेटी हैं जो बता रही हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, राजनीतिक साजिश, और पुलिस अचानक से आई, गिरफ्तार किया वीणा मानवी को और लेकर के यहां से निकली है। जो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रही है वीणा मानवी की, जिनको टिकट दिया तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ये बांकीपुर की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन नली मालम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।
0: और हमारे सहयोगी शशि भूषण की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो बता रहे थे वीणा मानवी को लेकर वहां पे कैसा घमासान मचा। उनकी बेटी से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एक और बात है कि बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा भी वहां पर बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि हंगामे के साथ या बहुत ज्यादा बड़े लश्कर के साथ वहां पर नॉमिनेशन करने पहुंचे। आइए आपको उसको लेकर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और देखिए शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशि भूषण का रुख कर लेते हैं। शशि देखिए, हम लगातार आप वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि वीणा मानवी को गिरफ्तार, ये मामला क्या था, और दूसरा आप वहां से अगर तस्वीरें दिखा सके नीरज सिन्हा के, वो भी नॉमिनेशन करने पहुंच रहे हैं। सुमित देखिए मामला जो है वो गांधी मैदान थाने से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस आगे बताएगी कि किस मामले में वीना मानवी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो मामला अब यहां खत्म हो चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार फोकस करें पटना कलेक्ट्रेट का वो मुख्य गेट जहां पर अभी नीरज सिन्हा बीजेपी उम्मीदवार पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम जो नेता हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए के दूसरे घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष वो भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर एक तरफ फोकस है जब एंट्री हो रही है नीरज सिन्हा की यहां पर नामांकन के लिए, और देखिए प्रशांत किशोर जो नामांकन करने के लिए अंदर गए हुए थे अब वो वापस निकल रहे हैं, मतलब प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज बांकेपुर सीट पर नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और 3 बजे तक की डेडलाइन है, तो उसके ठीक पहले यहां बहुत ज्यादा हलचल है। प्रशांत किशोर और मीडिया के कैमरे और जमावड़े को देख के आप समझ सकते हैं कि भले ही बिहार की एक सीट पर इस वक्त बाय इलेक्शन हो रहा हो, लेकिन ये
2: सीट तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़े हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नीरज सिन्हा वहां नॉमिनेशन करने पहुंचे, क्या कुछ आलम है वहां पर, किस तरीके का माहौल है ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आप देखें कि शशि भूषण बता रहे हैं कि नीरज सिन्हा जब पहुंच रहे हैं उसी वक्त वहां से प्रशांत किशोर भी निकल रहे हैं और ये उम्मीद, ये पूरी सीट इस समय उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखिए नीरज सिन्हा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपने कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि नॉमिनेशन भरने के लिए अपने पूरे समर्थकों के साथ यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के साथ वो पहुंचे हैं। और बांकीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष यानी नितिन नवीन की सीट थी, लेकिन उनके छोड़े जाने के बाद अब ये सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और देखिए बीजेपी इस पर पूरा दम दिखा रही है। और देखिए अब आपको सीधे मध्य प्रदेश भी लिए चलते हैं, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं जहां पर दतिया सीट के ऊपर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलनी थी जिसके बाद पार्टी में घमासान मचा और अब आशुतोष तिवारी यहां से नामांकन भर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशुतोष तिवारी का नामांकन हो रहा है और नरोत्तम मिश्रा मान गए या नहीं माने इसको लेकर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके जो समर्थक थे वो सड़कों पर उतर आए थे, इसको लेकर आलाकमान को इंटरफेयर करना पड़ा और अब कहा जा रहा है कि आशुतोष तिवारी वहां से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं उपचुनावों में। पहले हमने आपको बिहार की तस्वीरें दिखाई और अब हम आपको मध्य प्रदेश के दतिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए आपको बता दें कि इसको लेकर जब उनके समर्थक सड़कों पर उतरे थे उसके बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया था।
5: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे हैं जहां पे नामांकन होना है बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का। मुख्यमंत्री से सीधे बात करते कितने आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव को लेकर के, जीत को लेकर?
6: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 साल में जो काम किए हैं और बीते चुनाव में यहां जो कांग्रेस जीती थी उसके कारण से निराशा है और जैसे देश भर से कांग्रेस हर राज्य से बाहर हो रही है, हमारे उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का हर बार विजय का परचम लहराता है। मैं जो पूरा भरोसा है कि इस द्वितीय उपचुनाव में हमारे अपने आशुतोष तिवारी जी पूरी ताकत से लड़ेंगे और पूरी ताकत से जीतेंगे, कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा।
5: कांग्रेस बार बार कह रही है कि जो उस दिन दतिया में उससे बहुत निश्चिंत है हम कि हम जीत जाएंगे और जो है बीजेपी की आपसी फूट रहेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिलाध्यक्ष आपके साथ ही है और लगातार 2 दिन
6: सारे कार्यकर्ता साथ है, पूरी ताकत से लगेंगे। माननीय पूर्व मंत्री नरोत्तम जी मेरे साथ आए, हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे।
5: बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और दतिया में बीजेपी की जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रवीश पाल सिंह, दतिया।
2: और सूबे के मुख्यमंत्री से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे थे, उनसे भी बातचीत की, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। और देखिए हम आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा कहा जा रहा था कि बहुत नाराज हैं, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए थे, जिस मुद्दे को विपक्ष ने भी बहुत तेजी से उठाया था, यहां तक कि जीतू पटवारी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आइए आप उनसे जो बातचीत कही, आइए आपको सुनाते हैं।
5: इस वक्त आज तक पर आपको 2 चेहरे दिख रहे होंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं साथ ही में आशुतोष तिवारी हैं, यानी दतिया के 2 वो चेहरे जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। दतिया पहुंचे, आज नामांकन है आशुतोष तिवारी का, साथ ही में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं, आशीर्वाद है आपका?
7: भाई है मेरा, आशीर्वाद क्या है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे।
5: इतनी बातें जो कांग्रेस कह रही थी फिर वो आपकी हवा निकल गई आपको?
7: कई कांग्रेस इन्हीं बातों को कर करके तो देश से 80% से गायब हो गई, यहाँ भी गायब हो जाएगी, मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर पे है।
5: मुख्यमंत्री बता के गए कि क्या कुछ यहाँ पे आपके कार्यकाल के दौरान हुआ, कह रहे हैं कि
7: अब मन से हम भी हम भी बताएंगे, इसीलिए आए
5: आप के साथ हैं आज। तमाम बातें हो रही थी कि लेकिन अब आपने अभिभावक कहा और आप साथ में भी हैं नरोत्तम मिश्रा जी।
8: मैंने शुरुआत से ही कहा है भाई साहब का बड़ा सानिध्य है, हमारे अभिभावक हैं और आपके सानिध्य में ही लगातार 25-30 वर्षों से कंटिन्यू मैं सीखता चला रहा हूँ उनका आशीर्वाद।
5: तस्वीर देखिए साथ में दोनों नेता, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा हैं, एक तरफ आशुतोष तिवारी हैं और दोनों आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पहुंचे हैं दतिया में नामांकन जमा करने के लिए। ऐतिहासिक तस्वीरें और आप देख सकते हैं तमाम जो बातें हो रही थी उन सबको धता बताते हुए पूरी बीजेपी का एक साथ एकजुट होकर के नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने दतिया के लिए रवाना हो रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, दतिया आज तक।
2: और देखिए हम आपको, देखो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार इस दतिया को लेकर, सीट को लेकर भी घमासान मचा हुआ बीजेपी के अंदर। कई बातों को लेकर खासतौर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतरे थे, हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी के साथ आने के बाद समर्थकों को समझाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सीट को दोबारा से बीजेपी अपने खाते में कर ले। लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि अंदर खाते इसको लेकर कैसा घमासान मचा हुआ था।
8: भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है, नेतृत्व तय करता है, आमजन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है, नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है।
9: वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे और वो आगे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ सकते थे, इसलिए हाई प्रोफाइल लोगों को ऊपर के नेता ज़्यादा पसंद नहीं करते। कोई आदमी भोला वाला सा दिखे, मूर्ख सा दिखे, हाथ जोड़ता रहे, पांव छूता रहे, तो लगता है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको चलने दो।
5: और आशुतोष तिवारी के बाद आदमी है तो उसको काटो। और आप आशुतोष तिवारी के बारे में कह रहे हैं?
9: नहीं, कोई भी हो, ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी है, आशुतोष तिवारी जी के लिए भी, वो भी हाई प्रोफाइल है, उनके पांव जमीन पे ही नहीं, जनता यहां जानती नहीं है उनको। दतिया जिले के मूल निवासी हैं लेकिन दतिया में उन्होंने कार्य किया ही नहीं, ऊपर बहुत काम किया आरएसएस में, इधर उधर ऊपर उनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है।
2: और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविश पाल सिंह भी जुड़े। रविश, देखिए इस पूरी सीट को लेकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो नरोत्तम मिश्रा बगावत कर दें पार्टी से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है खुद वो आशुतोष तिवारी के साथ नजर आ रहे हैं, समन्वय बन गया है लगातार, अब उनको मना लिया गया है।
5: बिल्कुल मना लिया गया है और ये मैसेज देने की कोशिश यही की गई है कि भारतीय जनता पार्टी में वैसी स्थिति नहीं बन सकती जैसे बाकी विपक्षी दलों में आमतौर पर देखने को मिलती है। यही वजह है कि जिस दिन दतिया जल रहा था उसी दिन शाम को नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया जाता है। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और जो संभागीय संगठन प्रभारी हैं अजय जामवाल, उनसे मुलाकात होती है और उसके अगले ही दिन यानी कल दिल्ली जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, वहां पे भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात की चर्चा होती है। और आज नामांकन जब हो रहा है तो बकायदा मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपने साथ अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के भोपाल से दतिया पहुंचे हैं और दतिया में नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी दोनों एक साथ, आज तक के कैमरे पे हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ये संदेश देने की कोशिश है कि जिस नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है आशुतोष तिवारी के लिए, वही नरोत्तम मिश्रा हाथ पकड़ के आशुतोष तिवारी को आज नामांकन के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश है कि सब ठीक है, भाजपा परिवार में सब बना लिया गया है सबको और सब एकजुट होकर के अब दतिया विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के खाते में फिलहाल जो सीट है दतिया वो बीजेपी वापस अपने खाते में लेना चाहेगी।
2: और चलिए अब अगली खबर राम मंदिर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई थी और कहा गया है कि देखिए कई मांगे इसमें की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और कई मांगों को लेकर इसमें क्या नया अपडेट आया, हम आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान मुख्य बातें जो थी यानी तीन मांग इसमें की गई थी, खासतौर पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है और अब कहा जा रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो और केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी इस मामले पर आया। और इसके अलावा आपको बता दें कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा, अब तक की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। और देखिए आपको बता दें तीन जजेस की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की, एसआईटी में स्टेटस रिपोर्ट देने का कहा गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा गया और राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन फाइल हुई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब आरएसएस की तरफ से क्या कहा गया है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
10: बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया है। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो।
2: और इस पूरे मामले पर साध्वी रितम्रा ने भी क्या कुछ कहा है, क्या कुछ चिंता जताई है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
11: अगर गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे तो हम उससे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते, अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनीयों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है।
2: अब बात अभिनेता अनुपम खेर की भी करते हैं, जो कुछ दिनों पहले अयोध्या गए थे। उन्होंने भी कहा है कि देखिए राम मंदिर को कई बार तोड़ा गया, इस पे कई बार अटैक किए गए और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हालांकि उन्होंने कहा कि चोरी से राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर कोई नुकसान नहीं होगा।
12: इसकी जो प्रतिष्ठा है टेम्पल की खराब हो गई, मेरा सिर्फ उसमें मुझे इशू है कि कैसे खराब हो गई। जो चोर है वो तो चोर ही है और उसको पकड़ा जाएगा, वो या पकड़े जाएंगे फिर उनको सजा भी होगी। बट वाई आर वी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ओ माई गॉड राम मंदिर में चोरी हो गई। ऑफकोर्स हो सकती है, जिनकी इच्छा शक्ति चोरी करने की है, जिनके जिनका जहन ऐसा है, जिनके विचार ऐसे हैं, वो चोरी करने से नहीं कतराते हैं। उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। और of course there is a color being given to it. My point is that our temples have been destroyed for so many years, whether it's in Kashmir, Somnath, we were ruled for 800 years by Mughals. They destroyed each and every temple. ye to chori hai, honi nahi chahiye aur saza milni chahiye jo bhi pakda jayega. magar mere khud ke Kashmir mein har temple toda gaya hai, har temple ki sthapna dobara ki gayi hai. So, what are the people trying to sort of trying to say? I'm not understanding that.
2: अब अगली खबर रामदेव के उस बयान को लेकर जिसमें उनके बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि आप दाढ़ी रखें, मूछें कटवाएं, टोपी पहने, लेकिन हम सबके पूर्वज एक हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इससे कुछ नहीं बदलने वाला।
13: हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज है, अपने ऋषि मुनि है, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को।
2: चलिए अगली खबर अब कोलकाता से। कोलकाता के सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर बवाल मच गया और कहा यह जा रहा है कि अब उस पर नमाज अदा करने को लेकर बाहरी लोगों को आने को लेकर अनिश्चितकालीन तौर पर रोक लगा दी गई है और यहां तक कि मस्जिद को रीलोकेट करने की भी बातें चल रही है। दरअसल ये मस्जिद जो रनवे के बेहद करीब है, करीबन 165 मीटर की दूरी पर ही ये मस्जिद है।
14: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি, ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না, তা বকরি ঈদ করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
2: और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, देखिए कहा जा रहा है इसको रीलोकेट करने को देखा जा रहा है ऑप्शन को, क्या ये एयरपोर्ट के अंदर ही होगा या फिर कोई बाहर ऐसी जगह है जहां पे इसको रीलोकेट किया जा सकता है?
15: जी देखिए, अब बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जो 136 साल पुरानी मस्जिद है जो एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर है, एयरपोर्ट के भीतर है प्रमाइसेस के, उसको रिलोकेट किया जाएगा। लेकिन कहाँ रिलोकेट किया जाएगा ये अभी तय नहीं हो पाया है। जो मस्जिद कमेटी है उससे बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, तो ऐसे में कोई किसी एक दूसरी जगह जो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी का दायरा है, क्योंकि जो वजह दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से उस जगह पर मस्जिद सही नहीं है। दूसरा, जो एक्सपेंशन हो रहा है कोलकाता एयरपोर्ट का, उसके आड़े भी ये मस्जिद आ रही है। तो ये दो वजहों की वजह से इनको इस मस्जिद को रिलोकेट करना है। तो ऐसी जगह पे रिलोकेट किया जाएगा कि दोनों ही कंसर्न जो हैं वो वहां न रहें। ये तो या तो ये हो सकता है कि एयरपोर्ट के ठीक बाहर हो या थोड़ा और दूसरी जगह हो। तो अभी जगह फिलहाल साफ नहीं है, बातचीत जो मस्जिद कमेटी है उसके साथ चल रही है।
2: लेकिन अनुपम, एक आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस मस्जिद को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए थे, कई बार कहा गया था कि देखिए किसी भी एयरपोर्ट के लिए, रनवे के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है कि अंदर के इलाके में बाहरी लोग आ सके, तो इसको लेकर बवाल पहले भी मचा था। लेकिन अब सरकार ने इसको लेकर जल्दी फैसला लिया है, खासतौर पर जब से बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी सरकार आई है।
15: जी देखिए, ये विवाद बहुत पुराना विवाद है, सीपीएम के जमाने से ये विवाद चला आ रहा है। उस वक्त भी एक मांग उठी थी कि इस मस्जिद को रिलोकेट किया जाए, उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा जाए। इसके बाद टीएमसी की सरकार आई, उस जमाने में भी एक दो बार ये विवाद जन्मा, तब बीजेपी विपक्ष में थी, विपक्ष की ओर से बार बार मांग की गई, और जब अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो इसको कार्यान्वित करने की पुरजोर कोशिश शुरू हो चुकी है। और लगभग सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जो मस्जिद है इसको उस जगह पर नहीं रखा जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम हमसे जुड़ने के लिए। अनुपम मिश्रा में बता रहे थे कि देखिए सरकार अब इसको रिलोकेट करने के लिए दूसरी जगह भी तलाश करे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
17: इलेक्ट्रिक। बायर्स वोल्क्सवैगन, वी बीन फैमिली ओन्ड सिंस 1897, बिल्ट ऑन ट्रस्ट, ड्रिवन बाय इनोवेशन, एंड नाउ बाइंग योर नेक्स्ट वोल्क्सवैगन इज इजीियर देन एवर एट columbusvw.com. शॉप ऑनलाइन, कस्टमाइज योर डील एंड फाइनलाइज एवरीथिंग फ्रॉम होम, जस्ट स्टॉप बाय टू पिक अप द कीज। बायर्स ऑटो, ड्राइविंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बायर्स।
18: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
5: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
6: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
7: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सीसीटीवी सुरक्षित रखने की मांग, मांगा जवाब, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब, ट्रस्ट को भी नोटिस, सोमवार को अगली सुनवाई। आधी रात को बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत, 63 लोग घायल, 22 की हालत नाजुक, चिंगारी दिखी, लाइट गई और उठी विस्फोटक लपटे। अमेरिकी हमले में फिर दहला ईरान, बंदर अब्बास, बुशेर, सिरिक और केशव द्वीप पर धमाकों की आवाज, ईरान ने भी कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया। दिल्ली की कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले पर सीबीआई ने दी एमसीडी अफसरों को क्लीन चिट, राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, का चूक के सबूत नहीं मिले। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन, पर्चा भरने से पहले जबरदस्त रोड शो, नामांकन से पहले तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार वीना देवी गिरफ्तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और सीबीआई जांच की मांग वाली पीआईएल पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया गया, अगले सोमवार को होगी सुनवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच जारी है, पुलिस ने फंड की हेराफेरी का पता लगाने के लिए आयकर विभाग की मदद की है। पुलिस गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े लगभग 50 बैंक खातों की जांच कर रही है, साथ ही 2022 से हुए लेन देन की पर भी नजर है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के साथ साथ परिवारजनों के बैंक स्टेटस स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड और नॉमिनी की जानकारी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मांगी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बताया मुस्लिम विरोधी, तो मचा सियासी घमासान, एसपी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा लगता है कांग्रेस जीतना नहीं एसपी से लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इमरान मसूद के बयान को गठबंधन के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें कोई टास्क दिया गया हो। अनुराग भदौरिया ने भी इमरान मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान, वो कुछ भी बोलने के आदी हैं। चंद्रशेखर आजाद और इमरान मसूद के बयान पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, विरोधी पार्टियों का एजेंट करार देते हुए कहा कि न्याय संविधान और कानून के बल पर ही मिलता है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जारी घमासान के बीच दिया बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस करें करने किससे होगा और कितनी सीटों पर होगा। चंदा चोरी मामले पर बोले आरएसएस प्रचारक प्रमुख सुनील आंबेकर, कहा राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में अनियमितताएं की घटना का दुख व्यक्त किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले चढ़ावा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, फॉरेंसिक ऑडिट और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कामकाज में सरकार कभी कोई दखल नहीं देती। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा कि असली दोषियों को बचाया जा रहा है, सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सूचना के बाद पुलिस बल ने चलाया सर्च ऑपरेशन, धमकी भरे मेल की जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का दावा, काशी के बाद मथुरा भी होगा मुक्त, बोले जनता की यही है इच्छा। यूपी चुनाव 2027 के लिए तैयारियों में कांग्रेस, अजय राय बोले जिला में लेकर बूथ स्तर तक संगठन तैयार, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक एक कार्यकर्ता तैयार। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे आज जनता को सौंप दिया जाएगा। 63 किलोमीटर का सफर 40 मिनट में पूरा होगा। 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है ये। कौशाम्बी से बहुत अस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली लगने से आरोपी घायल, 4 गिरफ्तार, हथियार और बछड़ा बरामद किए गए। आपूर होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका के साथ मिले पति को पत्नी ने परिजनों संग पकड़ा, वीडियो हुआ वायरल। क्या खबर है

और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश से, ये जहां पर एक और एक्सप्रेस हाईवे को हरी झंडी दे दी गई, आज लोगों को इसको सौंप दिया गया और इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा ये आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं।

0: उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहर लखनऊ और कानपुर करीब 80 किलोमीटर की दूरी अब महज 40 मिनट में पूरी होगी, क्योंकि देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में आज से एक नए एक्सप्रेसवे का आगाज हो गया है। ये नया एक्सप्रेसवे है लखनऊ से कानपुर के बीच, जो 63 किलोमीटर लंबा है और इससे यूपी के इन दो अहम शहरों के बीच आना जाना बेहद आसान होगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के बनी बंथरा से शुरू होकर कानपुर के नवाबगंज तक बना है। ये दूरी करीब 35 से 40 मिनट में तय हो जाएगी, जबकि पहले लखनऊ से कानपुर जाने में 2.5 घंटे लगते थे। 6 लेन के एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटा भरेंगी, जिससे इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। दोनों शहरों के बीच सफर और आसान होगा।
1: उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी संयुक्त रूप से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का जनता को लोकार्पित करने वाले हैं। ये प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। अब लखनऊ कानपुर की दूरी मात्र 30 मिनट 35 मिनट की रह जाएगी। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूँ।
0: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बेहद आधुनिक है। पूरे एक्सप्रेसवे को बेहद खास तरीके से बनाया गया है। इस पर 4 बड़े 25 छोटे पुल और 4 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इसके अलावा हल्की गाड़ियों के लिए 13 अंडरपास बने हैं। इस एक्सप्रेसवे से सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने से ये एक्सप्रेसवे रक्षा उद्योग के विकास को भी नई रफ्तार देगा। साथ ही इसे कानपुर लखनऊ के साथ अवध एक्सप्रेसवे और डिफेंस एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया। करीबन 63 किलोमीटर का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ ऐसी भी सुविधाएं, कुछ ऐसे खास चीजें भी हैं जो इसको दूसरे हाईवे से बिल्कुल अलग बनाती हैं।
0: लखनऊ कानपुर के बीच दूरी कम करने वाला ये एक्सप्रेसवे बेहद खास है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4700 करोड़ है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे भविष्य में 8 लेन तक बनाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से कानपुर तक यात्रा करने वालों को सहूलियत होगी। जहां पहले यात्रा करने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था, अब इस एक्सप्रेसवे से 35 से 45 मिनट के भीतर ही सफर तय हो जाएगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई और कब से निर्माण शुरू हुआ, साथ ही इसे बनाने में कितनी लागत आई। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई। जनवरी 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इसकी पूरी लागत 4700 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले चरण की लागत 1675.18 करोड़ रुपए, वहीं दूसरे चरण की लागत 3000 करोड़ रुपए है। दोपहिया वाहनों को एक्सप्रेसवे पर चलने की इजाजत नहीं होगी। बड़ी बात ये कि ये देश का पहला बैरियरलेस एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे में उन्नाव का हिस्सा 43 किलोमीटर, लखनऊ का हिस्सा 18 किलोमीटर, ग्रीन फील्ड हिस्सा 45.2 किलोमीटर, एलिवेटेड हिस्सा 17.5 किलोमीटर होगा। उद्घाटन के साथ ही लोगों का इस एक्सप्रेसवे पर आना जाना शुरू होगा। ऐसे में आपको टोल की भी जानकारी देते हैं। कार, जीप, वैन का एक ओर का टोल 275 रुपए होगा, जबकि वापसी करने पर 415 रुपए लगेंगे। हल्के व्यवसायिक वाहन को टोल में एक तरफ 445 रुपए देने होंगे, जबकि वापसी पर 670 रुपए लगेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के यात्रा समय में काफी कमी होगी। सफर करने वालों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। आज तक ब्यूरो।
2: और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों पर कैसा मौसमी सैलाब बरस रहा है।

0: और अब बात पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद मची तबाही की। दरअसल मैदानी इलाकों में तो मानसून इतना तेज नहीं रहा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसने काफी ज्यादा तबाही मचाई। खासतौर पे जम्मू कश्मीर का इलाका और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कई महत्वपूर्ण इलाकों में, पूर्वोत्तर के कई इलाकों के अंदर इसने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बारिश के, इस मौसम के कहर से लोग परेशान है, आजीवन उनका अस्त व्यस्त हो गया। और ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आई हुई है जो आपको दिखाती है कि इस समय कैसे ताजा हालात बने हुए हैं।
1: भारी बारिश के बीच नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। सैलाब शोर करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वेग इतना तेज है कि जो कुछ भी रास्ते में आ रहा है, पानी का तेज बहाव उसे बहाता ले जा रहा है। गांव के गांव डूब गए, मकान मलबा बन गए। इस आसमानी आफत के बीच लोग किसी तरह जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। भीषण बारिश के बीच संकट की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले की, जहां के पारसी पार्लो कस्बे में भीषण बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से आई एक एक तस्वीरों को देखिए, पूरे गांव में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि कहीं आना जाना तक संभव नहीं। बाढ़ की मार से कई मकान तबाह हो गए हैं और यहाँ रहने वाले किसी तरह जिंदगी बचाने की जंग में लगे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कुरुंग कुमे में कुमे नदी ने खतरे का स्तर पार कर लिया है। बाढ़ का पानी पूरे सीमावर्ती कस्बे पारसी पार्लो में फैल गया है, जिससे ज्यादातर इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के हालात के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी बारिश से हाल बेहाल है। अब पहाड़ों पर मानसून का बरसने कहर लगा है। भारी बारिश के बीच दरक रहे हैं पहाड़। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप। लगातार हो रही बारिश के चलते अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। किन्नौर के नेशनल हाईवे पर चट्टानों का गिरने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पहाड़ी से भारी चट्टाने और मलबा गिर रहा है। चट्टाने गिरने की गूंज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते आवाजाही को रोक दिया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील कर खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करने को कहा है। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड भी लैंडस्लाइड से अछूता नहीं रहा। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बारिश का कहर साफ देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड और मलबा आ जाने से हाईवे को बंद करना पड़ा। वहीं विकास नगर में भारी बारिश के चलते लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, क्योंकि हादसे के वक्त कर्मचारी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम से भी आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आई थी। बादल फटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कें टूट चुकी हैं, कई इलाकों से संपर्क कट चुका है, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, लेकिन भारी बारिश और आर बादल फटने से उसी जन्नत जैसे नजारे को डर और तबाही की तस्वीरों में बदल दिया है। शनिवार की रात को बादल फटने के बाद पहलगाम के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खेत डूब गए, बाघों में मलबा भर गया। राहत की बात सिर्फ इतनी है, जान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिसने भी यह मंजर देखा वह इसे शायद ही कभी भूल पाएगा। अचानक आए फ्लैश फ्लड ने पहलगाम इलाके में भारी तबाही मचा दी है। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया था और अब नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और चलिए अगली खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में भी भारी बारिश के बाद बहुत ज्यादा तबाही मची है। 51 लोगों की मौत हो गई है, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

0: ढाका की सड़कें समंदर बनी हुई हैं। ये ढाका का केंद्रीय इलाका है। सड़कों का हाल देखिए, पानी से लबालब। मूसलाधार बारिश के बाद ढाका के कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के बंदरबन जिले की हैं, जहां उफनती नदियों ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। लगातार बारिश के बीच सड़कें पानी में समा गई हैं और कई जगह भूस्खलन ने संपर्क पूरी तरह काट दिया है। लोग नावों के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। कई परिवार चार दिनों से अपने घरों में फंसे रहे। पानी कुछ कम होने पर लोग लौटे तो घरों में कीचड़, बर्बाद सामान और भारी नुकसान उसका इंतजार कर रहा था। कई लोगों की महीनों की कमाई कुछ ही घंटों में बह गई।
1: তো আজকে তিন চার দিন পরে একটু পানিটা অবনীত হয়েছে। ওই আমার বন্ধু বান্ধব বা প্রতিবেশী মিলে আমরা ঘরটা পরিষ্কার করতেছে। তাই আমরা এখনো কয়েকদিন ধরে খেয়ে না খেয়ে আছি, খুব অবস্থা খারাপ। আমরা একটু সাহায্য বা সহযোগিতা চাই।
0: বাড়কে সাথ সাথ ভূস্খলন নে ভি তবাহি মচাই হ্যায়। पहाड़ी इलाकों में कई लोगों की जान मलबे में दबने से गई, हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए। जिनके घर बच भी गए उनमें पानी और कीचड़ भर गया है। लोग अपने टूटे फूटे आशियाने से जो कुछ बचा सकते हैं उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कई परिवारों ने पड़ोसियों या अस्थायी शिविरों में शरण ली है। राहत बचाव कार्य जारी है। स्वयंसेवी संगठन प्रभावित गांवों में गर्म भोजन और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। हालांकि दूर दराज के कई इलाकों में अब भी पर्याप्त मदद नहीं पहुंच सकी है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कटे हुए संपर्क मार्गों को बहाल करना और लाखों प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना है। फिलहाल मौसम में सुधार के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, जिससे लोगों की चिंता बनी हुई है। आज तक ब्यूरो।
2: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज़ लाइव में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: EU सोच बदलो और बैंक भी।
7: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
9: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम सिर्फ ललन टॉप पर।
0: धार्मिक मान्यताओं से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई पहल शुरू की है। न्यायपालिका ने विशेष लोक अदालत के जरिए मामलों को सुलझाने की कोशिश शुरू की है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि हिंदू और मुस्लिम

भी सुनवाई होगी। ये पहल सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह 2026 अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुराने और संवेदनशील मामलों में संवाद के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद और संभल के हरि मंदिर मस्जिद विवाद को भी विशेष लोक अदालत के लिए भेजा गया है। हालांकि मथुरा मामले में सुलह की पहली कोशिश नाकाम रही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वार्ता में शामिल नहीं हुआ। अब सभी की नजरें अगस्त में होने वाली विशेष लोक अदालत पर हैं, जहां इन संवेदनशील मामलों के शांतिपूर्ण समाधान की एक और कोशिश की जाएगी।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
1: महाराष्ट्र के कल्याण के अंदर योगी धाम में एक बिल्डिंग धरघराकर गिर गई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था। इस बिल्डिंग को पहले ही खाली करा दिया गया था, लेकिन जब रीडेवलपमेंट के काम के दौरान इसको ठीक किया जा रहा था तो ये ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
2: देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर्स।
3: सो सॉरी।

0: योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है।
1: ऋषि मुनि है, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओन हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था,
0: बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है उसे हमें अपनाना चाहिए।
1: हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ।
0: बाबा रामदेव के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पहचान संविधान है और सभी धर्मों और मान्यताओं की सुरक्षा उसी के दायरे में सुनिश्चित है। वहीं शिया धर्म गुरु ने कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और देश संविधान के अनुसार चलता है।

0: रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है। ये केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR हुई। सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी।
1: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहित हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता को विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे।

चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए मांगा जवाब। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। ट्रस्ट को भी नोटिस। सोमवार को अगली सुनवाई। बिहार के बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन पर्चा भरने से पहले जबरदस्त रोड शो। नामांकन से पहले तेज प्रताप की पार्टी से उम्मीदवार वीणा देवी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में नरोत्तम मिश्रा के साथ पहुंचे सीएम मोहन यादव। पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। कांग्रेस बोली दतिया में बीजेपी की हार तय है। दिल्ली की कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने एमसीडी अधिकारियों को क्लीन चिट दी। राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। कहा चूक के सबूत नहीं है। ईरान पर लगातार अमेरिकी हमलों और होर्मुज पर मंडराते खतरे ने एक बार फिर कच्चे तेल के बढ़ाए दाम। कीमतों में 4% तक की उछाल। कुवैत, कतर और बहरीन में यूएस ठिकानों पर ड्रोन से हमला।

0: मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में 100 शहर 100 खबर के।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा, बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरने के बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हंगामे के दौरान भारी बवाल, धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट पर हुई कार्रवाई, वीणा मानवी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नीरज सिन्हा के रोड शो के बाद नामांकन भी दाखिल। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की नामांकन यात्रा के दौरान बीजेपी और जन स्वराज पार्टी के समर्थक आमने सामने आए, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। दतिया में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भरा नामांकन, मुख्यमंत्री मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बताया मुस्लिम विरोधी, तो मचा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बोले कि कांग्रेस जीतना नहीं एसपी से लड़ना इनका मकसद लगता है। एसपी प्रवक्ता ने इमरान मसूद के बयान को गठबंधन के लिए बताया खतरा, कहा इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कोई टास्क उनको दिया गया हो। अनुराग भट्ट और अन्य भी इमरान मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सस्ते लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और इमरान मसूद के बयान पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का भी पलटवार, विरोधी पार्टी का एजेंट करार देते हुए न्याय संविधान और कानून के बल पर मिलता है कहा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी घमासान के बीच में बड़ा बयान दिया, कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा अलायंस किसके साथ होगा, कितनी सीटों पर होगा।

0: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच में कार सेवक रहे संतोष दुबे आज सीओ ऑफिस जाएंगे, चढ़ावा चोरी मामले में साक्ष्य करेंगे पेश। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौथी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, हिंदू धर्म परिषद की द्वारा कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी प्रमोद नौटियाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। नोएडा भूमि मुआवजा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, 6 मामलों की जांच विजिलेंस को सौंपी गई, 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश। नोएडा भूमि मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की आगे की जिम्मेदारी खत्म की, एसआईटी के पास मौजूदा सभी रिकॉर्ड दस्तावेज विजिलेंस विभाग को सौंपे गए। बीजेपी के लीगल नोटिस पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, बोले राजनीतिक लड़ाई को कोर्ट के पीछे छिपाकर बीजेपी लड़ रही है। लीगल नोटिस पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, बोले कि अब हम भी कानून नोटिस का जवाब देंगे। पटना कोचिंग विवाद मामले में फैसल खान को मिली जमानत, दोनों ही बॉडीगार्ड भी बेल पर रहा। तमिलनाडु में सियासी बार पलटवार, डीएम के विधायक का दावा 6 महीने में खत्म हो जाएगी विजय की सरकार। डीएमके का विजय पर हमला, अनिता राधाकृष्णन बोले कि राजनीति में जरूरत के हिसाब से बदलते हैं चेहरा। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेस वे का लोकार्पण, 4200 करोड़ की लागत से तैयार है, सफर हो जाएगा आसान। यूपी को मिलेगी हाई स्पीड कनेक्टिविटी, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस 20 से 40 मिनट में सफर हो जाएगा पूरा। बागपत में निकाह से पहले हलफनामा अनिवार्य, जमीयत उलेमा ने इमामों को कानूनी विवादों से बचाने की एक पहल की। निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को देना होगा शपथ पत्र, बागपत में जमीयत उलेमा ने व्यवस्था लागू की। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 668 अंक फिसला, तो निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ निवेशकों पर बड़ा दबाव। पीएमसीएम और मंत्रियों के पास से जुड़े हुए प्रस्तावित विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने अपने रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए हैं और जेल से सरकार नहीं चलाने की बात कही। समिति ने जनप्रतिनिधियों को हमेशा के लिए कुर्सी जाने की बजाय अस्थायी तौर पर पद से हटाए जाने की सिफारिश की है। साथ ही समिति ने गंभीर आपराधिक अपराधों को परिभाषित करने के बिल के दायरे में लाने का सुझाव भी दिया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में एंट्री बैन, नमाज पर भी रोक। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, सुखेंद्र शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश बारिक ने पेश की दावेदारी। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर, कुरुंग कुमे जिले में पारसी पार्लो कस्बा जलमग्न और कुमे नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। भारी बारिश के चलते अरुणाचल बेहाल, पारसी पार्ले में सड़कें बनी, नदी भूस्खलन से भी संपर्क मार्ग बंद। कुमे नदी का रौद्र रूप दिखा, अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ के चलते हालात गंभीर है, प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तरकाशी में बाढ़ बारिश के चलते तबाही, हरकीदून वैली में मुख्य मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद, यात्री परेशान। लोगों को राशन, दैनिक उपयोग की सामग्री और दूसरी जरूरी कार्यों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास में जलस्तर बढ़ा, दहशत में लोग हैं, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा गिरा है, सड़क बाधित हुई है। धनबाद में 1 साल भी नहीं टिक सका 44 करोड़ की ये सड़क, 2 विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क टूटा है, पथ निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को जिम्मेदार बताया। देवास में बारिश के बाद बन रहे पुलिया की रिटर्निंग वॉल, क्षतिग्रस्त जांच के आदेश। गुवाहाटी के कई हिस्सों में भारी बारिश, कुछ स्थानों पर जलभराव और धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे धंसी सड़क, 15 फीट गहरा गड्ढा हुआ, फंसा टायर, ड्राइवर के सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। पालघर में ड्रोन में कैद ऐतिहासिक तांदुलवाड़ी गढ़ पर तबाही का मंजर, जबरदस्त भूस्खलन दिखाई दिया। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, दबे कई वाहन, आज तक ने 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया था। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों ट्रैफिक हुआ, प्रभावित पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी। बिहार के रोहतास में मानसर कुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद, कचरा और गंदगी के बाद वन विभाग ने लिया फैसला। रायसेन में मोटर चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर करंट देने का वीडियो वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में 3 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म पर पंचायत का शर्मनाक फैसला, 1 लाख में तय किया गया समझौता। आसनसोल में पत्नी के शक के परेशान एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। अलवर में एक तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत, दोस्तों के साथ नहाने के लिए गए थे दोनों बच्चे। दिल्ली में पुलिसकर्मी ने पत्नी को बीच सड़क पर गोली मार दी और वारदात सीसीटीवी में कैद। बेगूसराय में होटल में सगाई से पहले बड़ी चोरी, कारोबारी के कमरे से 3 लाख रुपए नकद, महंगा मोबाइल फोन लेकर चोर फरार। बेगूसराय में आरजेडी नेता और पूर्व जिला पार्षद को बदमाशों ने गोली मार दी, गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, आरोपी घायल, 4 गिरफ्तार। दिल्ली के हिरंकी गांव में यमुना में नहाने गए 4 नाबालिग बच्चे डूब गए, 2 का तो शव बरामद, 2 की तलाश जारी। झारखंड के झरिया में शराब की दुकान पर बारातियों और पुलिस के बीच में भिड़न, पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अलवर में बुजुर्ग व्यापारी हत्याकांड, पुलिस ने आरोपियों से क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खरगोन में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में भीषण ब्लास्ट, 1 की मौत, 2 लोग घायल, 500 मीटर दूर तक टैंकर के परखच्चे उड़ते। गढ़वा में दबंगों की दबंग, बीच सड़क पर युवक के साथ मारपीट, पेट्रोल पंप पर रंगदारी मांगने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा अधीन में ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सूचना के बाद पुलिस बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया, 1 मेल आया था धमकी भरा। 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने एमसीडी के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, कहा कि चूक के सबूत ही नहीं मिले। विजय की फिल्म जननायकम को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, नई पोस्टर में रौबदार अंदाज में दिखाई दिए थलपति। मुंबई में चाय और बनमस्का का लुत्फ उठाते दिखाई दिए क्रिस्टोफर नोलान, टॉम हॉलैंड, मैट डेमन, देसी नाश्ता उन्होंने किया। ओटीटी पर रिलीज होगी 3rd Begum, 18 जुलाई को स्ट्रीम होगी केसी बुकाडिया की फिल्म, वास्तविक घटना पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिटू ने सतलुज निर्माताओं को चैलेंज दिया, कहा कि 25,000 वाले आंकड़े को तो साबित करके दिखाओ। धुरंधर फिल्म सिंगर जैस्मिन सैंडलर ने कॉन्सर्ट के बीच में मंगेतर से परिचय करवाया, सगाई की अंगूठी भी फ्लॉन्ट की। बैंकॉक एक पब में अग्निकांड, 27 लोगों की मौत, धधकती आग से मची भगदड़, 22 लोगों की हालत गंभीर। अधिकारियों के मुताबिक बचाव दल के पहुंचने तक आग ने पूरे परिसर को घेर लिया था और शुरुआत स्टेज से हुई थी, जिसमें 63 लोग घायल भी हैं। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, राहत बचाव का काम भी चलता रहा, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरानी मीडिया का दावा है कि बंदर अब्बास केशम द्वीप पर कई धमाके हुए। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 3% का इजाफा हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक क्रूड 3.3% बढ़कर अब $79 प्रति बैरल पहुंचा। IRGC ने कुवैत में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर्स और उनके गोला बारूद भंडार को बनाया निशाना, कई ड्रोन से हमला किया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज के मुताबिक एक आपराधिक हमले में 3 सीमा चौकियों और समुद्र में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया गया, 1 कर्मचारी इसमें जख्मी है। अमेरिका ने ईरान में लगभग 140 ठिकानों पर हमला किया, रक्षा मंत्री बोले कि ईरान को तो कीमत चुकानी होगी। ईरान ने अमेरिका पर किया पलटवार, अमेरिकी हमलों के दौरान खुर्माबाद इलाके में IRGC ने एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में हुर्मुज वार्ता पर ईरान का बड़ा आरोप है, ओमान पर दबाव डालकर अमेरिका ने समझौते की राह रोकी है। ईरान ने ट्रंप के दावे खारिज किए हैं, हुर्मुज वार्ता पर अमेरिकी दखल का आरोप लगाया। दक्षिणी ईरान के महशहर प्रांत में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 1 शख्स की मौत हो गई, 4 अन्य घायल भी। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया गया, उड़ाने प्रभावित होने की खबर भी है। ईरान खाड़ी तनाव बढ़ा है, ईरानी मीडिया का दावा है कुवैत में धमाकों की आवाज सुनी और बुशहर में 4 मिसाइल लॉन्च हुए। अब बड़ी खबर आपको देते हैं, अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास केशम द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान की मेहर एजेंसी की तरफ से यह जानकारी दी गई है, उनके मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में उनको तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। केशम द्वीप के अवाला जाज पर भी हमला हुआ है, सिर के पास में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। ईरानी मीडिया की अगर माने तो नए हमलों में अमेरिका ने अब तक ईरान के 14 प्रांतों को निशाना बनाया है। तो केशम द्वीप जास्क पर यह हमले का दावा है, ईरानी मीडिया की तरफ से बकायदा जानकारी दी गई है कि 14 प्रांतों को निशाना बनाया है। ये यूएस ने जो ईरान पर हमले किए हैं उसकी जानकारी। और ईरान तो इस ईरान पर हमले का दावा तो अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है कि खासतौर पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जहां से ईरान कंट्रोल कर रहा है वहां पर हमला, कौन कौन सी जगह हम आपको दिखा भी रहे हैं जहां पर हमला किया गया है जो अमेरिका की तरफ से दावा है और ईरान की तरफ से वहां की न्यूज एजेंसी भी इस बात की पुष्टि कर रही है। इसमें केशम द्वीप है, बंदर आबास है, इसमें जास्क द्वीप है, इसमें सिरिक है, इसमें बुशेहर प्लांट है। तो अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और ईरान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वहां धमाके की आवाज सुननी है और अब नुकसान कितना हुआ इसका आकलन भी हो रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से महायुद्ध रिटर्न्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध विराम हो गया था, डील साइन हो गई थी, लेकिन फिर से सब टूट गया है। इसी बीच में खबर कुवैत से भी आ रही है, ईरान ने कुवैत पर हमला किया है और ईरानी मिसाइलें और ड्रोन से कुवैत के आसमान में हाहाकार से मच गया। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम काउंटर फायर भी कर रहा है, लगातार सायरन बज रहे हैं, ईरान भी लगातार काउंटर हमला कर रहा है और जो इन खाड़ी देशों में अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर टारगेट कर रहा है। और जब हमने देखा था कि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था उस समय भी वो लगातार हमला कर रहा था और इन हिस्सों को टारगेट कर रहा था अमेरिकी बेसिस पर। एक बार फिर से उन्हीं पर हमला किया गया। बहरीन में भी फिर से सायरन बज उठे हैं और तीसरी बार बहरीन में जंगी सायरन बजा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। बहरीन का ये डिफेंस सिस्टम फिलहाल एक्टिवेट बताया जा रहा है। ईरान की ओर से प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए काउंटर फायरिंग की जा रही है। तेज धमाकों की आवाज, आसपास लोग भी दहल उठे हैं, वहां के आसमान में भी लगातार प्रोजेक्टाइल्स देखे गए हैं, आसपास के इलाकों में भी ये जो धमाके हैं ये सुनाई दे रहे हैं और अब सायरन भी वहां पर लगातार बज रहे हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। इस बीच में एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है कि एक बार फिर से हमला किया गया है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर फिर से हमले किए हैं। ये समय का बड़ा अपडेट, इस समय की बड़ी खबर आपको देते हैं। एक बार फिर से हमला किया गया, एक बार फिर से उन सेंसिटिव पॉइंट्स पर हमला किया और कच्चे तेल की कीमतों में भी इसका चलते इंपैक्ट देखने को मिला, फिर बढ़ोतरी हो गई। कच्चे तेल की कीमतों में 4% तक का इजाफा हो गया, तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी यानी कि इसका इंपैक्ट ग्लोबली पड़ता है। एक बार फिर से इस अनिश्चितता के चलते, जिस लड़ाई के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लगभग 4% की बढ़ोतरी इसमें हो गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान कह रहा है कि हमने अब नियंत्रण कर लिया है, एक बार फिर से होर्मुज बंद है। अमेरिका जरूर कह रहा है कि खुला हुआ है, लेकिन हालात फिर से चिंताजनक बनते दिख रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक और बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। अमेरिका के हमले को लेकर ईरान की तरफ से दावा है कि केशम द्वीप पर 10 से 11 मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के केशम द्वीप के गवर्नर हुसैन अमीर तैमूरी ने दावा किया है कि द्वीप पर 10 से 11 दुश्मन प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं।
1: मिडिल ईस्ट में फिर बरसने लगे गोला बारूद। अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। ₹140 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। आखिर दुनिया को जिसका डर था वही होने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूट चुका है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों पर हमले को लेकर अमेरिका भड़क चुका है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक बैक टू बैक हमले किए हैं। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और HIMARS मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। खाड़ी में जंग की इन तस्वीरों ने इतना साफ तो कर दिया है कि अब युद्ध और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: एक अमेरिकी थिंक टैंक है सुफान सेंटर, उसने खबर निकाली है कि ईरान के सत्ता केंद्र में इस समय खींचतान मची है। ईरान इस्लामिक सेना और चुनी हुई सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है।

0: क्या ईरान की कमान पूरी तरह से IRGC के हाथ में चली गई है? क्या ईरान की इस्लामिक सेना चुनी हुई सरकार की बात नहीं सुन रही है? मिडिल ईस्ट में दोबारा युद्ध शुरू होने से ईरान की सरकार और सेना में भी तकरार हो गई है। ईरान में इस समय युद्ध के फैसले कौन ले रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा लड़ाई छिड़ गई है। इस बार ये लड़ाई शुरू हुई हॉर्मुज में अमेरिकी झंडे वाले जहाज पर हमले को लेकर। ईरान ने अमेरिकी जहाज गैलेकी को निशाना बनाया। ट्रंप को खबर लगी तो वो भड़क गए और ईरान पर जवाबी हमले का आदेश दे दिया। इधर अमेरिका ने बम बरसाए तो ईरान ने भी जवाबी हमले किए। लेकिन सवाल ये है कि ईरानी लीडरशिप अगर बातचीत से मामला सुलझाना चाहती है तो फिर ये हमला क्यों हुआ? न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक सोफान सेंटर की माने तो ईरान के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC के कट्टरपंथी कमांडर किसी भी कीमत पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई रखने के पक्ष में है। वहीं दूसरी ओर ईरान के निर्वाचित मसूद पजिश्किन सरकार बातचीत के जरिए संकट का समाधान चाहती है। ईरान के पावर सेंटर में इस समय दो अलग अलग सोच काम कर रही है। IRGC के शीर्ष कमांडर और कट्टरपंथी हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मान रहे हैं, जबकि चुनी हुई सरकार डिप्लोमेसी के पक्ष में है।
1: ईरान इस समय दो नीतियों पर काम कर रहा है। सबसे पहले IRGC ये चाहती है कि वो अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की जान का बदला ले ताकि एक बार फिर से कोई भी देश ईरान पर हमला करने की हिमाकत ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ कई लीडरशिप के लोग ऐसे भी हैं जिसमें अराक्ची के साथ साथ गालिबाफ भी हैं, जो ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही समाधान को निकाला जा सके। इसी वजह से ओमान से बातचीत की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और बाकी लोगों से बातचीत कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सके।
0: ईरान में खींचतान मची है। कट्टरपंथी खेमे का युद्ध प्रेम पूरे रीजन को अस्थिरता में डाल दिया है। इस बीच खबर ये भी है कि मुज्तबा खामेनी मंगलवार को पब्लिक के सामने आ सकते हैं। मंगलवार को तेहरान में युद्ध में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा है। माना जा रहा है कि उसमें सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी भी आ सकते हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है किसी ने मुज्तबा को देखा नहीं है। खबरें यहां तक आई कि मुज्तबा घायल है, रूस में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन किसी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन अब मुज्तबा खामेनी के सामने आने की बात कही जा रही है। इधर मुज्तबा के सामने आने की चर्चा है। इन सब के बीच अली खामेनी के जनाजे में एक नकाबपोश ने सबको चौंका दिया। आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में दिखा नकाबपोश कौन है? इस नकाबपोश शख्स को लेकर दुनिया भर में हुई चर्चा, लेकिन अब सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो खामेनी के जनाजे में पहुंचा नकाबपोश शख्स कोई और नहीं, मुस्तफा का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद जवाद था। 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में खामेनी समेत उसके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में जवाद खामेनी को भी कई चोटें आई थी। रिपोर्ट्स की माने तो चेहरे पर गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से जवाद ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। अब सारा दारमदार मुज्तबा खामेनी पर है। अभी तक वो पब्लिक के सामने आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी है। तो क्या ये माना जाए कि IRGC और मुज्तबा ईरान में एक पक्ष है और मसूद पजिश्किन की चुनी हुई सरकार दूसरा पक्ष है? आज तक ब्यूरो।
2: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर,
7: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: AU, सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के बाद उसको एक्सपेंड करने के बाद काफी सालों की मेहनत करने के बाद उसको वो सर्वे करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि डैमेज इस तरह का हादसा फिर से ना हो उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो। कैमरामैन महेश मोरे के साथ विद्या पुणे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: Jai Hind friends, isaiyat, sona, masala ya vistar. 1498 mein क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: जंग के बीच इजराइल में बजा चुनावी बिगुल। 38 साल बाद तय वक्त पर डाले जाएंगे वोट। 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कर रही है कार्यकाल। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में चुनाव का ऐलान हो गया है। इजराइल में 27 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सबकी नजर नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने पर होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के साथ साथ चुनाव तय समय पर कराने का फैसला भी लिया गया है। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। आपको बता दें, इजराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। अक्सर गठबंधन टूटने, बहुमत खोने और वक्त से पहले चुनाव कराने पड़े हैं, लेकिन इस बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में उतर रही है। ऐसा 53 साल बाद हो रहा है। चैनल 12 न्यूज के सर्वे की माने तो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और गादी आइजनकोट की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों दलों को 120 सदस्यीय संसद में 23-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इससे साफ है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर मांगा जवाब। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। ट्रस्ट को भी नोटिस। सोमवार को अगली सुनवाई। बिहार के बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन। पर्चा भरने से पहले जबरदस्त रोड शो। नामांकन से पहले तेज प्रताप की पार्टी से उम्मीदवार वीणा देवी गिरफ्तार।

0: की कोचिंग में बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने दिए एनसीडी अफसरों को क्लीन चिट। राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, कहा चूक के सबूत नहीं। ईरान पर लगातार अमेरिकी हमलों और हॉर्मुज पर मंडराते खतरे ने फिर बढ़ाया कच्चे तेल के दाम, कीमतों में 4% का उछाल। कुवैत, कतर और बहरेन में यूएस ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि बिहार के बांकीपुर सीट से आ रही है। यहां पर उपचुनाव के नामांकन के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल बांकीपुर सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर नामांकन करने पहुंची, वीणा मांडवी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद वहां भारी बवाल हुआ। हंगामे के बीच पुराने मामले को लेकर पुलिस ने वीणा मांडवी को गिरफ्तार कर लिया।
2: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है,
3: आपको लग रहा
2: कुछ ना, बताइए एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते, मुझे नहीं पता भैया। मैंने जितने केसेस थे सब मैंने डाले हैं, लेकिन वारंट किस केस में है मुझे पता ही नहीं है। पता नहीं मुझे, मुझे पता भी तो होना चाहिए किस केस में। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता।
4: सर आपको दिखाया कॉपी कर रहे हैं
5: क्या
4: महिला आपका रहा
5: है सर, आप किसी के दबाव में,
4: किसी दबाव में, किसी दबाव में
5: सर। वारंट
6: जनता दल के उम्मीदवार वीणा मांडवी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस पटना कलेक्टोरेट से वीणा मांडवी को गिरफ्तार करके अब यहां से निकल गई है। हालांकि जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीणा मांडवी है वो कह रही थी कि बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, और वीणा मांडवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा वो भी नामांकन करेंगे, तो बेहद अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पे इस वक्त, जबकि जनशक्ति जनता दल की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन किया और उसके बाद उसी समय जब वो बाहर निकली नामांकन के बाद तो उनकी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है, और इसको लेकर के यहाँ बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला है। किस मामले में गिरफ्तारी हुई बताया है पुलिस ने?
7: मैं बता रही हूँ,
8: अरे ऐसे मत कीजिए,
9: एनकाउंटर का डर है,
7: इंसाफ चाहिए,
8: क्या चाहिए?
7: भरत तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है, वो निर्दलीय नहीं लड़ने, निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की, पर आज फाइनल हो गया नॉमिनेशन, तो अरेस्ट वारंट।
6: आशंका जता रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये वीणा मांडवी की बेटी हैं जो बता रही हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, राजनीतिक साजिश, और पुलिस अचानक से आई, गिरफ्तार किया वीणा मांडवी को और लेकर के यहाँ से निकली है। जो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे पहचान रही है वीणा मांडवी की, जिनको टिकट दिया तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ये बांकीपुर की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन नवी मालम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।
10: देखिए साजिश जो सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आदि आबादी की बात कर रही थी, और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मांडवी जी है बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है, और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है, तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, ये षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं, हम बिहार आएंगे उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। कि जिस तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है। और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा, पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीना मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है, तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में, इसलिए हम वोट जाने का काम करेंगे।
0: वही बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन है और आज हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने पर्चा भरा तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी नामांकन दाखिल किया। सबसे बड़ा संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है। नीरज सिन्हा ने नामांकन से पहले मेगा रोड शो भी किया। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आज नामांकन का दिन है और ये सीट पर पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे नरोत्तम मिश्रा ने यह दावा ठोक दिया था, लेकिन चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वहां बवाल हो गया। नरोत्तम के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया तो हाईकमान को दखल देना पड़ा। अब बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को यहां से उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस से घनश्याम सिंह को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन कराने आज बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उनसे बातचीत की है, सुनिए।
3: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे हैं जहां पे नामांकन होना है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का मुख्यमंत्री से सीधे बात करते हैं, कितने आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव को लेकर के, जीत को लेकर?
11: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 साल में जो काम किए हैं और बीते चुनाव में यहाँ जो कांग्रेस जीती थी उसके कारण से निराशा है। और जैसे देश भर से कांग्रेस हर राज्य से बाहर हो रही है, हमारे उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का हर बार विजय का परचम लहराता है। मैं जो पूरा भरोसा है कि इस द्वितीय उपचुनाव में हमारे अपने आशुतोष तिवारी जी पूरी ताकत से लड़ेंगे और ताकत से जीतेंगे। कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा।
3: कांग्रेस बार बार कह रही है कि जो उस दिन दतिया में उससे बहुत निश्चिंत है हम कि हम जीत जाएंगे और जो है बीजेपी की आपसी फूट रहेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष आपके साथ ही है और लगातार दो दिन
11: सारे कार्यकर्ता साथ है, पूरी ताकत से लगेंगे। माननीय पूर्व मंत्री नरोत्तम जी मेरे साथ आए, हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और दतिया में बीजेपी की जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रवीश पाल सिंह, दतिया, आज तक।
0: और सीट की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि नरोत्तम मिश्रा वहां से नामांकित नहीं किए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा आज नामांकन कराने वाले कार्यक्रम में पहुंचे और हमने एक साथ नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी से बात की।
12: आशीर्वाद है आपका
13: भाई है मेरा, आशीर्वाद क्या है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे।
3: इतनी बातें जो कांग्रेस कह रही थी फिर वो आपकी हवा निकल गई आपको?
13: कई कांग्रेस इन्हीं बातों को कर करके तो देश से 80% से गायब हो गई, यहाँ भी गायब हो जाएगी। मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर पे है।
3: मुख्यमंत्री बता के गए कि क्या कुछ यहाँ पे आपके कार्यकाल के दौरान हुआ, कह रहे हैं कि अब
13: मंच से हम भी बताएंगे, इसीलिए आए
3: आपके साथ हैं। आज तमाम बातें हो रही थी कि लेकिन अब आपने अभिभावक कहा और आप साथ में भी हैं नरोत्तम मिश्रा जी।
14: मैंने शुरुआत से ही कहा है भाई साहब का बड़ा सानिध्य है, हमारे अभिभावक हैं और आपके सानिध्य में ही लगातार 25-30 वर्षों से कंटिन्यू मैं सीखता चला रहा हूं। उनका
3: तस्वीर देखिए,
0: दतिया में बीजेपी कांग्रेस के बीच हमेशा से कांटे की टक्कर रही है, एक बार फिर दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं।
14: भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है। कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है, नेतृत्व तय करता है, आमजन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है, नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है।
15: वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे और वो आगे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ सकते थे, इसलिए हाई प्रोफाइल लोगों को ऊपर के नेता ज्यादा पसंद नहीं करते। कोई आदमी भोला वाला सा दिखे, मूर्ख सा दिखे, हाथ जोड़ता रहे, पांव छूता रहे, तो लगता है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको चलने दो।
3: आप आशुतोष तिवारी के बारे में कह रहे हैं,
15: नहीं कोई भी हो, ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी है, आशुतोष तिवारी जी के लिए भी है, वो भी हाई प्रोफाइल है, उनके पांव जमीन पे ही नहीं, जनता यहाँ जानती नहीं है उनको। दतिया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन दतिया में उन्होंने कार्य किया ही नहीं, ऊपर बहुत काम किया आरएसएस में, इधर उधर, ऊपर उनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है।
0: वही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार समेत ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जनहित याचिकाओं में मुख्य रूप से दो मांगे थी, पहली ये कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखे जाएं और दूसरी ये कि पूरे मामले की सीआईडी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई की, सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। केंद्र यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने पर जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय ये बेंच जिसने आज ये तमाम कार्रवाई की है, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर आरएसएस की बैठक में चिंता व्यक्त की गई। बैठक में कहा गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा और गहरी आस्था पर आघात हो।
12: बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया है। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो।
0: वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर साध्वी रितंबरा का बयान आया है, उन्होंने चिंता व्यक्त की है।
16: अगर गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे तो हम उसे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते, अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनीयों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है।
0: अभिनेता अनुपम खेर पिछले दिनों अयोध्या गया, उन्होंने कहा कि अतीत में मंदिरों पर अनगिनत हमले हुए, उन्हें तोड़ा गया, उस पर क्यों कोई आवाज बुलंद नहीं करता है, चोरी से राम मंदिर की प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती है।
17: इसकी जो प्रतिष्ठा है टेंपल की खराब हो गई, मेरा सिर्फ उसमें मुझे इशू है कि कैसे खराब हो गई, जो चोर है वो तो चोर ही है और उसको पकड़ा जाएगा वो, या पकड़े जाएंगे फिर उनको सजा भी होगी, बट वाई आर वी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ओ माई गॉड राम मंदिर में चोरी हो गई। ऑफकोर्स हो सकती है, जिनकी इच्छा शक्ति चोरी करने की है, जिनके जिनका जहन ऐसा है, जिनके विचार ऐसे हैं, वो चोरी करने से नहीं कतराते हैं, उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। और ऑफकोर्स देर इज अ कलर बीइंग गिवन टू इट, माई पॉइंट इज दैट आवर टेम्पल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर सो मेनी ईयर्स, वेदर इट्स इन कश्मीर, सोमनाथ, वी वर रूल्ड फॉर 800 years by Mughals, they destroyed each and every temple. ये तो चोरी है, होनी नहीं चाहिए और सजा मिलनी चाहिए जो भी पकड़ा जाएगा। मगर मेरे खुद के कश्मीर में हर टेम्पल तोड़ा गया है, हर टेम्पल की स्थापना दोबारा की गई है। सो वॉट आर द पीपल ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू से, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट।
0: बाबा रामदेव का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि चाहे दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी पहन लो, पगड़ी पहनो, हमारे पूर्वज एक ही हैं और वो सनातनी हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों से डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा, इसीलिए अपने पूर्वजों जैसे बनिए।
18: हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओन हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को।
0: वही बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर गैर बीजेपी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कोई इसे दरारे डालने की कोशिश कह रहा है तो कोई रामदेव के बयान को लेकर बाप दादाओं वाली बयानबाजी कर रहा है।
19: सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारे क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारे क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना, तो वो पहले वो खुद तय कर ले पहले वो क्या है और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें।
20: सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूंगा, क्या हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर दो, बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। बात नंबर तीन, अभी आपने कहा कि जो पूर्वज थे, तो बाबा मैं बोलूं फिर, हमारा भी ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, आप भी उसी में आ गए क्या?
21: देखिए मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है जिसको आप भगवान कहते हैं, और मैं समझता हूँ हर एक जो है अल्लाह भगवान गॉड इससे डरता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हिंदुस्तान मुल्क है, इस मुल्क को कोई अपनी भगवती समझ ले कि आपको डरने की जरूरत नहीं, ये नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत देश चलेगा।
0: इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा है, उन्नाव से तस्वीरें आ रही हैं, राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, नितिन गडकरी जो करता धरता हैं एक्सप्रेस वे के, नेशनल हाईवेज इन्हीं के अंडर आता है, और ऐसे में ये एक्सप्रेस वे बेहद अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी अब महज 40 मिनट रह जाएगी, हालांकि ये लखनऊ के आउटर से शुरू होता है और कानपुर में भी ये उन्नाव तक ही इसका दायरा है। आज बेहद अहम दिन एक्सप्रेसवे के लिहाज से, एक और सौगात, चुनाव से पहले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, ये 100 AI कैमरों से लैस है और लगभग 35 से 45 मिनट का सफर ये बताया जा रहा है।
22: हमारे लिए गाड़ी भी
0: लंबाई इसकी 63 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड 45 किलोमीटर, एलिवेटेड तकरीबन 18 किलोमीटर और रफ्तार यहाँ पर स्पीड रेंज 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज इसके शुभारंभ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता सीएम समेत यहां पर मौजूद हैं इसके उद्घाटन समारोह के लिए।
23: पता नहीं है।
0: खबरें असरदार है, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
14: भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है। कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है, नेतृत्व तय करता है, आमजन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है। नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है।
15: वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे और वो आगे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ सकते थे, इसलिए हाई प्रोफाइल लोगों को ऊपर के नेता ज्यादा पसंद नहीं करते। कोई आदमी भोला वाला सा दिखे, मूर्ख सा दिखे, हाथ जोड़ता रहे, पांव छूता रहे, तो लगता है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको चलने दो।
2: आशुतोष तिवारी के बारे में कह रहे हैं ये?
15: नहीं, कोई भी हो, ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी है, आशुतोष तिवारी जी के लिए भी, वो भी हाई प्रोफाइल है, उनके पांव जमीन पे ही नहीं, जनता यहाँ जानती नहीं है उनको। दतिया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन दतिया में उनने कार्य किया ही नहीं, ऊपर बहुत काम किया, आरएसएस में इधर उधर, ऊपर उनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में टीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।

चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर मांगा जवाब। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। ट्रस्ट को भी नोटिस। सोमवार को अगली सुनवाई। बिहार के बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन। पर्चा भरने से पहले जबरदस्त रोड शो। नामांकन से पहले तेज प्रताप की पार्टी से उम्मीदवार वीणा देवी गिरफ्तार।

0: बीजेपी की हार तय। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौत के मामले में सीबीआई ने दी एमसीडी अफसरों को क्लीन चिट। राजेंद्र नगर हादसे में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, कहा चूक के सबूत नहीं। ईरान पर लगातार अमेरिकी हमलों और हॉर्मूज पर मंडराते खतरे ने फिर बढ़ाए कच्चे तेल के दाम, कीमतों में करीब 4% का उछाल। कुवैत, कतर और बहरीन में यूएस के ठिकानों पर ड्रोन अटैक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ईरान पर अमेरिका का महाहमला। हुर्मुस पर छिड़ी भीषण जंग। दर्जनों ठिकानों पर बमबारी। पहली बार सी ड्रोन से अटैक। यूएस ने तबाह किए एयर डिफेंस। जवाब में भड़का आईआरजीसी का गुस्सा। बहरीन में अमेरिकी बेस पर तबाही। अमेरिकी पांचवें बेड़े पर हमला। बुशहर से दागी नई मिसाइलें। कुवैत जॉर्डन में जोरदार धमाके। अमेरिकी हमलों से एक की मौत। हुर्मुस पर महायुद्ध के आसार।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत और आप देख रहे हैं रणभूमि। और इस वक्त मध्यपूर्व में जंग की आग एक बार फिर से भड़कने लगी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में बौखला ईरान ने आज फिर से खाड़ी के कई देशों को निशाना बनाया और भीषण पलटवार शुरू कर दिया है। बहरीन में आज सुबह एक के बाद एक 3 मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंजे। वहीं कुवैत की जो एयर डिफेंस प्रणाली है उसने ईरान की जो इनकमिंग मिसाइल्स है ईरान के हमलों को रोकने के लिए अब कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। उससे पहले अमेरिका का जो सेंटकॉम है यानी अमेरिकन सेंट्रल कमांड उसने रात भर ईरान के भीतर भारी बमबारी की और कई ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका ने मुख्य रूप से ईरान का जो वायु रक्षा तंत्र है एयर डिफेंस सिस्टम जो उसके तटीय रेडार सिस्टम है पूरी कोस्टल डिफेंस बैटरी और जो वहां उसकी मिसाइल सिस्टम है और ड्रोन के ठिकाने हैं इन सब पर हमले किए। जब ईरान की स्पीड बोट्स ने पलटवार किया तो उन लड़ाकू बोट्स को तबाह कर दिया गया हॉर्मुज की खाड़ी में। इन हमलों में दक्षिण पश्चिम ईरान के खुजेस्तान प्रांत बंदर अब्बास और केशम द्वीप को बार बार निशाना बनाया गया जहां भारी तबाही की खबर ईरान का मीडिया बता रहा है। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने ताबड़तोड़ अपनी मिसाइलें दागी और बहरीन की दिशा में। बहरीन में अमेरिका का जो नौसेना का फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है पांचवें बेड़े का जो मुख्यालय है कुवैत के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ओमान के रिडार सिस्टम पर सीधे प्रिसिशन ड्रोन स्ट्राइक्स की मिसाइल स्ट्राइक्स की और इस तरह से ईरान ने बमबारी की। ईरान ने पूरा अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पहले उसको पढ़ा और जब देख लिया कि कितनी मिसाइलें दागने पर वो सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है उसके बाद फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। हालात ये कि जॉर्डन ने सभी हवाई जो उसकी सीमा है उसमें घुसती ईरान की 4 मिसाइलों को मार गिराया। तो कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े तेल के मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब तीसरे दौर का महासंग्राम छिड़ चुका है। और पूरी दुनिया को एक बार फिर इसने संकट में डाल दिया है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर और यह हाहाकारी खबर आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच जो महायुद्ध है, अब तक का सबसे घातक हमला अभी रिपोर्ट किया गया है। इजरायली मीडिया और अंतरराष्ट्रीय ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स ने पश्चिमी ईरान में स्थित बेहद संवेदनशील उनका जो डेजफुल एयरबेस है उसको अब निशाना बना दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आसमान को चीरता हुआ धुएं का गुबार और ये तस्वीरें उसकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूह को कपा देने वाली तस्वीर है। एक के बाद एक आप यहां सिलसिलेवार धमाके देख सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी विमानों ने डेजफुल के जमीन के कई फीट नीचे ईरान के जो सीक्रेट अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज हैं उन पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक बंकर बस्टर बमों से हमला किया। बंकर बस्टर यानी जो 6 मीटर की सतह होती है, कंक्रीट की सतह, जो पहला बम है उस सतह को चीरता है और चीरने के बाद बंकर के अंदर घुस के फिर फटता है और वहां पर ईरान की मिसाइलें सुरक्षित रखी गई थी। तो ईरान की जो मिसाइल क्षमता है उसे अब दफन किया जा रहा है, ऐसा प्रयास अमेरिका का है। रणनीतिक रूप से ये जो एयरबेस है ये ईरान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और सबसे पहले घातक मिसाइलों से और लड़ाकू विमानों से यहां पर अभी हमला किया गया है इस राउंड की बमबारी में। हालांकि इस हमले में अंडरग्राउंड मिसाइल बंकर क्या तबाह हुआ है या नहीं इस पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। जो अमेरिका का सेंटकॉम है यानी अमेरिका का सेंट्रल कमांड, आधिकारिक मुहर उसने अभी तक नहीं लगाई है। जो बॉम्ब डैमेज असेसमेंट है वो अभी हो रहा है। ये दावा अगर सच साबित होता है तो ईरान के लिए अब तक के इस जंग में ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री झटका होगा जहां उसके सैन्य साजो सामान यहां पर खत्म हुए हैं। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर भीषण हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों का एक पूरा दौर उसे कंप्लीट कर लिया, खत्म कर दिया है। वीडियो जारी करके सेंटकॉम ने लिखा कि इसमें सटीक हथियारों से कई जगहों पर दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला जारी रखने वाले ईरान की क्षमता को कम करना था। हालांकि ईरान ने कल भी 2 मालवाहक जहाजों पर हमला किया और इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रेडार डिफेंस सिस्टम यानी कोस्टल रेडार बैटरीज, कोस्टल मिसाइल बैटरीज और ड्रोन क्षमताओं पर, छोटी नाव पर ईरान की, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने लड़ाकू विमानों के अलावा नौसैनिक जहाजों से ईरान पर मिसाइल हमले किए। वहीं वन वे अटैक सी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। ये कामिकाजी ड्रोन या सुइसाइड ड्रोन कहलाते हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण अब उसने बहुत कमजोर कर दिया है। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जो सरकारी मीडिया है IRIB उसने माना कि कई इलाकों को अमेरिका ने निशाना बनाया है। ईरान की मीडिया ने माना कि अमेरिकी मिसाइलों ने मशहर, जास्क, सिरिक, बंदर अब्बास और केशम द्वीप तर पर एक के बाद एक कई हमले किए। ईरान ने औपचारिक तौर पर यह भी माना कि खुजस्तान के डिप्टी गवर्नर ने औपचारिक तौर पर बताया कि अमेरिका ने खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के पंप और स्टेशन पर हमला किया और इस हमले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 4 इसमें घायल हैं। तो ईरान का दावा यह है कि अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पानी को निशाना बना रहा है। ये हमले प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी सटीक हमला करने वाली मिसाइल और ड्रोन से किए गए। दावा यह किया गया कि अमेरिका ने 80 से ज्यादा टारगेट ईरान के अंदर पिछले 24 घंटे में डिस्ट्रॉय किए हैं या उनको निशाना बनाया है। और आइए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि अमेरिका ने कल रात ईरान के जिन ठिकानों पर हमले किए हैं वो कौन कौन से हैं और उनका सैन्य और सामरिक महत्व क्या है, क्योंकि केवल एक सैन्य महत्व नहीं, सामरिक है, मिलिट्री इंपोर्टेंस और स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, ये दोनों बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के सबसे महत्वपूर्ण बंदर अब्बास, देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल द्वार पर ये बंदर अब्बास का एयरबेस, ये बंदर अब्बास का बेस है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? बड़ा नौसैनिक अड्डा भी है, हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए ये मेन सेंटर है। इसको अगर आप विस्तार से देखें तो ये फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, जब ओमान की खाड़ी, और ये अरब सागर है, ये भारत का गुजरात का तट आप देख रहे हैं। तो अगर आप इस पूरे समुद्र को अच्छे से समझे तो ये जो 33 किलोमीटर का चौड़ा इलाका है उसके बिल्कुल मुहाने पर ये सबसे महत्वपूर्ण बंदर अब्बास बेस है ईरान का। ये आईआरजीसी का एक आईआरजीसी का भी हेडक्वार्टर है और रेगुलर नेवी ईरान की नौसेना का भी हेडक्वार्टर है। न केवल यह हेडक्वार्टर है, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि यहां पर ईरान की एंटी शिप मिसाइल्स हैं, यहां ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहां पर बंदर अब्बास पर ईरान का स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल रिपेयर फैसिलिटी यानी जहाजों को रिपेयर करने की क्षमता और सुविधा, ये सब है। ये हॉर्मुज की निगरानी और कंट्रोल का प्रमुख केंद्र है, इसको टारगेट किया गया। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े टारगेट की और ये केशम द्वीप, ये अमेरिका का एक तरह से बिल्कुल बंदर अब्बास से थोड़ी ही और आगे है केशम द्वीप। ये हॉर्मुज के बीच में एक द्वीप है, ये जो केशम द्वीप है ना, ये एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक तरह से है और ये दुनिया में प्रसिद्ध है। ईरान ने कितने जबरदस्त तरीके से एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना दी है, पहाड़ों के बिल्कुल बीच सुरंगों में यहां पर उनके पास इतनी ज्यादा मिसाइलें हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा यहीं से चलता भी है। आईआरजीसी की जो 112वीं नेवल कंट्रोल ब्रिगेड है वो इसी केशम द्वीप पर तैनात की गई है। इसके अलावा उनके पास जो उनकी फास्ट अटैक बोट्स हैं, दोनों मानव रहित भी और मैंड बोट्स भी, उसके अलावा एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सब केशम द्वीप पर ही है। साथ ही केशम द्वीप पर एयर डिफेंस रेडार, सर्विलेंस एसेट्स, ये सब ईरान की नौसेना के यहां तैनात है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर है केशम द्वीप और एक तरह से अगर आप इसकी लोकेशन को भी देखें और इसके कंट्रोल एरिया को भी देखें तो ये ईरान का बिल्कुल अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ये काम करता है, यानी इसको आप डुबा सकते नहीं है। कोई भी जहाज यहां से जाएगा तो केशम द्वीप होकर जाएगा और वहां पर बिल्कुल फौलादी कंट्रोल है ईरान का। अब बात करते हैं हम सिरिक की। सिरिक अगला टारगेट था अमेरिका का। ये आईआरजीसी की जो नौसेना है, आईआरजीसी नेवी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कोस्टल बेस है। अब आप देखिए ये ईरान की पकड़ को कमजोर करने के लिए अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहा है, बंदर अब्बास, केशम, सिरिक, जितने उसके को यहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बेसिस हैं, एक के बाद एक इनको टारगेट किया जा रहा है। एंटी शिप मिसाइल सिस्टम यहां पर है, रेडार्स यहां पर है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल भी और मिलिट्री भी, दोनों पोर्ट्स यहां पर हैं, दोनों पियर्स यहां पर हैं। तो ये ड्यूअल यूज सिस्टम उनका चलता है। इसका इस्तेमाल भी हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से की निगरानी के लिए होता है, फिर ज़ास के इलाके को जो टारगेट किया गया है। अब आप देखिए, अब आप ये जो पूरी पकड़ ईरान की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दोनों तरफ, उसको अमेरिका अब एक सिरे से टारगेट कर रहा है। आईआरजीसी और नेवी का फॉरवर्ड बेस है, यहां पर ऑयल टर्मिनल्स भी हैं और यहां पाइपलाइन भी है। यहां से ईरान की जो नौसेना है उसकी पेट्रोल बोट्स यहां से निकलती हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कोस्टल बैटरी सिस्टम, गल्फ ऑफ ओमान और हॉर्मुज के बीच ये एक बहुत ही संवेदनशील स्ट्रैटेजिक लोकेशन जिसको कहते हैं, उस पर ये ईरान का सबसे प्रमुख स्थान है जिसे अमेरिका ज़ास को अब टारगेट कर रहा है। अब एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत को दहला दिया है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं। आईआरजीसी ने दावा किया है उसने कुवैत के मिसाइल डिपो में मौजूद दो अमेरिकी हाइमार्स लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट अटैक सिस्टम, हाइमार्स। ईरान का दावा यह है कि उसने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया और इन हमलों का निशाना उन अमेरिकी सैन्य साजो सामान को ठिकाना बनाना था जो कुवैत से ईरान पर हमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान का दावा यह है कि उसने अपने इलाकों पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब दिया है। उसके रेडार ने ट्रैक किया कि अमेरिका का जो हाइमार आर्टी अटैक आ रहा है या आर्टिलरी का अटैक आ रहा है वो कहां से आ रहा है। उसके वेपन लोकेटिंग रेडार्स ने उसको देखा और WLR ने जैसे ही देखा कि कुवैत से ये हमले हो रहे हैं तो उसने कुवैत को निशाना बनाया। ईरानी सेना के प्रवक्ता की माने तो ये जो हमले हैं ये केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर हो रहे हैं और अमेरिकी ऑफेंसिव एक्शन यानी मिसाइल सिस्टम पर हो रहे हैं। फिर अमेरिका के सैनिकों को उनके बैरिक्स पर, उनके फैसिलिटीज पर, उनकी सुविधाओं पर हमले किए जा रहे हैं। इन देशों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है खाड़ी में। ईरान दो टूक कह रहा है कि उसकी सेना अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता और अपनी आजादी बनाए रखने के लिए कहीं भी हमला करना हो जरूर करेगी। वहीं किसी भी हमले का जवाब देने से पहले वो दो बार नहीं सोचेगी, चाहे वो खाड़ी के देश ही अमेरिका को पनाह दे रहे हैं। और इस बीच बहरीन से एक बड़ी खबर आ रही है। बहरीन ने दावा किया है कि उस पर कई हवाई हमले हुए हैं। हालांकि बहरीन ने यह भी कहा कि जो बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ईरान के सभी हवाई हमलों को रोक दिया और उसके मिसाइलों को और ड्रोन को नष्ट कर दिया है। बहरीन पर ईरान का गुस्सा इस वजह से फूटा है क्योंकि बहरीन की धरती से अमेरिका का हाइमार सिस्टम, जो उसका लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम है, उसका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ, इसीलिए ईरान ने पलटवार किया। तब देखिए, एक तरफ बहरीन और दूसरी तरफ कुवैत, ईरान ने खाड़ी के देशों को निशाना बनाना शुरू किया है, लेकिन ईरान बार बार यह दावा कर रहा है कि उसका जो हमला है वो केवल अमेरिकी सैन्य साजो सामान पर हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर घेरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा है कि ईरान के साथ डील में ट्रंप हॉर्मूज को खुलवाना हासिल नहीं कर पाए। अखबार ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा समझौता किया कि इतना अहम जलमार्ग उन्होंने ईरान को सौंप दिया, ईरान के हवाले कर दिया, और उसके साथ साथ दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई का कंट्रोल है अब वो ईरान के हाथ में चला गया है। अब ईरान हिंसक तौर तरीके अपनाकर अपने नियंत्रण का दावा ठोक रहा है। अखबार ने साफ तौर पर इशारा यह किया कि हॉर्मूज 28 फरवरी से पहले दुनिया के लिए खुला था। 28 फरवरी को ईरान पर बमबारी हुई और अब जब नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन है तो फायदा ईरान का है। अखबार के मुताबिक करीब दो महीने तक मालवाहक जहाज अपने ट्रांसपोंडर बंद कर ओमान के तट के पास चुपचाप गुजरने का प्रयास कर रहे थे। अमेरिकी सेना उन्हें हवाई कवर देने का दावा कर रही थी, लेकिन डील में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसने ईरान को सीधे तौर पर हॉर्मूज का नियंत्रण या तो दे दिया है या ईरान ने ले लिया है। अब पिछले एक हफ्ते से ईरान जहाजों पर फायरिंग कर उन पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान के जल क्षेत्र से गुजरे, और जब वो ऐसा करेंगे तो ईरान उनसे टोल वसूलना शुरू कर देगा। ऐसी ही अमेरिकी अखबार डोनाल्ड ट्रंप की इसको बहुत बड़ी नाकामी बता रहा है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है। दरअसल हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर ईरान ने ओमान के साथ तालमेल बिठा लिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने दावा किया है कि ईरान और ओमान साथ मिलकर हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन करना शुरू करेंगे। ओमान से बातचीत के लिए अराग्ची शनिवार को मस्कट पहुंचे। वहां उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के साथ विस्तार से चर्चा की। सैयद अब्बास अराग्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनके मुताबिक दोनों के बीच हॉर्मूज पर तालमेल को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। हालांकि ईरान ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका अब ओमान पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान के साथ किसी भी प्रबंधन के फैसले में शामिल न हो और ओमान का रास्ता जहाजों के लिए खुला रखा जाए। लेकिन एक और चौंका देने वाली खबर हम आपको बता दें, ईरान के मीडिया पिछले कुछ दिनों से लगातार इस खबर को हवा दे रहे हैं कि अमेरिका के जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उनकी मौत हो गई थी 11 जुलाई यानी शनिवार को, अचानक उनकी मौत हो गई। अब ईरान का मीडिया इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उनके मौत के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान के अखबार हम शहरी ने सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद अपने पहले पन्ने पर राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इसराइल के बड़े अधिकारियों की तस्वीर छापकर लिखा है, अचानक मौत के लिए तैयार हो जाएं। ये सीधी धमकी है। वहीं एक और ईरानी अखबार वतने अमरोज ने आज के अपने पहले पन्ने पर अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम की बकायदा तस्वीर छापी और लिखा है, मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने लिंडसे ग्राहम को ईरान के खिलाफ अमेरिकी नीति का मुख्य समर्थक बताकर कहा कि उनकी मौत अचानक हुई बीमारी के कारण हुई। दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि लिंडसे ग्राहम की मौत एक डिसेक्शन, एक aortic dissection की वजह से हुई है, यानी ये हृदय में जो धमनियां हैं उसकी एक बीमारी है, जो अंदरूनी परत उसकी है वो फट जाती है और खून फटे हुए हिस्से में फिर बाहर आ जाता है। अमेरिका में उनकी मौत की जांच हो रही है। जांच होने के बाद बकायदा एक डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। लिंडसे ग्राहम की मौत यूक्रेन से अमेरिका लौटते के तुरंत बाद हो गई थी। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश के आरोप भी लग रहे हैं। ट्रंप बता चुके हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में इस समय नंबर वन पर है, टॉप पर है। और लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद जो प्रोपोगंडा वॉर है वो अब एक चरम पर आ गई है। जी हां, ईरान का जो मीडिया है वो इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रहा है। आपको अब हम विस्तार से बताते हैं कि ईरान की जो मीडिया है उसमें बकायदा वो हिटलिस्ट जारी की गई है। ये देखिए, ईरान के दुश्मनों की बकायदा एक हिटलिस्ट जारी की गई है। ये ईरान की हिटलिस्ट है उनके अखबारों के मुताबिक, जिसमें नंबर वन पर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे नंबर पर है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरे नंबर पर है अल नायन, राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, संयुक्त अरब अमारात के, फिर कुवैत के अमीर जबल अल सबा, ईसा अल खलीफा बहरीन के राजा हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विदेश मंत्री हैं, बकायदा अच्छा, फिर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, जॉन रैटक्लिफ, इसराइल जमीर, ये अब अमेरिका और ईरान के इसराइल के मुख्य मिलिट्री कमांडर्स हैं, इसराइल अमीर आर्मी चीफ माइकल कुरेला, डैन केन सेनेटर, डैन केन इसराइल काट्स रक्षा मंत्री, और लिंडसे ग्राहम की जो तस्वीर डाली गई है लिंडसे ग्राहम के नाम के आगे, उन्होंने बकायदा क्रॉस लगा दिया कि एक दुश्मन मारा गया। ये हिटलिस्ट बकायदा ईरान की तरफ से ईरान के अखबार में जारी की गई है। इस समय एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, यह खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने वहां के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चुनौती दे दी है। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को राजनीति का शौक है तो वो अपनी वर्दी उतार दे और चुनाव लड़कर देख ले। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान के सूबों में नफरत फैलाकर जातीय हिंसा की आग में पाकिस्तान को झोंक देना चाहते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो अपने आप को पाकिस्तान का रखवाला बताते हैं, उनके लिए ये, उन पर ये सबसे बड़ा हमला है। सुनिए,
4: तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाति दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
0: बहुत बड़ा हमला है ये आसिम मुनीर पर। कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पहले ही हाथ से निकल रहा था, अब खैबर पख्तूनख्वा और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भी हाथ से निकलने की कगार पर आ गया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: आगे आगे,
12: अरे उधर
11: उधर,
12: करेक्ट करेक्ट।
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस, फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन, दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव। फास्ट, शार्प, अनफिल्टर्ड, फॉर द फैंस हु वांट एवरी अपडेट, एवरी स्टोरी, एवरी हेडलाइन फर्स्ट। वेलकम टू स्पोर्ट्स टुडे, योर डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग स्पोर्ट्स। प्रेस दैट बेल आइकन एंड सब्सक्राइब नाउ।
5: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
6: YouTube पर अब देखिए आज तक वर्टिकल।
7: अरे भाई फिर घुमा रहे हैं,
6: छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब आज तक वर्टिकल।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

मिडिल ईस्ट में फिर बरसने लगे गोला बारूद। अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। एक सौ चालीस से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। आखिर दुनिया को जिसका डर था वही होने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूट चुका है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों पर हमले को लेकर अमेरिका भड़क चुका है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक बैक टू बैक हमले किए हैं। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और HIMARS मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से तीन लोग घायल हो गए। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। खाड़ी में जंग की इन तस्वीरों ने इतना साफ तो कर दिया है कि अब युद्ध और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर मांगा जवाब। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। ट्रस्ट को भी नोटिस। सोमवार को अगली सुनवाई।

मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के लिए जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश को मिली एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। अब 3 घंटे की जगह 40 मिनट में तय होगी दूरी।

आधी रात को बैंकॉक में भयंकर हादसा, आग की लपटों में जल रहा था पब, जान बचाने को भाग रहे थे लोग, चारों तरफ धुआं, घुट रही थी सांसें, निकलने के रास्ते पर मिली कई लाशें, आज से ज्यादा धुएं ने ली लोगों की जान। बैंकॉक में मस्ती की रात बनी ब्लैक संडे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आ रही हर एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सुकून और मौज मस्ती के लिए इस पब में गए कई लोग अब कभी घर नहीं लौटेंगे। एक भयानक अग्निकांड ने कई लोगों की जान ले ली है।

0: आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं गौरव सावंत। ये कल्पना करते ही शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है कि आप सुकून के दो पल गुजारने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहां अचानक आग लग जाए, लेकिन आपको बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाता। आप इधर उधर भागते हैं कि किसी तरह बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। चिल्लाते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन दर्दनाक मौत का शिकार होने के लिए लोग विवश हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बीती रात थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। एक पब था ये, और बहुत लोकप्रिय पब था। आधी रात की बात है, लोग रविवार की छुट्टी मनाते हुए खा पी रहे थे, पब है, नाच रहे थे, और एकाएक उस पब में एक आग लग गई। भीषण आग फैल गई, अफरा तफरी मच गई। आखिरकार 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 63 लोग अब भी अस्पताल में हैं, और जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पब में आग कैसे लगी? आधे घंटे में आग तो बुझा दी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश धुएं की वजह से लोगों का दम घुट गया, और तेजी से, जब सांस नहीं आ रही थी तो तेजी से दम घुटता चला गया, और उसी में उनकी मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले तो चले गए, लेकिन कई परिवार बिखर गए। वियतनाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय पर्यटक वहां घूमने के लिए गए थे, एक स्पीड बोट में थे, और ये स्पीड बोट एकाएक पलट गई, हादसे का शिकार हो गई। इस स्पीड बोट में 15 भारतीयों की मौत हो गई। आज उनके शव भारत लाए जाएंगे। अभी भी कई भारतीयों का वहां अस्पताल में इलाज चल रहा है। लापरवाहियों से हुए हादसे ने जान तो ले ली, जिंदगी भर का दर्द भी उनके परिवारों के लिए छोड़ दिया, जिनका अपना इसका यहां कोई शिकार हुआ। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में अग्निकांड का शिकार हुए पब का बकायदा दौरा किया। उनके साथ आला अधिकारी भी थे, खुद बारीकी से वो हादसे का मुआयना कर रहे हैं, और कई आदेश दिए गए हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर विभाग हर तरह के कागजात की जांच करेगा, और किसी भी तरह गड़बड़ हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शुरुआती जांच में जो फायर एग्जिट के संकेत कहीं देखने को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब एक म्यूजिशियन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, और आग लगते ही लोग पिछले हिस्से में जो मौजूद बाथरूम था, वो बाथरूम के दरवाजे को एग्जिट डोर यानी बाहर निकलने का रास्ता समझकर उस दिशा में भागने लगे, वहीं फंस गए।
1: ज्यादातर लोग इमारत के पीछे बाथरूम की तरफ भागे, क्योंकि वहां आग से बचने के लिए कोई साफ रास्ता या दरवाजा नहीं था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ऊपर से धुआं निकल रहा था, इसलिए स्टेज पर लगा मेन स्विच बंद करना पड़ा। इसके तुरंत बाद बिजली चली गई और फिर धमाके की आवाज सुनाई दी।
0: तो बैंकॉक में पब में आग लगने की जो तस्वीरें हैं ना, वो इस समय वायरल हैं, और ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। लोग धुएं के गुबार में किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे, इधर उधर भाग रहे कि कहीं तो बाहर जाने का रास्ता निकले, लेकिन कोई आपातकालीन रास्ता था ही नहीं जिसे तलाशा जाए। अच्छा, जैसा प्रधानमंत्री ने बताया कि आग क्योंकि फैल रही थी, वो और ना फैले इसीलिए मेन स्विच बंद कर दिया गया, तो वहां हर ओर अंधेरा हो गया। एक अंधेरा, दूसरा धुआं, कुछ दिख नहीं रहा था। क्या हुआ, कोई आपातकालीन रास्ता था ही नहीं जो खोला जा सके? लोग यही नहीं समझ पाए, एक दरवाजा दिखा, सभी उसी दिशा में भागे, वो बाथरूम था। अगर सारे इंतजाम ठीक थे तो इतने सारे लोग मारे कैसे गए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक नहीं मिल पा रहा। उन्हीं जवाबों को तलाशती हमारी ये रिपोर्ट।
2: सत्ताईस मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे, बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। कुछ ही पल में ये चिंगारियां लपटों में तब्दील हो गईं और हर जगह अफरा तफरी मच गई। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही ये कोशिशें भी नाकाम होती चली गईं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान बचाएं तो कैसे। ज्यादातर लोग वॉशरूम की तरफ भागे, एक तो पानी की वजह से और दूसरी कोशिश वहां से बाहर निकलने की थी, लेकिन बाहर निकलने का वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। जो एग्जिट पॉइंट थे भी वो बंद थे और लोग वहां से निकल ही नहीं पाए। पुलिस को भी ज्यादातर लाशें वॉशरूम में और बाहर निकलने वाले रास्तों के पास मिली। पब के बाहर से कई लोगों ने इस अग्निकांड को सब कुछ स्वाहा करते हुए अपनी आंखों से देखा। उनके मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ज्यादातर लोगों की जान आग में झुलसने की जगह दम घुटने से हुई है, क्योंकि धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोगों को सांस लेने में पल भर में ही दिक्कत होने लगी।
3: रात को 11:57 का समय था। दुनिया में पार्टी कैपिटल कहे जाने वाले बैंकॉक के पब में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, थिरक रहे थे, लेकिन अचानक ही देखते पूरा पब आग की लपटों के हवाले हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, फायर फाइटर्स पहुंचते, तब तक आग इतनी विकराल हो गई थी कि कई लोग जलकर मर गए। अब इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जांच की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिसमें 27 से ज्यादा लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल हो गए। इस पूरी घटना ने पूरे थाईलैंड को हैरत में डाल दिया है।
2: इस अग्निकांड की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकले। इस हादसे को बैंकॉक के सबसे भीषण अग्निकांडों में से एक माना जा रहा है। हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने मृतकों की पहचान और घायलों के इलाज को प्राथमिकता दी है, जबकि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। फोरेंसिक टीमों ने घटना स्थल पर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बाकी टीमें इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि पब के पास सारे जरूरी कागजात थे या नहीं। राहत दल ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तेजी से फैली आग और धुएं ने तब तक 27 लोगों की जान दे ली थी। जो बचे भी थे उनकी हालत काफी खराब थी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: आप उन तस्वीरों को देखिए और उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी तेजी से फैली। बैंकॉक के पब में क्या क्या कमियां थी, शुरुआती जांच में क्या क्या निकल कर आया है, मैं आपको यह समझाता हूं। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैंकॉक के प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद दौरा किया, क्या पाया। शुरुआती जांच के मुताबिक स्टेज के पास शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वो जो आप ऊपर एक तस्वीर देख रहे थे कि तेजी से आग फैलती जा रही थी, सीलिंग पर लगे जो सजावटी सामान थे उसकी वजह से आग बहुत ज्यादा फैल गई। वो सब इनफ्लेमेबल थे और इसीलिए आग फैल गई। अच्छा, विकराल कैसे होती गई है आग? कुल जो क्षमता थी वो 300 थी, लेकिन स्टेज बहुत बड़ा था। इस स्टेज के साथ साथ इस जगह पे, इस पब में दो अलग अलग बार, एक किचन, वैसे तो चार फायर एग्जिट थे, लेकिन क्या फायर एग्जिट के ऊपर साइन पोस्टिंग सही ढंग से की गई थी या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चार फायर एग्जिट थे वो चारों फायर एग्जिट बंद पड़े थे। अब प्रश्न उठता है ये फायर एग्जिट बंद क्यों किए गए थे, ये एक जांच का विषय अब पड़ गया है, पहली बात। फिर आपातकालीन रास्तों का जो रूट है वो अलग अलग लिखा नहीं गया था। होता यह है कि आपको बार बार अलग रंग से दिखता रहता चाहिए इमरजेंसी एग्जिट किस तरफ है। अगर आग लगे तो आप बस ऊपर देखिए एग्जिट कहां है और उस एग्जिट की दिशा में जाइए, लेकिन बाहर निकलने के रास्तों पे सामान रखा हुआ था, वो सारे दरवाजे बंद पड़े थे, स्टेज बनाया हुआ था, तो लोग जिस अच्छा फिर मेन लाइट बंद कर दी गई थी तो कि आग और ना फैले, तो लोग अंधेरे में धुएं में जहां भाग सकते थे वो भागे, वो बाथरूम की तरफ भागे, बाथरूम के अंदर अब वो फंस गए, निकल नहीं पाए। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, थाईलैंड में इससे पहले भी अग्निकांड हो चुके हैं। 1997 में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, ये पताया में हुआ था, इसमें 90 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 2009 में न्यू ईयर पार्टी में आग लगी, 66 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। तो हादसों से पुराना नाता रहा है, पार्टी के लिए लोग आते हैं वहां पर बड़े फैंसी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन फायर एग्जिट एक बहुत बेसिक सी चीज है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। 2022 में पब में आग लगी, 25 की मौत हुई। फिर 2024 की घटना, और ये पूरी दुनिया में खबर बहुत तेजी से फैली थी, जब मार्केट में आग लगी थी, 1000 जानवर उस आग में मारे गए थे, और उसकी जब तस्वीरें सामने आई थी तो वो बहुत खौफनाक थी। तो थाईलैंड में बार बार ये आग क्यों लग रही है, क्यों फायर सेफ्टी सिस्टम्स नहीं आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम में एक जबरदस्त हादसा हुआ। वियतनाम में जो एक फुकोक द्वीप है, वहां पर भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट वो पलट गई, 15 भारतीयों की उसमें मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा तो लिया गया, लेकिन बोट पर जो 36 लोग सवार थे उनमें से 32 भारतीय थे और 4 क्रू मेंबर थे। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों में 15 भारतीय जो पर्यटक हैं उनके शव आज शाम भारत ला जाएंगे। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दे दी है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि शवों को वियतनाम एयरलाइंस की एक विशेष उड़ान VN979 से होचिमिन सिटी से मुंबई लाया जाएगा। दूतावास के मुताबिक ये उड़ान स्थानीय समय अनुसार शाम 6 बजे होगी।
4: अभी तो 20 मेंबर्स आए।
5: गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे थे सर, आंध्र प्रदेश का और?
4: हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छे है उसका, मेरा फॉलोअप करेगा अनिता मैडम एंड नारा लोकेश टीम, पूरा आदमी मेरा का फॉलोअप करेगा मेरा टीम का।
6: हम लोग एक्चुअली कंपनी की तरफ से गए थे, एचसी पर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में लेके गए थे, टोटल 105 बंदे थे हम लोग। सो फुकोक एक था एक्चुअली, अभी इतना मका एक आइलैंड है, वहाँ गए थे। वहाँ से फिर हमारा एक दूसरा आइलैंड को प्रोग्राम था, वो दूसरा आइलैंड को हमने गए थे। सो पहला हम 3 बोट में गए थे, सो 3 बोट से पहला बोट जो है वो दूसरा आइलैंड पर निकाला था, जस्ट ऑन द वे, जस्ट 1 किलोमीटर जाने के बाद ही वो बोट थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गया और ब्रेक भी ज़्यादा था, तो वो सडनली पलटी हो गया। उसमें से 34 मेंबर्स थे, सो 15 मेंबर्स रेस्क्यू हो गए सही सलामत, बाकी जो है थोड़ा सा पानी में डूब गए थे और 2 सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में उधर ही एडमिट है आइलैंड में ही। वहाँ पे हमारा टीम भी है कंपनी की तरफ से, वो लोग देख रहे हैं और फैमिली मेम्बर भी जा रहे हैं यहाँ से उनको सेफली लेके आने के लिए। हाँ, इमिडिएटली वो लोग रिएक्ट हुए और पूरा नेवल टीम भी आए वहाँ का, और अम्बेसी भी, हमारा इंडियन अम्बेसी भी इमिडिएटली रेस्पॉन्स हुए और लेके हॉस्पिटल में एडमिट किए। फिर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, सो अपडेट अब तक नहीं आया।
0: इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

जंग के बीच इसराइल में बजा चुनावी बिगुल, 38 साल बाद तय वक्त पर डाले जाएंगे वोट। 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कर रही है कार्यकाल। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल में चुनाव का ऐलान हो गया है। इसराइल में 27 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सबकी नजर नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने पर होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के साथ साथ चुनाव तय समय पर कराने का फैसला भी लिया गया है। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। आपको बता दें, इसराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। अक्सर गठबंधन टूटने, बहुमत खोने और वक्त से पहले चुनाव कराने पड़े हैं, लेकिन इस बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में उतर रही है। ऐसा 53 साल बाद हो रहा है। चैनल 12 न्यूज के सर्वे की माने तो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और गादी आइजनकोट की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों दलों को 120 सदस्यीय संसद में 23-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इससे साफ है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: ओह सॉरी

आयतुल्ला खामनेई के जनाजे में दिखा नकाबपोश। नकाबपोश शख्स को लेकर दुनिया भर में हुई चर्चा। अब सस्पेंस से उठ चुका है पर्दा। रिपोर्ट्स की माने तो खामनेई के जनाजे में पहुंचा

0: हमले में खामनेई समेत उसके परिवार के कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हमले में जवाद खामनेई को भी कई गंभीर चोटें आईं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके चेहरे पर गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से जवाद ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। मोस्तवा को लेकर भी अब अटकलों का बाजार गर्म है। खामनेई की श्रद्धांजलि सभा में मोस्तवा के सामने आने के आसार। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तवा खामनेई एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल वो छिपकर अपना इलाज करा रहे हैं। खामनेई को इमाम रजा की दरगाह परिसर में बने मकबरे में दफनाया गया। वहीं खामनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद मोस्तवा का बयान सामने आया है, जिसमें बदला लेने और अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधी धमकी दी गई है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में ये जारी जंग कब खत्म होगी। आज तक ब्यूरो।
1: प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है। ये केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR हुई। सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी।
2: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उससे बहुत अहितकर हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं। लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

छिपकरावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के दिए निर्देश, ट्रस्ट को भी नोटिस, सोमवार को अगली सुनवाई। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन का आज आखिरी दिन, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट को भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के लिए जनसभा को किया संबोधित। यूपी को मिली एक और एक्सप्रेसवे की सौगात, सीएम योगी ने 4200 करोड़ से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। अब 3 घंटे की जगह 40 मिनट में तय होगी दूरी। महंगाई की मार की नई किश्त जारी, जून में 4.38% पहुंची खुदरा महंगाई दर, लगातार 6 महीने इजाफा से बड़ा टेंशन, खाने पीने की चीजें हुई महंगी। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में फिर हमला, एक दिन में अमेरिका ने दूसरी बार किया अटैक, तेहरान का दावा, होर्मुज

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आई एक खबर पर होगा। खबर यह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने घोषणा कर दी है कि आने वाले 9 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की जाएगी। अखाड़ा परिषद कोई मामूली धार्मिक आध्यात्मिक आउटपिक नहीं है। ये देश के शैव वैष्णव उदासीन अखाड़े के करीब 50 लाख साधु संत नागा सन्यासियों का एक प्रतिनिधि मंच है, जिसके प्रमुख ने मथुरा में कार सेवा की घोषणा कर दी है। उधर मथुरा में अलग संत समाज तैयारी कर रहा है। एक धक्का और दो वाले नारे एक बार फिर पोस्टर छपवा कर दिए जा रहे हैं, जिसमें कार सेवा की तैयारी का आह्वान किया गया है। अब अयोध्या की कार सेवा का इतिहास ऐसा है कि मथुरा में कार सेवा के ऐलान भर से सियासत के कान खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल कहते हैं कि अयोध्या में फैले बखेड़े से ध्यान भटकाने के लिए मथुरा का मोर्चा अब खोला जा रहा है। लेकिन मथुरा का मोर्चा आज अखाड़ा परिषद ने अकेला नहीं खोला है। आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव ने अयोध्या का मामला उठाना शुरू कर दिया था, तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन की आवाज बनने की चुनौती अखिलेश यादव को दे रहे हैं। अब अखाड़ा परिषद ने उस आंदोलन की चिंगारी जला दी है और विवादित परिसर में कार सेवा की घोषणा भी कर दी है। वैसे तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अयोध्या की तरह जमीन का ही मसला है। इसमें मंदिर ट्रस्ट की मिल्कियत वाली 13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ जमीन पर मस्जिद कमेटी के कब्जे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 18 मुकदमों पर सुनवाई चल रही है और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 7 विशेष अनुमति याचिकाओं को सुलह सहमति से निपटने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष लोक अदालत में पहुंचा ही नहीं। और ऐसे में अब साधु संत ये कहते हैं कि अदालत के फैसले का इंतजार अब लंबा हो रहा है, अब वो खुद ही कानून हाथ में लेंगे और कार सेवा कर लेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अखाड़ा परिषद का यह ऐलान चुनावी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। सवाल कई और भी है जिन पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देंगे।

0: अयोध्या का मामला अभी सिमटा भी नहीं कि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी।
1: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है उसको बना के रहेंगे।
2: कार सेवा की बात सामने,
1: बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहां जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविन्द्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद का ऐलान जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है, 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
3: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बनाई कि इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें किया क्या जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत की रोक है।
4: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे और उसके बाद उसका केवल मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर पैदल मार्च करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्मस्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ होगा। मथुरा में प्रायोजित कार्यक्रम को लेकर चित्रगुप्त पीठ के स्वामी सच्चिदानंद और अन्य संतों की एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है जिसमें कार सेवा को लेकर आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया। कहा जा रहा है कि साधु संतों के इस आह्वान पर बड़ी संख्या में साधु संत ब्रज की ओर पहुंच सकते हैं।
4: हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज के सानिध्य में, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सानिध्य में हजारों नहीं मतलब लाखों की संख्या में संत महापुरुष उस कार्य सेवा में भाग लेंगे और सभी के मन में एक ही बात रहेगी केवल केवल हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है वो मुक्त हो और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बने।
0: दरअसल अयोध्या के चढ़ावा विवाद में बीजेपी पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव को पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही मथुरा के आंदोलन में शामिल होने की चुनौती दी थी।
5: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है।
0: सीएम योगी ने यह नहीं बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए किस आंदोलन में अखिलेश को शामिल होना है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने उस आंदोलन का आह्वान कर दिया जिसमें कार सेवा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का लक्ष्य तय कर रखा है।
6: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अब तक कोई समर्थन नहीं दिया और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बना रखी है। वैसे बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
7: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया, तो इसका मतलब भाजपा हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता और तिजोरी का खेल खेलना चाहती है।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र की वक्त और वजन दोनों बढ़ रहा है। योगी की कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। तवज्जो की वजह है कि 2022 में इसी ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीट मिल पाई जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीट से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों में बढ़त के स्तर पर पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। जानकारों का दावा है कि मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला बार बार उठाकर बीजेपी इसी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है क्योंकि अगर सीट बंटवारे पर आपसी तूतू मैमे के शोर के बावजूद 2027 में भी अखिलेश और राहुल का गठबंधन बना रह जाता है तो ब्रज क्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
8: अयोध्या बस जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। दरअसल ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी की तरफ से दी जा रही थी लेकिन इस बार ये स्लोगन अखाड़ा परिषद ने उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये किसी के इशारे पर हो रहा है, क्या इसके पीछे राजनीति है, इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन उसके बावजूद कार सेवा की चुनौती भी दी जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की भूमिका इस पर रखेंगे क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी को चुनौती दी जा रही है कि आप अपनी भूमिका साफ करिएगा। महंत सीताराम दास प्रवक्ता है निर्मोली अखाड़े के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। जिन्होंने ये घोषणा दी है महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से, उनसे भी कुछ सवाल हम इस पे पूछेंगे। लेकिन तीन सवाल इस पैनल के सामने। सबसे पहले पहला सवाल, क्या मथुरा में अभी कार सेवा के ऐलान के पीछे यूपी की चुनावी राजनीति साफ नजर आ रही है क्या, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखी है लेकिन उसके बावजूद पहले योगी आदित्यनाथ अब अखाड़ा परिषद चुनौती दे रहा है, 9 अगस्त की डेट भी दी गई है, क्या राजनीति है इसके पीछे। दूसरा सवाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ऐलान को विश्व हिंदू परिषद का क्या समर्थन है क्योंकि वीएचपी इस पर पूरी तरीके से चुप है, क्यों चुप है, यह भी एक सवाल बनता है। तीसरा सवाल, क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद बढ़ने पर अखिलेश यादव को यादव वोट का नुकसान भी हो सकता है क्या, इसके पीछे की राजनीति भी समझेंगे। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, पिछले दो चुनाव में कैसे ब्रिज भूमि में बदलाव हुए हैं उस पर भी नजर डालेंगे और उस पर भी सवाल पूछेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, डॉक्टर रविंद्र पुरी अध्यक्ष है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है और कहा है कि 9 अगस्त को कार सेवा शुरू करेंगे। रविंद्र पुरी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपको पता है, अदालत की कार्रवाई तक रुकने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है आपको?
9: बहुत बहुत आशीर्वाद सुनना चाहूंगा। यत्र योगेश्वर शृणु यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूत्रि ध्रुवा नित्यमतिर ममा। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वहां असंभव भी संभव है। इसीलिए हमारा प्रयास है, बहुत समय बीत चुका है, बहुत इंतजार हो गया, इंतजार करते करते अब आंखें भी थक गई है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। आह्वान करेंगे कि जो हो सके यहाँ मंदिर निर्माण हो और हम जितने आत्मा यहाँ पर जितने भी सनातनी है सभी अब थक चुके हैं रहा देखते देखते, इसीलिए हमारा सबका प्रयास है, हम वहां पे जाएंगे और हमारी आवाज है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी हमारा जो कृष्ण जन्म
8: ठीक है महंत जी, लेकिन आपका जो आप कह रहे हैं कि इंतजार खत्म हो रहा है, आपको ज्यादा इंतजार अब नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका इंतजार यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि मामला तो पहले से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी, मामला पहले से चल रहा है, लोक अदालत की घोषणा भी की गई थी, अब 6 महीने में चुनाव है और आपका इंतजार खत्म हो रहा है।
9: आगे आना चाहिए, हम चाहते अखिलेश जी इसकी अगुवाई करें, जो हमारे अपने आप को जो हमारे यादव जी है यादव के सम्राट कहते हैं यादव नेता उनको आगे आना चाहिए और हम संत महात्मा उनके साथ रहेंगे वो आगे आ जाएं वो हमारी अगुवाई करें हम तैयार उनके साथ है। ये पार्टी की बात नहीं सनातन की बात है। हम संत महात्मा किसके है? भगवान राम के है, भगवान कृष्ण के है। हमने जो संन्यास लिया जो भगवा पहना है ये भगवान राम के नाम पे कृष्ण के नाम पे है। इसीलिए हमारा प्रयास है जो हमारा मंदिर का निर्माण है वो अवश्य होना चाहिए और हम
10: यही तो मेरा सवाल होता है ना
9: सबसे पहले
10: आपका जो आह्वान है वही आह्वान तो योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं एक हफ्ते पहले जब अखिलेश यादव राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठा रहे थे तब योगी आदित्यनाथ ने उनको यह आह्वान कर दिया कि कृष्ण जन्मभूमि पर आपकी भूमिका रखिए और उसके बाद आप कार सेवा की घोषणा करते हैं और अभी आप आह्वान कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को इसमें शामिल हो जाना चाहिए वो अगुवाई करना
9: बिल्कुल उनको आना चाहिए जब वो हमारे वो सनातन धर्म के ठेकेदार बनने जा रहे हमारे योद्धा बनने जा रहे उनको आगे आना चाहिए और हमारा प्रयास है अखिलेश जी को हम बुलाएंगे निमंत्रण देंगे कि आप हमारे साथ चलिए और हम चाहते हैं पुनः जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है उसका निर्माण हो।
10: नहीं लेकिन 9 जुलाई को आप क्या क्या करेंगे 9 अगस्त को आप क्या क्या करेंगे जो आपने आह्वान किया हुआ है 9 अगस्त को कार सेवा के दिन क्या होगा
9: पहुंचेंगे हमने पूरे विश्व में जितने सनातनी सबको आह्वान किया आओ हम जो है कार सेवा के लिए मथुरा पहुंचेंगे और हम वहां भजन करेंगे कीर्तन करेंगे पूरे सनातनियों को जगाएंगे कि देखिए अब समय बहुत हो गया अब हमारे राम मंदिर का मुद्दा तो आपने देखा होगा कि अभी इस समय जो है पूरे देश में हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है मंदिर वालों को बदनाम किया जा रहा है इसीलिए हमारा प्रयास है ना हो और हमारा
10: ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जो आप बोल रहे हैं वो कहीं मैंने सुना है महंत जी जो आप बोल रहे हैं वो कहीं मैंने सुना है ऐसा मुझे लग रहा है। जब दत्तात्रेय होसबले ने स्टेटमेंट दिया था तब हिंदुओं के अपमान की बात उन्होंने की थी अखिलेश को निमंत्रण की आप बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट मुझे याद आता है उसके साथ साथ सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने कार सेवा के लिए लोगों को इकट्ठा किया था अयोध्या के भीतर। अब जबकि सरकार उन लोगों की है कि जिन्होंने कार सेवा की थी अयोध्या में उन्हीं के खिलाफ आप वहां पर कार सेवा कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार पर आपका भरोसा भी टूट रहा है ऐसा लग रहा है मुझे।
9: नहीं सरकार की बात नहीं किसी पार्टी की बात नहीं बात सनातन की हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे अखिलेश जी कहते हैं कि हर कोई को कथा करनी चाहिए और हमारा प्रयास है अखिलेश जी स्वयं यादव है भगवान कृष्ण के वंशज है उनको आगे आना चाहिए हमारा प्रयास है हम उनको बुलाएंगे निमंत्रण देंगे उनको हम कार सेवा में शामिल करेंगे।
10: यहां पर तो वीएचपी भी कुछ नहीं बोल रही है आमतौर पर वीएचपी का नारा होता है कि मथुरा को लेकर या काशी को लेकर अब तो संभल को लेकर भी नारा है।
9: बिल्कुल हमारा ये कहना है कि देखिए कि हम मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहेंगे हमारे मंदिरों को छोड़ दो देखिए हमारा भाईचारा तभी बना रहेगा जब आप हमें सपोर्ट करोगे हमारे मंदिरों को आप छोड़ दोगे इसीलिए हम सबका प्रयास है भाईचारा बना रहे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए जो जो हमारे मंदिर उन्होंने जिनको मस्जिदें बनाया है उनको वो छोड़ दे ताकि हमेशा के लिए हमारा जो है भाईचारा बना रहेगा मुस्लिम एकता बनी रहेगी हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी।
10: महंत जी आप हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उन्हीं को पूछ लेते हैं ना कि वो आपके आह्वान पर क्या कहना चाहेंगे क्योंकि अखिलेश जी को आप बुला रहे हैं आशुतोष वर्मा क्या अखिलेश जी अगुवाई करेंगे कि क्योंकि देखिए महंत अखाड़ा परिषद खुले तौर पर आपको बुला रहा है इस बार वीएचपी को आमंत्रण नहीं है योगी जी को आमंत्रण नहीं है समाजवादी पार्टी को आमंत्रण है और वैसे भी समाजवाद मतलब सनातन आप पहले ही उसकी व्याख्या कर चुके हैं तो अभी आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं जो आमंत्रण दिया जा रहा है खुले तौर पर टीवी पर आमंत्रण है आपको।
11: बढ़िया साहिल जी धन्यवाद। साहिल जी देखिए कितना बढ़िया माहौल है कि देश में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का आह्वान किया उसके बाद सभी लोग मंदिर बनाने लगे और अब ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव के 3-4 महीने पहले या आप 6 महीने पहले मान लीजिए एकदम से योगी आदित्यनाथ जी को मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि की याद आई पिछले 4-5 सालों से नाम तक नहीं लिया बात तक नहीं करी और ये खास बात तब आती है जब अयोध्या के मामले में चंदा चोरी में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनसे संलग्न जितने लोग हैं वो सब इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं।
10: नहीं लेकिन आशुतोष जी सवाल मेरा ये है आपको आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल हो जाइए आप तो सनातन समाजवाद है सीधा खुले तौर पर महान जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर।
11: नहीं नहीं महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन सवाल ये है ही नहीं सही जी सवाल तो देश के सामने जो है उसको मोड़ा जा रहा है और बड़ी चतुराई से धीरे से चंदा चोरी को हटा के राम जन्मभूमि से हट के पहुंच के आप कृष्ण और कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच गए। अरे आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है
10: तो ठीक है आपने जवाब नहीं दिया अभी भी
11: आज
10: आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपको ट्रैप लगता है वो?
11: मेरी बात नहीं, ट्रैप नहीं लगता नहीं, है ट्रैप में
10: आप सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे हम। महंत जी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप बता दीजिएगा कि आमंत्रण स्वीकार है कि नहीं है।
11: महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये ट्रैप में फंसाने वाला काम है। अभी अयोध्या का तो मसला हल हो जाए, कृष्ण जन्मभूमि की तो बात हम करेंगे।
10: वर्मा जी आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। महंत जी ट्रैप में फंसा रहे हैं आप, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा मेरा ये भी सवाल रहेगा, या अभी मुक्तेश्वरानंद जी या बाकी जो शंकराचार्य है उनको भी आप बुलाएंगे कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि आप ट्रैप में फंसा रहे हैं उनको। महन जी आपने सुना, महन जी आपको आवाज आ रही है?
9: आवाज आ रही है?
10: नहीं, वो कह रहे हैं ट्रैप में फंसा रहे हैं। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा, शंकराचार्य और बाकी लोगों को भी बुलाएंगे कि नहीं आप?
9: नहीं देखिए, हम जितने भी सनातनी पूरे जितने भी हिंदुस्तान के हम हिंदू, हम सबको तो एक होना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा, आपने सुना है अयोध्या में श्री राम है, गोकुल में घनश्याम है, राम कहो एक ही नाम है। तो हम जितने भी सनातनी है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वहां पे हमारा बहुत दिव्य भव्य रूप से मंदिर बन जाए। और हम सभी सनातनी
10: समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा
9: कोई
10: लड़ाई
9: नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं है,
10: फंसा रहे कह रहे हैं।
9: हम सबको बुलाना चाहते हैं एक बार, हम सब हिंदू जाकर के भगवान कृष्ण को नमन करें, प्रणाम करें।
10: आप जाल बिछा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जाल बिछा रहे हैं, उसमें हम फंसेंगे।
9: मैं ये कहना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है वो खुद भगवान कृष्ण के वंशज है, उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए। हम उनको आह्वान करते हैं, आइए ना, वो सबसे आगे आप आ जाए। और आपकी सरकार, आप जब सरकार में थे उसके बाद आप इस समय आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप सभी के विरोध की, आप संतों के विरोध की बात करते हैं। आओ हम सब मिलके, जो हमारा अंदर जो मन मुटाव है, जो हम एक होकर के हम मथुरा चले।
10: तो कोई ट्रैप नहीं है, कुल मिलाकर कोई ट्रैप नहीं,
9: कोई ट्रैप नहीं, बिल्कुल कोई ट्रैप नहीं।
10: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
9: सांत महात्मा जितने हमें हमारे भक्तगण
10: है, उम्मीद सिर्फ इतनी रहेगी
9: सभी एक होकर के हम जाकर
10: कार सेवा के बाद अयोध्या के भीतर जो मामला हुआ था वो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, यही उम्मीद के साथ में 9 अगस्त को आप क्या करेंगे वो अभी तक आपने साफ तौर पर तय नहीं किया है। देखते हैं कि सरकार आपके बारे में इस बारे में क्या तय करती है। लेकिन आशुतोष वर्मा एक बार फिर आपके पास, और उसके बाद प्रदीप भंडारी। आशुतोष वर्मा देखिए, वो कह रहे हैं कि यदुवंश अखिलेश यादव आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आप कह रहे हैं कि ट्रैप है।
11: नहीं देखिए, हमने तो पहले भी बोल रखा है साहिल जी कि भगवान श्री राम के वहां जो लूट हुई है पहले उसका निस्तारण कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी इस देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लूट किया उद्घाटन किया था। और सोचिए वो स्थिति कितनी खतरनाक होती कि 7 जून 2026 को अखिलेश जी इस रेसुगाटन को ना करते तो ये अघोषित लूट चल रही होती। और ये सब मस्त है उसमें, ये सब मस्त है। आज जब ये चीज पकड़ी गई है, जब मुख्यमंत्री के ऊपर से ये चोला उड़ गया कि भाई इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो अचानक इनको कृष्ण जन्मभूमि की याद आ गई। आज बहुत से बड़े बड़े अनसुलझे सवाल हैं कि इस पूरे के पूरे पूरे कहानी में
10: सीताराम दास
11: सहल जी आ रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जानी
10: मीटिंग में शामिल थे। जी बोलिए
12: जी। अभी भी बात ये है कि आशुतोष जी जो बातें कर रहे हैं ना कि ट्रैप है फलाना ढमका है, ये आशुतोष जी स्वयं विषय को घुमा रहे हैं। जहां तक राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का विषय है तो वहां पर कार्रवाई जारी है। हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरी तरह से किसी भी चोर को छोड़ेंगे नहीं, उनको दंड मिलेगा। SIT अपना काम कर रही है, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, और यदि वो दोषी हैं तो वो भी बचेंगे नहीं, जेल जरूर जाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर करके आती है आशुतोष वर्मा जी, अखिलेश जी श्री कृष्ण के वंशज बनते हैं, पिछले चुनाव के पहले उन्हें स्वप्न में भगवान का दर्शन भी होता था। हम बड़े प्रसन्न होते थे कि अखिलेश जी को भी भगवान का दर्शन होता है स्वप्न में ही सही। तो भैया अब उन श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण के वंशज अखिलेश जी आगे आए और कार सेवा में सम्मिलित हों और कहें, घोषणा करें कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि मुसलमान उनके बड़े प्रिय हैं, मुसलमानों से कह दें कि भैया बीजेपी को ये मौका मत दो, नहीं तो दूसरा मौका ले जाएगी बीजेपी। मुसलमानों को मनाए ना कि दूसरा मौका बीजेपी नहीं ले सके और मुसलमानों को मना करके मस्जिद हटा करके और मंदिर बनवा।
10: आशुतोष वर्मा
12: अखिलेश जी ले ले क्या दिक्कत?
10: आप जवाब दीजिए इनका, आप जवाब दीजिए इनका। लेकिन एक मिनट जरा कांग्रेस पार्टी से भी पूछेंगे। आलोक शर्मा जी, समाजवादी पार्टी को अचानक सनातन का लाभ होने लगा, उन्हें लगने लगा कि सनातन ही समाजवाद है, ट्रैप में फंस गया अभी वो। देखिए वहां पर साधु संत इकट्ठा हो गए, बोले कि आप ही हमारी अगुवाई कर दीजिएगा, वैसे भी आप सनातनी बन गए। अभी एक नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया यहाँ पर।
13: साहिल जी, मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी जी को बहुत पहले से जानता हूं। जिस दिन वो बने थे उस दिन कनखल में उनसे मिलने गया था, आज से लगभग 5 साल पहले। दो अखाड़ा परिषद है यहाँ हरिद्वार में, हिंदुस्तान में। मैं उनसे पहला निवेदन तो ये करूंगा कि पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, अपने घर के विवाद को सुधार।
12: आलोक जी गलत बात है, पहली चीज ये आप निश्चय नहीं करोगे।
13: मैं बीच में नहीं बोला किसी के
10: बीच में नहीं,
13: मैं किसी के बीच में नहीं बोला।
10: सीताराम दास जी प्लीज, महंत जी उनको बोलने दीजिए ना, आपके आपके बीच में नहीं बोले थे वो।
12: आप साधु संतों का निर्णय नहीं कर सकते।
13: दो अखाड़ा परिषद है
12: और दोनों
10: सीताराम दास जी
13: के नाम,
10: महंत जी वो अलग मुद्दा हो गया, उस पर अलग से बहस करेंगे। आप पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी, आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी
12: मौका मिलेगा। उनकी बात सुन लीजिए। आलोक शर्मा
13: ठीक
10: है, चलिए आलोक शर्मा जी, आप समाजवादी पार्टी को छेड़ रहे हैं, वो आपको छेड़ रहे हैं, ठीक है।
13: दोनों के अध्यक्षों के नाम रविंद्र पुरी, ये भी खास बात है। पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, सनातन को आप संभाल रहे हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता कि कोई सी भी अखाड़ा परिषद
12: बनाओगे आप कांग्रेस में,
13: एक हरिद्वार में प्रेस क्लब में आकर या अपने अखाड़े में राम मंदिर की डकैती के ऊपर एक शब्द बोल देते ये लोग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। दुर्भाग्य ये है, राम मंदिर में डकैती हो रही थी और तमाम साधु संत मोदी नामा और धामी नामा पढ़ रहे थे ऋषिकेश के अंदर। पूछ लीजिएगा क्या धामी जी के 5 साल के प्रोग्राम में सारे बैठे थे या नहीं बैठे थे। अब वापस आता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं साधुओं का, मैं वो अपेक्षा करता हूं कि जब गाय को 14 साल में काटने की बात आई तो यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, बड़ी खुशी होती हमें। जब कुंभ में सैकड़ों सनातनी गंगा जी में गंगा माँ में बह गए, यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें सबको बहुत खुशी होती। जब गलत मुहूर्त के ऊपर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें बहुत खुशी होती। जिस समय पर शंकराचार्य की पालकी को फेंका गया और शंकराचार्य की पालकी को फेंकने के अलावा बखटों की पिटाई की गई और जिस समय पर वहां पर पॉक्सो लगाया गया शंकराचार्य जी के ऊपर, अखाड़ा परिषद अगर बोलती तो हमें बहुत खुशी होती। सब खामोश थे, शायद किसी दूसरी धुन में थे। डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि मैं भी स्वयं अखाड़े से और एक आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा हमने भगवा पहना है, मैं भी भगवे का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भाषा बीजेपी की बोली है, भगवा की नहीं बोली है। उन्होंने कहा हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे राम मंदिर में डकैती हो रही है रविंद्र पुरी साहब, हिंदुओं को बदनाम नहीं किया जा रहा है। भाषा पूरी तरह से बीजेपी
10: की। भंडारी
13: 4 सेंटेंस बोले, 4 के 4
10: फ्रंट आपका है।
13: भाजपा के भाषा जो तमाम नेता बोल रहे हैं वो भाषा बोल रहे हैं।
10: सामने तो अखाड़ा परिषद है लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये फ्रंट तो बीजेपी का है।
13: साहिल जी जब साधु संत हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी पर बैठकर दुख होता है, जब साधु संत यादव की बात करते हैं, क्या साधु संतों को यादव और नॉन यादव करना चाहिए? क्या रविंद्र पुरी जी स्वयं यादव है या ब्राह्मण है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हमारे लिए वो संत थे। क्या राम मंदिर या हम क्या कृष्ण मंदिर के लिए केवल यदुवंशी लोग आवाज उठाएंगे? क्या ब्राह्मण आवाज नहीं उठाएंगे क्या?
10: ठीक है, प्रदीप भंडारी पहले जवाब देंगे और रविंद्र पुरी जी हमारे साथ में अभी भी है, सीताराम दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदीप भंडारी जरा जवाब दीजिएगा। विपक्ष को यहां पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भले अखाड़ा परिषद कार सेवा की घोषणा कर रहा है लेकिन पहली बार वीएचपी की जगह पर अखाड़ा परिषद नजर आ रहा है, वो कोई एक संयोग नहीं है, उसके पीछे कोई राजनीति है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 1.5 हफ्ते पहले इसी की घोषणा करते हैं और 1.5 हफ्ते के बाद कार सेवा की घोषणा होती है।
14: साहिल जी, क्योंकि कई विपक्ष के साथियों ने कई आरोप लगाए हैं, तो मैं अपने वक्तव्य को दो पार्ट्स में रखूंगा। पहले तो इनके आरोपों का जवाब दूंगा, जो आपने सवाल दिया है उसका भी मैं जवाब दूंगा, पर पहले मैं भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जो टॉपिक है वो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पहली बात देखिये, यहां पर आलोक जी बात कर रहे थे सनातन की, इनका पूरा खानदान जो कांग्रेस पार्टी का बाबर की मजारों पर गया हुआ है। राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी से छुप छुप के वापस आ चुके, दुनिया को नहीं पता से है, और अभी तक वो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। वो छुट्टी में इतने व्यस्त थे कि एक वीडियो तक नहीं कर पाए कि राम मंदिर के अंदर अगर जो चोरी हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, पर राहुल गांधी को सोचिए कि उनको अपनी छुट्टी पड़ी थी और बाबर की मजारे पड़ी थी, तो इससे इनकी नीति और नियत आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, ये बात कर रहे थे गौवंशज की, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। स्वामी कर्पात्री महाराज को आप याद करें कि उन्होंने किस तरीके से इंदिरा गांधी के सामने एक प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर किया था, और सौसद और गौरक्षकों को कांग्रेस पार्टी ने गोलियों से भून दिया था। ये कांग्रेस पार्टी जो साधु संतों पे गाड़ी चलाती गोलियां चलाती थी और हिंदू आतंकवाद और भगवा टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो हमें बाबर के वंशजों से सनातन का ज्ञान नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ये पूरी दुनिया देखती और ये अवेलेबल है। ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की सच्चाई सिर्फ भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है। आशुतोष जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को सिर्फ अभी कर रहे हैं। ये देखिए आज तक न्यूज की रिपोर्ट 11 मार्च 2022 की, जब वो अमरोहा के अंदर रैली कर रहे थे, उन्होंने कहा था अयोध्या काशी, अयोध्या हो चुका है, काशी और मथुरा जो है वो आगे चल के होना चाहिए, वहां पे भव्य मंदिर बनना
10: साल हो गया
14: चाहिए।
10: अभी
14: नंबर टू, तो हम आज नहीं जा रहे,
10: साल हो गया प्रदीप भंडारी,
14: ये चुनावी
10: साल हो गया,
14: तो मैं चुनावी
10: 2022
14: अरे तो
10: 2022 चुनाव 2025-26 चुनाव, आप खुद ही इस बात को आप ही न्योता दे रहे हैं।
14: नहीं, फिर
10: टाइमिंग को लेकर आप ही इस बात को रख रहे हैं 2022-2026।
14: साहिल जी
10: प्रदीप भंडारी, आप तो आंकड़ों को जानते हैं, टाइमिंग को समझते हैं,
14: ये 2024
10: आप ही 2022 का बयान बता रहे हैं और सीधा 2026 आ गया।
14: 2024 साहिल जी, मैंने साहिल जी
10: फिर से चुनाव आ गया,
14: बोलेंगे तभी मैंने
10: चुनाव आ गया,
14: बता रहा हूँ फिर 24 बता रहा हूँ, सुनिए 24 बता रहा हूँ। तो साहिल जी एक काम करो ना आप, वन नेशन वन इलेक्शन का आप भी हमारे साथ वोटरी बन जाओ, जिससे हर चुनाव हर बयान को आप चुनावी रूप से देखना बंद करो, क्योंकि हम जो है आज भी
10: ठीक है चले, मैं ये नहीं कह रहा प्रदीप भंडारी, मैं जरा
14: चुनावी हिंदू से
10: अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ,
14: चुनावी हिंदुओं से
10: प्रदीप भंडारी मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ, आप ही को सवाल पूछ रहा हूँ,
14: मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये
10: 10 सेकंड
14: ये
10: प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी मैं रिफ्रेश करता हूँ ना सवाल,
14: कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं, तो क्या ये इनका स्टैंड है?
10: हाँ बोलिए
14: बोलिए बोलिए बोलिए,
10: मैं रिफ्रेश करता हूँ ना सवाल, मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूँ। देखिए अभी आप सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, मैं समझ सकता था कि कार सेवा आपने की जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता चल रही थी, बार बार आपके तरफ से यह आवाहन किया जा रहा था कि रथ यात्रा निकालेंगे, कार सेवा करेंगे, बाबरी मस्जिद को धक्का देंगे, गिरा देंगे, राम मंदिर बना देंगे। अब तो आपकी सरकार है, मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है, अब अखाड़ा परिषद अगर कार सेवा करता है 9 अगस्त को तो सरकार का रवैया क्या होगा? यह फेल्यूर किसका है? और आपकी सरकार में कार सेवा करनी पड़ रही है, इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल देखे तो उसमें क्या गलत होगा? फिर सरकार किसी और की होती है तो बात अलग होगी ना प्रदीप भंडारी।
14: आज साहिल जी, आज पूरे देश के अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि जो कल तक राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर की जगह बाबर की मजार बनाने की बात कर रहे थे, राम गोपाल यादव कह रहे थे राम मंदिर बेकार है, वो आज अचानक से उनमें सनातन कैसे जगा है? क्योंकि चुनाव आ गया है, तो असली चुनावी हिंदू ये है। तो अब देश जो है जानना चाहता है कि भाई अगर सच में इनके अंदर कृष्ण जन्मभूमि की भक्ति है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो 2025 में कहा था हम यदुवंशी, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इनने जाके फोटो चलाई कि भाई इनके ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में इन्होंने अखिलेश यादव को दिखा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना समाजवादी पार्टी के लिए ट्रैप है या समाजवादी पार्टी
10: के लिए यदुवंशी है? आशुतोष वर्मा जी, आपको याद होगा आप मेरे डिबेट में थे और मैंने आपको कहा था कि आप अपना सिलेबस बदल रहे हैं, जैसे ही आप अपना सिलेबस बदलेंगे, जिस सिलेबस में के भीतर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ बीजेपी माहिर है, फंस जाएंगे आप। देखिए आप सनातन ढूंढने लगे, अभी आपको कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल पूछने लगे, यदुवंश में आपको श्री कृष्ण आपके सपने में आने लगे, अभी आपको कह रहे हैं कि समर्थन कर दीजिएगा, फंस गए आप।
11: देखिए साहिल जी, मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि दही देखिए ऐसा है ना कि सतयुग के बाद त्रेता युग, अरे भाई सुनिया करो भाई, प्रदीप भंडारी सुनते नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मैं आपसे
15: थोड़ी सवाल पूछोगे,
11: आप बताइए ना, बिल्कुल तो डायरेक्ट चीज है, मैं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, शाही ईदगाह के साथ है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ है, आपकी राय क्या है? आप यदुवंशी है ना, आपकी राय क्या है? क्योंकि आपने 2004 में तो कब्रिस्तान बना दिया था, 2004 में आपकी सरकार जब थी तो आपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर तो कब्रिस्तान बनाने की बात करी थी। आप बोलना है बोलिए, जितनी गाली बकनी जो बोलना है बोलिए, पर बता दीजिए भगवान श्री कृष्ण के साथ है, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए मथुरा में कि नहीं बनना चाहिए, आप पूरी डिबेट में नहीं बोल पाए।
15: साहिली एक मिनट
11: बोला है, मेरी पीड़ा
15: अरे भाई एक मिनट शांत बैठो भाई,
10: ठीक है जी, आपका आपका पॉइंटेड सवाल है प्रदीप भंडारी, जवाब दे रही
11: आशुतोष साहिल जी, अपमान होता है
15: साहिल जी, प्रदीप भंडारी भूल जाते हैं, अब ये न्यूज एंकर नहीं है, अभी प्रवक्ता है, अभी सवाल नहीं पूछेंगे।
11: अरे साहिल जी जो भी हूँ छोड़ो मुझे,
15: अरे भाई तो शांत बैठो, सुनो तो भाई,
11: भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
15: अरे आप प्रवक्ता हो गए हो, भूल जाते हो कि
11: मैं मंदिर बनने वाला नहीं था,
10: प्रदीप भंडारी क्या है उस पर डिबेट सही है,
15: तो सुनो
10: भाई सवाल तो मेरा भी वही है, भले प्रदीप भंडारी पूछे या मैं पूछूं, सवाल तो वही आ रहा है भाई, यदुवंशी है सबसे आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि भाई जन्मभूमि पर आपको देखिए, आपने आपने सिलेबस चेंज कर दिया है आशुतोष वर्मा जी, मैंने उस दिन भी आपको पूछा था ये सवाल, आपको याद होगा, सिलेबस चेंज हो गया, आपको
15: आप बोलने दे रहे
10: हैं, पढ़ाई करनी पड़ रही है
15: ना, आप बोलने दे रहे हो,
10: बोलिए बोलिए ना आशुतोष,
15: रिवाइंड करके देख लो, आप दोनों ही बोलते जा रहे हो, मैं उनको सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि पहले त्रेता युग में भगवान राम आए थे, उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण आए थे, तो पहले त्रेता युग की कहानी क्लियर कर लें, हम भी पूछ ले, आज सुप्रीम ने कोगोट ने एसआईटी पे सवाल उठाया है, कहा जो एसआईटी में लोग हैं उनका नाम बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगा, ये सवाल आज का सबसे बड़ा मौजूद सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट दो, और ये भी कहा कि जो सीसीटीवी है और फुटेज है, बोलने नहीं दूंगा भाजपा के लोगों को,
10: प्रदीप भंडारी प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी है ना, उनको बोलने दीजिए ना, दोबारा आता हूं आपके पास, प्रदीप भंडारी प्लीज,
15: ठीक है, अरे कागज वगैरह दिखाना बंद करो,
13: बोलिए आशुतोष जी, सबके बीच में बोलेंगे तो हम डिबेट में नहीं बोलेंगे,
15: फिर हम नहीं बोलने नहीं देंगे, नहीं हम बिल्कुल नहीं बोलने देंगे,
10: प्रदीप भंडारी प्लीज प्लीज प्रदीप भंडारी, बीच में दोनों आप गठबंधन करा रहे हैं उनका, प्रदीप भंडारी उनका गठबंधन करा रहे हैं, मत करिए,
15: नहीं हमारा गठबंधन है, आशुतोष बंधन है, साफ बात यह है, साफ बात यह है कि आज की तारीख में, अरे इनको चुप कराइए भाई, इनका थोड़ा म्यूट कीजिए, गलत फहमी में है कि सत्ता पक्ष में
10: आशुतोष वर्मा,
15: आज तक में भी कुछ कर लेंगे,
10: आशुतोष वर्मा,
15: आज सबसे बड़ी सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये किस टाइप का आदमी है भाई, भाई देखिए साहिल जी, अगर आपको इस तरीके से चलाना है डिबेट तो इनको नॉन
10: स्टॉप प्लीज बंद करिए ना, ऐसा फिर क्या है ना, वो आखिरी मिनट में सब लोग बीच में बोलने लगेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर डेरेल हो जाएगा, चलिए आशुतोष वर्मा आपकी बात
13: कर लेंगे,
15: आज पूरे देश के सामने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है और बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, इनकी हिम्मत है उस पर जवाब दे पाए? आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि एफआईआर चंपत राय पे क्यों नहीं हुई, एफआईआर अनिल मिश्रा पे क्यों नहीं हुई, और ये झूठा जो नौटंकी हो रही है ना कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा ले लिया, जरा डीड पढ़िए राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति वहां से हटाया नहीं जा सकता है, ये सब के सब चोर हैं, इन्होंने राम मंदिर में बैठ के चोरी करी है और जब चोरी पकड़ी गई तो इधर उधर बगले देख रहे हैं। दूसरी बात निर्मोही अखाड़ा जिसे मैं पूछ रहा हूँ महंत जी से, महंत जी ने यह बताइए कि महंत निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ रुपए का ट्रस्ट पे घोटाले का आरोप लगाया था, उसका जवाब आज तक नहीं पूछा है, इसलिए
10: सीतारामदास जी आपको जवाब देना होगा। कुल मिलाकर आशुतोष वर्मा जो सवाल उठा रहे हैं, एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट महंत सीतारामदास जी, सवाल ये उठ रहा है कि आपके अखाड़े ने खुद ही आरोप लगाया था 1400 करोड़ के घोटाले का, अब जब इस घोटाले की बातचीत समाजवादी पार्टी करती है तब आप यहाँ पर एक नया आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं।
12: साहिल जी सुनिए, अब शांति से सभी लोग सुन ले, 1400 करोड़ का जो दावा किया गया था वो मैंने ही किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था, मैं ही अखाड़े के प्रवक्ता हूँ, मैंने ही ये किया था, और अभी अभी जब चोरी हुई है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा विरोध हमने ही हमने ही चंदा चोरों का विरोध सबसे ज्यादा किया। आप अपने चैनल में देख लीजिए पूर्व की डिबेट है और सारे चैनलों में बैठ करके सब जगह मैंने ही चंदा चोरों का विरोध किया। और
10: 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला आपको महंत जी? 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला
12: भैया? यदि मिलना होता तो इन लोगों ने निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में रखा होता, ठीक है कि नहीं है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोर चोर मोसेरे भाई, ये भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये सब चोर चोर मोसेरे भाई हैं। एक कार सेवकों पर गोली चलाते हैं और एक कार
15: सेवकों
12: गोली चलाने वालों को
16: तुम लोग सपा वाले खुश हो गए तो बता दो भगवान श्री मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
15: फंस गए, फंस गए।
10: मैंने आप पहले सीताराम दास जी ने जो कहा है उसका जवाब दो प्रदीप भंडारी पहले। महंत जी क्या बोल रहे हैं जरा सुना कि नहीं आपने? महंत जी क्या बोल रहे हैं सुना कि नहीं प्रदीप भंडारी आपने? ये डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। सब मौसेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो अकेले अलग है। 1400 करोड़ का आरोप लगा चुके हैं।
14: मैं बताता हूँ,
12: गोली चलाने वालों को ही ये पद्मश्री देते हैं
14: साहिल भाई,
12: इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई हुए ना, ये गोली चलाता है, गोली को सम्मानित करता है।
15: ये देखिए, देखिए सबकी पोल खोली जा रही है, आप बताइए।
10: एक एक मिनट, रविंद्र पुरी जी अभी भी हमारे साथ में। एक एक मिनट, रविंद्र पुरी जी अभी भी हमारे साथ में, जरा सबको शांत करिएगा। पहली बार आलोक शर्मा जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये
14: इनसे पूछ लो,
10: पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो हंस रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रविंद्र पुरी जी हमारे साथ में है। रविंद्र पुरी जी, अभी आपने सुना यहाँ पर निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता कह रहे हैं 1400 करोड़ के घोटाले का, आप इससे इत्तफाक रखते हैं? आपको लगता है कि आरोप सही है?
9: मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे बस एक ही बात कहनी है, सभी सनातनी करे पुकार अखिलेश जी मथुरा में एक बार। हम यही कहना चाहे अखिलेश जी मथुरा में एक बार आ जाए, हम सबका जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा।
10: साहिल जी चलिए, वो एक ही रट लगा के बैठे हुए हैं। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपकी बात रखिए, फिर प्रदीप भंडारी के पास चलो।
13: देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा पैनल 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट भूल गया है, और जो राम मंदिर का केस था उसमें केंद्र सरकार ने कोई एफिडेविट दिया कि नहीं दिया? क्या केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम कोई भी जन्मभूमि का मामला नहीं उठाएंगे? क्या ये सच नहीं है? अगर 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट अगर आप मानते हैं,
12: बाबा जी देखिए
13: मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने 1400 करोड़ रुपए ढूंढिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कहूंगा कि मेरे बीच में मत बोलिए। मैं मनसा देवी मंदिर से लेकर के
10: आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, 30 सेकंड है आपके पास, मेरा समय खत्म हो गया। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म, उसके बाद प्रदीप भंडारी चलिए। आलोक शर्मा
13: साहिल जी देखिए, दो चीजें टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ।
12: नानी के पास में, दादी के पास में।
13: साहिल जी फिर बीच में बोल रहे हैं यार, ये क्या तरीका है भाई? साहिल जी
10: जरा एक मिनट सबको शांत करिए, आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, समय खत्म हो रहा है जी।
13: हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 का कहता है कि अब हम किसी और मुद्दे को नहीं उठा सकते। क्या वो एक्ट भाजपा की केंद्र सरकार नहीं मानती है? क्या अखाड़े वाले लोग हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं
10: करते? सारे एक्ट अयोध्या के भीतर भी थे। आपने भोजशाला का भी सुन लिया वर्डिक्ट क्या आया था और किस तरीके से वर्डिक्ट आया, उसका डाइवर्जेंस आपने भी देख लिया है। एएसआई की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहा है उस एक्ट के भीतर, वो भी आपको पता है। टेक्निकली भी इस पे बातचीत अलग से हो जाएगी। प्रदीप भंडारी आखिर में मुझे जल्दी से आपसे एक समझना है, क्या कार सेवा को सरकार का समर्थन रहेगा? क्या कार सेवा को, बाकी सबको शांत करेगा प्रदीप भंडारी, कार सेवा को के ऊपर सरकार की का रवैया क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है फिर भी कार सेवा का आवाहन।
14: मैं बीस सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। कोई भी चीज कानून के दायरे के अंदर होगी तो उसको कानून के दायरे के अंदर अलाउ किया जाएगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपके पैनल पे स्पष्ट हो गया है कि बाबर के वंशों पर राम भक्तों पे गोली,
10: सारी चीजें कानून के दायरे में होगी उसी के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर भाजपा बीजेपी के प्रवक्ता ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी है। क्या ब्रजभूमि में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पाम जमाने की कोशिश कर रही है, उसे चुनौती देने के लिए भी क्या ये मामला एक बार फिर उठाया जा रहा है, इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
1: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से.
2: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूं. वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
3: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट. इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली.
2: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज रहा है?
3: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है.
2: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है.
3: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए.
2: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
3: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं.
2: जॉन मैकेनरो.
3: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे. थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज्यादा जोशीले हो जाते. आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग.
4: जय हिंद फ्रेंड्स. ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया. लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया. कैसी थी लड़ाई? कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए. मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम सिर्फ ललन टॉप पर.
5: वी मस्ट राइज वी मस्ट फाइट. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का है. लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी जो एक पावर का साइन था वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा. आजादी स्क्वेयर पर नजर आएगा. आप देखते रहिए आज तक.
6: योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है. दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है.
7: ऋषि मुनि है उनकी बात को मानो. तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को ईसाइयों को भी. लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था,
6: बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है. हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है उसे हमें अपनाना चाहिए.
7: हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है. हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है. ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था. डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ.
6: बाबा रामदेव के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पहचान संविधान है और सभी धर्मों और मान्यताओं की सुरक्षा उसी के दायरे में सुनिश्चित है. वहीं शिया धर्म गुरु ने कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और देश संविधान के अनुसार चलता है.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: अयोध्या का मामला अभी सिमटा भी नहीं कि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी। ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है। उस अखाड़ा परिषद का ऐलान जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है, 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी। हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बनाई कि इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें किया क्या जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत की रोक है। अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर पैदल मार्च करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्मस्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ होगा। मथुरा में प्रायोजित कार्यक्रम को लेकर चित्रगुप्त पीठ के स्वामी सच्चिदानंद और अन्य संतों की एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है, जिसमें कार सेवा को लेकर आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया। कहा जा रहा है कि साधु संतों के इस आह्वान पर बड़ी संख्या में साधु संत ब्रज की ओर पहुंच सकते हैं। दरअसल अयोध्या के चढ़ावा विवाद में बीजेपी पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव को पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही मथुरा के आंदोलन में शामिल होने की चुनौती दी थी।
1: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है।
0: सीएम योगी ने यह नहीं बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए किस आंदोलन में अखिलेश को शामिल होना है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने उस आंदोलन का आह्वान कर दिया जिसमें कार सेवा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का लक्ष्य तय कर रखा है। हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अब तक कोई समर्थन नहीं दिया और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बना रखी है। वैसे बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र की वक्त और वजन दोनों बढ़ रहा है। योगी की कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। तवज्जो की वजह है कि 2022 में इसी ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीट मिल पाई, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीट से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों में बढ़त के स्तर पर पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। जानकारों का दावा है कि मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला बार बार उठाकर बीजेपी इसी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अगर सीट बंटवारे पर आपसी तूतू मैमे के शोर के बावजूद 2027 में भी अखिलेश और राहुल का गठबंधन बना रह जाता है तो ब्रज क्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: धार्मिक मान्यताओं से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई पहल शुरू की है। न्यायपालिका ने विशेष लोक अदालत के जरिए मामलों को सुलझाने की कोशिश शुरू की है। कोर्ट

विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। कल यानी 14 जुलाई को वाराणसी के ज्ञान व्यापी केस की सुलह वार्ता को लेकर भी सुनवाई होगी। ये पहल सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह 2026 अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुराने और संवेदनशील मामलों में संवाद के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद और संभल के हरि मंदिर मस्जिद विवाद को भी विशेष लोक अदालत के लिए भेजा गया है। हालांकि मथुरा मामले में सुलह की पहली कोशिश नाकाम रही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वार्ता में शामिल नहीं हुआ। अब सभी की नजरें अगस्त में होने वाली विशेष लोक अदालत पर हैं, जहां इन संवेदनशील मामलों के शांतिपूर्ण समाधान की एक और कोशिश की जाएगी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज तक।

0: सीसीटीवी सुरक्षित रखने के दिए निर्देश, ट्रस्ट को भी नोटिस, सोमवार को अगली सुनवाई। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन का आज आखिरी दिन, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा, कड़वाहट को भूलकर नरोत्तम मिश्र ने आशुतोष तिवारी के लिए जनसभा को संबोधित किया। यूपी को मिली एक और एक्सप्रेसवे की सौगात, सीएम योगी ने 4200 करोड़ से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, अब 3 घंटे की जगह 40 मिनट में तय होगी दूरी। महंगाई की मार की नई किश्त जारी, जून में 4.38% पहुंची खुदरा महंगाई दर, लगातार 6ठे महीने बढ़ोतरी से बढ़ा टेंशन, खाने पीने की चीजें हुई महंगी। और लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, पहले क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से रौंदा, यास्तिका भाटिया ने जमाया शानदार शतक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: दो हजार चौबीस में आपको 37 सीटें जितवाई हमने, जितवाए ना आप, ये जो बार बार बोलते हो, वरना 2022 में जीत लिए होते ना आप, सरकार बना ली होती इतनी सीट के ऊपर। तो
3: वो तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपने हमें सीटें भी नहीं दी, अखिलेश वकीलेश कह के आपके नेता ने जिक्र भी किया,
4: मध्य प्रदेश

0: इनका क्या था, मध्य प्रदेश में क्या था?
1: ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है, ये निंदनीय है।
2: देखो ऐसा ही रंग बिरंगे रणछोड़ बहादुरों का जो रंगमंच है उसमें जो झालर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, और चुनाव आते आते जो है उसका क्या हश्र होगा इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं।
3: पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है, असली पीडीए भाजपा है।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गठबंधन के शोले, सही सुना आपने, कहां तो इंडिया अलायंस की एकजुटता की बात हो रही थी, लेकिन जिस यूपी में एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी दिखने लगी है। वैसे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभी सिर्फ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमलावर हैं, लेकिन पूरा कांग्रेस खेमा गठबंधन पर खुलकर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सा पाने के लिए कांग्रेस दबाव की रणनीति अपना रही है, या वाकई दोनों दलों में खाई बन रही है? क्या अखिलेश यादव की रामधुन कांग्रेस के इमरान मसूद जैसे नेताओं को पसंद नहीं आ रही? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर अलग लड़े तो क्या ये एडवांटेज बीजेपी होगा? क्या साथ साथ का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन चुनाव के मौकों पर कमजोरी दिखा जाता है? यही है आज का हल्ला बोल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट।
0: 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे।
5: अब ये 2027 के यूपी चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की दबाव की रणनीति है या कुछ और? लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी पर यह आक्रमण उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोले तो भरता गया है। इमरान मसूद खुलेआम अखिलेश यादव की राम मंदिर चढ़ावा चोरी की उस पॉलिटिक्स पर खासतौर पर हमलावर है जिसे अखिलेश अपना तुरूप का इक्का मान बैठे।
0: मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बंद कर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। मैं इतना क्या, मुझे बताइए, मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया, कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे पीछे आप लगा दे, तो हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे।
5: अखिलेश यादव पर इमरान मसूद की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसा असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते हैं। इमरान मसूद पर जवाबी पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया।
1: देखिए, समाजवादी पार्टी में भी 37 सांसद हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके के कोई बयानबाजी गठबंधन को लेके नहीं करी, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी चलाने के समय कुछ नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है।
6: इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये हमेशा आते हैं, सोचते इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए।
5: अखिलेश यादव के खिलाफ इमरान मसूद के बयानों की सियासत को कांग्रेस कैंप से आ रहे कुछ और संकेतों से समझने की जरूरत है। जून में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनने के फौरन बाद राजेंद्र पाल गौतम ने भी सीट बंटवारे में बराबरी का दावा किया था। यूपी में पार्टी प्रभारी बनने से पहले राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के एक और दलित नेता सांसद तनुज पुनिया मई में अचानक मायावती का हालचाल जानने उनके घर पहुंच गए थे। ये और बात है कि मायावती उनसे मिली नहीं थी। इस बीच कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ज्यादा उत्साह दिखाते नजर नहीं आते।
7: देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, और हम पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा और कितने पे होगा।
5: 2017 के यूपी चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी का दांव चलने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों फ्लॉप रहे थे। 2022 में यूपी में दोनों दलों की राह अलग थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका दिया था, लेकिन इसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए तब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे पर मन महसूस कर रहना पड़ा। आखिर में कांग्रेस ने उपचुनाव की एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। जून में इंडिया गठबंधन की बैठक में एकता के बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन अब बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: पार्टियों के गठबंधनों में जो बड़ा भाई, छोटा भाई, भाई भाई ऐसी चीजें बात होती हैं, वो अचानक भीख और याचना तक कहां से पहुंच गई है? आगे क्या भविष्य दिख रहा है इस गठबंधन का? हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से, और मलूक नागर महासचिव आरएलडी की ओर से। चारों का बहुत स्वागत है। भदौरिया जी, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि अब खुलकर जिस तरह की बातें इमरान मसूद कर रहे हैं, उस सब के बीच क्या हम ये समझें कि वाकई अखिलेश यादव कांग्रेस को गठबंधन का साथी नहीं बल्कि एक याचक के तौर पर समझ रहे हैं?
8: देखिए, यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे। मेरा तो सीधा सा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी, जैसे अभी बीजेपी के एक नेता कह रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे, बिल्कुल जो पीड़ित है उसके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। चढ़ावा चोरी से लेके जनता के भविष्य चोरी तक के बचाने के लिए कौन आ रहा आगे? समाजवादी पार्टी। चाहे युवा के भविष्य की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की हो, महंगाई की हो, हमारे ये मुद्दे हैं, इनको लेके हमेशा लगातार समाजवादी पार्टी मैदान में है और सरकार को घेर रही है। और सरकार घिरी हुई है, सरकार को पता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हार रही है, वो हार रही है तभी तो बौखला रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती थी, अब वो कहां, अयोध्या के नाम उनका, अयोध्या की बात करो तो अयोध्या से, अब वो अयोध्या पे बात नहीं करना चाहते, अब वो दूसरी तरफ गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं।
4: भदौरिया जी, गोल पोस्ट तो अभी आप चेंज कर रहे हैं,
8: विकास की राजनीति नहीं करती है।
4: गोल पोस्ट तो आप अभी चेंज कर रहे हैं ना, बात हो रही है इमरान मसूद के बयान की।
8: आपने बोला कांग्रेस, हाँ। क्यों, हाँ तो मैं तो कह तो दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, वो ज्यादा चित्र बताएंगे बात, बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तो बताएगा, वो भी जानते, तो वो ज्यादा चित्र बताएंगे ना। हम तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं कि जनता के मुद्दे कौन कौन होंगे जिसपे हम बीजेपी के सामने खड़े हैं, और बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि वो हार रही उत्तर प्रदेश, उसको भी एहसास हो गया, क्योंकि आप बताइए कौन वर्ग उनके साथ बचा, जो प्रभु राम के यहां चढ़ावा चोरी की बात जिस आ जाए तो फिर कौन इनके साथ बचा है? इनके साथ बस बीजेपी के दो चार कार्यकर्ता भली बच जाए, वो भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे प्रभु राम को मानते हैं और सनातन को मानते हैं।
4: आप अभी गठबंधन के मुद्दे पर नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अखिलेश प्रताप जी, क्या इमरान मसूद के बयान को केवल उनकी व्यक्तिगत, उनकी निजी राय आप कहेंगे, या फिर वो कड़वी बात बोल गए हैं जो शायद बोलना कांग्रेस के और भी नेता चाहते हैं?
9: देखिये स्वेता जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आप लोग इसी प्रकार के बयानों को सुनाते थे, बताते थे कि गठबंधन ठीक ठाक नहीं है, और 400 पार बताते थे, और उत्तर प्रदेश में 75-80 सीटें बताते थे, और हश्र क्या हुआ, बीजेपी का अच्छा खासा सुपड़ा साफ हो गया, और 2027 में भी यही होने जा रहा है, वही हिस्ट्री आप लोग रिपीट कर रहे हैं कि गठबंधन में सब अच्छा नहीं है, और परिणाम आएंगे 100 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी के पास। किसी का भी बयान, हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका निजी बयान है, हमारे जो निर्णय हैं हो चुके हैं, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, खूब मजबूत पार्टनर हैं, और सीटों का गठबंधन और बाकी चीजें दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मिलकर तय कर लेंगे, और सब चीजें सुचारू रूप से, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, जो भी बोल रहा है वो अपने व्यक्तिगत राय बोल रहा है,
4: सांसद कोई मायने सांसद है ना इमरान,
9: आप लोग अपना कोई हो बीजेपी में रोजाना डिप्टी सीएम, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी, अब याद होते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, खाली पैचअप तो करते रहे बीजेपी के, अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी गुना चाहते रहे, किसी की आम खाते रहे, किसी के चाय पीते रहे, किसी का कुछ करते रहे, जो अध्यक्ष तरफ गए भी नहीं और झगड़े सुलझाते रहे, समझाते रहे। तीनों अलायंस पार्टनर तीन तरह बात करते हैं बीजेपी,
4: ये होता है ना फिर कि जो सीनियर नेता होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई ऐसे बयान मत दो, हम खटास नहीं चाहते। तो इमरान मसूद को कहा जा रहा है, अजय राय का भी बहुत सकारात्मक बयान नहीं रहा है अखिलेश जी।
9: अभी आपने सुनाया अजय राय का बयान, वो सकारात्मक, उसको अगर आप नहीं कहती हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ आपके बारे में।
4: नहीं नहीं, आप जितना खुलकर बोल रहे हैं सुनाया तो आप मेरे ऊपर क्यों नाराजगी निकाल रहे हैं भाई, इमरान मसूद को कॉल करके बोलिए।
9: देखिए देखिए देखिए, जो मैं एक एक शब्द का जवाब देता हूँ। आपने कहा अजय राय का भी बयान ज्यादा सकारात्मक नहीं है, और अभी आपने सुनाया उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा हाईकमान सब तय करेगा, ये कौन होते हैं। तो अगर इतना भी स्पष्ट आपको सकारात्मक नहीं देखता तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
4: नहीं, इमरान मसूद को कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा?
9: मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया कि वो किसी का भी बयान कोई मायने नहीं रखता, जो भी निर्णय है वो हम लोग इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, उस निर्णय में दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व मिलकर तय कर लेगा, और वो सब है तय है, समय आने दीजिए, घोषित हो जाएगा।
4: चलिए, गौरव पाटिया जी
9: का बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, जैसे लोकसभा में भी इसी तरह का माहौल बता रहा था चैनल, ये हो गया।
4: अरे चैनल आप बोल रहे हैं, इमरान मसूद बोल रहे हैं, अपने सांसद को बोलिए, अपने सांसद को बोलिए पहले आप।
9: अरे भाई आप
4: उनका बयान ना दिखाएं, ब्लैंकेट बैन
9: देखिए प्लीज, आप एकदम दिखाइए, आप स्वतंत्र हैं, हम अपने बोलने के लिए स्वतंत्र हैं।
4: हाँ,
9: आप उनका बयान दिखा रहे हैं तो हमें उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है, हम तो वो बताएंगे जो उस समय बताया जा रहा था कि 400 पार है, यूपी में 80 पार है, 75 पार है।
10: चलिए,
9: ये सब माहौल बताया जा रहा था।
4: चलिए गौरव भाटिया जी बताइए भाई,
9: दिख गया तो यही दिखेगा,
4: कोई लड़ाई नहीं, और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।
10: तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात कर लेते हैं। श्वेता जी, ऐसा है इनमें जितना दम है लगा ले, तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, इनमें इतना दम नहीं है कि ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ सके, और इसकी वजह है इंडी अलायंस में पड़ गई है फूट, साइकिल गई है टूट, और जनता गई है इनसे रूठ। और देखिए, आपको ध्यान देना होगा, यह है मई 2026 का राहुल गांधी का बयान, वो कहते हैं अब खुलकर बोलो मुस्लिम हित में कांग्रेस काम करेगी, अल्पसंख्यक मत बोलो मुस्लिम बोलो। और इससे पहले हम जानते हैं मुस्लिम पार्टी है ये, राहुल गांधी ही कह चुके हैं कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये सारी लड़ाई जो है वो केवल मुस्लिम वोटों की है। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सबकी बात करती है, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, लेकिन जो सपा है और कांग्रेस है ये आपस में लड़ रहे हैं मुस्लिम वोटों के लिए। मैं तो ये कहूंगा कितना बेइज्जत करेंगे समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की 100+ सीटें तो आई, कांग्रेस पार्टी की सीट आई 2,403 में 2 सीटें, ये मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है।
4: पर गौरव भाटिया जी, 2024 में तो यही गठबंधन आप लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दे गया।
10: हाँ, मैं उस पर भी आऊंगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने हैट्रिक लगाई, 62 साल बाद इतिहास लिखा गया, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने लगातार 3 चुनाव जीते। लेकिन अभी हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी विधानसभा एक और इंडी अलायंस में जो फूट पड़ी हुई है। देखिए, इमरान मसूद ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा सपा को मुसलमानों से नफरत है, और उन्होंने नाम लिया आजम खां का, जो कि मुर्गी चोर बकरी चोर किसानों की जमीन हड़पने वाले, अतीक अहमद माफिया नंबर 1, जिनके लिए अखिलेश यादव रोए थे फूट फूट के जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, और तीसरा नाम लिया मुख्तार अंसारी का, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी वहां शरण दे रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पे। आज सवाल ये पूछा जाएगा जो बात इमरान मसूद भी उठाते हैं, क्या कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया? मैं आपको एक तथ्य देता हूं, जब चुनाव हुए 2024 के, 4 करोड़ मुसलमान है, ये कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, ये देखिए ये राहुल गांधी जालीदार टोपी पहन ली थी तब, अब चुनावी हिंदू बने हैं, ये देखिए अखिलेश यादव ने जालीदार टोपी पहनी है, लेकिन 4 करोड़ मुसलमानों में केवल 4 टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने, 4 करोड़ मुसलमानों को 4 टिकट, और अपने परिवार में मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 5 टिकट दिए। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ 4 करोड़ मुसलमान, उनके लिए कुछ किया नहीं, उनके लिए किया तो मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने, दूसरी तरफ 5 यादव परिवार के सदस्य टिकट पाते हैं, ये अपने आप में दिखाता है ये चाहते हैं अब्दुल केवल दरी लगाए और ये ऊपर बैठे रहे। और श्वेता जी, तभी इन लोगों का सुपड़ा साफ है, अखिलेश जी को तो मैं ये जानकारी दे दूं, 399 सीटें लड़े थे आप पिछले विधानसभा में, 387।
4: देखिए अभी अभी अगर गठबंधन और दोनों पार्टियों के साथ होने न होने, या फिर अगर कुछ नेताओं के बयान आते हैं, उस मुद्दे के इर्द गिर्द ही हम रहे। मलूक नागर जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहीं पर सहारनपुर और उस पूरे बेल्ट में इमरान मसूद का प्रभाव है। अगर मान लीजिए हम ये भी मानते हैं कि एक नेता की व्यक्तिगत राय है, तो कार्यकर्ताओं तक तो वो राय जाती है, आपको लगता है प्रभाव ऐसे बयानों से पड़ सकता है सामने वाले गठबंधन को?
11: देखिए श्वेता जी, ये असली लड़ाई जो है एनडीए या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये लड़ाई है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और यूपी में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी की। ये लड़ाई है कि मुस्लिम वोट किसके साथ रहे, ये लड़ाई है कि एमएलए की सीट किसको ज़्यादा मिले, ये लड़ाई है नेगोशिएशन के किस तरीके से हो, और ये कांग्रेस के बगैर मर्जी के अगर ये बयान किसी सांसद का आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब या तो उसको नोटिस जारी करें, ये उसके खिलाफ सख्ती से कोई कार्रवाई का बयान दें टेलीविजन पे या अखबार में, अगर चुप रहते हैं तो ये हिस्सा है। अब देखिए, जो पिछले 2017 से 22 तक एक एमएलए, 22 से 27 तक 2 एमएलए, और उनका गौतम जी कह रहे हैं आधे लेंगे हम, आज कुछ का कुछ इमरान मसूद साहब बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं पूरा, तो ये वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश को बेइज्जती कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई है ही नहीं एनडीए की या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की अंदर खाते है। और इसमें श्वेता जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये लोग अगर वाकई में लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो देश के लोकसभा के चुनाव में इकट्ठे होकर दिखाएं। ये लोग अगर हमसे एनडीए से लड़ना चाहते हैं तो देश के किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होके चुनाव लड़के दिखाएं। ये चुनाव लड़, जब लोग ये जानते और देखते हैं कि इकट्ठे आपस में एक नहीं रह सकते, तो चुनाव क्या लड़ेंगे, 27 में भी ये हारेंगे, 29 में भी ये हारेंगे, एनडीए जीतेगा। और एक बात, जो मुसलमानों की बात ये कर रहे हैं, हमारे मोदी जी कह चुके सबका साथ सबका विकास, हम इस देश के आरएसएस के मुखिया कह चुके इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर भी ये देश पूरा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर मुसलमानों की कोई दुश्मन असली है तो कांग्रेस है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो 24.5% हिस्सेदारी हर जगह थी, और 2014 तक आते आते वो करीब करीब 1.5% 2% तक सुकड़ गई, और मोदी जी के नेतृत्व में अगर आज 2026 में वो करीब 5.5% तक वापस आ गई है।
4: नहीं होता है कि दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो सामने आप पर असर नहीं पड़ता है। सबसे ताजा आपका लोकसभा के समय ही दिख गया था कि जब खुले मन से दोनों साथ आए थे तो देखिए क्या हुआ था उस समय सीटों पर। लेकिन खैर, अनुराग भदौरिया जी, एक सांसद इमरान मसूद जो कह रहे हैं उसको ठीक है आप लोग नहीं उस हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन मैं राजीव राय जो कि आपकी पार्टी,
11: एक लाइन,
4: अच्छा ठीक है मलूक नागर जी कंप्लीट कर लीजिए जी,
11: एक लाइन रहेगी बस। हाँ, हाँ, तो 2014 तक वो 6.5% के करीब हो गया है, और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को अगर मुसलमान वोट दे रहा है, और ये सोच के जब हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और संविधान के अनुसार मुसलमान के लिए सबसे पहले हम खड़े हैं हर जगह, तो ये लोग जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के हैं, ये कांवड़ में मीट और अंडे की दुकान की वकालत करेंगे। और आज कम से कम जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे, स्टालिन भी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन बना उस दिन वो भी, और आज कम से कम ये सनातन धर्म की वकालत करने लगे। ये लोग कंफ्यूज हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है देश में जहां आपस में ना लड़े हो, तो इनके बस की चुनाव लड़ना है ही नहीं। 27 में ये हारेंगे, 29 में हारेंगे, एनडीए 27 में जीतेगा, 29 में जीतेगा।
12: ठीक, अब अनुराग भदौरिया जी, इस पर भी आप बोलिएगा कि ये लोग कंफ्यूज हैं वाला जो आरोप लगा रहे हैं, और साथ में ये बताइए कि राजीव राय जी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय श्री राहुल गांधी जी कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए, इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है भाजपा से सुपारी मिल गई है, यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, इंडिया गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि इमरान मसूद पर एक्शन हो?
8: मेरा देखिए कमाल की बात है, अभी आपने सुना एनडीए कितना चिंतित है, एनडीए हमारी बात तो कर रहा है अपनी बात नहीं कर रहा है, जैसे आपने आरएलडी को सुना, अभी उनको शायद पता नहीं है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको राज्यसभा समाजवादियों ने दी थी, इसलिए कम से कम इतना तो सम्मान रखिए कि आपको हमने राज्यसभा दी है, और फिर आप पलट गए सत्ता के लालच में। भारतीय जनता पार्टी को देखो, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में,
11: चौधरी चरण सिंह
8: जी के उत्तर प्रदेश के अंदर में मंदिर के अंदर में चढ़ावा चोरी हो गई, और युवा परेशान
12: जी, आपकी बात, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, अब उनको बोल लेने दीजिए,
8: खला गए भाई, शांति से सुना, राज्यसभा हमने दी है तो हम कह रहे हैं ना राज्यसभा दी है, आप बोल दीजिए नहीं दी समाजवादी ने, मैं मान जाऊंगा, आप बोल दीजिए समाजवादी ने राज्यसभा नहीं दी है, बताइए। हम तो किसानों का सम्मान करते हैं ना, किसानों के आंदोलन में आप मेरे साथ आए, हमें अच्छा लगा कि आप किसानों में आंदोलन में साथ खड़े, हमने आपको राज्यसभा दी, अब आप राज्यसभा लेने के बाद सत्ता के साथ चले गए तो उसमें हल्ला मचाने की जरूरत है नहीं, आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी समाज के अंदर में हर पीड़ितों की बात कर रही ना, हम कर रहे हैं ना, कोई पीड़ित हो, चाहे किसी वर्ग से आता हो, किसी जात से आता हो, किसी धर्म से आता हो, अगर पीड़ित है तो समाजवादी उसकी आवाज उठा रही, तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी चिंता कर रही है, उसको जनता ने चुना, जनता की चिंता क्यों नहीं कर रही है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि मंदिर में चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि पर्चा कैसे लीक हो जा रहा है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार कैसे बढ़ गया है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि किस तरह से किसान बदहाल और परेशान है, उसकी
12: एमएसपी,
8: उसको इस बात की चिंता नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, आप जाइए हॉस्पिटल में जगह नहीं
12: मिलती, हॉस्पिटल की अच्छी बातें कह रहे हैं, ये मुद्दे
8: स्कूलों की व्यवस्था,
12: ये मुद्दे हैं और ये मुद्दों को जरूर उठाया जाना चाहिए, लेकिन उस सवाल का जवाब भी जोड़कर बताइए ना कि आप लोग चाह रहे हैं कि उन सांसदों पर या उन नेताओं पर एक्शन हो जो गठबंधन के विरुद्ध बोल रहे हैं, आप कांग्रेस से यह अपेक्षा रखते हैं क्या?
8: देखिए मेरे बहुत सीधा सा मानना है, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, बहुत समाजवादी का बहुत सीधा सा मानना है, समाजवादी का एक ही मकसद है और समाजवादी के जो साथी होंगे उनका भी एक ही मकसद है कि जिस तरह की नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, और अपने अपने जहां जहां जो जो क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और दूसरे जो पार्टी के लोग हैं कर रहे होंगे, तो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि सत्ता से हटाना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, कौन क्या कहता है उसके नेता उसका जवाब देंगे, यहां अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं वो जवाब दे रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपको आनंद लेने की, भारतीय जनता पार्टी कैसे देखो बातें कर रही, क्या मैंने पूछा कि आपके वहां निषाद जी आपसे क्या मांगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक टिकट मांगते हैं, आपने पूछा मैंने क्या, मैंने कहीं पूछा कि राजभर जी आपसे टिकट का दावा करते रहते हैं, मैंने पूछा अपना दल आपसे टिकट की दावा करती रहती है, मैंने आपसे पूछा आपके अलायंस पार्टनर आपसे किस तरह से आप पे प्रेशर बनाए रहते हैं, क्यों वो मेरा वो नहीं है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो मकसद है वो जनता की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना, हम जनता की परेशानी की बात कर रहे हैं, और आप पार्टियों की बात कर रहे हो, ये फर्क होता है हमारे आपकी सोच में, समाजवादी हमेशा जनता की बात करता है, इसलिए बोला कि हम युवाओं की, किसानों की बात करने वाले लोग हैं, हम उनके मुद्दों को उठाते हैं कि उनको कैसे न्याय मिले, किस तरह।
12: गौरव भाटिया जी, तो दो पार्टियां साथ हैं, दो एक गठबंधन की बात है, तो आपस में एक नेता ने कह दिया, अब उसको उस मुद्दे का मतलब क्या सीधे तौर पर यही है कि ये गठबंधन सही नहीं है, इसमें सब कुछ गड़बड़ है, आप लोग समय से पहले खुशी मना रहे हैं कि सामने तो पूरा टूट फूट है।
10: नहीं श्वेता जी, देखिए हम अपने दमखम पे चुनाव जीत के आते हैं। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ आए या अलग अलग चुनाव लड़े, नतीजा एक ही आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन ये केवल इमरान मसूद का बयान नहीं है, मैं आपको एक क्रम बताता हूं। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा खुलकर मुस्लिमों के नाम से राजनीति करो, अल्पसंख्यक मत बोलो, इसका मतलब इशारा राहुल गांधी से आया। इमरान मसूद ने वही बात आगे बढ़ाई और वो संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिमों के सबसे बड़े रहबर कोई हैं तो वो कांग्रेस पार्टी और वो स्वयं हैं, और ना समाजवादी पार्टी है ना और कोई पार्टी है। राजेंद्र पाल गौतम जी का बयान आया, उन्होंने कहा 50-50% की सीटों का बंटवारा होना चाहिए, बराबर की साझेदारी है। और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं है गठबंधन में, इस गठबंधन में हम सब बराबर हैं। तो जब ये बयान आप एक साथ देखेंगी तो निष्कर्ष एक ही है, राहुल गांधी के इशारे पे कांग्रेस पार्टी टूटी साइकिल को और तोड़ना चाहती है, ध्वस्त करना चाहती है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बने। दूसरी बात, आप सपा के प्रवक्ता को बता के विषय के बारे में जब सवाल पूछ रही हैं तो वो गोलपोस्ट बदलते नहीं हैं, सपा के प्रवक्ता तो गोलपोस्ट साथ लेके दौड़ते हैं और वो देखते हैं जहां मन हो वहां रख दो, क्योंकि इनके मुंह से निकला कि ये भाजपा को हराने की राजनीति कर रहे हैं। मुझे याद है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र हमने जीता, दिल्ली हमने जीता, बिहार हमने जीता, असम हमने जीता, पश्चिम बंगाल हमने जीता, पुडुचेरी हमने जीता। अरे टूटी साइकिल ने क्या जीता ये तो बता दो, हर जगह हारते हो उसके बाद आके यहां पे अनर्गल बयान देते हो। तीसरी बड़ी बात, देखिए किसी भी गठबंधन में यह आवश्यक होता है कि नेता एक हो, जैसे एनडीए का नेता हर दल के लिए वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आप किसी भी दल से पूछिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे चाहे उत्तर प्रदेश के स्तर पे, हर कोई कहेगा नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। क्या राहुल गांधी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं? उत्तर प्रदेश में भी नहीं मानते, और पूरे राष्ट्र की राजनीति की बात करें तो क्या अखिलेश यादव ये कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं? वो भी नहीं कहते। इसका मतलब इनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत घृणा है, ये केवल मौके की तलाश कर रहे हैं कि कब मौका मिले और मैं लंगड़ी लगाऊं और दूसरा दल गिर जाए, और इसीलिए इनकी तैयारी शून्य है, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, फूट पड़ चुकी है और जल्दी आप देखेंगी कि ये अलायंस भी टूटेगा।
12: ठीक है अखिलेश प्रताप जी, एक ऐसे राज्य में चुनाव है जहां पर अनुराग जी मैं आपके पास आती हूं, पहले नहीं चूंकि पहले उन्होंने आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे तो उन्हें भी जवाब दे लेने दीजिए, यहां तो साझेदारी बराबरी की कर लीजिए ना, भाई भाई की बात है जी। अखिलेश प्रताप जी आप पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं,
9: हाँ देखिए श्वेता जी, दरअसल बात क्या है, बीजेपी को पता है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है तो वो अपने फिल्योर से ध्यान हटाने के लिए वो अब दूसरे की कमियों की चर्चा करा रही है, आप लोग कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग भी अपने उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं। इंसान तो इंसान, भगवान को भी लूट डाला बीजेपी ने, भगवान को भी। पहले हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना है कि चंबल के डकैत माँ भवानी जिंदाबाद करके डाका डालते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी माँ भवानी का मंदिर नहीं लूटा। यहां तो जिसका नाम लिया जय श्री राम और उन्हीं का मंदिर को लूट लिया, और यह जनता पहचान गई है। चुनाव होगा इस उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार पे, 2022 में कहे थे मोदी योगी जी कि हम 2022 में यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, फिर कहे 24 में करेंगे, फिर बढ़ा कब 27 में करेंगे। सारे डकैतों लुटेरों को प्रधानमंत्री तक सपोर्ट कर रहे हैं, चुप हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, खामोश हैं, प्रदेश के मुखिया बीजेपी के खामोश हैं, हर प्रकार के क्राइम में गिना सकता हूं 2023 का आंकड़ा जो एनसीआरबी का है, हर प्रकार के क्राइम में, गंभीर अपराध, सभी हत्या, हत्या महिलाओं की, हत्या दलितों की, जितने प्रकार के क्राइम उसमें वर्णित हैं, सब में यूपी टॉप पे आ गया बीजेपी की हुकूमत में, सब में नंबर, जितने भू माफिया हैं तरह तरह के माफिया, इनकी किताब है इन्होंने जो जारी किया था, ये इसी में माफियाओं का जिक्र है, भू माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, वन जीव तस्कर माफिया, पुस्तक माफिया, असलहा माफिया,
12: गठबंधन पे नहीं बोल रहे आप अखिलेश जी,
9: वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप गठबंधन पे बात करना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि उसके ऊपर बात न हो,
10: ना ना
9: इसलिए गठबंधन पे बात
12: कर रहे हैं,
9: उसका उसको किनारे
12: इतने दिन से चढ़ावे का मुद्दा नहीं चल रहा है।
9: देखिए देखिए
12: लखनऊ में आग लगी उस पर नहीं कवरेज हुई है, कंठा को बीच में मत लाइए ना चर्चा के।
9: आप जो देखिए देखिए आपको आप दूसरों को तो बीच में बीजेपी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, हमारी सही बात आपको कुंठा लगती है, आपके लिए एजेंडा ये होगा, लेकिन इस प्रदेश के लिए एजेंडा है जो रूलिंग पार्टी का फेलोर,
12: डिबेट में एक मुद्दा होता है ना अखिलेश जी, मुद्दा बताया जाता है ना कि इस मुद्दे पर आपको बोलना है, तो आप बोलिए, आप मुद्दे को उठाइए, जरूर आप मुद्दे को उठाइए, लेकिन साथ में एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, अगर इमरान मसूद की बातें पार्टी लाइन नहीं है तो पार्टी उनको बोलेगी ना, क्या बोलेगी या नहीं बोलेगी, आप फिर कहेंगे कि तुम इसको आप गुड कॉप बैड कॉप चलेगा।
9: आप जो है आप इतना दूसरों को टोका टोकी तो कभी किया नहीं आपने, निर्बाध बोलने दिया, असत्य पे असत्य बोलता गया बीजेपी का प्रवक्ता बोलने दीजिए, उनका तो काम ही है, बीजेपी का मतलब ही है बड़ी झूठी पार्टी, 2024 में हाफ है 27 में साफ हो जाएंगे, ये जो एफस्टीन फाइल वाले साहब अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं और जिस दल की ये बात कर रहे हैं एनडीए, मतलब एनडीए का मतलब क्या था, नेशनल डिजास्टर अलायंस, बर्बादी तो कर रहा है, इसी तरह की चर्चा होती रही पूरे चुनाव में लोकसभा में, अब बीजेपी का सुपड़ा यूपी से साफ हुआ और इस 224 सीट असेंबली में 224 असेंबली हम लोग जीते हैं लोकसभा के 2024 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीटें हम लोग जीतेंगे, हमारा गठबंधन उसी से परेशान है बीजेपी कि गोल पोस्ट घुमाया जाए, बीजेपी की चर्चा न हो, बीजेपी की उपलब्धियों पे बात न हो, हम उसी पे बात करेंगे क्योंकि जनता की बात वही है, आप जो वादे करके आए थे एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है, उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 30-35 बार इस सरकार के खिलाफ वो बोला है, यहां तक बोला है हाई कोर्ट ने कि यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, पुलिस यूपी पुलिस जजों पर दबाव डालती है, हाई कोर्ट ने यहां तक बोला, मेरे पास उसकी भी पूरी सूची है, अगर आप समय दें तो मैं पूरा गिना सकता हूं, एक एक
12: रखता हूं
9: किस दिन किस मामले में जजमेंट दिया, ये है मुद्दे, हम इन मुद्दों पे बात करेंगे, आपको जो सूट करे उस मुद्दे पे बात करिए, हमें कोई एतराज नहीं है,
12: इत्तेफाक की बात है ना कि सांसद आप ही के हैं जो चाह रहे हैं कि उन मुद्दों पर बात हो, और अनुराग भदौरिया जी आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इसके साथ ही एक मुस्लिम वोट को लेकर भी, मुस्लिम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा है, और साथ में इसके जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व अखिलेश जी आजकल जिस राह पर चल रहे हैं, ये इमरान मसूद की नाराजगी की एक वजह आपको लग रही है?
8: देखिए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा साइकिल, उनको साइकिल बहुत याद आती है, तो ये साइकिल ही है, किसी को डबल एजी बनाती है, किसी को राज्यसभा भेज देती है, बात दूसरी है कि बाद में लोग डबल एजी और राज्यसभा बनने के बाद उसी साइकिल को टूटी बोलने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि चिंतन करना चाहिए कि जो जिस जगह से आदमी को सम्मान इज्जत मिलती हो कम से कम उसका तो सम्मान करना चाहिए, सनातन तो यही कहता है, सनातन हमेशा यही कहता है कि आप किसी के जो आपके लिए कुछ भी करे उसके प्रति आप थोड़ा सा सम्मान पूर्वक रहिए, यही हम लोग के सिखाया गया संस्कार यही है, लेकिन अब वो संस्कार बीजेपी में जाने के बाद लोगों के या उनके गठबंधन में होने के बाद बदल जाते हैं, वो भारतीय संस्कार नहीं रहते हैं, कुछ एक नए संस्कार आ जाते हैं, अब वो संस्कार कौन से, उस पर रिसर्च कर रहा हूं मैं, ये संस्कार आते कहां से हैं कि भाई कोई किसी के साथ रहता है तुरंत उसके उसको फिर उल्टा कैसे बोलने लग जाता है, इतनी हिम्मत ताकत या सोचने की शक्ति मिल कैसे जाती है, ये भी एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, अब चुनाव किस पे होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीता जी, चुनाव तो जनता के मुद्दों पे होगा ना, अब जनता के जो मुद्दे उस पे बोलने को तैयार कोई नहीं हो रहा है, अब मुद्दे बदले जा रहे हैं, अब डिबेट के भी मुद्दे बदले जा रहे हैं, अब बताइए मुद्दे क्या हैं, मैंने कितने बड़े बड़े मुद्दे समाज के अंदर में हैं जिसपे समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है, जैसे आपने बोला चढ़ावा चोरी। मैं कहता हूं ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है हमारा, इसलिए हमने इसकी आवाज उठाई। तो ये लोग कहते हैं गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अरे भैया मैं आस्था की हमारी सनातनी है तो मेरी आस्था रहेगी ना धर्म के प्रति, लेकिन आप धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने केदारेश्वर इतना बड़ा मंदिर बनाया है तो क्या उसके नाम पे वोट मांगते हैं हम? सैफी में हमारे इतना बजरंग बली जी की मूर्ति लगी है, सालों से लगी है, तो क्या हम उस पर वोट मांगते हैं क्या? हम तो कभी नहीं, हम कभी नहीं बोलते कि श्री अखिलेश यादव जी न जाने कब से नवरात्रि का उपास करते हैं, महादेव भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, प्रभु राम को मानने वाले हैं, तभी तो उन्हें पता चला ना वहां चढ़ावा में चोरी हो रही है, वरना कैसे पता चलता? भाई सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, ट्रस्ट इनके लोग वहां बैठे हुए हैं, हमें कैसे पता चला चढ़ावा में चोरी हो रही है? प्रभु का कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद है ना, तभी तो हम अयोध्या जीते थे ना, अयोध्या जीत के आए थे, प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं तो अयोध्या में हमें आशीर्वाद मिला था प्रभु का। आज भी देखिए चोर पकड़े गए ना, कुछ वहां पे सच में चोरी हो रही थी ना, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या गलत कह रहे थे? अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है तो वो हमारे गठबंधन पे लगे पड़े हैं। अरे भाई आप आए बताइए आपने जनता के लिए क्या किया है? जनता के लिए जिस नाम पे आप वोट मांगते थे आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप मथुरा की बात करने लग जाते हैं। तो सवाल है कि जिस पिच पे धर्म के पिच पे खेल रहे थे वहां भ्रष्टाचार की बारिश हो गई, बारिश होने के बाद बॉल स्विंग करने लगी, अब उसमें बोल्ड होने लगे तो अपना बैट पैड उठा के मथुरा की तरफ चलने लगे। अरे वहां भी जाएंगे वहां भी भ्रष्टाचार की बारिश होगी, वहां भी बॉल स्विंग होगी, वहां भी हम आएंगे तो
12: मलुकनागर जी मैं आपके पास आती हूँ पहले, चूंकि गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी ये बताइए कि आप लोग इनका आरोप है सीधा कि गोलपोस्ट आप बदल रहे हैं, आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मथुरा का मुद्दा उठाकर, क्योंकि अयोध्या पे आप लोग खुद घिर रहे हैं।
10: श्वेता जी ऐसा है, आपके चैनल ने बड़ी प्रखरता से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे, राम मंदिर के मुद्दे पे ही पूछे, और सारे प्रवक्ता हम लोग आए और हमने तर्क दिया, कार्रवाई क्या हुई ये बताया। अगर विषय है ए तो बी पे कैसे बात कर सकते हैं? आज आपके चैनल ने एक विषय रखा है, अब सपा के टूटी साइकिल के प्रवक्ता चाहते हैं आप किस विषय पे चर्चा करेंगे, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पूछ के तय हो जाए, उसके बाद चर्चा हो, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन मैं सपा के प्रवक्ता को उन्हीं की भाषा में जवाब देता हूं। वो कह रहे थे साइकिल जिनको बनाती है, अरे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सम्मान दिया ना, कोई एहसान नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी जेल जाने वाले थे मायावती जब मुख्यमंत्री थी, किसी ने बचाया तो वो व्यक्ति कौन था पूछ लीजिएगा, तो रक्षा करी उसके बाद सम्मान पाया। और दूसरी बात, आप इतना मिस क्यों करते हैं? अगर आपकी गलत नीतियों को देख के नमाजवादी हो, मंदिर जो है कंकड़ कहीं रख दो झंडा लगा दो बन जाता है कहते हो, राम मंदिर का नक्शा खराब है कहते हो, छोड़ के चला गया, 10 साल हो गए अभी तक मिस करते हो, अभी तक इलू इलू हमारे याद में दीवाने हो गए पागल हो गए। अरे और संस्कार की बात तो मत किया करो, एक पुत्र है औरंगजेब जैसा जिसने मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने गद्दी पे बिठाया अपने पुत्र को, उन्हें ही धक्का मार दिया गद्दी से, और ये सबने देखा था 1 जनवरी की वो शाम आपको याद होगी। तो संस्कार किसके कैसे हैं ये सबको पता है। अब श्वेता जी एक बात हमें समझनी होगी, कांग्रेस के प्रवक्ता का अर्थ ज्ञान देखिए, कह रहे उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे ज्यादा है, इनको ये भी नहीं पता है चाहे मर्डर के इंसिडेंट्स हो, 40% की गिरावट आई, डेकोइटी में 65% की गिरावट आई, जनसंख्या के अनुपात में एनसीआरबी अपना डेटा देता है कितना अपराध हुआ है, और जनसंख्या के अनुपात से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, क्या आप आंकड़ा जो आएगा उसकी तुलना और प्रदेशों से करेंगे? नहीं, वहां पे क्राइम रेट होता है, हर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितना क्राइम है, उत्तर प्रदेश में बेहतर सुधार आया है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को कहती है इनका बुलडोजर मॉडल हमें पसंद है, बुलडोजर है उनके लिए जो अराजक है, और विकास है उनके लिए जो कानून को मानते हैं जो जनता है, और ये केवल और केवल अगर राजनीति करते हैं तो वो राजनीति करते हैं नकारात्मकता की और राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की।
12: इसीलिए आंकड़ों पर कागज देखने लगे अखिलेश जी और साथ में भदौरिया जी,
10: मैं कागज मेरे पास एनसीआरबी का डेटा सामने है, मैं आपको बता दूं। चलिए एक आंकड़ा आपको दे देता हूं। 2016 में जब सपा की सरकार थी 5000 मर्डर हुए, 5000, और 2024 में ये 3518 हो गए,
9: पहले करीब करीब 50% की कमी आई।
10: अब आप मुझे बताइए श्वेता जी, एनसीआरबी का डेटा है,
9: ये परसेंटेज पे जा रहा है, वो भी मैं रख के लाते हैं।
10: राहुल गांधी जैसे प्रवक्ता पार्टी को खत्म कर देंगे। अरे आप छोड़िए,
9: अरे चार
10: 2016 में सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में मर्डर हुए 4890, 2024 का आंकड़ा है 3218 मर्डर। अब आप बोलो। और दूसरा, आज तक की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, डकैती में कमी आई 86%, लूट में कमी आई 78%, हत्या में कमी आई 43%, फिरौती में कमी आई 70%। ये आज तक की रिपोर्ट है मेरे हाथ में। उत्तर प्रदेश में क्राइम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ या खराब हुआ, राहुल गांधी ने कुछ नहीं लिखा है। तैयारी करके आया करिए, तैयारी करके
9: जरा इनको देखिए,
10: तैयारी करके
9: अपराध में यूपी नंबर 1, 42 लाख।
10: श्वेता जी क्या देखेंगे,
9: 94 गंभीर सारे अपराधों में नंबर 1,
10: भैया जनसंख्या में नंबर 1,
9: में नंबर 1
10: बताओ, चलो
9: 300
10: महामूर्ख
9: नंबर 1, 304 में सबसे ज्यादा
10: जनसंख्या किस प्रदेश की है,
9: हीट एंड रन में
10: ज्यादा होगी,
9: एसिड अटैक में नंबर 1
10: होगा,
9: सेक्सुअल असॉल्ट में नंबर 1, एससी एसटी पर नंबर 1,
10: ये भी नहीं पता सारे, ये महामूर्ख है।
9: इंडिया में नंबर 1 हो, जो अभी तक गिना जाता था, जिस तरीके से गिना जाता था, सब में नंबर 1 हो, सब में नंबर 1 हो।
10: और आपकी आप बताइए
12: गौरव भाटिया जी, आपने ये मुद्दा रखा कि क्राइम रेट, अखिलेश जी उस ओवरऑल आंकड़े का बता रहे हैं। अब देखिए मलूक नागर जी, मुद्दा जो है वो जनता अपने अनुसार ही तय करती है कि चुनावों में क्या रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर यह बात सामने आती है कि अगर आपको किसी की सरकार बनानी है और सामने दो पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी केमिस्ट्री कैसी है, कि आपका वोट जो जा रहा है वो एक वैकल्पिक सरकार के गठन में जा रहा है या फिर आप जिसे सरकार बनाने देखना चाहते हैं उसके उसमें जा रहा है। तो क्या पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है कि इमरान मसूद जैसे बयान या फिर राजीव राय जी की तरफ से जो बयान दिया गया, जो सोशल मीडिया पे लिखा गया, इसका कोई असर नहीं वोटर के मन में?
11: देखिए श्वेता जी, सीधी सी बात है, 100% लोग देख रहे हैं, जब ये आपस में लड़ रहे हैं और इकट्ठे हो ही नहीं सकते तो इनके हाथ में उत्तर प्रदेश को कैसे सौंप दें। इसीलिए 22 से 27 तक कांग्रेस के 2 MLA, इसीलिए 17 से 22 तक कांग्रेस का केवल 1 MLA। अब जो ये मंदिर पे को जाते हैं श्वेता जी, हम आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं, सबसे बड़े टेलीविजन पे, कि जो दुष्ट और जो पापी चोरी में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ FIR हुई, जेल भेजे, सजा दी, और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो एक ज्ञान बांटना बंद करें, ये कहें कांग्रेस जो काल्पनिक चरित्र बताती थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो स्टालिन सनातन के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस के खड़के साहब जिस दिन शपथ ली उस दिन सनातन के खिलाफ बोले, तो क्या ये आपस में इकट्ठे होके जो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे माफी मंगवाएंगे या ज्ञान बांटेंगे, या ये एडमिट करते हैं कि यूपी में इकट्ठे होके क्या ये लड़ सकते हैं, देश के हर प्रदेश में लड़े तो यूपी में इकट्ठे हो सकते हैं। ये दोनों प्रवक्ता यही बात बता दें बस आपके नेशनल टेलीविजन पे, तो लोग सोच लेंगे कि इनको भाई वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
12: चर्चा के आखिरी हिस्से में मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी अब ये बात बोल ही दीजिए, क्योंकि अगर बयान इस तरह के आते हैं तो चाहे कार्यकर्ता हो या वोटर, उनके मन में एक डाउट, आप इस बात को मानते हैं कि डाउट आ सकता है? बेहतर है ना क्लैरिफाइड रखना इस चीज को।
8: देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी बड़ी लंबी बातें बता रहे थे। हमने एक बात बोली कि साइकिल कितना सम्मान देती है, जनता को सम्मान देती है, मेट्रो बना के, स्टेडियम बना के, नेशनल स्टेडियम बना के जहां आजकल जो IPL होता है, और पार्क बना के, एक्सप्रेस वे बना के, उनको लैपटॉप दे के, उनको किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा करने की जो काम करती है वो तो समाजवादी साइकिल ही करती है ना। फिर समाजवादी साइकिल का मैंने बताया कि डबल AG बनाया, राज्यसभा भी बनाया, और जो दूसरे दल में चले गए अभी दूसरे दल के गठबंधन में उनको भी राज्यसभा बनाया, तो साइकिल तो सम्मान देती है ना, जनता को भी देती है, कार्यकर्ता को भी देती है, नेता जो आते हैं साइकिल में उनको भी सम्मान देती है।
12: ठीक है भदौरिया जी, हम क्लोजिंग कमेंट्स ले, छोटा छोटा क्लोजिंग कमेंट्स ले अखिलेश जी, पहले आप जी।
8: जो हमला हुआ तो वही बता रहा हूं ना
9: कि माली हालत भी डुबो रखी है हमारे योगी जी ने। 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, आज बजट जितना है यूपी का 9 लाख कुछ हजार करोड़, तो उससे ज्यादा यूपी पे कर्जा है, और बिजली विभाग का जोड़ लें तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है।
12: ठीक है गौरव भाटिया जी, क्लोजिंग
9: कमेंट। डूबो रखा है,
12: वो कह रहे साथ रहे नहीं रहे, बीजेपी का परफॉर्मेंस ऐसा है कि कोई फायदा नहीं। जी
10: देखिए, एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का प्रवक्ता बोल रहा है तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री भी है, प्यार भी है, सम्मान भी है, और ये जो टूटी साइकिल और खूनी पंजा कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं और मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है।
12: गौरव भाटिया जी, समय इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर के साथ हम अल्लाह बोल में अंत कर रहे हैं। ये खबर अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। आम आदमी पार्टी के का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जिसको दोषी करार दिया गया है। ये मामला दिल्ली दंगों के समय का है, 2020 दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित की का जो शव है वो बरामद हुआ था, हत्या की जांच वहां से शुरू हुई, ताहिर हुसैन का नाम सामने आया और अब ताहिर हुसैन समेत 5 को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का यह फैसला, जहां पर ताहिर हुसैन समेत 5 को अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है। अल्लाह बोल में अभी के लिए इतना ही, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखिए 7 बजे की खबरें मारिया शकील के साथ।

0: स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
4: वाह वाह वाह वाह।
2: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
5: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
6: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया है।
11: हाँ, ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू?
13: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।
15: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
17: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
18: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या, रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
3: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
4: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: जीत मिली 2024 की वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली, इसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं समाजवादी पार्टी का।
10: नहीं तो नतीजे हैं ना, 2022 में क्या था? 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे, आप उनको पूरा पोसते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ नजर समझ में आता है ना कि मुसलमान के इशू के ऊपर आपकी खामोशी। और अगर कोई बोल रहा है तो
9: मुसलमान के आपने जिक्र किया, उन्होंने आपने नेताओं के नाम गिनाए आजम खान से तमाम लोगों के, और कहा कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर।
10: खत्म हो चुकी है, खत्म कर दिया गया, अब बचाऊं मैं, अब मेरे पीछे लगे हुए हैं कि सब मिलकर के सबको सबको खत्म करेंगे कि मुसलमान की मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बनकर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे पीछे आप लगा दे, तो हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे?
9: आप इतने तीखे बयान दे रहे हैं, गठबंधन गठबंधन होगा आने वाले चुनावों में?
10: देखिए गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मुझे जो आदेश देंगे मैं वो मानूंगा। मेरा और

0: नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है। गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना है, हम बार बार बोल चुके हैं कि हमारे लिए सीट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जीत जरूरी है। और जब तक ये मंत्र वो अपने अंदर नहीं बैठा लेते हैं, तब तक ये इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है।
1: प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है। ये केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR हुई। सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी।
2: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहितकर हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता को विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक

0: अल्ला बोल में आपने चर्चा इस बात पर देखी कि कांग्रेस पार्टी सांसद इमरान मसूद की तरफ से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए गए, इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोल कर रहे थे। आगे देखिए खबरों का सिलसिला आज तक पर 7 बजे मारिया शकील के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, SIT से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने CCTV सुरक्षित रखने के लिए दिए निर्देश, ट्रस्ट को भी नोटिस। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन का आज आखिरी दिन, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट को भूल कर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के लिए जनसभा को किया संबोधित। यूपी को मिली एक और एक्सप्रेसवे की सौगात, सीएम योगी ने 4200 करोड़ से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार। 2020 दिल्ली दंगे मामले में कड़काडुमा कोर्ट का बड़ा फैसला। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, पहले क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। यास्तिका भाटिया ने जमाया शानदार शतक। शो की शुरुआत इस वक्त की सभी सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में

0: यहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार समेत ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले में जुड़ी जनहित याचिकाओं यानी के पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है।
1: राम के दरबार से चोरी हुए खजाने ने ऐसी खलबली मचाई कि देश की सबसे बड़ी अदालत में इस चोरी की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चहावा चोरी से जुड़ी याचिका में मुख्य रूप से दो मांगें की गई थीं। पहली मांग यह है कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग यह है कि इस पूरे चंदा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अदालत में वकील आए, दलील दी और फिर कोर्ट ने कहा राज्य सरकार अब तक की एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे, एसआईटी के गठन और उसमें शामिल सदस्यों का पूरा ब्यौरा दे। कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है।
2: पॉजिटिव डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इतने महत्वपूर्ण विषय का संज्ञान लिया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है पूरे मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी को निर्देश दिया है कि अगले सप्ताह तक इसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया जाए।
1: हालांकि सोलिसिटर जनरल ने ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध किया लेकिन अदालत ने विरोध को खारिज कर दिया।
3: सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड यानी कि अगर निगरानी रखेगा इन चीजों पर तो बहुत ही मैं कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ऑनेस्टी बढ़ेगी और डाइटी का पैसा डाइटी पर रहेगा, फालतू के लोग उस पैसे को नहीं गएंगे।
1: सरकार की ओर से जांच की ये रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी।
4: निगहदार हैं जिनको कोर्ट ने निगहदार बनाया है, उन पर भी निगहदारी की जरूरत है क्योंकि ऐसा ना हो कि कीड़े मारने की दवा में ही कीड़े पड़ जाएं। लिहाजा उसकी पारदर्शिता जरूरी है और उस पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत कि आखिर कहीं कोई कमजोर कड़ी है तो नहीं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान कर दिया गया है। हरिद्वार में संतों ने घोषणा की कि आने वाली 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कार सेवा की जाएगी, जिसके लिए देश भर से साधु संतों और कृष्ण भक्तों को बुलाया गया है।
1: अयोध्या के राम मंदिर में चहावा चोरी की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई है कि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है।
5: देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है, उसको बना के रहेंगे।
1: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों, सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
6: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
1: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है कि इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा।
7: मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने।
1: दरअसल अयोध्या के चहावा कांड में बीजेपी पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव को पिछले दिनों सीएम योगी ने ही मथुरा आंदोलन में शामिल होने की चुनौती दी थी। सीएम योगी ने ये नहीं बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए किस आंदोलन में अखिलेश को शामिल होना है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने उस आंदोलन का आह्वान कर दिया है जिसमें कार सेवा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का लक्ष्य तय कर रखा है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या मथुरा से आगे अब बात सनातन की। बाबा रामदेव का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाहे दाढ़ी रखो, मूंछ कटवाओ या कैसी भी टोपी पहनो, पगड़ी पहनो, हमारे पूर्वज एक ही हैं और वो सनातनी हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है।
8: हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो।

0: हो सकते हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को।
1: बाबा रामदेव के बयान को लेकर गैर बीजेपी दलों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर हुई है। कोई इसे दरारें डालने की कोशिश कह रहा है तो कोई रामदेव के बयान को लेकर बाप दादाओं वाली बयानबाजी कर रहा है।
2: सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना। तो वो पहले वो खुद तय कर ले पहले वो क्या है और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें।
3: सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर दो, बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। बात नंबर तीन, अभी आपने कहा कि जो पूर्वज थे, तो बाबा मैं बोलूं फिर, हमारा भी ये मानना है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने सबसे पहले दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, आप भी उसी में आ गए क्या?
4: देखिए मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसको आप भगवान कहते हैं। और मैं समझता हूँ हर एक जो है अल्लाह भगवान गॉड इससे डरता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हिंदुस्तान मुल्क है, इस मुल्क को कोई अपनी भगवती समझ ले कि आपको डरने की जरूरत नहीं। ये नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत देश चलेगा।
1: और सनातन पर स्वामी रामदेव का पूरा इंटरव्यू आप 7:30 बजे देख सकते हैं, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने किया है, जरूर देखिए। अब बात एक बड़ी खबर जो आ रही है, अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। 2020 के दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, जिसमें ताहिर हुसैन का नाम आया था। दिल्ली की करकडूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। ताहिर समेत 5 लोग दोषी करार दिए गए हैं। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन की बातें और सीट बंटवारे को लेकर तीखी बयानबाजी जारी है। दोनों तरफ से बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं।
5: कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी तो लगा था कि 27 की राह में पड़े कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए दोनों एक साथ फिर से आएंगे। सवाल भी है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार एक साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जवाब से पहले बयानों के बाण चल रहे हैं। कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया था तो उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल था।
6: हमने 2024 में दिखा तो दिया आपको, 2024 में आपको 37 सीटें जितवाई, हमने जितवाया ना। आप ये जो बार बार बोलते हो, वरना 2022 में जीत लिए होते ना, आप सरकार बना ली होती इतनी सीट के ऊपर। तो
5: सीटों के बंटवारे को लेकर इमरान मसूद लगातार मुखर हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस यूपी में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब वो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को यूपी में किसी के साथ की जरूरत नहीं है।
6: कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूँ, मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी।
5: इमरान मसूद के बयान समाजवादी पार्टी को शूल की तरह चुभे हैं। भड़क गई समाजवादी पार्टी।
7: वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है। गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना है, हम बार बार बोल चुके हैं कि हमारे लिए सीट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जीत जरूरी है। और जब तक ये मंत्र वो अपने अंदर नहीं बैठा लेते हैं तब तक ये इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है।
5: 27 के चुनाव में अभी समय है, मगर जिस तरह से दोनों दलों के नेताओं के बीच तल्ख बयानी हो रही है वो सवाल पैदा कर रही है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में साथ चुनाव लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में आज सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। नामांकन के वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप की पार्टी की प्रत्याशी ने को गिरफ्तार कर लिया गया।
8: 25 में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
9: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है,
10: आपको लग रहा
9: कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
8: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
11: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीना मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीना मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
8: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी माँ के साथ करना चाहती है पुलिस।
12: तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
8: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
13: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
8: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
14: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
8: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
1: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भाषण देने के दौरान भावुक हो गए।
15: प्राण झोंक देगा आज तो भैया के लिए, प्राण झोंक दिए जाएंगे आज तो भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा, 16 तारीख से स्वयं यहीं पर डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा।
1: दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है। यहां यमुना नदी में कल नहाते समय 4 नाबालिग बच्चे तेज बहाव में बह गए। फायर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां साझा सर्च ऑपरेशन में 2 बच्चों के शव बरामद हो गए, लेकिन कल अंधेरे की वजह से सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक लापता बाकी 2 बच्चों का सुराग नहीं मिला है। अब बात शेयर बाजार की। आज क्या रहा बाजार का हाल, कितनी बढ़त के बाद बंद हुआ बाजार और क्या रहा सोने चांदी का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए।
10: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। इसके असर से आज शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में करीब 1% तक लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार आगे बढ़ने के साथ खरीदारी की वापसी हुई और पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आखिर में बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 47 अंक मजबूत होकर 77,616 के स्तर पर और निफ्टी महज 4 अंक बढ़कर 24,211 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते देखने को मिली। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए पर दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे कमजोर होकर 95.62 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। रुपए में गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी निकासी के चलते हुई। वहीं सर्राफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा, जिससे सोना 1,079 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 142,279 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 3,155 रुपए टूटकर 217,235 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोने चांदी में गिरावट रुपए की कमजोरी और वैश्विक कीमतों में सुधार के चलते आई है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात उस हादसे की जिसने 23 लोगों की जिंदगी छीन ली। जी हां, बैंकॉक में पब में भयानक आग लगी। आग लगने की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं। धुएं के बीच लोग जान बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं।
16: 27 मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे। बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच में इतिहास रचा है। भारत की बेटियों ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रनों से हरा दिया है।
17: जोश और जश्न की ये तस्वीरें इतिहास का वो अध्याय बन गई जिन्हें महिला क्रिकेट में हमेशा याद किया जाता रहेगा। लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए महिला क्रिकेट के पहले टेस्ट मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है और इंग्लैंड को उसी के मैदान पर धूल चढ़ा दी। बेटियों ने बढ़ाया हिंदुस्तान का मान। लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत, तोड़े इंग्लैंड के अरमान। टीम इंडिया ने ताकत, तकनीक और तेवरों का ऐसा तालमेल दिखाया कि इंग्लैंड की टीम कहीं टिक न सकी। मैच का यह स्कोर कार्ड इतना बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया ने किस कदर तीनों डिपार्टमेंट में दबदबा बनाए रखा। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का पहाड़ सा लक्ष्य रखा था, लेकिन चौथे दिन इंग्लैंड की टीम 186 रन बनाकर

0: आउट। इससे पहले दूसरी पारी में भारत की यास्तिका भाटिया ने इतिहास रचा था। 113 रन की इस शानदार पारी के साथ वो लॉर्ड्स के मैदान में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। गेंदबाज क्रांति गौड़ ने भी लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रचा। वो टेस्ट में इस मैदान पर 5 विकेट हॉल लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। पहली पारी में उन्होंने 37 रन देकर इंग्लैंड की 5 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। लॉर्ड्स की लड़ाई जीतकर भारतीय महिला टीम ने कामयाबी की एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना दुनिया भर की टीमों के लिए हमेशा चुनौती बना रहेगा। आज तक ब्यूरो।
1: महिला टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर उधर
4: गया। करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को।
7: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
6: ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 matching edge band से किनारों को हमेशा के लिए smooth बना लीजिए। E3 products, ये रिश्ता लंबा चले।
10: पापा।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया
11: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
10: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
11: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है

0: लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: In association with
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
7: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.
10: Share bazaar, jahan kuch log seekhte reh jate hain aur kuch itihas likh jate hain. Aakhir, bada paisa banta kaise hai? कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
11: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
12: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
13: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
14: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
12: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
15: दिल्ली BJP ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही BJP ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
16: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
17: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
15: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
18: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई इस पे तो जांच ही नहीं चल रही।
15: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार्क गेट में भी यही लिखा हुआ था, डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे, मुसलमान कहाँ जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।
4: सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारे क्यों डालने की कोशिश की जाती है?
5: मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा।
6: रामदेव का एक बयान अचानक से चर्चा के घेरे में आ गया, विवाद भी उस पर उठ रहे हैं, स्वामी रामदेव की तरफ से हिंदू राष्ट्र को लेकर, और इसके साथ ही जो बाकी बातें कही गई हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनके कहने के पीछे कारण क्या रहा है इसका। क्योंकि आम तौर पर जब भी हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी तरह का कोई बयान आता है, उसके इर्द गिर्द चर्चा जरूर होती है। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मूल अगर मैं आपके उस बयान का समझूं, क्या संदेश, क्या उद्देश्य आपका इस बयान के साथ स्वामी जी?
7: इसके पीछे एक ही भावना है कि हम सब राष्ट्र में एकता के भाव से रहे। हमारा संविधान भी हमें सिखाता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हम सर्वोपरि रखें। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए सत्य सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है, सच्चरित्रता, पवित्रता और राष्ट्र हित सब प्रकार से वो सर्वोपरि है। ये जो मजहबी एजेंडे चलते रहते हैं बीच बीच में, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ रिलीजियस लोग इस देश में विभाजन करते रहते हैं। मैं जाति, पंथ, वर्ग, समुदायों के नाम पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर किसी भी प्रकार के विभाजन का पक्षधर नहीं। मैं कहता हूं हम सबके पूर्वज एक है, तो इसमें कितना ऊंचा भाव आता है कि हम सब एक है, एकता का भाव। और पूर्वजों के चरित्र से, मैंने कहा अपने पूर्वजों के चरित्र जैसा अपना चरित्र बनाओ, और जैसे वो पराक्रमी थे, जैसे वो पुरुषार्थी थे, भाग्यवादी मत बनो और इस देश को आगे बढ़ाओ। तो ये कहीं विधानसभा लोकसभा में कोई बिल पास नहीं होगा, लोगों के चरित्र की पवित्रता से, लोगों की प्रीति से, लोगों की समरसता से और लोगों के पुरुषार्थ से ये हिंदू राष्ट्र का गौरव प्रतिष्ठापित तो होगा। और इसमें तो सबको गौरव होना ही चाहिए।
6: नहीं स्वामी जी, जो आपने कहा ना कि चाहे कोई दाढ़ी रखवाए या कटवाए, चाहे कोई कोई भी लिबास पहने, उसका चरित्र उसके पूर्वजों जैसा होना चाहिए। यहां पर पूर्वजों से आपका संदर्भ क्या है? क्योंकि जब भी कोई ये कहता है ना कि चाहे आप आज किसी भी धर्म के हो, आपके पूर्वज एक ही हैं, सब इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सब इससे आम राय नहीं रखते हैं भारत में।
7: अब तो नहीं श्वेता जी, अब चीजें बदल रही। हमारे सब भारत के 99% मुसलमान कहते हैं हम तो कन्वर्टेड मुसलमान है। इसका मतलब हमारे पूर्वज कौन थे? और ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, तीन दृष्टि रखिए इसके पीछे। ऐतिहासिक दृष्टि, 1400 साल पहले क्या दुनिया में इस्लाम था, 2500-2600 साल पहले क्या दुनिया में ईसाइयत थी, 3000 साल पहले क्या इस देश में यहूदी मत था, तो क्या था? मानवता। और इस मानव धर्म को ही वेद में मनोर्भव जनया दव्यम धर्म, हमारे पूर्वज जो साप्रथमा संस्कृति विश्ववारा का जो देश है, तो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का मतलब है राम की मर्यादा, कृष्ण का योग और कर्मयोग, हनुमान की सेवा और शिव का शिवत्व और समत्व, बुद्ध का बुद्धत्व और महावीर की अहिंसा और भगवान गुरु नानक देव जी की समता, सब में अपने पूर्वजों का जो सच्चरित्रता है, उनकी जो पवित्रता है, उसको हम जीवन में आत्मसात करते हैं तो ये तो देश बहुत महान बनेगा। देश केवल आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मान नहीं होता है, देश का चरित्र मान होना चाहिए। आज जिस तरह से रिश्तों का कत्ल हो रहा है, जिस तरह से देश का बचपन और देश का यौवन भटक रहा है, देश में जिस तरह से अलग अलग प्रकार का ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और एक दूसरे के प्रति मजहबी तौर पर जो घृणा, नफरत पनप रहा है, उसका समाधान है तो कि जब हम समान रूप से अपने एक पूर्वजों की संतान हैं और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं और उन जैसा पवित्र चरित्र हमारा होता है तो देश में कितनी महानता होगी। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई नफरत, कोई घृणा की गुंजाइश ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई वर्चस्व, किसी प्रकार से किसी के एक दूसरे की अधीनता वाला कोई भाव नहीं है, एक दिव्यता वाला भाव है मेरी बहन श्वेता जी।
6: पर स्वामी जी, आपने सुन लिया होगा कि जो
7: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंत्रियों ने भी बयान दिया कि हमारे भी पूर्वज एक ही है, हमारे डीएनए एक ही है, हम सब के का बड़ा जो देश है, गुरु देश है या पिता देश है या वो भारत है।
6: आपने सुन लिया होगा सब जो राजनेता आपको अपनी अपनी तरफ से खरी खोटी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये देश संविधान से चलता है, आपका हिंदू राष्ट्र का मॉडल उन्हें समझ में नहीं आ रहा है।
7: अब देखो, जो दुर्बुद्धि राजनेता है, या तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे या तो उनको भगवान सदगति प्रदान करे। तो मैं कह रहा हूं देश में संविधान सर्वोपरि है, लेकिन हमारा देश में संविधान यही हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी ऐसी, ये महाभारत, ये वाल्मीकि रामायण भी हमें सिखाती है, ये अथर्वेद भी हमें सिखाता है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये वेद का उद्घोष भी हमें यही सिखाता है। तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, हमारे लिए सनातन धर्म भी सर्वोपरि है, और हमारे लिए हमारे पूर्वज और उनका महान चरित्र भी सर्वोपरि है। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई विरोधाभासी बातें नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो थोड़े अल्पबुद्धि वाले, दुर्बुद्धि वाले, अविवेकी जो राजनेता हैं, उनको थोड़ी ऐतिहासिक समझ, थोड़ी अपनी बौद्धिक समझ को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना चाहिए। खाली कुछ राजनीतिक पार्टियां बना लेने से, कुछ वोट मिल जाने से, कुछ एमएलए एमपी आपके बन गए, उससे आप कोई महान नहीं हो जाते। महान तो तब होंगे जब पूर्वजों के
6: स्वामी
7: रहेंगे और उनके
6: ईरान अमेरिका युद्ध जब हुआ तब आपने जो बातें कही थी उसकी वजह से कई शिया मुस्लिम जो है वो आपसे बहुत ही प्रभावित भी हुए थे, आपके साथ हाँ में हाँ मिलाई थी। अब शिया धर्म गुरुओं ने भी आपका इस मुद्दे पर विरोध किया है और एआईएमआईएम की तरफ से भी बयान आ रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी हिंदू राष्ट्र की थ्योरी से नहीं।
7: नहीं देखिए, डरना तो भगवान से भी नहीं चाहिए, भगवान तो प्रेम करता है, भगवान डराता कहाँ। खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, और भगवान डराता कहाँ है, डरने की किसी को भी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक सिया सुन्नियों की बात है, मैं तो कहता हूँ सिया सुन्नी भी एक दूसरे से मत डरो, एक दूसरे को मत डराओ, नहीं तो अमेरिका जो है वो फायदा उठाएगा। मैं तो कहता हूँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स भी आपस में एक दूसरे को डरो मत और डराओ मत। मैं तो कहता हूँ आस्तिक और नास्तिक, जितने भी अलग अलग मत पंथ संप्रदाय है, जाति वर्ग समुदाय है, सब एक ही भाव रखो, हम सब के भीतर एक ही जैसा शरीर, एक ही जैसी इंद्रियां, एक ही जैसी चेतना आत्मा, और हम सब का ही की परमात्मा। तो ये एकत्व का भाव क्यों ना रखो मेरे भाई, और ये एकत्व का भाव ही ये सिखाता है कि हम सब के पूर्वज हिंदू आर्य वैदिक सनातनी थे, हम सब ऋषिकाओं की संतान है। अपने पूर्वजों को लेकर के कहां कंफ्यूजन है मेरी बहन श्वेता जी, बताओ।
6: 2009 में आपने देवबंद जाने का जिक्र किया
7: और मैंने वहां पर भी ये बात को कही थी कि हमारे मजा वाला हो सकते पूर्वज अलग नहीं, सबने तालियां बजाई थी और एक स्वर से समर्थन किया था।
6: 2009 में आपको स्वीकार किया गया, आज 2026 में नहीं कर रहे हैं सब।
7: अब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, देखो जिनको नेता बनना है, अपना वर्चस्व कायम करना है, जिनको पोलराइजेशन करना है, उनको ये सिर्फ फ्री बातें करनी होगी। मुझे ना एमएलए बनना, ना सीएम, ना पीएम, ना प्रेसिडेंट, ना मुझे कोई शंकराचार्य बनना है, ना मुझे कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना है, ना मुझे कोई अपना मजहबी वर्चस्व बनाना है। मुझे तो भारत माता के प्रगति के लिए अपने जीवन की आहुति लगानी। मैं सबसे कहूंगा राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, अपने पूर्वजों का चरित्र सर्वोपरि है, इसको मान करके सब आगे बढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। ये जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर आपस में ये जो घृणा है, नफरत है, एक दूसरे से दूरियां, हेट है, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, चाहे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम। तो राम और हनुमान, कृष्ण
1: और जितने भी गौतम कणाद, जननी पाणिनि, पतंजलि आदि अपने महान पूर्वजों के ऊपर सबको समान रूप से क्यों ना गर्व रखना चाहिए मेरी बहन। अब कुछ लोग सिर फिरे हैं, अब उन्हीं के लिए तो बहन दिया कि भाई ये सिर फिरा पन बंद करो, देश को आगे रखो, संविधान को आगे रखो, अपने चरित्र को इतना पवित्र बनाओ कि सारी दुनिया हमसे सीखे। कल भी मैंने बोला था, फिर दोहरा रहा हूं, तद्देश प्रसूतस्य सकासादग्र जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्व्याम सर्व मानवा। भारत के महान होने से मतलब विकसित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, दिव्य भव्य भारत का मतलब केवल अमेरिका की तरह दूसरे देशों पर ध्वज जमाना, युद्ध थोपना नहीं है। भारत पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का और रिलीजियस कॉलोनाइजेशन का विरोधी देश है। हम तो उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम के उपासक, हम दुनिया को एक बाजार में एक परिवार मानते हैं। मेरी बहन, ये इस बयान के पीछे का तात्पर्य है और यही मैंने पूरे अपने लगभग आधा पौने घंटे का जो व्याख्यान है, पूज्य हमारे जगतगुरु निश्चलानंद जी महाराज पूरी पीठ के जो शंकराचार्य, उनकी सन्निधि में मैंने यही बात कही। श्वेता जी, इसमें आपत्तिजनक बात क्या है वो आप मुझे बताओ, मैं अपनी बात भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ।
6: आपत्तिजनक आपत्तिजनक है या नहीं, ये तो जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके बीच सवाल तो मेरा ये है कि जहां पर एक धर्म के भीतर एकता नहीं आ रही है और हर धर्म में इस तरह की चीजें दिख रही हैं, एक धर्म के भीतर एकता नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं कि सभी अपने धर्म के भेदभाव भुलाकर अपने पूर्वजों को केवल भारतीय होने को और भारतीय संस्कृति को याद रख के आगे बढ़े, आपको लगता है कि आपके इस विचार को स्वीकार कोई भी करेगा आज?
1: क्यों नहीं करेंगे, 99% लोग करेंगे, 1% जो सिर्फ रे लोग हैं उनको लोग ही समझा देंगे। हमारे यहाँ तो एकत्व मनोपश्यता ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम सियाराम में सब जगह जानी, ये हमारे देश की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल पहचान, ये हमारे देश की मूल विरासत है। इसको कोई ना माने तो ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता होगी। और मैंने ये बोला था, फिर दोहरा रहा हूं मेरे बहन श्वेता जी, किसी को बुरा लगे तो लाख लगे, जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ है, मैंने कहा था जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखो। अपने पूर्वजों की जो महान शिक्षाएं, महान आदर्श है, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, राम राज्य के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ छिछोरे लोगों ने कुछ हल्की बातें कही होंगी, तो मुझे लगता है इस बहाने हिंदू राष्ट्र से मतलब, आर्य वैदिक राष्ट्र से मतलब, और एक भारत की मूल संस्कृति, मूल विरासत से क्या तात्पर्य है, ये शायद ये बातें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी।
6: स्वामी जी, एक और चीज मैं इसमें जोड़ लेना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे जो आपके बयान पर रिएक्शंस आ रहे हैं जो आम लोगों के, उनमें ये भी सवाल सब उठा रहे हैं कि एक तरफ मथुरा में वहां पर कार सेवा की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आप मंदिर को लेकर आप उसका समर्थन भी करते होंगे, तो ऐसे में विद्वेष और एकता ये एक साथ कैसे आएंगे?
1: नहीं, देखिए, इस देश में कुछ मूल स्थान है हमारे, जैसे काशी विश्वनाथ है, सबको पता है कि वहां युगों युगों से भगवान शिव का वो पवित्र धाम है। ज्ञानवापी मस्जिद तो मुगलों के काल में एक अलग प्रकार से एक कुछ जो आक्रमणकारी आक्रांता जो इस्लामिक थॉट प्रोसेस है ना, उनके साथ अपने आप को अलाइन मत कीजिए। जहां तक भगवान कृष्ण का सवाल है, तो 5500 साल पहले ये एक, इसके पीछे मैंने कहा ना, एक ऐतिहासिक सरोकार है, एक सांस्कृतिक सरोकार है और इस देश की एक विरासत का गौरव है, उसको आप कैसे भुला सकते हैं? तो हर जगह मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करना ये तो मूर्खता की बात है। लेकिन कुछ हमारे पवित्र तीर्थ है, जैसे मथुरा है, जैसे काशी विश्वनाथ है, इनके ऊपर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो किसी भी प्रकार के विवाद का पोषक नहीं रहा हूं, मेरा पूरा 50 सालों का जीवन है, उसमें भी 35 सालों का तो सार्वजनिक जीवन है, 60 साल का लगभग मैं हो चुका हूं, तो मैंने तो कभी भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत की बात नहीं की और आज भी एकता की बात कर रहा हूं और अंतिम श्वास तक करूंगा। और मैं आश्वस्त हूं एक दिन भारत पूरा जुड़ेगा, और मैं खाली भारत ही नहीं, मैं तो कहता हूं पूरी मानवता में एकता होनी चाहिए। ये जो एक दूसरे के साथ युद्ध, घृणा, नफरत, और ये जो वर्चस्ववाद का एक, पहले तो राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ लोगों ने जो है नफरत फैलाई, फिर जो है अलग अलग और दूसरे थॉट प्रोसेस के नाम पर नफरत फैलाई, किसी भी प्रकार के वर्चस्ववाद का मैं विरोधी हूं। मैं तो कहता हूं सब मिलजुल करके रहो और देश को सर्वोपरि मानो। संविधान को सर्वोपरि मानो, मानवता को सर्वोपरि मानो, सच्चरित्रता पवित्रता को दिव्यता को सर्वोपरि मानो ना ये। और बाकी जो लिबास अलग अलग है, जाति पंथ वर्ग समुदाय भारत में अलग अलग नाम उसे जाना जाता है, लोगों को सरनेम अलग अलग आदि है, लेकिन हमारे भीतर तो पंच तत्व तो एक है ना, आत्मा तो एक है, सबका परमात्मा या प्रकृति मानो, परमेश्वर मानो, एक सुपर पावर मानो, कुछ भी नाम बोलो, निराकार सगुण साकार, हम तो सब जो है विचारों का आदर करते, तो इसमें भेद कहाँ आ गए मेरे बहन श्वेता जी।
6: ठीक है, चलिए आपके इसी मानवता और एकता के संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए स्वामी जी,
1: बहुत बहुत प्रणाम।
6: देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: Summer's too good to run on empty. Save 30% on more than 4,000 vitamin and body care items at Fresh Time Market from July 22nd through July 28th. Stock up on your wellness essentials like Mary Ruth's multivitamins, Truvani plant-based protein powder, Brownie's facial patches, and Sunbum sunscreen. Because feeling your best should be part of every summer adventure. See you and your friends July 22nd through the 28th. Fresh Time Market, rooted in your well-being.
9: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हां
5: ओ ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: बिना तो चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: वी आर ओवर जिमी।
13: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
14: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
15: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
16: योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है।
17: ऋषि मुनि है, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था,
16: बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है उसे हमें अपनाना चाहिए।
17: हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ।
16: बाबा रामदेव के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पहचान संविधान है और सभी धर्मों और मान्यताओं की सुरक्षा उसी के दायरे में सुनिश्चित है। वहीं शिया धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और देश संविधान के अनुसार चलता है।

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे आजा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: मैं सलमा,
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: When it's too hot to go out, it's definitely too hot for your AC to go out. The Waterworks Heating and Cooling Pros are here to help. We offer fast repair and AC replacement for any cooling system when you need it. Plus, we're a premier Linux dealer and can install an energy-efficient system for a great price. Call the Waterworks at 614-232-2222 or visit us online at thewaterworks.com. The Waterworks. Better care. Better value. Better results.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station.

0: अलावा मामले में एससी का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के दिए निर्देश, ट्रस्ट को भी नोटिस, सोमवार को अगली सुनवाई। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन का आज आखिरी दिन। नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट को भूलकर नरोत्तम मिश्र ने आशुतोष तिवारी के लिए जनसभा को संबोधित किया। अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल की पार्टी। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। पहले क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। यस्तिका भाटिया ने जमाया शानदार शतक। ईरान को ट्रंप की चेतावनी, कहा हॉर्मुज खुला है, खुला ही रहेगा, तेहरान की जरूरत नहीं। तेहरान की नाकेबंदी को फिर से कर रहे हैं लागू।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। अयोध्या राम मंदिर ने सीईओ की भर्ती पहली बार 6 साल में पहली बार निकाली है। आवेदक का हिंदू होना और उम्र 50 से 70 साल के बीच होना जरूरी है। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। इसके साथ शर्तें और भी हैं, लेकिन पहले बात उस शर्तिया सियासत की जहां चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला दांव चला गया है। शब्द है कार सेवा, जिसका नाम लेते ही अक्टूबर और नवंबर 1990 याद आता है। अयोध्या में कार सेवा हुई, मुलायम सिंह की सरकार थी, गोली चली। आज तक उसकी याद करा के तुष्टिकरण के कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया जाता है। अब मथुरा में अगले महीने कार सेवा का ऐलान कृष्ण जन्मभूमि के लिए हुआ है, और तब सवाल है कि अयोध्या के मुद्दे पर सनातन ही समाजवादी की बात करने वाले अखिलेश यादव क्या करेंगे? चुप रहेंगे या बोलेंगे? क्या चित भी मेरी पट भी मेरी बीजेपी का दांव यही है?
1: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
2: हर दिन राधे राधे कहते हैं,

0: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
1: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
2: अयोध्या पर बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर घेरेंगे? इस सवाल की दो वजहें हैं। पहली वजह समझिए, पहली वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है।
3: सब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
2: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
0: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
2: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
1: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते।
2: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे, जब चुनाव 2022 का आया।
1: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
2: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
4: आप हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है।
2: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
5: अयोध्या धाम अब ये तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाएं तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़ें।
2: अब तक तो तुष्टीकरण के सियासी कटघरे में बीजेपी की तरफ से खड़े किए जाते रहे अखिलेश यादव 2027 से पहले बहुत कोशिश इस नैरेटिव को तोड़ने की करते आए, जिसमें इटावा का केदारेश्वर मंदिर बनवाना हो या फिर राम मंदिर दर्शन करने जाने की तारीख बताना हो। अखिलेश जवाब देते हैं,
1: केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे।
2: लेकिन अब सवाल है कि अगले महीने क्या कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश यादव बोले तो भी घिरेंगे और चुप रहे तो भी? वजह ये कि 9 अगस्त से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कार सेवा का ऐलान हुआ। अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया कि बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर पैदल मार्च करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्मस्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ होगा।
6: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है उसको बना के रहेंगे। बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहां जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे, और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
7: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार्य सेवा में सम्मिलित होंगे, लेकिन बस एक ही है कि योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े, और नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से जाकर के योगी जी को असहज नहीं करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करके यह संदेश देना चाहिए।
8: 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे, और उसके बाद उसका केवल मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने।
2: अब तक संघ परिवार की तरफ से इस कार सेवा को लेकर कोई समर्थन नहीं दिया गया, लेकिन ये तय है कि अगर संत समाज कार सेवा करता है तो ये मुद्दा बनेगा जहां बोलना पड़ेगा, और तब अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, राधे राधे या फिर कुछ और।
9: श्री कृष्ण के वंशज है तो श्री कृष्ण के साथ में खड़े हो, मोहम्मद के साथ में खड़े ना हो, इसकी जरूरत है।
10: आप कितना भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर लीजिए, धार्मिक ध्रुवीकरण कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे, शिक्षा में लूट के सवाल पे, नीट के लूट के सवाल पे, विकास में जीरो हो गया, जो लूट हुई है श्री रामचंद्र जी के नाम पे, इसको कौन नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
11: अखाड़ा परिषद हो या देश के दूसरे साधु संत, निवेदन है कि वो भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे चढ़ावा चोरों के बहकावे में ना आए। चढ़ावा चोरी से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है, और तमाम उससे जुड़े हुए जो सरकारी और राजनीतिक संत हैं उनके भी चेहरे सामने आ गए हैं। अब इस पाप को धुलने के लिए भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है।
12: मथुरा की कार सेवा से क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी गणित पर असर पड़ेगा, इसीलिए सीटों का गणित हमने आपके लिए निकाला है। पश्चिम यूपी में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं, 135 विधानसभा सीट हैं, जहां 2014 और 2019 में तो बीजेपी ने 24 और फिर 19 सीट जीती, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 में से 13 सीट ही बीजेपी जीत पाई, और तब समाजवादी पार्टी 3 लोकसभा चुनाव में पहली बार दहाई तक पहुंच गई। कांग्रेस का भी खाता खुला। वहीं 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी के ऊपर हासिल है। ऐसे में सवाल है कि मथुरा का मुद्दा क्या एक तरफ अयोध्या पर आक्रामक होते अखिलेश की काट बनेगा और पश्चिम तक हिंदू वोट को बंटने से रोकेगा, क्योंकि अगर केवल ब्रज क्षेत्र की भी बात करें तो 2022 में ब्रज इलाके में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को केवल 12 सीटें मिल पाई थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच गई। अब 2027 में यह बढ़त किसके पास रहेगी, सवाल इसका है। अखिलेश यादव के लिए चुनौती इस वक्त केवल मथुरा की कार सेवा ही नहीं बन रही, बल्कि पश्चिमी यूपी में उनकी मुस्लिम वोट वाली ताकत को मिल रहा चैलेंज भी बन रहा है। घेरने वाले भी कोई विरोधी नहीं बल्कि गठबंधन के साथी हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 में यूपी के 2 लड़के बनकर उतरे थे, लेकिन कमाल नहीं कर पाए। 2024 में यह गठबंधन काम कर गया। अब 2027 से पहले राहुल गांधी के सांसद इमरान मसूद ही ऐसे बयान अखिलेश यादव के लिए दे रहे हैं जिसे सुनकर सवाल है कि क्या सनातन ही समाजवाद कहने वाले अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट भी बंटने वाला है।
13: इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा।
2: लेकिन गठबंधन की मजबूती की बात करते अखिलेश यादव को सबसे बड़ी चोट उनके सबसे मजबूत वोट बैंक पर ही लग सकती है, जहां आपकी ओवैसी नहीं बल्कि गठबंधन की साथी कांग्रेस से सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद एक के बाद एक वार सीधे अखिलेश यादव पर करते हैं। इमरान मसूद का पहला वार है कि मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं।
14: तो नतीजे है ना, 2022 में क्या था, 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था। अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे, आप उनको पूरा पोसते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ नजर समझ में आता है ना कि मुसलमान के इशू के ऊपर आपकी खामोशी।
2: इमरान मसूद का दूसरा बार, अखिलेश यादव मस्जिद मदरसा या दरगाह टूटने पर कुछ नहीं बोलते हैं।
14: खत्म हो जी चुकी है, खत्म कर दिया गया, अब बचाऊं मैं? अब मेरे पीछे लगे हुए हैं कि सब मिलकर के सबको खत्म करेंगे कि मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बनकर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिया गया उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे पीछे आप लगा दे तो हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे?
2: इमरान मसूद का तीसरा बार, अखिलेश यादव को बोलता मुसलमान बर्दाश्त नहीं है।
15: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं, मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले बर्बाद कौन हुआ है। बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
2: इमरान मसूद का चौथा बार, मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं।
15: मुसलमान के मुद्दे पर बोलते नहीं, और मुसलमान के हर मुद्दे पर इनकी आवाज खामोश हो जाती है, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। मस्जिदें गिरे, दरगाहें टूटे, एक लफ्ज सुना कभी आपने अखिलेश जी से? किसी जगह समाजवादी पार्टी का सुना है आपने कि वहां मस्जिद गिरी हो, ये जाकर के इन्होंने देख भी लिया हो? नहीं देखते, नहीं बोलते, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए, और मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी को हराने की ठेकेदारी मुसलमान को बंद करनी चाहिए। जब तक बीजेपी को हराने की ठेकेदारी मुसलमान करेगा बीजेपी नहीं हारेगी, और बीजेपी जीतेगी और पिटेगा मुसलमान।
2: इमरान मसूद का पांचवा बार, कांग्रेस की वजह से ही अखिलेश यादव 2024 में ज्यादा सीटें जीते।
14: हमने 2024 में दिखा तो दिया आपको, 2024 में आपको 37 सीटें जितवाई हमने, जितवाए ना। आप ये जो बार बार बोलते हो, वरना 2022 में जीत लिए होते ना, आप सरकार बना ली होती इतने सीट के ऊपर। तो
15: एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते, दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सके, क्या है वो? तो मुझे क्या जरूरत आ रही हो? अपने छोटे छोटे लोगों से आप हमले कराते हो।
2: इमरान मसूद के इन्हीं बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि राहुल गांधी अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए, इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है बीजेपी से सुपारी मिल गई है। इंडिया गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं।
16: हमारे लिए सीट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जीत जरूरी है। और जब तक ये मंत्र वो अपने अंदर नहीं बैठा लेते हैं, तब तक ये इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है, और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है।
17: रंग बिरंगे रणछोड़ बहादुरों का जो रंगमंच है, उसमें जो झालर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। और ये शॉर्ट सर्किट जो है वो यूपी के 27 के चुनाव से पहले दिखाई पड़ रहा है, और चुनाव आते आते जो है उसका क्या हश्र होगा, इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। कांग्रेस की दिक्कत ये नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि इस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इसकी एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर कर चुकी है। अब ये वयोवृद्ध पार्टी की जो एक्सपायरी डेट है, वो जब भी एक्सपायर कर जाएगी तो जो उनके साथी हैं उनमें रिएक्शन साफ दिखाई पड़ेगा।
2: एक बात पर गौर करिए, जो सवाल अखिलेश यादव पर मुस्लिमों के मुद्दे पर इमरान मसूद उठा रहे हैं, वही आरोप असदुद्दीन ओवैसी भी लगाते रहे।
18: अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहने हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी, अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरों दीवार को हिला के रखना चाहिए था, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए।
2: ओवैसी को तो बीजेपी की बी टीम कहकर समाजवादी पार्टी खारिज करती आई, लेकिन इमरान मसूद को कैसे खारिज किया जाएगा जो खुद को राहुल और प्रियंका का सबसे करीबी भी बताते हैं।
14: मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मुझे जो आदेश देंगे मैं वो मानूंगा।
2: उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर है, ये कहिए हर 5 में से एक वोटर मुसलमान है, जिस वोट का समाजवादी पार्टी 75% हिस्सा हासिल करती आई, लेकिन जब राहुल अखिलेश एक हुए तो 90% तक मुस्लिम वोट का हिस्सा इंडिया गठबंधन को मिला। वहीं पर अब जबकि गठबंधन में ही मुस्लिम वोट पर खटपट होने लगी तो क्या मुस्लिम वोट बटेगा? अखिलेश यादव जब सनातन ही समाजवाद बताने लगे हैं, तब क्या कांग्रेस के नेताओं को अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की सियासत याद आई है?
12: चढ़ावा विवाद एक एक करके कई मंदिरों तक पहुंच चुका है। राजस्थान के नागौर के बुटाटी मंदिर में भी चढ़ावे में हेरफेर के आरोप लगे हैं। ये घोटाला 22 करोड़ रुपए का है। एसडीएम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फर्जी रसीद देकर चढ़ावे की चोरी की गई है, सोने चांदी का ठीक से रिकॉर्ड नहीं रखा गया।
2: राजस्थान के नागौर का 500 साल पुराना बुटाटी मंदिर, जो मंदिर कम और अस्पताल ज्यादा लगता है। बुटाटी मंदिर को लेकर दावा है कि लोग यहाँ मरणासन्न हालत में आते हैं तो आशीर्वाद पाकर खुद चलकर घर जाते हैं।
19: तो हम यहाँ अपनी माँ जी को लेके आए और सब यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें आके, और हमारी माँ जी को भी अब चल रही है, वो बिना सहारे से चल रही है। जब लाए थे हम तो व्हील चेयर पे लाए थे और अब वो सब अपने आप भी चलने लग गई है बिना किसी सहारे से।
2: 500 वर्षों से राजस्थान के नागौर में लकवा के रोगियों का इलाज दैवीय शक्तियों से किया जाने का यहाँ दावा होता आया है।
20: और आपके मरीज के कितना फर्क है आने के बाद?
21: 50% से ज्यादा फर्क है उनसे, मतलब चला फिरा भी नहीं जा रहा था, 2 दिन से वो चल फिर पा रहे।
2: इस मंदिर में चतुर्दास महाराज की समाधि है जो लकवा रोगियों का कहते हैं कि इलाज कर देते हैं। रोगी 7 दिन मंदिर में रुकते हैं, हर रोज समाधि की 7 फेरी लगाते हैं, संध्या आरती में आकर बाबा की धुनी से भभूत लेते हैं और दावा है कि लकवा रोग ठीक हो जाता है।
19: तो आज हमें 6 दिन हो गए यहाँ आए हुए, कल 7वां दिन है, कल सुबह की फेरी होगी हमारी और उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। तो साथ में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई VIP नहीं है यहाँ पे, सबको एक साथ रहना पड़ता है, सबको ऐसा एक ही खाना खाना पड़ता है, यहाँ फ्री है सब खाना पीना, सब फ्री है।
2: राजस्थान का जो मंदिर लकवा के निशुल्क उपचार और चमत्कार के लिए बताया जाता है, उसमें क्या आस्था के नाम पर भक्तों को लूटा गया? क्या मंदिर के चढ़ावे में 22 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया? बुटाटी धाम में गबन को लेकर SDM की रिपोर्ट चर्चा में है। 13 सदस्यों की समिति ने 146 दिन की जांच के बाद इस गबन का पर्दाफाश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 और 24-25 के ऑडिट रिपोर्ट के असली दस्तावेज से मिलान करवाने पर 22 करोड़ रुपए के कथित गबन और वित्तीय गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं।
22: खासकर हम मंदिर की बात करें, तो जहां पर अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ज्यादा हो तो वो करना चाहिए, मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग करनी चाहिए, जो नहीं थे, जिसकी कि उस रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स पाई गई और आपने भी बताया, तो ये फाइंडिंग्स आई हैं उसके अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी इसका एक पार्ट है, तो हमने अभी फाइंडिंग्स कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भेजी है क्योंकि वो सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। और अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि हाईकोर्ट के अंदर जो डायरेक्शंस थे, तो अब हम जो है कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट को भी प्रस्तुत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे।
2: आज तक को पता चला कि रिपोर्ट में 2,60,00,000 रुपए के जेवर का रिकॉर्ड नहीं होने की बात है। रिपोर्ट में गांव के विकास और मरम्मत कार्यों में 1,28,00,000 की गड़बड़ियां पाई गई। कंप्यूटर फर्नीचर के नाम पर 97,48,000 रुपए बिना बिल के खर्च दिखाए गए। 82,41,000 रुपए सीसीटीवी कैमरों पर खर्च हुए लेकिन निविदा नहीं मिली। मंदिर समिति ने जाली बिल जमा करके मंदिर के खजाने से पैसे निकाले। एक ही साल में किचन का खर्च 335% बढ़कर 90,64,000 रुपए हो गया। 2 साल में कुल 1,17,00,000 रुपए खर्च करने का दावा किया गया, फिर भी ना तो सप्लायर की लिस्ट, ना ही जीएसटी बिल और ना ही खाना खिलाए गए लोगों का कोई रिकॉर्ड मौजूद है।
22: कमेटी बनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शंस थे जिसमें कि हमें ये कहा गया था कि आप रिपोर्ट इंक्वायरी जरूर करें, ऑल दो फाइनल डिसीजन से मतलब आप कोई कार्रवाई के लिए हमें किसी न किसी रूप में बाध्य किया था, तो हम नो डाउट हम ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ही कमेटी की फाइंडिंग्स हैं वो प्रस्तुत करेंगे और उसमें जो भी फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी और जो हुआ है वो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखेंगे।
2: प्रशासन का कहना है कि समिति के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बुटाटू के स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगने के लिए कई नोटिस भेजे गए, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं कमेटी के चेयरमैन का आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया है।
0: मेरा पक्ष जाने बगैर, मेरे पक्ष को उन्होंने रिकॉर्ड में लिए बगैर एक तरफा कार्रवाई की है और जो 23 तारीख को जो उनकी बैठक थी, उस बैठक में जहां हमारे 13 सदस्य बनाए गए थे जांच समिति को, उसमें से तो 6 ही मौजूद थे और उनमें अकाउंट्स वाला नहीं है, तो कहां से तो उन्होंने आंकड़े जुटाए 22 करोड़ के। मेरा सबसे बड़ा सवाल उनसे है कि आंकड़े कहां से आए आपके पास, अगर आंकड़े आए तो मुझसे भी बात करते। जांच रिपोर्ट ही गलत है, तथ्यात्मक नहीं है। आप ही कह रहे हैं एटीएम का पैसा नहीं दिखाया, मैं कह रहा हूं दिखाया हुआ है बैंक के अंदर, बैंक के अंदर आना पैसा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये 22 थी, ये जांच रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो दुर्भावना से राजनीति से प्रेरित बनाई गई थी, तो इसकी वापस कराने में कहां आपत्ति है।
2: इस मशहूर मंदिर के संचालक देवेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता हैं, जिन्हें पिछली गहलोत सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त था। वहीं उनकी पत्नी मोहन कंवर जयपुर में कांग्रेस की पार्षद रहीं, लेकिन अब ये देवेंद्र सिंह मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर सफाई देते हैं। सवाल देश विदेश से आने वाले भक्तों की आस्था का है, जिनके लिए मंदिर है, जो यहाँ की लौ को चमत्कारी मानते हैं, खुद को और अपनों को बीमारी से छुटकारा दिलाने की यहाँ पर उम्मीद समझते हैं, इसीलिए चढ़ावे में हेर फेर के आरोपों का सच जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। केशाराम के साथ देवांकुर वाधावन, नागौर, आज तक।
12: एसडीएम की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स से मिलने वाला 18 लाख का किराया मुख्य लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं है। आज तक की टीम जब मंदिर पहुंची तो उसने इसका रियलिटी चेक किया और पाया कि बिना पर्ची दिए ही सारा काम हो रहा है।
3: आप देख सकते हैं ये वो सुलभ शौचालय है बुटाटी धाम के अंदर, और यहाँ पर जिस तरह से एक व्यक्ति को बिठाया गया है, पर कहा यह जा रहा था कि इस व्यक्ति के द्वारा कोई भी बिल बुक या रसीद मेंटेन नहीं की जाती है। आप यहाँ पे सुलभ शौचालय में बैठे हुए हैं, ये पैसा आप ले रहे हैं, कोई रसीद देते हैं क्या?
4: हम कर देते हैं ना, कर देते हैं।
3: रसीद इनको दिए क्या?
4: इसको
3: आई है आपको, इन्होंने पैसा दिया है, रसीद दिए क्या आपने?
4: नहीं, कर रसीद नहीं, हम तो कर लेते और कर शाम को इकट्ठा देते,
3: कोई रसीद नहीं देते आप?
4: नहीं।
23: क्यों? इनका जो इनकम है, जो 5 रुपए और 10 रुपए स्नान के लिखे हुए हैं, तो ये जो यात्रियों से लेते हैं और मंदिर के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाते हैं, और इनकी जो कैश बुक है उसमें इसकी एंट्री नहीं होती है, तो यहाँ पे हजारों यात्री आते हैं, तो कोई तो यहाँ पे दाल चढ़ा के जाता है अपनी श्रद्धा से, कोई सब्जी चढ़ा के जाता है, कोई जो भी है अपने श्रद्धा अनुसार 1,000, 10,000, 5,000 का राशन चढ़ा के जाता है, उसी से ये भोजनशाला चलती है। मेरे हिसाब से मंदिर वालों को ज्यादा कुछ लाना नहीं पड़ता है।
12: और मंदिर के बाद अब बात मस्जिद की। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद में नमाज स्थगित कर दी गई। अब बीजेपी विधायक सौरभ सिकदर के हवाले से खबर है कि इस मस्जिद को एयरपोर्ट के अंदर से हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसे लेकर पहले ही कह चुके हैं कि इससे सुरक्षा को खतरा है।
2: इस दरवाजे दरवाजे को देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई घर है जिसके बाहर लगी डोरबेल बजाकर मेहमानों की घर में एंट्री होती होगी, लेकिन आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है क्योंकि ये किसी गली मोहल्ले में बने घर का दरवाजा नहीं है। ये कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचाने वाला गेट है जहां सिर्फ आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जाती रही। अब आप कहेंगे कि एयरपोर्ट के अंदर जाने का गेट यहां क्यों बनाया, तो इसका जवाब तस्वीर में दिख रही ये बांकरा मस्जिद है जो न सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर बनी है बल्कि रनवे के बेहद नजदीक, जिसे सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना गया है क्योंकि ये मस्जिद एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन लेवल 3 में आती है। सेकेंडरी रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर है, इस वजह से रनवे का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यहां होने वाली नमाज पर रोक लगा दी।
1: और ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी अब तक, क्योंकि इसी गेट से कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि इस मस्जिद को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले कई दशकों से जो ये 136 साल पुराना मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर है वो एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज कुछ मीटर दूर है, 160 मीटर दूर है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती बन चुकी है।
2: पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में इसे लेकर सवाल किया था जिस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया।
5: एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद है, बांका मस्जिद, जो काफी टाइम से उसको हटाने की कोशिश किया जा रहा है।
6: अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता ना, वो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठाया, तो हम लोग आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारूप राज्य में देखिए कितने एयरपोर्ट, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक पड़ा हुआ है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोसू के एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है। सुभाष चंद्र बोसू जैसे अपना मार्गलेस को एक्सपेंड कर दिया था, जिसका बाहर भी चले गए वो भी हम लोगों को नजर में रखना चाहिए। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
2: सवाल है कि जिस एयरपोर्ट से यात्रा करने के लिए किसी को भी 4 सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, वैध हवाई टिकट, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आईडी प्रूफ और पासपोर्ट दिखाना होता हो, सुरक्षा कर्मी टिकट पर लिखे नाम का आपके आईडी कार्ड से जहां मिलान करते हो, फिर सामान की चेकिंग होती हो, बोर्डिंग पास मिलने के बाद यात्री को अपने हैंड बैग से इलेक्ट्रॉनिक सामान और धातु से बनी चीजें निकालकर प्लास्टिक की ट्रे में रखनी होती हो, विमान में सवार होने से पहले शारीरिक और दस्तावेज की दोबारा जांच की जाती हो, उसी कोलकाता एयरपोर्ट पर सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर रनवे के नजदीक बनी मस्जिद में जाने की छूट कितनी सही है, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 समानांतर रनवे हैं। पहले रनवे का इस्तेमाल विमानों की लगातार आवाजाही के लिए होता है, वहीं दूसरे रनवे का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब मुख्य रनवे तकनीकी खराबी या मरम्मत की वजह से उपलब्ध ना हो। ऐसे में सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल होता है जिससे थोड़ी ही दूरी पर यह मस्जिद है। ये मस्जिद सेकेंडरी रनवे से सिर्फ 165 मीटर उत्तर में और एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। एयरपोर्ट के सूत्रों का कहना है कि रनवे से किसी भी इमारत की कम से कम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए, इस तरह से ये नियमों के खिलाफ है। बावजूद इसके ये मस्जिद दूसरे रनवे के अप्रोच एरिया के बेहद करीब है जहां लगातार मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन शुभेंदु सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है।
7: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি, ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ করতে পারবে না, তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
2: अब सवाल है कि यह मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर कहां से आई, तो इसका जवाब यह कि मस्जिद का इतिहास एयरपोर्ट से पुराना है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उठ रही है।
8: इसको शिफ्ट करवाया जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि यह बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है कभी भी, और रनवे के बीच में ऐसे मस्जिद नहीं रह सकता है, और क्योंकि यहाँ बड़े सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, वहाँ पे घुसने के लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होता है, एक आधार कार्ड दिखा के सीधा लोग चले जाते हैं, और वो जो एरिया है सिक्योरिटी का लेवल 3 एरिया है एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट का एक्सटेंशन के लिए भी 2 रनवे नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का जमीन है, जिस जमीन में ये मस्जिद है वो लोग बातचीत कर रहा है, विकल्प जमीन के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, लेकिन ये सिद्दीकुल्ला चौधरी पर्सनली इसको बाधा दे रहा है, लोगों से बाधा दिलवा रहा है कि वहाँ से ये नहीं हट सकता है, अजीब अजीब ये सारे तर्क दे रहा है। तो देखिए, अगर हमारे जमीन के ऊपर अगर किसी का इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने के लिए हमको किसी का परमिशन नहीं लेना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी के पास परमिशन क्यों ले, उनके जमीन पे है, वो तैयार करेगा उसको कब हटाना है कैसे।
2: कोलकाता एयरपोर्ट के गूगल मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि दूसरे रनवे के बिल्कुल आगे है, जिससे उसे आगे तक नहीं बनाया जा सका। ये देखिए, पहला रनवे पूरा बना हुआ है, लेकिन उसी के समानांतर बना दूसरा रनवे इस मस्जिद से पहले ही खत्म हो जाता है।
9: तो रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है, अभी काफी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाए।
2: इस तरह ही मस्जिद सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरा मानी गई। एक तरफ कोलकाता एयरपोर्ट के भीतर मौजूद इस मस्जिद के अंदर सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर पहुंचा जा सकता है, वहीं दूसरा रनवे पूरा नहीं बनने की वजह से यहां पर बड़े विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर यह मस्जिद बनी है, जिसमें एंट्री दिलाने वाले दरवाजे को बंद कर दिया गया है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
12: जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने शुभेंदु अधिकारी को सीधे सीधे चुनौती दी है, कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन जबरदस्ती मस्जिद लेने पर मुसलमानों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। हालांकि इसके साथ साथ वो शांति की अपील भी करते हैं।
10: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, जोर करे मस्जिद निले नेबे, मानुष बोलबे मोदी सरकार मस्जिद भेंगेछे, शुभेंदु सरकार मस्जिद भेंगेछे, तिनि करछेन एई कथा आमि बोलते पारबो ना, ए खबर आमार काछे नेई, किन्तु तिनि मुख्यमंत्री, आलोचनार रास्ता खोला आछे। इस्लाम धर्मेर मध्ये बहु विषय तादेर अजाना, बल प्रयोग करे मस्जिद निले মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমি বলবো শান্তিতে থাকবেন, রাস্তায় নামবেন না।
12: और अब आपको उस खबर से खबरदार करते हैं जहां एक मंत्री अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही पर उठते सवालों का जवाब देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने हाथ हिलाकर कहा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है। अब भी कई गर्भवती महिलाओं की किडनी खराब हो जाने से वो डायलिसिस पर हैं। वहां स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने बाद भी ये नहीं बता पा रहे कि आखिर मौत की वजह क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी महिलाओं की मौत का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ दिया जाता है ये कहकर कि अरे सब गंभीर हालत में आए, और इसके बाद मंत्री हंसकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए।
11: 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद,
24: मंत्री जी जवाब
11: ब्रेक के बाद,
24: मंत्री जी जवाब
11: ब्रेक के बाद,
24: ब्रेक के बाद।
2: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो राजस्थान में दो महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद।
11: ब्रेक के बाद
2: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
13: हर 2 दिन बाद तो इनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाए जो बढ़िया है, ताकि हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
2: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
11: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मानसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
2: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
11: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ्स हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ ही चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
2: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद भी वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
11: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है? अरे 18 कैसे हो गई?
2: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
11: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज अ मिनिस्टर रहा है, नंबर वन सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर टू आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
2: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
15: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसान दे नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
2: इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
11: ब्रेक के बाद
2: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
12: चलिए सीधा हमारे संवाददाता शरद कुमार के पास ही हम चलते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। 18 मौतों का मामला है, गर्भवती महिलाओं की को जो और कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं उसका मामला है। शरद, ऐसे में सबसे पहले ये समझाइए कि क्या सरकारी अस्पताल में जो ये आंकड़ा आ रहा है क्या ये सामान्य है, क्या पहले भी अलग अलग सालों में ये देखा गया है, और दूसरा ये कि ये जो जिस ब्रेक की बात कर रहे हैं ना, वो ब्रेक उनका पूरा कब होगा, कब ब्रेक के बाद लौटेंगे जवाब देने के लिए?
14: बिल्कुल श्वेता, आप ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ बांसवाड़ा और भिलवाड़ा और दो दिन के ब्रेक के बाद मिलेंगे। इसी तरह से कोटा गए थे, ब्रेक के बाद मिले थे तो बीकानेर हो गया, बीकानेर में ब्रेक के बाद मिले थे तो अब यहाँ हो गया। तो अब समस्या है कि ब्रेक के बाद कब तक मिलते रहेंगे। और जो दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं कि ये सामान्य, बिल्कुल राजस्थान जो है मातृ शिशु दर में बेहतर है देश भर में, 48 मौतें होती हैं हजार पर, ये आंकड़ा है। लेकिन अगर दो महीने में 70 दिन में 18 मौतें हो गई तो इसे कोइंसिडेंस कहना अपने आप में मुझे लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने वाली बात है कि ये तो अचानक से क्या हो गया, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, एक्सपर्ट की कमेटी बना रहे हैं। अब जो एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं वो डॉक्टर ही हैं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को दोषी ठहराएगा नहीं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की गलती हम कैसे ठहरा दें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती होगी। अब कह रहे हैं कि ये रेफरल मरीजें हैं, ग्रामीण इलाके से आती हैं, तो जयपुर में तो 300 होते हैं रोज ऑपरेशन, और जोधपुर में होते हैं 250, उदयपुर में होते हैं 200, वहां तो मौतें नहीं हो रही है। तो ये सारे तर्क जो दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो गले उतरने वाले नहीं हैं कि रेफरल हैं इसलिए हो रहे हैं ग्रामीण इलाकों से। पहले बीकानेर में कहा कि नहीं नहीं वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं पीती है महिलाएं जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है। अब तो गर्मी भी चली गई, अब तो बारिश का मौसम है, तो हर ब्रेक के बाद एक नया बहाना लेकर आते हैं, मगर ठोस वजह अब तक नहीं खोजी गई। अपने आप में शर्मनाक है कहना कि दवाई में पानी ही तो था, पानी खराबी तो करती नहीं लेकिन काम भी तो नहीं करती है। ये इस तरह की अगर मेंटेलिटी है जवाब देने की तो मुझे लग रहा है कि फिर ये स्थिति कैसे सुधरेगी।
16: सही बात है, बहुत शुक्रिया शरद कुमार हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर किसी चीज को लेकर संशय है तो उसकी जांच कर लेना बेहतर है बजाय इसके कि उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। साल 2004 में दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के दो वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दी गई है। जांच में पाया गया कि जिस बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की इजाजत देने में दी गई थी वहां पर उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
17: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में दो साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के दो साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
18: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं।
20: किसने कहा?
18: मैंने कहा।
20: आप कौन है?
18: मैं पत्रकार हूँ।
20: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
18: अच्छा
20: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
25: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
18: रियलिटी
25: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने, आपने पढ़ाई चल रही है यहाँ पे?
18: पढ़ाई कराई।
25: चलो हो गया, हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। चलो
18: रिपोर्टिंग हो गई,
25: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
18: सर,
25: धक्का तो बहुत सम्मान।
17: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
26: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है लेकिन ऊपर के मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है? फायर एनओसी है?
27: लाइब्रेरी का एनओसी
26: फायर एनओसी है
27: नहीं।
12: और अब डेंगू से खबरदार। क्या आपको पता है कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू कई मामलों में जानलेवा क्यों बन जाती है? क्योंकि हम इसके शुरुआती लक्षणों को सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। डेंगू की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संक्रमण नहीं है, बल्कि इसके शुरुआती लक्षणों को सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज करना है। कई लोग तेज बुखार आने पर खुद ही दवा ले लेते हैं और यही लापरवाही बीमारी को गंभीर बना सकती है। डेंगू की शुरुआत अक्सर अचानक तेज बुखार से होती है। इसके साथ सरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द, कमजोरी, मतली या उल्टी और शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। शुरुआत में ये लक्षण सामान्य वायरल फीवर जैसे ही लगते हैं, इसीलिए कई बार सही समय पर जांच नहीं हो पाती। विशेषज्ञों के अनुसार बीमारी के तीसरे से पांचवें दिन का समय सबसे अहम माना जाता है। कई मरीजों का बुखार इस दौरान उतरने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। इसी अवधि में कुछ लोगों में प्लेटलेट्स कम होना, प्लाज्मा लीकेज या गंभीर डेंगू की जटिलताएं विकसित हो सकती हैं। इसीलिए सिर्फ बुखार कम होने को ठीक होने की निशानी नहीं मानना चाहिए। समय पर जांच कराएं, साफ सफाई रखकर एक दूसरे का ध्यान रखें। डेंगू यकीनन हारेगा जब हम साथ लड़ेंगे डेंगू से। तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
21: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
22: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
23: आगे आगे
27: अरे उधर
23: उधर गिर
27: करेक्ट करेक्ट
28: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
4: पापा।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ,
4: ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
9: गहरी सफाई।
8: हाँ, पावर वॉश का कमाल,
9: गहरी खुशबू
8: और प्यार भरी भी।
9: कैसे?
8: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
10: इसीलिए फेना ही लेना।
11: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
12: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
13: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
14: वाह वाह वाह वाह।
13: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
15: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
16: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी तबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
19: आगे आगे,
20: अरे उधर
19: उधर,
20: करेक्ट करेक्ट।
21: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: वी आर ओवर जिमी।
23: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
24: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
25: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
26: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
27: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
28: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab sambhal lega. Aap apna dekh lo.
11: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
12: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
13: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
11: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: जीत मिली 2024 की, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली, इसमें कोई ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं समाजवादी पार्टी का।
16: नहीं तो नतीजे है ना, 2022 में क्या था? 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए,

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा देने के नाम पर 20% शुल्क वसूलने का ऐलान किया। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और खुला रहेगा, चाहे ईरान चाहे या न चाहे। आज आपको बताएंगे कि क्या अब अमेरिका और ईरान में हॉर्मुज में वसूली पर जंग होगी। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस ने भारत में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए विदेश में बैठे भारतीय मूल के लोगों को क्यों नाराज किया। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए और इसमें आए प्रवासी भारतीयों को भाड़े की भीड़ बताया, जिस पर कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भारतीय मूल के लोगों ने राहुल गांधी और खड़गे को चिट्ठी लिखते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। आखिर में आपको बताएंगे कि कोलकाता एयरपोर्ट के परिसर में बनी मस्जिद में नमाज रोके जाने को लेकर क्या विवाद है, जहां मस्जिद से जुड़े लोग इसकी ऐतिहासिकता को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रही है। तो आइए सबसे पहले हम अमेरिका ईरान वॉर के राउंड टू की बात करें, जिसमें हर दिन घमासान बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में ही ईरान के 14 प्रांतों के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। 17 जून को साइन हुए एमओयू के बाद ऐसा लगा था कि दोनों देश शांति बहाली के प्रयास में जुट गए हैं, लेकिन ये शांति प्रयास दिखावटी थे। असल में अमेरिका और ईरान के बीच अब लड़ाई का मुद्दा न्यूक्लियर हथियार नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति युद्ध से पहले थी, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वही स्थिति बनी रहे। युद्ध के दौरान ईरान को भी समझ में आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसका सबसे बड़ा हथियार और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण चाहता है और वो ओमान के साथ मिलकर टोल जैसी व्यवस्था बनाकर इसे अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहता है। ईरान की इस चाहत ने अमेरिका को फंसा दिया है। पूरा युद्ध अब न्यूक्लियर हथियारों से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई में बदल गया है। अगर अमेरिका अब पीछे हटता है तो पूरी दुनिया अमेरिका को विलेन मानेगी, जिसने अपनी लड़ाई के लिए दुनिया पर हॉर्मुज टैक्स का बोझ डाल दिया। इसीलिए अमेरिका हॉर्मुज से आवाजाही को फ्री फॉर ऑल करने के लिए ही बमबारी कर रहा है। हालांकि एक सच यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने की भी एक अलग कीमत मांगी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है और यह आगे भी खुला रहेगा, फिर चाहे ईरान हो या न हो। ट्रंप अमेरिका को द गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बता रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिन जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए सुरक्षित रास्ता चाहिए, वो 20% पैसा उन्हें दें। यानी वसूली का दौर शुरू हो गया है। फिर चाहे ईरान टोल टैक्स बताकर वसूले या फिर अमेरिका सुरक्षा देने के नाम पर रंगदारी के तौर पर वसूले,

अमेरिका की 20% वसूली का नियम लागू हो चुका है और इसीलिए वो ईरान पर भीषण बमबारी में लग गया है। अमेरिका के निशाने पर वही क्षेत्र हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हैं, या ऐसे समुद्री इलाके जहां से ईरान को रणनीतिक फायदा मिलता है। लेकिन राउंड टू में अमेरिका ने हमले की रणनीति को थोड़ा सा बदला है। अब की बार वो सिर्फ रणनीतिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि वो इसके साथ साथ आर्थिक ठिकानों को भी निशाने पर ले रहा है। अमेरिका के निशाने पर ईरान का हॉर्मुज़गान प्रांत, बुशहर प्रांत, खुजेस्तान प्रांत और मरकजी प्रांत है। आप नक्शे पर देखें तो हॉर्मुज़गान प्रांत वही क्षेत्र है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहीं पर केशम, बंदर अब्बास, सिरिक, लवान, जास्क और मिनाब हैं, जो ईरान के लिए रणनीतिक रूप से हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए अहम है। अब फारस की खाड़ी में इसी से लगता हुआ बुशहर प्रांत है जहां खर्ग आइलैंड है। ये आइलैंड ईरान का एक महत्वपूर्ण तेल ठिकाना है। बुशहर में ईरान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, यानी ईरान की ऊर्जा का एक केंद्र इसी जगह पर है। हाल ही में ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका बुशहर पावर प्लांट के पास हमले कर रहा है। बुशहर प्रांत के पास ही फारस की खाड़ी से लगता हुआ ईरान का एक और महत्वपूर्ण खुजेस्तान प्रांत भी है। अमेरिका इस बार इसको भी निशाने पर ले रहा है क्योंकि खुजेस्तान को ईरान का एनर्जी कैपिटल माना जाता है। ईरान के तेल भंडार का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर है। अमेरिका ने इसी प्रांत के अहवाज शहर पर हमले किए थे। अहवाज ईरान के तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है और माना जाता है कि IRGC को लॉजिस्टिक्स और ईंधन की सप्लाई इस जगह से होती है। खुजेस्तान के पास ही मरकजी प्रांत है। मरकजी को ईरान के रक्षा उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यानी इस बार अमेरिका ने केवल रणनीतिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो ईरान के ऊर्जा और समुद्री व्यापार से जुड़े केंद्रों पर भी हमले कर रहा है। मैप पर देखें तो खुजेस्तान के अहवाज से लेकर बुशहर और फिर हॉर्मुज़गान में बंदर अब्बास, केशम, सिरिक, जास्क से होते हुए सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चबहार तक पर हमले हो रहे हैं। ध्यान दें तो फारस की खाड़ी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए ओमान की खाड़ी के ईरानी क्षेत्र तक को अमेरिका अपने निशाने पर लिए हुए है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पिछले एक हफ्ते के अंदर अमेरिकी सेना ने तीसरा बड़ा हमला किया है, जिसमें इस बार उन्होंने ईरानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, नेवी शिप और ईरान की छोटी बोट्स को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस युद्ध में पहली बार उन्होंने अपने आत्मघाती सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि सी ड्रोन का आधिकारिक नाम अभी नहीं बताया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने 3 महीने पहले GARC यानी ग्लोबल ऑटोनोमस रिकॉनिसेंस क्राफ्ट की तैनाती की थी। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल शुरू में निगरानी के लिए किया गया, लेकिन इस बार अमेरिकी सेना ने इसके जरिए हमले भी किए हैं। GARC एक USV यानी अनक्रूड सरफेस वेसल है। ये एक तरह की छोटी स्पीड बोट है जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लैक सी टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। GARC पूरी तरह से रिमोट ऑपरेटेड है। इसे आत्मघाती अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 75 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और अपने साथ विस्फोटक लेकर दुश्मन के जहाज, रडार स्टेशन या तटीय ठिकानों पर हमले कर सकती है। छोटा आकार होने के कारण इसे रडार में पकड़ना मुश्किल होता है। इसे स्वॉर्म अटैक यानी झुंड में एक साथ भेजकर भी हमला किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका जिस सी ड्रोन की बात कर रहा है वो GARC स्पीड बोट ही है, जिनके जरिए वो ईरान की स्पीड बोट्स को भी तबाह कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार उनका हमला ईरानी सेना द्वारा एक जहाज पर किए गए हमले का पलटवार था। अमेरिकी सेना ने बताया है कि IRGC की ओर साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज पर हमला किया था। ये कंटेनर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रहा था। इस हमले में जहाज का इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, इससे जहाज वहीं अटक गया। इस हमले के बाद ही अमेरिकी सेना ने ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी देते हुए तीसरा हमला शुरू कर दिया, जिसमें 140 ठिकानों पर बमबारी की गई।

0: ईरान ने भी अमेरिकी हमलों के जवाब में मिडिल ईस्ट के देशों पर एक बार कई हमले किए हैं। अब ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर पर हमले किए। ये हमले इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए। सबसे घातक हमले बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर पर किए गए। आईआरजीसी ने इस हमले में दावा किया कि इसमें अमेरिकी सैन्य ठिकाने को बहुत नुकसान हुआ है। आईआरजीसी ने अमेरिकी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि पिछले दिनों हुई जंग और उसमें मिली हार से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। आईआरजीसी का कहना है कि उनके हमले में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर रिपेयर सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर और ड्रोन कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि कुवैत में उन्होंने जो हमले किए हैं वो एक यूएन का पुराना बेस था जिसे अमेरिका अपने हिमार्स अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, अमेरिका का एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शूट एंड स्कूट रणनीति पर काम करता है, यानी रॉकेट्स लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद ये अपनी जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन के लिए इसकी लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और इससे बहुत सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ईरानी सेना इस रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने को अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर जो हमला किया है उसमें MQ-4C टाइटन ड्रोन हैंगर भी तबाह हो गया है। इसी तरह से एक दावा यह भी है कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी एक हैंगर को तबाह कर दिया गया है।
1: लो दारो,

0: भयानक युद्ध को दोबारा भड़कते हुए देखकर दुनिया ये सोच रही है कि जब दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था तो फिर हालात यहां तक कैसे पहुंच गए। तो इस सवाल का जवाब 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए अग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों में है। उन्हीं शर्तों की कुछ लाइनों से ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपनी बपौती समझने लगा और अमेरिका को यह समझ नहीं आया कि आखिर अग्रीमेंट की इस बात पर उनका ध्यान कैसे नहीं गया। अब अमेरिका फंस गया है। ट्रंप एंड टीम की इस क्लेरिकल मिस्टेक और भाषाई समझ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। अग्रीमेंट की इस कमी का पता अमेरिका को तब चला जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति लेने के लिए कहा। ईरान ने सभी जहाजों को अपने बताए समुद्री क्षेत्र से गुजरने का दबाव डाला और माना जा रहा है कि ऐसा करने वाले जहाजों से टोल वसूली होती। 6 जुलाई को 3 जहाजों ने ईरान से बात किए बगैर दक्षिणी हिस्से से गुजरने की कोशिश की थी जिस पर ईरान ने हमला कर दिया था। इसी के जवाब में 7 और 8 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए और सीज फायर को रद्द कर दिया था। अब सवाल यह है कि ईरान सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले क्यों कर रहा है। एमओयू के हिसाब से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सभी जहाजों की आवाजाही फ्री होनी थी। दरअसल 17 जून को जो एमओयू साइन किया गया था उसमें एक पेच था। वो पेच यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा गया था। उसमें जो बातें कही गई थी उसे समझने में अमेरिका ने गलती कर दी और हस्ताक्षर कर दिए। इस चूक के बारे में कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एमओयू का 5वां पॉइंट जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नियंत्रण को लेकर शर्तें लिखी गई हैं उसकी भाषा युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति तक ले जा सकती है। इसमें लिखा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जहाजों के लिए अपनी पूरी क्षमता से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक और वहां से वापस आने जाने का सुरक्षित रास्ता बनाने का इंतजाम करेगा। पैराग्राफ की इस लाइन से यह संदेश जा रहा था कि ईरान ही इस पूरे क्षेत्र की आवाजाही को अपने नियंत्रण में रखेगा। ईरान ने भी एमओयू के इस पॉइंट को इसी तरह से समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा नियंत्रण एक तरह से उसे मिल गया है। अमेरिका को यह तब समझ में आया जब ईरान ने जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिकी दखल को एमओयू का उल्लंघन माना। उनके मुताबिक हॉर्मूज की सारी आवाजाही ईरान से नियंत्रित होनी थी। ईरान को भी युद्ध के बाद एक बात समझ में आ गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण उसके लिए बहुत जरूरी है।
1: We're taking over the strait. They have nothing. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. You know, we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. They made all the money, and the United States was just, you know, not, they wouldn't, it's amazing. We guarded it for nothing. And now we're going to guard it. We're going to get paid for guarding it. A lot of money.
0: अब स्थिति यह हो गई है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना है या नहीं गुजरना है। अमेरिका के भरोसा दिए जाने के बावजूद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों का खतरा भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर हाल ही में IRGC के एक कमांडर ने ईरानी मीडिया में दावा किया कि कोई भी विदेशी जहाज उनकी नजर में आए बिना हॉर्मूज से नहीं गुजर सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फैक्ट चेक टाइप जवाब देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जो सबके लिए खुला है।
2: बार इन असास एलाम मिगर्दात।
3: पहले दी गई चेतावनियों के बाद हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संचालन या नियंत्रण में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। इस्लामी गणराज्य और ईरान की सशस्त्र सेनाएं ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से बाहर और हमारी अनुमति के बिना चलने वाले अमेरिकी सैन्य जहाजों द्वारा कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों की आवाजाही में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कड़ा जवाब देंगी। हाल ही के दिनों में IRGC और ईरानी सेना द्वारा की गई सैन्य कार्रवाइयां इस बात का प्रमाण है।
0: अब समस्या ये है कि कंटेनर जहाज जो कच्चा तेल एलपीजी या एलएनजी लेने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो किससे लेनी है, अमेरिकी सेना से या ईरान से। कुल मिलाकर दुनिया इन दोनों देशों की लड़ाई में पिस रही है। पिछले करीब 60 वर्षों से दुनिया भर के जहाज इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल फ्री में कर रहे हैं। साल 1968 में ईरान ने समुद्री मार्ग को बनाने में यूएन की मदद की थी और किसी तरह का नियंत्रण करने की कोशिश या बातें नहीं की थी, जबकि ये रूट ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका ईरान युद्ध के पहले दुनिया को करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता रहा और तब सालाना 50,000 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही यहां से होती थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उत्तरी किनारा ईरान से लगता है और दक्षिणी किनारा ओमान से लगता है। 1960 से पहले दोनों देशों का समुद्री क्षेत्र केवल 3 नॉटिकल माइल यानी करीब 5.5 किलोमीटर तक ही माना जाता था, बाकी क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा था। समुद्री कानूनों में बदलाव के बाद 1959 में ईरान ने और फिर 1972 में ओमान ने अपनी अपनी समुद्री सीमा को करीब 22 किलोमीटर तक कर लिया। इस फैसले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा, जहां दोनों देशों के बीच की दूरी सबसे कम थी, वो क्षेत्र उनके हिस्से में आ गया। समुद्री आवाजाही के लिए बीच में एक ट्रांजिट लेन बनाया गया जो करीब 3.5 किलोमीटर का था। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके और ओमान के समुद्री क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहां से होने वाली आवाजाही का फैसला वही लेंगे। अमेरिका इस पर तैयार नहीं है, वो इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के तौर पर देखता है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं चाहता। अब दरअसल स्थिति यह बन गई है कि ईरान ने जहाजों को हॉर्मुज से गुजारने के लिए एक नया रूट बना दिया है जो उसके समुद्री क्षेत्र से केशमा आइलैंड के पास से होकर जाता है। इसे आप उत्तरी मार्ग कह सकते हैं। ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसकी अनुमति और उसकी निगरानी में इसी रूट का इस्तेमाल करें। ऐसा हुआ तो कल को ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली कर सकता है। पारंपरिक रूट ईरान के बताए रूट से हटकर था, यह ओमान और ईरान दोनों के समुद्री मार्ग में पड़ता था। युद्ध में ईरान ने इस रूट पर नाकेबंदी कर दी थी और हमले करता था, लेकिन सीज फायर के बाद अमेरिकी सेना ने एक नया दक्षिणी रूट बनाया जो ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता था। अमेरिकी सेना यहां से जाने वाले जहाजों को सुरक्षा देती थी, लेकिन ईरान ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए। 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच ईरान ने 6 जहाजों पर हमले किए, जिसमें 5 जहाजों पर जो हमले हुए वो ओमान की सीमा से लगते हुए इसी इलाके में किए गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो ईरान हॉर्मुज क्षेत्र में अपनी सीमा से लेकर ओमान की सीमा तक हर जहाज पर हमले कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने की एक वजह डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश भी है। इसराइल ने हाल ही में अमेरिका को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात स्वीकार की थी कि वो ईरान की हिटलिस्ट में टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोसाद से मिली इस जानकारी को चेतावनी की तरह लिया और खबर आ रही है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को पहले से ही निर्देश दिए हुए हैं कि अगर उनकी हत्या होती है तो ऐसी स्थिति में दुश्मन पर ऐसा हमला किया जाए जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ईरान ने उन्हें मारने या उनकी हत्या की कोशिश की, धमकी दी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 1,000 मिसाइलें पहले से तैयार की हुई हैं और सबके निशाने पर ईरान है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करवाता है तो उसके बाद हजारों और मिसाइलें तुरंत उन पर दागी जाएंगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हत्या की स्थिति में ईरान की बर्बादी का आदेश पहले से ही दे दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा कोई डेड मैन स्विच जैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें राष्ट्रपति की मौत के बाद तुरंत जवाबी हमला हो जाता हो। नियमों के हिसाब से देखें तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के संविधान के 25वें संशोधन की धारा 1 और 1947 के प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के तहत सत्ता तुरंत उपराष्ट्रपति को मिल जाती है। यानी ट्रंप के न रहने पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस तुरंत राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ बन जाएंगे और इसके बाद वो ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई का फैसला कर सकेंगे। अमेरिका में परमाणु हमला या किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में सरकार चलाए रखने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मौत के बाद अपने आप जवाबी हमला शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसके लिए राष्ट्रपति पहले से आदेश भी पारित नहीं कर सकता। अमेरिकी खुफिया अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का खतरा है। मुसाद की खुफिया जानकारी और ईरान में किल ट्रंप जैसे पोस्टर्स ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2024 में चुनाव अभियान के दौरान दो बार हत्या की कोशिश हो चुकी है। इसके बाद इसी साल 25 अप्रैल में व्हाइट हाउस में डिनर प्रोग्राम में एक हथियारबंद आदमी ने फायरिंग कर दी थी। उस वक्त मंच पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें तुरंत वहां से बचाकर निकाल लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मुज्तबा खामेनेई के एक बयान के बाद और बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की जनता उनके पिता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेना जारी रखेगी और बदला लेना जनता की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये बयान आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम क्रिया के दौरान आया था और अब यह भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मुज्तबा खामेनेई पहली बार दुनिया के सामने आने वाले। 28 फरवरी को हुए हमले में घायल होने के बाद से किसी ने मुज्तबा खामेनेई को नहीं देखा था। अगले हफ्ते मशहद में अली खामेनेई की याद में एक कार्यक्रम होने वाला है और यह माना जा रहा है कि आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दुनिया ऐसा मान रही थी कि ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो हमले हुए हैं उसे देखकर लगता है कि शांति बहाली केवल शब्दों का खेल था। हमने ईरान और अमेरिका के तेवर और ट्रंप की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी को लेकर इजराइल के राजदूत रुवेन अजार से बात की। When peace was coming, when everybody was trying for a ceasefire, the so-called naysayers said that it will be Israel because of which there will be no peace in the region. But ultimately, it's been Iran and its strikes on the ships crossing Strait of Hormuz. How do you analyze the present situation?
4: Well, first, namaste, and thank you, Shweta, for having me. I think it's very unfortunate that despite the fact that diplomacy was given a chance, the Iranian Revolutionary Guards are trying to completely derail this process by trying to impose a new reality on the world. And it's a reality that is not going to be accepted by anybody, because nobody is going to agree to change the nature of freedom of navigation in the world. And that's exactly what the IRGC is trying to do.
0: So you're constantly saying just IRGC. You think there is a distinct wedge between the IRGC and the government of Iran, and the government of Iran is negotiating for peace with the United States, but IRGC is actually controlling how they respond?
4: Absolutely. This is the situation. And, when Khamenei was there, he was the most extreme leader, but he had everybody under his control. Right now, we have a situation in which the Revolutionary Guards are trying to prove that they are in control of the country. They are trying to intimidate the Gulf countries. But you see that at the end of the day, they are intimidated. And if they decide they want to attack again Israel, we are going to retaliate with full force. They know now that they are completely exposed. So I hope that they don't make that mistake again. Israel doesn't have any interest whatsoever to renew the war.
0: But there is a distinct threat to Donald Trump, as there were reports that the Mossad had also said that probably top of the list.
4: Well, we've seen already two attempts on the life of President Trump even before he got elected. This guy...
0: So it's not just after the Iran war, you're saying even before that he was...
4: Absolutely. Absolutely. We've seen it. It was out in the news. There were attempts on his life, including one attempt in Mar-a-Lago that was initiated by an Iranian cell. So this is not new. The only thing that is happening now, as I said, that the propaganda war coming from Iran has been pumped up in the context of the burial ceremony of the so-called supreme leader, because they want to create motivation within their own ranks against, for the continuation of the war. But I think that even inside Iran, people are sick and tired of this.
0: आज अमेरिकी सेनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंसे ग्राम की मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। लिंसे ग्राम की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। शक जताया जा रहा है कि लिंसे की हत्या हुई है, इसमें रूस या ईरान का हाथ हो सकता है। शक जताए जाने के कुछ कारण भी सामने आ रहे हैं, जैसे 71 साल के लिंसे ग्राम की मौत पर ईरान के लोग बहुत खुश हैं। ईरान के कई अखबारों ने लिंसे ग्राम की मौत को ईरान की सांकेतिक जीत बताया है। हम आपको ईरानी अखबार की एक हेडलाइन दिखाते हैं। ईरान के अखबार वतन इमरूज ने लिंसे ग्राम की मौत पर हेडलाइन लिखी है, मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि लिंसे ग्राम ईरान विरोधी अमेरिकी नीतियों के पक्षधर थे और वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को हटाना चाहते थे। इसी तरह केहान नाम के एक ईरानी अखबार ने आर्टिकल के साथ जनता के विरोध प्रदर्शनों की एक फोटो लगाई, जिसमें लिंसे ग्राम और डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं की तस्वीरें हैं। खास बात यह है कि इसमें इन तस्वीरों पर गन शॉट क्रॉस का निशान है और इसमें भी लिंसे ग्राम की तस्वीर पर खास तौर से हाईलाइट किया गया है। इसकी हेडलाइन है, ईरान ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, युद्ध का नया दौर शुरू। इसी तरह की हेडलाइन की वजह से लिंसे ग्राम की मौत को हत्या के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी साजिश के सूत्रधारों में ईरान का नाम लिया जा रहा है। लिंसे ग्राम को रूस का भी सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। वो चाहते थे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार चलता रहे ताकि रूस कमजोर होता जाए। 10 जुलाई को वो कीव की आधिकारिक यात्रा से लौटे थे और 11 जुलाई को ही वॉशिंगटन डीसी में उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि दिल की बीमारी से पीड़ित लिंसे ग्राम की मौत की वजह एओर्टिक डिसेक्शन यानी महाधमनी की भीतरी परत का फटने की वजह से यह हुआ है, लेकिन अभी उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। रूस पर शक इसीलिए है क्योंकि लिंसे ग्राम रूस विरोधी थे और यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। यूक्रेन यात्रा के दौरान लिंसे ग्राम ने वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी, एक ड्रोन फैक्ट्री का दौरा किया था। ये सबको पता है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस की सेना को परेशान करके रखा हुआ है। जिस ड्रोन फैक्ट्री में लिंसे ग्राम ने दौरा किया था, उसे रूस ने कुछ घंटों बाद हमला उस पर कर दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद लिंसे ग्राम की मौत की खबर भी आ गई। इन्हीं वजहों से रूस को अमेरिकी सेनेटर की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत अपना मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लॉन्च करने जा रहा है। 2028-29 के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत अपनी दावेदारी सामने रखने वाला है। हैशटैग इंडिया फॉर यूएनएससी 2028-29 पीस प्लैनेट प्रोग्रेस, ये भारत की दावेदारी की थीम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क के समय के अनुसार सोमवार दोपहर संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने वाले हैं। भारत इससे पहले 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है, 1950 से 51, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92, फिर 2011-12 और 2021-22। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यूएनएससी में भारत की यह दावेदारी बहुत अहम है। 2021-22 में जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था, तब कोविड काल का साया था और अब ईरान अमेरिका युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष जैसी परिस्थितियां हैं। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का मुकाबला तजाकिस्तान से होने वाला है, जिसके लिए 2027 में यूएन के 82वें सत्र में चुनाव होंगे। अगर इस वोटिंग में यूएन के सभी 193 सदस्य देश मौजूद रहे तो जीत के लिए 129 वोटों की जरूरत पड़ेगी। 2020 में 2021-22 की भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में 184 वोट पड़े थे। तजाकिस्तान को 57 देशों के ब्लॉक ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का समर्थन है, इसीलिए यह भारत की बड़ी कूटनीतिक कोशिशों में से एक माना जा रहा है। भारत 2028-29 की यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है, लेकिन भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार की मांग करने वाले देशों में है। भारत ने हमेशा यह आवाज उठाई है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों वाला मौजूदा यूएनएससी 21वीं सदी में दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का दुनिया के कई देश समर्थन कर चुके हैं। इसमें परमानेंट मेंबर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं, लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता पर चीन का अड़ंगा लगता रहा है। चीन ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आए प्रस्तावों पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे बचाया है। बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न मिलना अन्याय है। भारत आज आर्थिक, सैन्य और कूटनीति का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत को यूएनएससी में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश अब वैश्विक मामलों में बराबरी की भूमिका की मांग करते हैं।
5: आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता।
0: जिस वियतनाम को भारत के पर्यटक उसकी खूबसूरती, शांत समुंदर और बजट फ्रेंडली वेकेशन की वजह से अपने लिए जन्नत मान रहे थे, उस वियतनाम के फुकुओक द्वीप से 11 जुलाई की एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 32 भारतीयों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट समुंदर की लहरों के बीच पलट गई और इनमें से 15 लोगों की डूबने के कारण मौत हो गई। यह घटना शनिवार की है जब दोपहर बाद एक स्पीड बोट 32 भारतीय पर्यटकों और वियतनाम के 4 क्रू मेंबर्स को लेकर रवाना हुई। सभी लोग एक स्मार्टफोन कंपनी के सफल डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल पार्टनर्स थे, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से एक कॉरपोरेट ट्रिप पर आए थे। इस दौरान ये सभी लोग वियतनाम के इस मशहूर और खूबसूरत फुकुओक द्वीप से बोट में रवाना हुए, लेकिन किनारे से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर समुंदर की एक ताकतवर लहर ने इस बोट से टकराकर इस बोट को पलट दिया। इस बोट से के करीब चल रही दूसरी बोट में मौजूद नाविकों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का किसी को मौका नहीं मिला। इस घटना में 13 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हो गई और इस तरह एक इंसेंटिव ट्रिप और एक कामयाब बिजनेस का इनाम 15 भारतीय परिवारों के लिए कभी ना खत्म होने वाला मातम बन गया। तमिलनाडु के पलानी के रहने वाले 44 साल के मुर्गा प्रभु भी एक मोबाइल कंपनी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर थे। टारगेट अचीव करने की खुशी में कंपनी ने उन्हें इस ट्रिप पर भेजा था। धर्मपुरी के बिजनेसमैन सेंथिल कुमार भी एक मोबाइल कंपनी के इसी तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनकर गए थे। किसे पता था कि बिजनेस की ये कामयाबी जिंदगी के आखिरी सफर में बदल जाएगी। यह हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इसके पीछे इंसानी लापरवाही और सिस्टम की बड़ी चूक भी सामने आ रही है। वियतनाम की पुलिस ने 57 साल के बोट के कैप्टन गुएन होंग हाई को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी रूल्स के उल्लंघन का आपराधिक मामला दर्ज किया है। जुलाई का महीना साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर मॉनसून और अचानक उठने वाले थंडर स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है। मॉनसून की वजह से इस क्षेत्र में लगातार बारिश, आंधी, तूफान जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे में मॉनसून के सीजन में इधर ट्रिप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा सकता। चश्मदीदों के अनुसार समुन्द्र में लहरें तेज थी, इसके बावजूद स्पीड बोट को समुन्द्र में उतारा गया। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल कुछ खास इलाकों में सभी स्पीड बोट ट्रिप को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सुरक्षा का यह ख्याल हादसे के बाद आया। साथ ही एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर वियतनाम अचानक भारतीयों के लिए इतना बड़ा वेकेशन हब क्यों बन गया, चाहे वो फैमिली वेकेशन हो या कंपनियों के टारगेट पूरा करने पर मिलने वाला डीलर इंसेंटिव प्रोग्राम। आजकल बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड, मलेशिया की जगह वियतनाम को चुन रहे हैं। इसकी पहली और बड़ी वजह है वियतनाम की समुद्र किनारे वाली ट्रिप का बजट फ्रेंडली होना। भारत के किसी बड़े शहर से गोवा या केरल जाने और वहां रहने का जो खर्च आता है उतने ही बजट में वियतनाम का इंटरनेशनल ट्रिप हो जाता है। दूसरी तरफ थाईलैंड या मलेशिया के मुकाबले वियतनाम का टूर 20-30% सस्ता पड़ता है। भारतीय रुपया वियतनामी डोंग के सामने मजबूत स्थिति में है, जिससे वहां जाकर खर्च करना जेब पर भारी नहीं पड़ता। दूसरी वजह है वीजा की आसान प्रक्रिया और डायरेक्ट फ्लाइट्स। पिछले कुछ सालों में भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई से वियतनाम के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई और वहां के लिए ई वीजा की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई। इस आइलैंड को वियतनाम का फुकेट कहा जाता है। यहाँ के कोरल रीफ और आइलैंड हॉपिंग यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने की प्रक्रिया युवाओं और कॉरपोरेट ग्रुप्स को बहुत आकर्षित करती है। इन्हीं सब वजहों से लोग वियतनाम जाना पसंद कर रहे हैं। सोचिए, आप देश के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपकी 3-स्तरीय सुरक्षा जांच होती है, बेल्ट जूते सब उतरवाए जाते हैं, चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है, जेब का सिक्का तक निकाल लिया जाता है क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। लेकिन भारत में एक अनोखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा भी है जहां सुरक्षा का एक बेहद उदार और अनोखा मॉडल दशकों से चल रहा था। हवाई अड्डे की दीवार पर लगी घंटी बजाओ, आधार या कोई भी पहचान पत्र दिखाओ, सीआईएसएफ की सरकारी बस में बैठो और सीधे एयरपोर्ट परिसर में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ। ये कहानी है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां हाई सिक्योरिटी रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर बनी बांकड़ा मस्जिद में नमाज के नाम पर सालों से सुरक्षा के साथ ऐसा अनोखा प्रयोग चल रहा था जो दुनिया के किसी भी देश में अकल्पनीय है। सोचिए, यह भारत का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां हर साल 2,60,00,000 यात्री सफर करते हैं, जहां 49 घरेलू और 15 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिन रात आसमान नापती हैं। लेकिन इसी एयरपोर्ट की दीवार के एक कोने में एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जहां पर इस तरीके से एयरपोर्ट से बिल्कुल लगते हुए एक मस्जिद थी। अब सवाल उठता है कि आज तक किसी ने इस पर उंगली क्यों नहीं उठाई? क्या इस देश में सुरक्षा से बड़ा वोट बैंक हो गया था? जब भी सुरक्षा की बात आती तो दलील दी जाती कि यह मस्जिद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दूसरी तरफ इस एयरपोर्ट की कहानी 1900 के दशक की शुरुआत में कलकत्ता एरोड्रोम के रूप में शुरू हुई थी। 21 दिसंबर 1924 को इसे दमदम एयरपोर्ट का नाम मिला। 1900 के दशक में एरोड्रोम का मतलब कोई आलिशान टर्मिनल नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन का एक खाली समतल मैदान था। यानी कानूनी और रणनीतिक रूप से ये जमीन 125 साल से विमानन और देश की सुरक्षा से जुड़ी है, और जब यह एयरपोर्ट परिसर में है तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। फिर भी दशकों तक पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के चश्मे से इस खतरे को देखा। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को धार्मिक आस्था का लेबल लगाकर ढका गया। रनवे के नियम कहते हैं कि किसी भी ढांचे की दूरी रनवे से कम 240 मीटर होनी चाहिए, लेकिन इस मस्जिद की वजह से एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे को 88 मीटर छोटा करना पड़ा। यानी देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजहबी दावों के आगे छोटा कर दिया गया। सुरक्षा पर मंडराते इसी खतरे को देखते हुए आखिरकार कड़ा फैसला लिया गया। शनिवार से इस मस्जिद में बाहरी लोगों के प्रवेश और पास जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और इस ढांचे को एयरपोर्ट परिसर से बाहर शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से यह फैसला लिया गया, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने धमकी भरा रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन अगर जबरदस्ती मस्जिद ली गई तो मुसलमानों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जहां प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी मेहमानों के विमान उतरते हैं, वहां सुरक्षा के नियम लागू करने पर प्रतिक्रिया की धमकी दी जा रही है। क्या धार्मिक दावे और कही सुनी बातें सुरक्षा से राष्ट्र से ऊपर हो गईं?

0: ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी अब तक, क्योंकि इसी गेट से कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि इस मस्जिद को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि पिछले कई दशकों से जो ये 136 साल पुराना मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर है, वो एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज कुछ मीटर दूर है, 160 मीटर दूर है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती बन चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए।
1: जो मस्जिद है एयरपोर्ट के अंदर, ये मस्जिद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी का लेवल 3 एरिया में है, जहां पे विमान कर्मी छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता है। इवन पैसेंजर को भी बस पे जाना पड़ता है, आप ऐसे नहीं जा सकते, और सीधे फ्लाइट में चढ़ जाना होता है। यू आर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड। लेकिन यहाँ पे सालों से प्रथा चल रहा था, यहाँ नमाज पढ़ने जाते थे।
2: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না।
3: ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। আমি বলবো শান্তিতে থাকবেন, রাস্তায় নামবেন না।
4: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 9 जुलाई 2026 को हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऐतिहासिक मेलबर्न मीट्स मोदी शो हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया और इस भीड़ को पेड और मैन्युफैक्चर्ड बताते हुए तंज कसा। इस पर कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बेहद तल्ख और कड़ी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का खर्च न तो बीजेपी ने दिया, न भारत सरकार ने और न ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। हजारों प्रवासियों ने अपनी गाढ़ी कमाई से, अपनी जेब से टिकट और यात्रा का खर्च उठाया। आयोजकों ने राहुल गांधी और खड़गे को लिखे पत्र में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि इंडियन डायस्पोरा कोई राजनीतिक मोहरा नहीं है, उन्हें भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। आयोजकों ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए लिखा है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने, बीजेपी की आलोचना करने और नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अपने फायदे के लिए उन प्रवासियों को निशाना बनाना ठीक नहीं जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत कड़ी का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस से कहा कि इस आयोजन से जुड़े वॉलंटियर्स, आयोजकों और आम प्रवासियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कभी यूरोप की छुट्टियों का मतलब होता था ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम का आनंद, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने यूरोप के मौसम को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। जून के आखिर में यूरोप में पड़ी गर्मी से 10,000 अतिरिक्त मौतों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। इनमें 9,000 से ज्यादा मौतें 65 साल से ऊपर के लोगों की हुई हैं। WHO और यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से समर्थित यूरोमोमो नाम के नेटवर्क ने मौतों का यह आंकड़ा रखा है। यूरोमोमो के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से बार बार और बहुत भयंकर हीट वेव्स का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय देशों में 10,000 से ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा 27 देशों से जुटाया गया है। इन देशों में 22 से 28 जून के बीच फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन समेत यूरोप के देशों में हीट वेव्स अपने चरम पर थी। यूरोमोमो ने यूरोप में हुई मौतों पर हर देश का अलग अलग आंकड़ा तो नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस और बेल्जियम में सबसे ज्यादा मौतों की बात कही है। बेल्जियम के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार हीट वेव से ये साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा मौतों वाला साल है। इन यूरोपीय देशों में अत्यधिक गर्मी से पहले के 8 हफ्तों में औसतन हर हफ्ते 500 मौतें हुई थी। अत्यधिक गर्मी ने जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांस, स्पेन, यूके में न सिर्फ बिजली की सप्लाई बाधित की, बल्कि स्कूल जैसी जगहों पर छुट्टी करनी पड़ी थी। यूरोमोमो से अलग एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि मई जून में इंग्लैंड और वेल्स में अत्यधिक गर्मी से 2700 लोगों की मौत हुई। इनमें से 42% मौतें जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से पड़े असर की वजह से हुई।

तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: In association with
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
3: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.
2: Jab baat ho soyabean ke kheton ko kharpatwar se bachane ki, to har asli hero ki pehli pasand hai Crystal Crop ka Amora. Amora, tez tarar var. हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: धार्मिक मान्यताओं से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई पहल शुरू की है। न्यायपालिका ने विशेष लोक अदालत के जरिए मामलों को सुलझाने की कोशिश शुरू की है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपसी बातचीत के माध्यम से किसी सहमति तक पहुंच सकते हैं। इसी उद्देश्य से 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। कल यानी 14 जुलाई को वाराणसी के ज्ञान व्यापी केस की सुलह वार्ता को लेकर भी सुनवाई होगी। ये पहल सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह 2026 अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुराने और संवेदनशील मामलों में संवाद के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद और संभल के हरि मंदिर मस्जिद विवाद को भी विशेष लोक अदालत के लिए भेजा गया है। हालांकि मथुरा मामले में सुलह की पहली कोशिश नाकाम रही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वार्ता में शामिल नहीं हुआ। अब सभी की नजरें अगस्त में होने वाली विशेष लोक अदालत पर हैं, जहां इन संवेदनशील मामलों के शांतिपूर्ण समाधान की एक और कोशिश की जाएगी।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब, अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के दिए निर्देश, ट्रस्ट को भी नोटिस, सोमवार को अगली सुनवाई।

0: कानकीपुर से दतिया तक नामांकन का अंतिम दिन दिखा जोश। नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा, कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के लिए जनसभा को किया संबोधित। अंकित शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल की पार्टी। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया, यष्टिका भाटिया ने जमाया शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप की चेतावनी, कहा हॉर्मुज खुला ही रहेगा, जहाजों को सुरक्षा देने के बदले 20% टैक्स वसूलेगा अमेरिका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, शुभेंदु राज में 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने की रोक लगा दी गई है। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बंकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई है बल्कि 136 साल पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मस्जिद में नमाज रोकने पर मुस्लिम पक्ष और पश्चिम बंगाल में विपक्ष ने आपत्ति व्यक्त कर दी है, लेकिन शुभेंदु सरकार ने मस्जिद को लेकर अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। तो आइए आपको दिखाएं अब इस मस्जिद का क्या होगा।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में द्रौपदी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद

0: इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहां समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
1: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
2: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है। मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर। आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकड़ा इलाका है उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
2: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
4: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এ কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
5: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হ্যায়, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিজ আ রহে হ্যায়, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হ্যায়, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
2: সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কে বিরোধ পর টিপ্পণি করতে হুয়ে মুখ্যমন্ত্রী নে কাহা কি উনহোনে বহুত হি ধীমি আওয়াজ মে আপনি আপত্তি দর্জ করাই হ্যায়, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और धौंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहां से हटाना बहुत जरूरी है।
6: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना से भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
2: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकड़ा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है।
7: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हुई छे, এখন আগে আগে কি বল, আমাদের তো কোনো খবর দিই।
8: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
2: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं, और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
9: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
2: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा करने की घोषणा कर दी है। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ, तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है? मथुरा में संत समाज तैयारी कर रहा है, एक धक्का और दो जैसे नारों वाले पोस्टर छपवा लिए गए हैं। अब अयोध्या की कार सेवा का इतिहास ऐसा है कि मथुरा में कार सेवा के ऐलान भर ने राजनीति के कान खड़े कर दिए। आइए दिखाएं आपको, क्या ये 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को माइलेज लेने की तैयारी है?
2: अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी। चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई। अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया, तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
10: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
11: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
10: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
12: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
2: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
13: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है, उसको बना के रहेंगे। जो भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
2: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
14: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
2: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
15: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
2: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है, जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
16: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
2: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
17: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
2: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और अब खबर कुदरत के उस क्रोध की जिसने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में त्राहिमाम मचा रखा है। मानसूनी बारिश, पहाड़ों पर बादल बम बर्फ फट कर फट रही है तो मैदानी इलाकों में बड़ा बाढ़ का संकट खड़ा कर। आज हम आपको पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कुदरत के कहर की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर पहाड़ों पर बार बार बादल बम बनकर क्यों फट रहे हैं और मैदानी इलाकों में बारिश का ब्रेक क्यों फेल हो रहा है।
2: में कुदरत ने फोड़ा बादल बम। पहलगाम में आसमानी आफत का आतंक। असम में बाढ़ और बारिश का प्रचंड कहर। हिमाचल में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। उत्तराखंड में हाईवे पर मॉनसून का हाहाकार। कुदरत का क्रोध हाई, लाया पहाड़ तोड़ तबाही। तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां नाला छोटीहाल इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि सेब के बाग बर्बाद हो गए, फसलें तबाह हो गईं, तो वहीं रिहायशी इलाकों को बर्बादी की बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7 बजे बादल फटने के बाद पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी ने हाहाकार मचा दिया। गनीमत रही कि लोग जिंदा बच गए, लेकिन बादल फटने का वो मंजर कयामत से कम नहीं था। पहलगाम में कुदरत का आसमानी कहर टूटा। अचानक आई बाढ़ का शिकार बन गए कई होटल। तबाही का मंजर कितना भयावह रहा होगा, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार कबाड़ में तब्दील हो गई। भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। सवाल यही है कि बादल फटने की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ गई हैं? आखिर हिमालय में क्यों बढ़ रही हैं बादल फटने की घटनाएं? कुदरत के क्रोध के पीछे क्या है? मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि बार बार फट रहे बादल बड़ी अनहोनी का संकेत हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बीते कुछ दिनों में कुदरत का क्रोध बादल फटने के रूप में नजर आया। कुल्लू में बादल फटने से कोहराम, हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से मची तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों में गरसा घाटी, जगत खाना और कशेरी नाले में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में तबाही का मंजर देख सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश में औसत से 32% ज्यादा बारिश हुई है और 20 से 21 जुलाई के बीच पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश की आशंका है, यानी बादल फिर फट सकता है।
16: जुलाई के बाद से ही मानसून थोड़ा सा एक्टिव होना चालू हो जाएगा और 20 जुलाई आते आते ये मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा पूरे प्रदेश में, जिसका जो असर है पूरे प्रदेश में जो है, हमें 20 तारीख और 21 जुलाई की अगर हम बात करें, लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। कुछ एक जिलों में जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं, निचले मध्य मैदानी इलाके हैं, उससे लगे हुए जो मध्यवर्ती इलाके हैं, वहां पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं 20 जुलाई के लिए और 21 जुलाई के लिए।
2: मौसम ने हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इससे पहले ही मानसूनी बारिश ने कई शहरों में तबाही मचा रखी है। ऐसे में 20 और 21 जुलाई को कुदरत का कहर फिर टूटेगा। श्रीनगर के गुरेज में बादल फटा, ये तस्वीरें गुरेज की हैं। मानसून की बारिश गुरेज के लिए बम बन गई। जैसे ही बादल फटा अचानक बाढ़ आ गई। जब डोडा में बादल बम फटा, भारी बारिश की वजह से डोडा में बादल फटा, आप देख सकते हैं बादल फटा तो कैसे लोगों के घर और दुकानें चपेट में आ गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जब सतारा में बादल फटा, महाराष्ट्र के सतारा जिले में चंद दिन पहले मानसूनी बारिश का ऐसा ब्रेक फेल हुआ कि बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। आसमानी आफत ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा के कारण सतारा और उसके आसपास के इलाकों में जिंदगी पटरी से उतर गई थी। वहीं महाबलेश्वर हिल स्टेशन में पिछले दिनों ही सदी की सबसे भीषण बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि हिंदुस्तान में बारिश का पैटर्न बदल रहा है। इसकी बड़ी वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का बढ़ता तापमान है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बढ़ते तापमान से वायुमंडल में ज्यादा गर्मी और नमी पहुंच रही है, लिहाजा हिमालय रेंज में 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं जब हिमाचल की ऊंची ढलानों से टकराती हैं, तो तेजी के साथ ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर जाते ही हवा ठंडी हो जाती है और एक तूफानी बादल की शक्ल ले लेती है। ये वही बादल होते हैं जो एक छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा बारिश की वजह बन जाते हैं। एक तरफ कुदरत का बादल बम कोहराम मचा रहा है तो दूसरी तरफ मानसूनी बारिश का ब्रेक फेल है। ये तस्वीरें असम की हैं। असम के अलग अलग इलाकों में बारिश से आई बाढ़ का कहर इंसानी जिंदगियों पर भारी है। लखीमपुर जिले में भारी बारिश से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कई गांव सैलाब में डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं।
9: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे हॉर्मुस पर युद्ध, अब निकलेगा एटम बॉम्ब। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए दशक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
19: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
21: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
18: Sokudo,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
6: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
6: अर्ज किया है,
7: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
8: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
7: सेबी और NSE का कहना है, सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
9: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
10: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया है।
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
14: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
19: वी आर ओवर जिमी।
20: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
21: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
25: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
26: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
24: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
27: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई लखनऊ।
29: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में टीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहा है, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: पूरे भारत में मॉनसून सक्रिय है, लेकिन एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है। सक्रिय मॉनसून सिस्टम के बावजूद भारत के ज्यादातर हिस्सों से बादल गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से पश्चिम, मध्य, उत्तर और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून ब्रेक कर गया है।
5: ज्यादातर जो भारत के हिस्से हैं वहां से बादलों की मूवमेंट कहां चली गई है, तो अब ये पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे बादलों की आवाजाही दिखाई देती है, लेकिन जो सैटेलाइट रेडार तस्वीरों बताती हैं कि उत्तर भारत का हिस्सा, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, ये ज्यादातर वो इलाके हैं जहां से बादलों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह, देखिए पूरा इलाका ब्लैंक है, यहां से बादल जो है पूरब की तरफ, जिसकी वजह से आने वाले जो कुछ दिन है वो यहां पर आप देखेंगे बंगाल, असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में तो अच्छी बारिश है वो दिखाई दे रही है, इन इलाकों में तो बारिश होगी, लेकिन ज्यादातर इलाका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसी के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों से बारिश अचानक जैसे मानिए गायब हो गई।
4: जुलाई में सिर्फ 24% बारिश हुई है। मानसून अनिश्चितता पर अलनीनो का भी प्रभाव है। अलनीनो प्रभाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी बुलाई है, जिसमें देश भर के किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलेंगे। इस बैठक में कंटिंजेंसी प्लान को लेकर चर्चा होगी। अलनीनो के प्रभाव और उससे पैदा हो रही कृषि परिस्थितियों पर सरकार की लगातार नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध का बिगुल बज चुका है। अमेरिका ने बीते 24 घंटों में ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, तो ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत, जॉर्डन, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। अब हॉर्मुज को लेकर नए सिरे से छिड़े युद्ध में ईरान ने आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को सीधी धमकी दे दी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा, अगर ईरान नहीं माना तो ईरान पर विनाशकारी हमला करेंगे। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं?
3: चौबीस घंटे में ईरान के 140 ठिकानों पर हमला, हॉर्मुज पर ईरानी हमले का अमेरिकी बदला। अमेरिका ईरान जंग में सऊदी अरब की एंट्री। पुतिन ने तेहरान भेजा एयरबोर्न कमांड विमान। क्या ईरान के साथ आएगा रूस और चीन? क्या बस एक कदम दूर है तीसरा विश्व युद्ध? हॉर्मुज की जंग, क्या ट्रंप गिरा देंगे एटम बम? बीते 15 दिनों में यह तीसरी बार है जब ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर वार पलटवार शुरू है। बीते 15 दिनों में अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। वहीं बीते 240 घंटों में 140 ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की। दावे के मुताबिक ईरान के केशम, सिरिक, बंदर अब्बास, जस, बुशहर, खोडाम, बंदर मैशहर, बेहबहान, अंदी मेश्क, देशफुज, अहबाज, अबादान और खुर्रम शहर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये हॉर्मुज पर ईरानी हमले का बदला है, और जब तक ईरान की तरफ से हॉर्मुज में हमले जारी रहेंगे तब तक ईरान के ठिकानों पर बम वर्षा जारी रहेगी। मतलब यही है कि हॉर्मुज अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग का एपिसेंटर बन चुका है। ईरान हॉर्मुज से अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता, और अमेरिका हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण की कमर तोड़ना चाहता है। ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा। हॉर्मुज खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकती है। बाकी सभी देश इस हॉर्मुज का खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को गार्जियन ऑफ हॉर्मुज माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जरूरी सभी खर्चों की भरपाई के तौर पर यहां से भेजे जाने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और सिस्टम तुरंत से शुरू हो जाएंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज पर अपने टोल टैक्स का ऐलान किया। उधर IRGC ने ट्रंप को धमकी देते हुए यही कहा है कि हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ईरान की सेना ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों के बाहर और उसके बलों की इजाजत के बिना वाणिज्यिक या तेल टैंकर यातायात में किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का बलपूर्वक जवाब देंगे। अमेरिकी सेना को रसद संबंधी मदद प्रदान करने वाले किसी भी क्षेत्रीय देश को ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाला माना जाएगा। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हॉर्मुज के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। हॉर्मुज को जहाजों के लिए तभी फिर से खोला जाएगा जब वहां अमेरिकी सैनिक गतिविधि समाप्त हो जाएगी। मतलब यही है कि जंग में आगे क्या होगा ये हॉर्मुज से तय होना है। हॉर्मुज को लेकर ही अमेरिकी सेना ने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो ईरान ने पलटवार करते हुए मिडल ईस्ट के तमाम मुल्कों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। ईरानी सेना का दावा है कि बहरीन के जुफैर में स्थित ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए और ओमान में दो रडार नष्ट कर दिए गए। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर फ्यूल टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। साथ ही अहमद अल जबेर एयरबेस पर एक रणनीतिक FPS रडार प्रणाली को भी नष्ट कर दिया है। भले ही ईरान मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अपनी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर छिड़ी नई जंग में पहली बार दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। ये पहली बार है जब ईरान पर हमलों को लेकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क अमेरिकी पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने हॉर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा की है और तो और अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान के हमलों का भी विरोध किया है। वहीं ब्रिटेन ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया है। बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने भी साफ कर दिया है कि ईरान को प्रतिबंधों से छूट तभी मिलेगी जब वो अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने को तैयार होगा। यही नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में पहली बार सऊदी अरब की एयरफोर्स ने यमन के सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है। इसी एयरपोर्ट पर ईरान ने अपने लड़ाकू विमानों को उतारने की कोशिश की थी, यानी युद्ध में सऊदी अरब की सीधी एंट्री हो गई। दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में रूस ने अपने एयरबोर्न कमांड विमान को तेहरान भेजा है। ये रूस का डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है कि युद्ध की घड़ी में ये उड़ता हुआ वॉर रूम है। ये विमान ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस ने अपना डूम्सडे प्लेन भेजकर अमेरिका को संदेश दिया है कि अब ईरान अकेला नहीं है, बल्कि रूस उसके साथ खड़ा है और सैन्य मदद के लिए तैयार है। तो क्या परमाणु हमले के डर से ईरान ने पुतिन से मदद मांगी है, क्योंकि ईरान को लगता है कि हॉर्मुज की जंग परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है।
4: They did everything and they could not make any achievements. So they used fighter jets, they used missiles, they used actually ground operation and they tried to steal the enriched uranium from Iran. In all of them, they failed.
5: Yes.
4: So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb, that even if it is used, it would not stop Iranian people.
3: तेहरान के डिप्टी मेयर का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की हर रणनीति फेल रही है। अब ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ एटमी हमले का विकल्प बचा हुआ है, लेकिन अमेरिका एटमी हमला करता है तो भी ईरान ना तो झुकेगा और न ही रुकेगा।
4: So these people are totally committed to defend their country, and even if a nuclear bomb, even to the extent of the Japan incident, the attacks, Hiroshima and Nagasaki. Even if at those levels, Iranians would not fear that and would not stop defending the country. And even if that happens, it would not be considered a defeat for the Iranians. It actually emboldens them more and encourages them more to protect their country and fight for their country. And that is the difference between Iran and many other countries.
3: Iran ke barudi tevar ekdam saaf hain. ना तो अमेरिका के आगे झुकेगा और न ही अमेरिकी हमलों के बाद हथियार डालेगा। अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो आर पार की जंग के लिए तैयार है। जब तक दूसरा पक्ष अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, हम भी अपने दायित्वों का पालन करेंगे। जहां भी दूसरे पक्ष ने अपने दायित्वों का उल्लंघन किया, हमने भी अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। जब तक अमेरिका की तरफ से उल्लंघन जारी रहेगा, ईरान अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार करता रहेगा। ईरान हॉर्मुज के लिए ओमान के साथ एक संयुक्त तंत्र की तलाश कर रहा था, लेकिन मस्कट या अमेरिकी दबाव ने इस प्रयास में बाधा डाली। ईरान ने किसी भी क्षेत्रीय देश पर हमला नहीं किया है और न ही करेगा, और ये हमले केवल अमेरिकी ठिकानों, सुविधाओं और उन स्थानों की ओर लक्षित थे जिनका उपयोग ईरान पर हमलों में किया जाता था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की नाकेबंदी फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ये वही नाकेबंदी है जिसे 17 जून को हुए शांति समझौते के बाद हटा लिया गया था। अब एक बार फिर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान ट्रंप ने कर दिया है। हॉर्मुज पर अमेरिकी टैक्स और ईरान की नाकेबंदी ट्रंप के इन दो कदमों से युद्ध की आग आने वाले कुछ घंटों में पूरे मिडल ईस्ट तक फैल सकती है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो मिडल ईस्ट के देशों में मौजूद तेल के कुओं और गैस के भंडार पर हमला कर सकता है। यानी ट्रंप होर्मुज पर ईरान को दबाएंगे तो ईरान मिडल ईस्ट पर हमले करके अमेरिका पर अपना दबाव बढ़ाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में मिसाइल और बमबारी चल रही है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान ने अंतरिम समझौता तोड़ दिया, इसलिए अमेरिका अब ईरान को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाएगा, मारेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हॉर्मुज का कंट्रोल अमेरिका के पास होगा। लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने भी ट्रंप को सीधे धमकी दे दी। जी हां, मुश्तबा ने आयतुल्लाह अली खामनेई के सुपुर्द खाक होने के बाद कसम खाई है कि वो अपने पिता की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। हम आपको ये बता दें कि खामनेई के जनाजे में एक नकाबपोश व्यक्ति ने भी दुनिया में सस्पेंस गहरा दिया। माना जा रहा है कि ये मुश्तबा खामनेई हैं, लेकिन अब इस गहरे राज से भी पर्दा उठ गया। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर वो नकाबपोश कौन था।

0: ट्रंप की ईरान को धमकी, मुश्तबा ने बदले की कसम खा ली। हुर्मुज पर छिड़ी तगड़ी जंग, अब खामिनई का खानदान क्या करेगा? खामिनई के जनाजे में आया नकाबपोश कौन? सस्पेंस से उठा पर्दा। अमेरिकी सेनेटर की अचानक मौत से ईरान क्यों खुश हुआ? क्या खामिनई की शोक सभा में आए मुश्तबा ट्रंप को मैसेज दिया? आयतुल्ला खामिनई की अंतिम यात्रा के दौरान और मशहद में उनके दफन होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर भी दिखाई देने लगा है। जहाजों की ट्रैकिंग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या पिछले 5 हफ्तों में सबसे कम रही। सुरक्षा चिंताओं के बीच कई तेल टैंकरों ने रास्ते से गुजरते समय अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दिया ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके, क्योंकि अब जंग सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर है। ईरान इस पर अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका किसी भी कीमत पर कब्जा होने नहीं देना चाहता। अब एक तरफ से जंग छिड़ी है, ईरान ने एक 13 लोगों की किल लिस्ट भी जारी की है, लेकिन अमेरिका ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई के ऊपर तकरीबन 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। CIA और मोसाद यानी अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियां मुश्तबा के पीछे पड़ी हुई हैं। इसीलिए 6 दिन तक चली आयतुल्ला अली खामिनई की अंतिम यात्रा में मुश्तबा नजर नहीं आए, लेकिन आयतुल्ला खामिनई की शोक सभा में मुश्तबा खामिनई ने अपना पहला संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य के लोग पूर्व सुप्रीम लीडर और उनके पिता अली खामिनई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर जारी किए गए संदेश में उन्होंने पिता अली खामिनई और युद्ध में मारे गए शहीदों के खून का बदला लेने का संकल्प लिया। मुश्तबा खामिनई ने कहा कि ईरान का बदला अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए, ये मामला उनके या अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता, चाहे हम मौजूद हों या ना हों, ये होकर रहेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है और वो ईरान की किल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। आयतुल्ला खामिनई की प्रार्थना सभा में मुश्तबा का धमकी वाला संदेश आया तो आयतुल्ला खामिनई के जनाजे के दौरान चेहरे पर नकाब पहने एक शख्स ने सबका ध्यान खींचा। तब पूरी दुनिया ने इस पर चर्चा की थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये नकाबपोश कोई और नहीं खुद मुश्तबा खामिनई थे, लेकिन उनकी पहचान अब सामने आ गई है, ये जवाद खामिनई थे। एक ईरानी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व सुप्रीम लीडर का सबसे बड़ा पोता है। इनका नाम मोहम्मद जवाद खामिनई है। वो खामिनई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामिनई के बेटे हैं। अब सवाल उठ रहे थे कि जवाद ने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 फरवरी को खामिनई के आवास पर हुए हमले के समय जवाद भी वहां मौजूद थे। उस समय उनका मुंह गंभीर रूप से झुलस गया था, उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। इसी बीच दुनिया भर में मुश्तबा के सबके सामने आने की खबरें भी आने लगी हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो अली खामिनई की शोक सभा में सबके सामने आ सकते हैं। ये मेमोरियल तेहरान में 23 जुलाई की शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगा। इसे शहीद मुजाहिद इमाम को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुश्तबा के सिर पर अमेरिकी इनाम के चलते वो 6 दिनों तक चली आयतुल्ला अली खामिनई की अंतिम यात्रा में कहीं भी नजर नहीं आए। कहा गया कि मुश्तबा किसी सीक्रेट बंकर में अंडरग्राउंड हैं। आपको ये भी बता दें कि आयतुल्ला खामिनई की मौत के लगभग 10 दिन बाद 8 मार्च को मुश्तबा खामिनई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। 12 मार्च को मुश्तबा ने अपना पहला लिखित संदेश जारी किया था। उनके संदेश को एक टीवी एंकर ने पढ़ा था जिसमें मुश्तबा ने बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद से मुश्तबा खामिनई दर्जनों संदेश जारी कर चुके हैं। हालांकि उनके सभी संदेश लिखे हुए रहते हैं जिन्हें सरकारी टीवी पर पढ़ा जाता है। हाल ही में 18 जून को उनका एक अहम बयान सामने आया था जिसमें मुश्तबा ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है, भले ही उनकी राय अलग थी।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
7: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: AU current account ke saath milta hai free UPI QR overdraft facility aur ek hi app se bank ke sare kaam. AU!
9: Soch badlo aur bank bhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जीत मिली 2024 की, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली, इसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं समाजवादी पार्टी का?
4: नहीं तो नतीजे हैं ना, 2022 में क्या था? 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे, आप उनको पूरा पोसते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ नजर समझ में आता है ना कि मुसलमान के इशू के ऊपर आपकी खामोशी। और अगर कोई बोल रहा है
3: तो मुसलमान के आपने जिक्र किया, उन्होंने आपने नेताओं के नाम गिनाए आजम खान से तमाम लोगों के, और कहा कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर।
4: खत्म हो जी चुकी है, खत्म कर दिया गया, अब बचाऊं मैं, अब मेरे पीछे लगे हुए हैं कि सब मिलकर के सबको सबको खत्म करेंगे कि मुसलमान की मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बंद कर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे पीछे आप लगा देते हो। हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे?
3: आप इतने तीखे बयान दे रहे हैं, गठबंधन गठबंधन होगा आने वाले चुनावों में?
4: देखिए गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मुझे जो आदेश देंगे मैं वो मानूंगा, मेरा और कोई इससे सरोकार नहीं है।
5: समाजवादी पार्टी में भी 37 सांसद हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके के कोई बयानबाजी गठबंधन को लेके नहीं करी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी चलाने के समय कुछ नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है। गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना है, हम बार बार बोल चुके हैं कि हमारे लिए सीट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जीत जरूरी है। और जब तक ये मंत्र वो अपने अंदर नहीं बैठा लेते हैं, तब तक ये इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है, इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे।
5: अब ये 2027 के यूपी चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की दबाव की रणनीति है या कुछ और? लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी पर यह आक्रमण उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोले तो भड़का गया है। इमरान मसूद खुलेआम अखिलेश यादव की राम मंदिर चढ़ावा चोरी की उस पॉलिटिक्स पर खास तौर पर हमलावर है, जिसे अखिलेश अपना तुरूप का इक्का मान बैठे।
4: मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बंद कर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। मैं इतना क्या, मुझे बताइए, मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया, कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे पीछे आप लगा दे, तो हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे?
5: अखिलेश यादव पर इमरान मसूद की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसा असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते हैं। इमरान मसूद पर जवाबी पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया।
6: देखिए, समाजवादी पार्टी में भी 37 सांसद हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके के कोई बयानबाजी गठबंधन को लेके नहीं करी, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी चलाने के समय कुछ नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है।
7: इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए।
5: अखिलेश यादव के खिलाफ इमरान मसूद के बयानों की सियासत को कांग्रेस कैंप से आ रहे कुछ और संकेतों से समझने की जरूरत है। जून में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनने के फौरन बाद राजेंद्र पाल गौतम ने भी सीट बंटवारे में बराबरी का दावा किया था। यूपी में पार्टी प्रभारी बनने से पहले राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के एक और दलित नेता सांसद तनुज पुनिया मई में अचानक मायावती का हालचाल जानने उनके घर पहुंच गए थे। ये और बात है कि मायावती उनसे मिली नहीं थी। इस बीच कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ज्यादा उत्साह दिखाते नजर नहीं आते।
8: देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हम पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा और कितने पे होगा।
5: 2017 के यूपी चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी का दाव चलने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों फ्लॉप रहे थे। 2022 में यूपी में दोनों दलों की राह अलग थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका दिया था, लेकिन इसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, तब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे पर मन महसूस कर रहना पड़ा। आखिर में कांग्रेस ने उपचुनाव की एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। जून में इंडिया गठबंधन की बैठक में एकता के बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन अब बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: आज तक बेहतर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथ ही शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी को नोटिस। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। ट्रस्ट को भी दिया नोटिस। सोमवार को अगली सुनवाई। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन दिखा जोश। नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के लिए जनसभा को संबोधित किया। अंकित शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल की सरकार। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। पहले क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। वस्तिका भाटिया ने शानदार शतक जमाया। और ईरान को ट्रंप की चेतावनी का हॉर्मुज खुला है, खुला रहेगा। जहाजों को सुरक्षा देने के बदले 20% टैक्स अमेरिका वसूल करेगा।

0: तो अब तक कोर्ट में ये प्रहार किया करते थे, बड़े बड़े केस, 1993 ब्लास्ट, 2008 ब्लास्ट, आपके जो मुंबई में एक रेप केस बड़ा चर्चित था, उस केस को, गुलशन कुमार मर्डर केस, ऐसे प्रमोद महाजन, उस केस को मैंने कवर भी किया था। तो न जाने ऐसे कितने केस जिनकी कोर्ट में इन्होंने धज्जियां उड़ाई और इनकी एक अलग पहचान बनी। सिर्फ इनके नाम पर एक रिकॉर्ड आपको बताता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 665 आइदर लाइफ इंप्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी, यानी उम्र कैद या सजाए मौत, और उनमें से शायद 37 डेथ पेनल्टी यानी फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले शख्स, मतलब मुजरिमों पर प्रहार करने वाले शख्स। उज्जवल निकम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। हाल में भी ऐसे ही हुआ, एक पुणे में एक केस हुआ, सिया और केतन मर्डर केस। उसमें उनकी फैमिली वाले मुंबई गए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, और उसके बाद ये कहा गया कि ठीक है, जो केतन का केस है वो उज्जवल निगम साहब लड़ेंगे। मतलब फैमिली को एक तरह से गारंटी मिल गई कि अब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। क्या ये सच है, आप सीए का केस लड़ेंगे?
1: भाई पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि मैं जादू की कांडी बिंडी कोई नहीं है, मैं एंटीबायोटिक हूँ।
0: अच्छा, ओके, हाँ, ये
1: सही। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एंटीबायोटिक हूँ। जहाँ कहीं महाराष्ट्र में बड़ा हादसा होता है,
0: हाँ,
1: बड़ा हमला होता है, तो हमारे सीएम साहब बहुत होशियार है, फडणवीस साहब, पब्लिक की मांग रहती है कि साहब उज्जवल निकम को अपॉइंट किए, माहौल गुस्सा कम करने का रहता है, तो फडणवीस साहब इमीडिएट फोन करते हैं हमें और बता देते कि आपकी अपॉइंटमेंट कर रही है।
0: मतलब गुस्सा कम करने की भी गोली है
1: हम गोली है, सही में बता दे, उसमें कोई बुरा नहीं है भाई, तो हम बता देते हाँ, कहते भाई इतना विश्वास मुख्यमंत्री साहब अपने पर रखते हैं तो हमें कहना है कि हाँ। तो फडणवीस साहब को मैं मानता इसलिए, वो इज अ वेरी डायनेमिक पर्सन, ही नोज कि कहां कहां का प्लग कहां लगाना है, वेरी स्मार्टली ही हैंडल्स, तो इसलिए माहौल शांत हो जाता है। वैसे ही केस में हुआ, सिया के केस में, मैं बंबई में था, ये इन्होंने कुछ अर्जी दी उनके पास, उसके पिताजी ने,
0: हाँ,
1: चेतन के,
0: हाँ, अग्रवाल साहब,
1: केतन के पिता ने
0: जी।
1: तो अर्जी दी तो सीएम साहब का फोन आया, उज्जवल जी इनकी मांग है आप ऐसा का, अभी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैटर सीएम साहब विश्वास रखते हैं, तो मैंने कहा हाँ करूंगा, तो मैंने एक्सेप्ट मॉरली तो कर दी है,
0: कर दी।
1: लेकिन ये केस में मैं चार्जशीट दर्ज होने के बाद अपीयर होऊंगा,
0: 3 महीने बाद।
1: हाँ, 3 महीने के बाद।
0: फिर भी आपने, आप चूंकि इतने जागरूक हुए हैं, आपने मीडिया वीडिया के जरिए केस के बारे में जानकारी तो आपके पास पूरी होगी।
1: जानकारी देखिए, मीडिया ऐसी है, जो मीडिया को जानकारी है, जो मुझे जानकारी है, ये बात सब मीडिया को जितनी जानकारी।
0: मैं ये जानना चाहता हूँ निकम साहब, ऐसे बहुत सारे केस आपने अपने लाइफ में लड़े, ये वो केस है जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है, एक पहाड़ी पर सिर्फ 3 लोग हैं, एक केतन, एक चेतन और एक सिया। अब उसमें कहानी ये है कि या तो धक्का दिया गया, या वो कूद गया, या फिर फिसल गया, सारी कहानियां हैं। कोर्ट सबूतों के आधार पर चलेगा, फैसला भी देगा, यहाँ पे विटनेस तो है नहीं, कहानियां ही कहानियां हैं। तो फिर जब विटनेस है नहीं, तो इस केस का अंजाम क्या होगा?
1: आपने देखा है क्या इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है क्या नहीं?
0: विटनेस नहीं है कोई आई विटनेस जिसने धक्का
1: दिया? आपने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा।
0: उनके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो यार ये इस तरह से बातें
0: करते हैं। अच्छा, मैं दो
1: चीजें बताता हूं। नहीं, इन्फरेंसेस कुछ निकालना ठीक नहीं है।
0: नहीं, मैं वो नहीं निकाल
1: रहा। अगर आपकी जानकारी होंगे, आपने अगर
0: नहीं
1: नहीं आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पेपर देखे क्या?
0: अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है।
1: अभी किस आधार पे कहते हैं?
0: दो आधार पे सर। पहला, 18 तारीख को केतन को धक्का दिया गया था, 5 दिन तक, 18 to 22 तक यह केस एक्सीडेंटल डेथ का दर्ज था,
1: होगा।
0: 23 तारीख को FIR में फिर वो सेक्शन 103 लग जाता है मर्डर का। विटनेस नहीं है, कहानियां हैं कि चेतन और सिया प्यार करते थे, सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी, सारी चीजें अपनी जगह। मैं ये नहीं जाना, ये कह रहा हूं कि आप तो सिर्फ, चूंकि आपने ऐसे कई केस देखे, ऐसी सिचुएशन में जब विटनेस ना हो, उस केस का अंजाम क्या होता
1: है? आप ये प्रिज्यूम करके चल रहे हो, आपने पहले बता रहे अपने आप जो बात कह रहे हैं, सुनो हाँ। एक बात पहली बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि AD दाखिल थी, फिर FIR दर्ज की,
0: हाँ।
1: कुछ तो भी आधार होगा उनके पास,
0: बयान फादर
1: नहीं, मुझे पता नहीं है। जब फादर अगर मर्डर के निष्कर्ष पे आता तो उसके पास कोई होगा सबूत?
0: सबूत ये कि चेतन और इनके
1: नहीं यार आप ये जो कह रहे हैं देखो मीडिया में यही गलत बात होती है. मीडिया ड्रॉज इन्फरेंसेस.
0: रिकॉर्ड
1: सुनो मैं हमेशा कहता हूँ आप यू आर अ वेरी एक्सपर्ट क्रिमिनल रिपोर्टर आई नो अबाउट दैट. देखिए क्या होता है कि पुलिस अपने कभी पत्ते खोलती नहीं है और वे खोलना भी नहीं चाहिए मैं तो कहूंगा. सो वो जो एसपी है वो स्मार्ट है वो सब थोड़े पत्ते खोलने वाला होगा.
0: मैं हटा देता हूं इस केस को. मैं सिर्फ एक कोई भी आम केस जिसमें आई विटनेस नहीं है उसको आप कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे.
1: ये देखो सबूत क्या है इस पे आधार पे होगा भाई साहब. मैं आज तो कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि कोई भी केस आने के बाद देखिए मेरे मेरा एकदम टारगेट फिक्स रहता है. इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है ये जरूरी नहीं कि हर केस में कोई आई विटनेस हो या न हो. केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रहती है. कई केसेस में ऐसा है कि आई विटनेस भी रहता है पर पुलिस नहीं बताती है.
0: ओके.
1: ऐसा भी होता है क्योंकि ऐसा है
0: सेफ्टी
1: कि उसके सेफ्टी के लिए अपने को मालूम नहीं आज. वी डोंट नो एनीथिंग.
0: बिल्कुल.
1: सो और जब अगर मैं ये केस चलाने वाला हूं तो मुझे ये भी कहना ये आपने अभी आपका रिस्पेक्ट करता हूं इसके मैं इसके बारे में इतना तो भी बोलता हूं नहीं तो मैं किसी बात भी नहीं करता हूं इस केस के बारे में. नहीं रियली आई एम टेलिंग यू. आपने कभी जब भी चीफ मिनिस्टर ने पूछा बोला तभी मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी दिस इज अ चैलेंज देयरफॉर आई एक्सेप्ट दिस इज माय कॉशन वर्ड. और महाराष्ट्र की मीडिया को पता है कि मैं एक लक्ष्मण रेखा के बाहर जाता नहीं.
0: सर मैं भी जानता हूं.
1: नहीं आप जाते नहीं आप जानते तो आप मुझे इतने सवाल नहीं करते. यू आर अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट रिपोर्टर.
0: आपसे ही सीखा.
1: अरे नहीं
0: यार
1: आप नहीं नहीं.
0: एक साल पहले केस हुआ था सोनम रघुवंशी केस. इंदौर की एक थी जिसने हनीमून पे अपने हस्बैंड राधा रघुवंशी को मार डाला था. उसके बाद मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया. 9 महीने जेल में रही. उसके बाद लोअर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. फिर हाई कोर्ट ने दे दी. अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है. जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं पहली चीज कि एक मर्डर केस में क्या 9 महीने के अंदर जमानत देना बड़ा नॉर्मल है. नंबर टू जो इसमें लॉजिक दिया गया वो ये कि पहले आईपीसी था बीएनएस हो गया. बीएनएस में टोटल सेक्शन 358 है और मेघालय पुलिस की गलती से टाइपो एरर है जो अपने एसजी साहब ने कहा तो शार मेहता साहब ने कि 403 लग गया. वो होना था 103. तो सिर्फ एक टाइपो एरर की वजह से कत्ल जैसे संगीन जुर्म में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरीके से जमानत दे सकती है. इसको आप कैसे ले सकते.
1: गलत है. अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से टाइपो मिस्टेक टू अर इज ह्यूमन थिंग. ये बात तो पहली है. Mistakes to be rectified and not to be ratified. अगर ये आपका रघुवंशी के केस में अगर गलती से ये 103 बदले में 403 आप बता रहे हैं 403 लग तो ये मिस्टेक है. ऑनेस्ट बोनाफाइड मिस्टेक. इसको तो नजरअंदाज करना चाहिए था.
0: लेकिन कोर्ट ने कहा कि 403 है नहीं. इसका मतलब है सोनम को आपने बताया नहीं कि उसका क्राइम क्या.
1: यू आर टू टेक्निकल. अरे बाकी तो बताया होगा ना सेक्शन में. नहीं बताया होगा 403 पर बाकी तो कंटेंट तो बताया होंगे. कंटेंट तो ये है ना कि मर्डर किया. ये बताया क्या था क्या नहीं.
0: वकील साहब उनके यही कह रहे हैं कि हमें तो अपने क्लाइंट का क्राइम बताया ही नहीं.
1: भाई फॉरगेट 103. ये जरूरी नहीं है कि 103 क्या 403 बताना चाहिए. अगर ये जिस बताया होगा कि आपने इसका मर्डर किया है तो मर्डर तो आ गया ना.
0: तो आपको लगता है जो दो कोर्ट जमानत पे अभी बाहर है सोनम क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टाइपो एरर की वजह से वापस.
1: अगर ये आधार दिया होगा सेशन कोर्ट हाई कोर्ट ने कि टाइपो मिस्टेक 403 से है वो तो माने ही नहीं होंगे. वो तो उन्होंने जब बेल दी जमानत दी तब ये लिखा होगा उन्होंने कि भाई ऐसा 403 में ऑफेंस ही नहीं अन कैसा है इसका ग्राउंड है. दैट इज रॉन्ग. क्या अगर जजमेंट में ये लिखा है कि अभियुक्त ने इसका मर्डर किया है और मर्डर के द्वारा ऐसी कट साजिश की है तो 103 लिखो क्या न लिखो 403 लिखो क्या मत लिखो. कंटेंट्स
0: पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस ही 403 और 103 पे हो रही
1: है. बहस हो रही है तो फिर तुषार मेहता जी ने कहा ना ये गलत मिस्टेक है. अगर तुषार मेहता जी ने ये भी बताया होगा मुझे पता नहीं क्या आर्ग्यूमेंट क्या कि भाई ये जो FIR है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो लिखे है कि इसको अरेस्ट किया है कि मर्डर के इसमें किया है तो इट्स ए मिस्टेक. गलती किससे नहीं होती.
0: साहब एक इस तरह का मर्डर
1: जी
0: इतना मतलब हर तरफ चर्चा में भी हो
1: जी.
0: और किसी भी आप मर्डर को लेकर क्योंकि हीनियस क्राइम में मर्डर तो आता ही है 8-9 महीने में बेल मिलना मतलब एक नॉर्मल है या ये लगता है कि कुछ अलग चीज है.
1: नहीं देखिए उसका रोल क्या था. हमें पता नहीं है उस केस का।
0: जो अब तक की कहानी चार्जशीट की कहानी, मैंने चार्जशीट इसकी पढ़ी,
1: चार्जशीट हो गया कि फाइल?
0: हाँ, चार्जशीट फाइल।
1: अच्छा,
0: उसमें चार्जशीट में यह है कि इसने दो लोगों को हायर किया था, पैसे दिए थे, गन भी लिया था और ले जाके धक्का दे दिया, इसलिए कि उसको ये लड़का पसंद नहीं था, लेकिन घर वालों से बताने में डरती थी और उसका एक किसी और के साथ अफेयर था। तो मेन आरोपी नंबर वन चार्जशीट में, उसमें सोनम रघुवंशी का नाम आरोपी नंबर वन। तो ऐसे केस में बेल, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप टाइपो एरर छोड़ दीजिए, नॉर्मल
1: देखिए, अगर मैं मेरे कमेंट्स रिजर्व रखता हूँ, इसलिए रिजर्व रखता हूँ कि अगर साजिश का आरोप है तो साजिश के लिए क्या सबूत है।
0: जब आप पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में बिरयानी भी खाई थी आपने?
1: खाई थी बिरयानी,
0: खाई थी। तो यहाँ जो कसाब को बिरयानी खिलाई थी वो बराबर हो गया?
1: भाई कसाब को हमने बिरयानी नहीं खिलाई, ये बात तो सही। ये भाई आप लोग क्या, आपको क्या लगता है आप मीडिया ही नैरेटिव सेट करते हैं?
0: बिल्कुल
1: नहीं, हम भी नैरेटिव सेट करते हैं। जब कसाब के बारे में जब जग बबाल चल रहा था कि भाई कसाब को पकड़ के क्या इतना फजूल खर्चा क्यों कर रहा है, कसाब की ट्रायल क्यों चला रहे, वो तो असली गुनहगार अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे, ये कसाब तो फुट सोल्जर है, कसाब तो आज ये उसको बहन की याद आ गई क्योंकि मैं राखी बांधी थी, आपको मालूम है ना, याद है ना भैया, क्योंकि जब मैं जलगांव से आया था तो मेरे हाथ में राखी बांधी हुई थी। तो कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये क्या है, तो मैंने कहा भाई ये बहन ने बांधी रहती है, तेरा भाग्य कहाँ है, तू तो जेल में मरने वाला है, फांसी तो तुझे होने वाली है। तब तक जेल जज साहब आ गए, जज साहब ने मुझे पूछा कि निकम क्या बोल रहा है कसाब, क्या बातचीत चल रही तुरे? हमने जज साहब को बता दिया कसाब इस प्रकार की बात कह रहा है। तो देखो जज ने, जज और मेरी ये बात चल रही थी तो कसाब ने नीचे मुंडी कर दी और दोनों उंगली अपनी आंखों में गए और आपके चैनल के लोगों ने बाहर तुरंत भाग के ब्रेकिंग न्यूज दे दी। उस वक्त तो ओबी वैन रहती थी ऑर्थन रोड के सामने, 20-25 ओबी वैन अलग अलग स्टेट की कवर कर रही थी। क्या ब्रेकिंग न्यूज दी? कसाब की आंखों में पानी, कसाब को बहन की याद आ रही है, हालांकि कुछ नहीं आंखों में पानी, फिर भी आपने नैरेटिव सेट किया। फिर वो आपका चैनल पैनल डिस्कशन शुरू हो गया, देखो सरकार की क्या नाकामी हुई है कि सरकार असली गुनहगार को पकड़ के नहीं है, ये तो फुट सोल्जर है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको आज तो ब्रेन वॉश हुआ था इसलिए इसको आज दुख हो रहा है। ये 5:15 बजे जब ऐसा हो गया, जब मुझे बताया हमारे इंस्पेक्टर लोगों ने, सिक्योरिटी वाले ने, कि ऐसा इमोशनल वेव किया है, तो वहां कोर्ट के ऑर्थर रोड के सामने एक बड़ा पोडियम रखा था, 20-25 बूम रखे थे। तो मुझे गया, मैं जो हुआ वही बता रहा हूं। मीडिया पूछे, मिस्टर निकम डोंट यू थिंक ये फेल्योर है गवर्नमेंट का, असली गुनेगार आप तो नहीं पकड़ के लाए, क्या बहादुर की इसमें ये कसाब के खिलाफ आप ट्रायल चला रहे? तो मैंने सबका सुन लिया, मैंने सिर्फ एक कहा, आपका सबके सवाल खत्म? तो बोले हाँ खत्म। मैंने एक ही बोला, आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की? इमीडिएट चैनल पैनल नैरेटिव अलग हो गया, देखो कितना खोखार आतंकवादी है, इतनी मटन, इतने लोगों की जान लगी, मटन बिरयानी की मांग कर रहा है, निकम जी बोल रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ सचमुच,
0: वो आंसू भूल गए,
1: तुम भूल गए। फिर दूसरे दिन कोर्ट में उसके वकील ने सवाल खड़ा किया, जो काजमी वकील है कोर्ट में, उसने बोला कि सर मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर निगम जी ने बताया कि बिरयानी मांग रहा है, मैं उसका वकील है, मेरे पास मांगी नहीं, इनके पास कैसे मांगी? कोर्ट ने मुझे पूछा, यस मिस्टर निकम। अभी देखो आप जितने लोग होशियार रहते ना, वैसे हम भी आपसे सीखे हैं थोड़े,
0: आप बहुत होशियार।
1: अरे नहीं साहब, हमने क्या किया? अभी देखो कसाब पंजाबी मुस्लिम था, और हिंदी इतना क्लियर नहीं समझता था, आज बातें कहने में कोई हर्ष नहीं मुझे, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा कोर्ट के सामने, कोर्ट ने पूछा, यस मिस्टर निकम यू सेड लाइक दैट कसाब इज आस्किंग फॉर मटन बिरयानी। मैंने कहा साहब कसाब पाकिस्तान से आया है, हमेशा उसका खाना नॉनवेज रहता है, और यहाँ तो जेल में तो उसको वेज खाना मिलता होगा, और मटन बिरयानी उसको अच्छी लगती क्या नहीं लगती, उसने मांगी क्या नहीं मांगी, वैसा घुमा के मांगी क्या नहीं मांगी, अच्छी लगती क्या नहीं लगती, कसाब देखता था मेरे पास, तो मंडला कसाब मेरे पास देखता था, मैंने कसाब के पास देखता था, नजदीकी कसाब, ये कठड़ा है ना आपके, इसके लिए खड़ा बैठा था। तो मैं अच्छी लगती उसको मटन बिरयानी देना क्या नहीं देना क्या, कोर्ट का ऐसा मैं बार बार रिपीट किया, मतलब सर आप ही पूछ लो कसाब को मटन बिरयानी क्या पहन रहे। जज ने पूछा, क्या कसाब तूने मटन बिरयानी की मांग की थी निकम साहब के पास? अभी उसका कंफ्यूजन हो गया, उसको लगा कि मटन बिरयानी देने की सचमुच बात चल रही है। उसने कुछ बात नहीं बोला, उसने जवाब ही हाँ नहीं दिया, नहीं मैं भी बोला, कुछ बोला नहीं, मुंडी नीचे कर दी। उसको शर्म आ रही थी ना, क्या बोलेगा, मुझे मटन बिरयानी चाहिए। उसको मालूम है ये मीडिया बैठी है, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया मुझे देखने के बजाय वो कसाब के एक्शन को ही देखते थे ना, कसाब क्या करता है, कसाब कैसे मुंडी हलाता है। तो कसाब ने मुंडी नीचे कर दी। कसाब, जज साहब ने दो बार कसाब को पूछा, क्या कसाब तूने मटन बिरयानी की मांग की थी निकम साहब के पास? कसाब, मैं क्या पूछ रहा हूं, मटन बिरयानी की मांग की थी? कसाब कुछ बोला नहीं, पर्दा वहीं गिर गया। आखिर कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की थी क्या नहीं मांग की थी, ये सिर्फ कसाब को मालूम है और मुझे मालूम है।
0: अच्छा निगम साहब, आप चूंकि सरकारी वकील हैं तो आपको सबसे पहले चार्जशीट पढ़ने का मौका मिलता है जो तैयार होती है। जब चार्जशीट आप पढ़ते हैं किसी भी केस का, ये मैं अपने लिए भी जानना चाहता हूँ, तो उस चार्जशीट में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सबसे पहले ढूंढते हैं?
1: नहीं, चार्जशीट के मैं पहले देखिए, पहले तो पोस्टमार्टम नोट्स में देखता हूँ।
0: पोस्टमार्टम नोट्स, उसकी वजह?
1: उसकी वजह ऐसा है कि कॉलम नंबर 17 में जो एक्सटर्नल इंजुरीज है वो क्या लिखा हुआ है देखता हूँ, और फिर आई विटनेस रहे तो आई विटनेस की स्टोरी क्या और ये इससे मैच हो रहा है क्या नहीं।
0: अच्छा,
1: अगर आई विटनेस की स्टोरी मैच उससे नहीं हो रही तो एक तो आई विटनेस ज्यादा बना रहा है कि उसके ध्यान में नहीं आया है, क्यों लक्ष्य नहीं था, एक वे फिर वो आई विटनेस कॉन्सेंट्रेट बाद में। दूसरी बात यह कि अगर सर्कमटेंशियल एविडेंस है तो चेन ऑफ सर्कमटेंसेस कैसे कनेक्ट होती है। तीसरी बात यह है कि कई बार मोटिव रहता नहीं, मारा क्यों इसके बारे में सबूत नहीं रहता। कानून यह कहता है कि आई विटनेस रहता तो मोटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्कमटेंशियल एविडेंस है तो मोटिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल।
0: बिल्कुल, मकसद होना चाहिए,
1: मकसद होना चाहिए। पर मैंने यह भी देखा है कि सर्कमटेंशियल एविडेंस में कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मोटिव नहीं मिलता है, वजह अलग अलग होगी, लेकिन अगर मोटिव नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आरोपी ने गुनाह नहीं किया। सो यू हैव अ कन्विंसिंग पावर टू कन्विंस द जज। ऐसा है कि जज भी देखिए ह्यूमन बींग रहते हैं, कई बार उनको भी उनका ईगो ऑर्डर रहता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ईगोज एंड ऑर्डर, और तुमको ये नहीं दिखा सकते कि ये तुम गलत है हम बराबर है। सो इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो।
0: आपने अभी कहा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आई विटनेस से नहीं तो चलेगा। दो एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर वो आप होते तो क्या होता। एक बहुत मशहूर है आरुषि मर्डर केस, और दूसरा है निठारी, जिसमें 16 बच्चियों की मौत हुई थी, और आरुषि और हेमराज का, इसमें कोई विटनेस नहीं था, लेकिन मोटिव कभी क्लियर ही नहीं हो पाया, अलग अलग कहानियां आई। आपके हिसाब से ये दो केस क्यों नहीं अपने अंजाम तक पहुंच पाए? क्योंकि आज भी आरुषि हेमराज का कातिल नहीं मालूम कौन है, आज भी निठारी में 16 बच्चों का कातिल कौन है मालूम नहीं, उसके दोनों अकेले सब बरी हो चुके, छूट चुके हैं।
1: इट्स अ बिग फेलियर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि लास्ट सीन टुगेदर क्या है, जब आप जो आरुषि की केस बात कर रहे हैं जिसमें वो जो खुली बंद थी, तब क्या हुआ, उसमें से क्या निकला क्या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें क्या है, मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बड़ा ध्यान नहीं दिया।
0: आखिरी सवाल आपसे निगम साहब ये कि आपकी जो लिस्ट है पूरी 665, उसमें 37 ऐसे लोग हैं जिनको आपने सजाए मौत यानी फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया।
1: कई नहीं, कई बार रिमिशन में ये भी हो गए।
0: लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अगर गिनती करें तो उनमें से कितने लोगों को फांसी दे दी गई?
1: ये बड़ा अहम सवाल है। एक याकूब मेपन,
0: हाँ,
1: और
0: कसाब,
1: और बाकी तो प्रेसिडेंट के मर्सी, कोल्हापुर का बाल हत्याकांड, दो लेडीज को फांसी हुई थी,
0: लेकिन
1: सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म किया, प्रेसिडेंट ने, अच्छा सवाल किया आपने, प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट किया, तो फांसी होनी चाहिए थी क्या नहीं होनी चाहिए थी, मैं पूछ रहा हूँ आपको।
0: हाँ बिल्कुल,
1: सुप्रीम कोर्ट क्लियर, कोल्हापुर सेशन कोर्ट रिजेक्टेड, हाई कोर्ट रिजेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न डाउन एंड प्रेसिडेंट रिजेक्टेड मर्सी, फांसी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई?
0: टाइम ज्यादा लग गया,
1: किसने, किसकी जिम्मेदारी थी?
0: ये जो सब इसको फॉलो,
1: ब्लैक वॉरंट किस कौन निकालता है?
0: ब्लैक वॉरंट जो मजिस्ट्रेट है जहाँ के,
1: नहीं निकाला तो किसको फिर क्यों इस किसको जिम्मेदार ठहराया आपने? नहीं ठहराया, ये सिस्टम ऐसी है।
0: तो उसका मतलब
1: मैंने मैंने मैंने ट्रायल चलाई वो कोल्हापुर की,
0: जुडिशरी पे ही आ गया ना मामला।
1: देखो यार, मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे सवाल किया, आप जवाब दे रहे थे।
0: ब्लैक वॉरंट उस जज को इशू करना
1: भाई साहब का ये केस है। फिर देखो ये लेडीज थी, ये लेडीज थी अंजना बाई गावी माँ, उनकी रेणुका एंड सीमा तीन बच्चे और उनका हस्बैंड किरण शिंदे, क्या मोडस ऑपरेंडी थी? ये तीन तीन चार चार साल के बच्चे को अगवा कर लेते थे। कहां थे, कष्ट करते थे? कोल्हापुर, पुणे, नासिक, मुंबई, छोटे तीन तीन यात्रा बित्रा टेंपल में गए कोई नहीं है, देखे बच्चों को अगवा कर लेते थे, भगा लेते थे। कई पुलिस स्टेशन में ऐसे 42 छोटे बच्चे इन्होंने मारे थे, 42। और मेरे लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट केस ये केस थी
0: जी
1: कोल्हापुर, क्योंकि जब कोल्हापुर सेशन जज ने इनको फांसी सुनाई तब कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बड़े हजारों तादाद में बच्चे लोग आए थे देखने, निकाल सुनने के, और मुझे शुगर शक्कर दे रहे थे, मुझे बांट रहे थे। दैट वाज ए अनरिमार्केबल डे इन माय लाइफ कि बच्चों के चेहरे पे मैं खुशी देख रहा था कि ये राक्षसिनी को फांसी दी गई। अंजना भाई रेणुका सीमा हाईकोर्ट सेशन कोर्ट ने फांसी दी, अपील के अपील डिसमिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म की फांसी की सजा, प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन रिजेक्टेड हुआ। 5-6 साल उनको फांसी दी गई नहीं, ब्लैक वॉरंट निकाला नहीं गया। वो लेडी जितने होशियार थे उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर दी कि साहब हमें हैंगिंग सोर्ड के अंदर है। हाईकोर्ट ने उनकी आजीवन कारावासन, मरने तक कारावासन, हमारे टैक्स पेयर के ऊपर वो जिंद रहे।
0: प्रेसिडेंट तक ने मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि आप एक खास तय सीमा के अंदर, वक्त के अंदर आप ब्लैक वॉरंट निकालेंगे और ताकि उसको फांसी, कोई पूछने वाला है कानून कहीं?
1: आप ये सवाल पूछो अभी, मैं क्यों पूछूं?
0: आपके हिसाब से कहीं कानून में लिखा हुआ है?
1: नहीं, कहीं लिखा
0: है। डेडलाइन है उसमें?
1: नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है, इमीडिएट करना चाहिए था ना।
0: हरियाणा की एक सोनिया है, एक यूपी की शबनम है, इन लोगों ने अपनी फैमिली के साथ साथ लोगों को मारा ऊपर तक।
1: वैसे भाई साहब प्रेसिडेंट ने भी मर्सी पिटीशन, वो भी तय नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी तय होना चाहिए।
0: निर्भया में देखा कितनी बार सुप्रीम कोर्ट और वहां तक गया है मामला, रिव्यू पिटीशन, रेमिट पिटीशन,
1: ये संशोधन होना चाहिए इसमें।
0: तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं कायदे से, उज्ज्वल निगम साहब ने पूरी मेहनत करके दिन रात
1: पढ़ा, दुख होता है,
0: आपने 37 लोगों को उनके किए के लिए सजाए मौत दिलवा दी, लेकिन उन 37 में से सिर्फ 2 को फांसी मिली, एक कसाब और एक याकूब मेमन। 35 या तो कानून
1: का जीवन कारावास में चेंज हो गए,
0: अब उनको पूरी जिंदगी पालना है।
1: बिल्कुल,
0: तो दुख होता होगा आपको?
1: 100% क्यों नहीं होता, ये कोल्हापुर का तो मैं कह रहा हूं ना।
0: तब तो आप राज्यसभा में भी हैं, आप एक सरकार के अंग में भी हैं, तो अभी जो आपने कहा ये सारी चीजें, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों ना जो मर्सी पिटीशन से लेके जो फिर मैजिस्ट्रेट है, इन सब के लिए एक जैसे चार्जशीट के लिए 90 दिन होता है, इन लोगों के लिए क्या टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए?
1: होना चाहिए, कानून में ये बदलाव लाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से आप सवाल खड़ा कीजिए, मैं लॉ मिनिस्टर से बात करूंगा।
0: मुझे उम्मीद है अगर आप आवाज उठाएंगे तो 100%
1: करूंगा, बात पसंद करूंगा, कानून में सुधार लाना चाहिए, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से भी बात करूंगा इसके बारे में।
0: कोर्ट में आप अब तक लड़ रहे थे, फिर पॉलिटिक्स में गए, फिर राज्यसभा सांसद हो गए, तो अब क्या फिल्म स्टार को भी, मतलब उनको भी पीछे पीछे छोड़ना है? क्योंकि अब आप पर्दे पे भी आपका एक नया रूप आ रहा है प्रहार फिल्म के जरिए, तो मतलब क्या कह के मानेंगे आप, कुछ छोड़ेंगे बाकी लोगों के?
1: अरे भाई साहब मैंने तो प्रहार में कुछ काम नहीं किया, लेकिन मेरे पर बायोपिक आ रही भाई साहब।
0: तो कमाल है ना, काम करना और जिसके ऊपर बायोपिक बनना, इन दोनों में समझ रहे हैं आप?
1: देखिए आपने कहा मेरे इंट्रोडक्शन में आपने ऐसे ऐसे के चले, और आपके जैसे दोस्त लोगों को मेरा ये सुन के ऐसा लगा कि हम पिक्चर करेंगे, तो इसमें मेरा दोष है?
0: नहीं मतलब और भी कुछ बचा है?
1: नहीं बचा है ना, क्या छोड़ा ही नहीं तो क्या बचेगा?
0: आपके ऊपर बायोपिक बनना, मतलब एक क्रिमिनल लॉयर जो हमेशा इन सारी चीजों के बीच उलझा रहता है, आपने जो भी आइडिया लिखाया आपको लगा कि हाँ यार बननी चाहिए, या आपने पहले मना किया? क्योंकि ये भी जानता हूँ कि आप थोड़े से शाही शर्मीले इंसान भी हैं।
1: नहीं 3 साल, ये तो बात सच कहूंगा क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर है, सच जानते झूठ भी जानते हो, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बायोपिक बनने वाली है। 3 साल पहले मेरे पास मैडॉक फिल्म्स वाले आए और जहाँ इसका डायरेक्टर है अविनाश, जो पाताल लोक बनाए जिसने, वो आए, उन्होंने मुझे पूछा कि निकम सर आपकी हमें बायोपिक बनाना। थोड़ा सा मैंने उनको डिस्करेज भी किया कि भाई मेरे इसमें क्या बायोपिक है, मेरे इसमें कोई ऐसा लव नहीं, स्टोरी नहीं, कोई ऐसी शादी हुआ ऐसा हुआ, कोई डांस नहीं, गाना नहीं, अब क्या बना, मेरा लाइफ तो क्या अगेंस्ट क्रिमिनल। क्रिमिनल साहब ने देखा कि मैं कहता हूँ, तो बोला हाँ बना, हम सुनना चाहते सब केसेस। तो मैंने सुना है उनको केसेस, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मेरी तारीफ तो कर रहे भाई, अब जैसे अपने तारीफ की तो सुना है केसेस, हाँ। जो भी है वगैरह, अभी उन्होंने उसमें से कितना लिया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन 7 अगस्त को प्रहार आने वाला,
0: 7 अगस्त को प्रहार आने वाली, और ये आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे ज्ञान बहुत बढ़े।
1: थैंक यू।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया। सोमवार को अगली सुनवाई। आंगीपुर से दतिया तक नामांकन का अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने पर्चा भरा, कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी का साथ दिया। अंकेश शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल और उनकी टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, पहले क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया, यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। ईरान को ड्रम की चेतावनी, हॉर्मुज खुला है, खुला रहेगा, जहाजों को सुरक्षा देने के बदले 20% टैक्स देना होगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
0: मुंबई में पीसी में उद्धव ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, जंतर मंतर को कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक को समर्थन दिया। उद्धव बोले सभी राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे को अलग रखकर इनके साथ खड़े होना चाहिए। उद्धव बोले ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य का सवाल, सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना से 92 लाख महिलाएं बाहर, ई केवाईसी फेल और आयु सीमा मुख्य कारण। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे बोली किसी भी योग्य महिला के साथ अन्याय नहीं होगा, 15 लाख ऐसी महिलाएं मिली जो इनकम टैक्स देती थी, धोखाधड़ी करती थी। महाराष्ट्र के डोंबिवली अस्पताल में मारपीट में शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे और 4 अन्य की जमानत पर सुनवाई। महाराष्ट्र के जालना में बंजर पहाड़ियों को हरा भरा बनाने का महाअभियान, 25 हेक्टेयर इलाके में 2.5 क्विंटल बीज की बुआई। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां, मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को भेंट किया सोने चांदी से बना रथ, 3 घोड़े, 16 जुलाई को रथ यात्रा। सूरत में बाढ़ के बाद एक्शन मोड में सरकार, हजारों परिवारों को राहत, तेजी से चल रहा है सर्वे। सूरत में खाड़ी के ऊपर बना दी गई स्कूल की पार्किंग, प्रशासनिक स्वीकृति पर सवाल। महाराष्ट्र के जालना के नवोदय विद्यालय में रैगिंग, 9वीं के छात्र के कपड़े धुलवाने, मारपीट के आरोप में 11वीं के 7 छात्र सस्पेंड। खाद्य विभाग कपड़ा एक्शन, मिलावटी दूध और गंदे खाद्य व्यापार पर सख्त कार्रवाई। गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट से लाखों रुपए के लोहे के सरिया, अन्य सामान चोरी, 7 गिरफ्तार। जूनागढ़ के चिड़ियाघर में पर्यटकों के खतरनाक करतूत, बाघ के बाड़े में फेंक दिया कपड़ा, उकसाने के लिए बचाया शोर। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में आया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इतिहास, लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 270 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज। लॉर्ड्स में भारत की बेटियों का शानदार खेल, 170 और दूसरी पारी में 186 के स्कोर पर इंग्लैंड को ऑल आउट किया। लॉर्ड्स में भारत ने पहली पारी में 285 और दूसरी पारी में 341 रन बनाकर पारी घोषित की, इंग्लैंड को दिया था 457 का पहाड़ सा लक्ष्य। लॉर्ड्स में यष्टिका भाटिया ने शानदार शतक लगाया, शतक बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी भाटिया। लॉर्ड्स में क्रांति गौड़ ने 5 विकेट लिए, शानदार खेल के लिए यष्टिका और क्रांति के नाम ऑनर बोर्ड पर दर्ज। विजय की फिल्म जन नायकन को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, नए पोस्टर में रौबदार अंदाज में थलापति। मुंबई में चाय बन मस्का का लुत्फ उठाते दिखे क्रिस्टोफर नोलान, टॉम हॉलैंड मैट डायमंड ने भी किया देसी नाश्ता। ओटीटी पर रिलीज होगी तीसरी बेगम, 18 से स्ट्रीम, बोकाड़िया की फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित। धुरंधर फिल्म सिंगर जास्मिन सैंडल्स ने कॉन्सर्ट के बीच मंगेतर से परिचय कराया, सगाई की अंगूठी भेंट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। रक्षाबंधन से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लाड़की बहन योजना को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हो गया। खबर है कि योजना की 92 लाख से अधिक महिलाओं को लिस्ट से हटाया गया। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ से अधिक की वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। अब विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है। सवाल ये कि क्या वाकई में योजना में हेराफेरी हुई या फिर ये विपक्ष का राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि ये महिलाओं की योजना थी, ये लाडली बहनों की योजना थी जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार को इन बहनों को पैसा देना था। अब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि इनमें बहुत सारी महिलाएं फर्जी थी, इनकम टैक्स दिया करती थी, झूठ बोलकर उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था, ई केवाईसी में वो फेल हो गई।
2: महाराष्ट्र में जिस लाडकी बहन योजना ने महायुति की सरकार बनवाई, जिस लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों ने फडणवीस और शिंदे को आशीर्वाद देकर महायुति की झोली वोटों से भर दी, एक बार फिर वही लाडकी बहन योजना विवादों के घेरे में है। रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार की अहम लाडकी बहन योजना को लेकर विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है। खबरों के मुताबिक 92 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटाने की तैयारी हो चुकी है, जिससे विधानसभा चुनावों के कुछ ही महीनों बाद लाखों बैंक खाते खाली हो गए। इस योजना में सीएजी के एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 3500 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। ऑडिट से पता चला है कि सरकार ने अपने मंजूर बजट से 3541 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि सरकार ने बिना किसी तत्काल जरूरत के 15586 करोड़ की भारी भरकम रकम वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स में जमा कर दी, जो पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है।
3: आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से, चुनाव में क्या हुआ? इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुन कर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। अगर आप उसको 3 से भी करेंगे तो पता चलेगा तिहाई, 9 तिहाई, 2,70,00,000 लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए। इसका मतलब अगर 2,70,00,000 लोगों को आप अलग करोगे, वोट का अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा बुकना इनका धंधा है। उसमें तो और भी आपने सवाल नहीं पूछे, उसमें पुरुष भी थे। उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया। अब सरकार क्या करने वाली है? नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे। जनता का पैसा आपने अपनी चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया।
2: गंभीर आरोपों के बाद सत्ताधारी महायुति गठबंधन डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय का दावा है कि वो सिर्फ अयोग्य अमीर आवेदकों और टैक्स देने वाले परिवारों को हटा रहे हैं। गड़बड़ी के आरोप निराधार है।
4: त्यानंतर इनकम टैक्सचा जो डेटा आहे तो साधारणपणे 5 लाख आणि त्याच्यानंतर ई केवायसी करत असताना आणखीन 9.5-10 लाखाचा जो डेटा आहे तो त्याच्यामध्ये त्यांचं जे आर्थिक उत्पन्न आहे, त्यांच्या घरातल्या म्हणजे पतीचं असेल किंवा वडिलांचं असेल, हे त्या ठिकाणी ई केवायसीमध्ये आढळून आलं। अशी साधारणपणे 14-15 लाखाची त्या ठिकाणी संख्या आहे।
2: वहीं बीजेपी कह रही है कि लाडकी बहन योजना कभी बंद नहीं होगी, विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है।
5: महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय योजना मानी जाने वाली लाडली बहन योजना अब विवाद में फिर एक बार आ गई है, क्योंकि हाल ही में जो विधिमंडल का सत्र हुआ उसमें कैग का जो रिपोर्ट सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए काफी सारे गंभीर सवाल फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को लेकर उठाए गए हैं। हमारे साथ राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार है। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार पर ऐसी क्यों आन पड़ी कि इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय लापरवाही और अनुशासन का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि लाडली बहन योजना को अगर देखा जाए तो तय बजट 26,000 करोड़ का था, उसके बावजूद किसी भी नियम कानून के तहत ना होते हुए भी 3,500-4,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च कर किए गए। आपके हिसाब से क्या ये सही है?
6: नहीं, ऐसा है, मैं भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन था, जिसे हम लोकरेखा समिति कहते हैं। मेरे एक बार ध्यान में आई कि सीएजी रिपोर्ट में जो कुछ बातें होती है उनका जो आकलन होता है उसके आधार पे होती है। बहुत बार उनका आकलन सही नहीं होता, उसके बाद खुलासे खंडन किए जाते हैं, उनको कागज दिए जाते हैं, बाद में जिस विषय को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई होती है वो वापस लेते हैं।
2: हालांकि किरकिरी होने और विपक्ष के सवालों से नाराज बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमारे सबसे बड़े चुनावी वादे को नाकाम करने के लिए नौकरशाहों की अंदरूनी साजिश की आशंका है।
6: जब ये योजना आई तो मुझे याद है 2,33,00,000 महिलाओं को हमने पैसे दिए, उसके बाद कुछ महंगाई छूट गई थी, वो 2,52,00,000 तक गई। अब उसके बाद सरकार ने EKYC में यह आग्रह किया कि सबका EKYC होना चाहिए कि संख्या कम होने के बाद पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई चेक फाड़कर दिए नहीं जाते, ये अकाउंट बेस्ड ये पूरी योजना है, इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोई संभावना नहीं। आप लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, तो लखपति दीदी जब हो जाएगी, बचत गट कोई पैसे वाला बन जाएगा तो योजना से बाहर हो जाएगा, मगर योजना को बदनाम करके और कोई अगर षड्यंत्र कर रहा है योजना बंद करने का, तो उसको तो मेरी चेतावनी है कि ये योजना बंद करोगे तो भुगतना पड़ेगा।
2: इस विवाद और आरोप प्रत्यारोप पर आज तक की टीम रियलिटी चेक करने जनता के बीच पहुंची। अकोला की मारुति नगर झुग्गी बस्ती में जमीनी हकीकत हैरान करने वाली दिखी। एक जैसी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे दो पड़ोसियों के साथ सिस्टम का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग दिखा। एक महिला सरकारी मदद से अपना घर चलाने की बात कहती दिखी, तो दूसरी अपने हक के पैसे के लिए बैंकों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही।
7: हमको 1500 रुपए उतना आना चाहिए, इतना बोलना है हमको उनको।
8: लेकिन अभी 2 महीने से आ नहीं रहे, क्या लगता है आएंगे?
7: 2 महीने नहीं, 3 महीने हो गए।
8: 3 महीने हो गए,
7: हाँ। आना तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कुछ भी नहीं लगता, आधार कार्ड ही लगता और राशन कार्ड लगता, उस पे पैसे आएंगे आपको 1500 रुपए।
8: क्या KYC का प्रॉब्लम है क्या?
7: नहीं, KYC तो मैंने किए हुए, हाँ KYC किए सब किए, लेकिन क्यों नहीं आ रहे क्या पता।
9: 1500 में से कुछ तो आधार हो ही जाता है, कैसा है 1500 रेगुलर अगर मिलते रहे। अभी 2100 की बात कर रहे थे सर ने, देखने को होना वो 2100 करने को होना, क्योंकि 1500 में तो अभी महंगाई बहुत हो गई है, अभी तो कुछ होता नहीं है, फिर भी अभी चला रहे हैं जैसे हो रहा है।
2: सरकार का दावा है कि वो डेटा को ठीक कर रही है, लेकिन CAG की रिपोर्ट बेहिसाब खर्च और वित्तीय अनुशासनहीनता के सबूत दे रही है। सवाल है कि क्या ये लाडकी बहन योजना जारी रहेगी या विवादों के बोझ तले दबकर दम तोड़ देगी।
10: महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सरकार इसे व्यवस्था की सफाई कह रही है, तो वही विपक्ष इसे चुनाव जीतने का पैतरा बता रहा है, जिसकी पोल खुद कैग ने खोल के रख दी है। अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये योजना सही मायने में गरीब महिलाओं का सहारा बनेगी या तो फिर सरकारी फाइलों में दबी रहेगी। इस पर अब सभी वोटरों की और जनता की निगाहें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, अपने सहयोगी धनंजय साबड़े के साथ।
11: आज उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को अपना खुला समर्थन दिया। पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी और शिक्षाविद सोनम वांगचुक कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कही।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को उद्धव ठाकरे ने खुला समर्थन दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे को अलग रखकर इनके आंदोलनों के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते थे, अपने पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। वो अमेरिका छोड़कर यहां आए, आवाज उठाई, एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहां अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है, वो कमजोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहां उनको मिलने के लिए भेजा था और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी आप जैसे लोगों की हमें और देश को जरूरत है, कृपा कर अनशन छोड़ो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है।
0: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील भी की। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का धरना पिछले 24 दिनों से जारी है। संगठन की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इस मई में हुई नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था, जबकि शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून को आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनका वजन लगातार घट रहा है। उद्धव ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय को भी इनके आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। उद्धव बोले ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है।
1: समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर रहिए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। मैं सारे सांसद कितने 550 सबको मैं और राज्यसभा के सबको मैं ये सवाल पूछ रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट शब्द जरा अच्छा है, कि अगर आप में जरा भी इंसानियत बाकी रही हो तो आप इस आंदोलन का समर्थन करें।
0: वहीं अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा हमने लूट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, इसके बाद हिंदू अब सोएंगे नहीं, हिंदुओं के जागने का समय आ गया है।
1: माझा प्रयत्न आहे की आता हिंदूंनी झोपून चालणार नाही, जागा झालं पाहिजे। आपल्या हिंदुत्वाचा, आपल्या हिंदू धर्माचा दुरुपयोग करून जर लुटण्याचा कार्यक्रम कोणी करत असेल तर त्यांना आता त्यांची जागा दाखवण्याची वेळ आलेली आहे।
0: इससे पहले बीजेपी कोटे से फडणवीस सरकार में फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया।
2: जेव्हा जेव्हा मस्जिदीमध्ये अशा पद्धतीचे घोटाळे झाले, दान चोरी झाली, हज यात्रेमध्ये असंख्य यात्रेबद्दल असंख्य तक्रारी आल्या, तेव्हा ह्यांना मस्जिदीच्या बाहेर जाऊन इस्लाम रक्षा चे पुस्तक किंवा कुराणच वाचण्याची कुराण वाचणार वाटलं नाही, हिंदू धर्माची बदनामी करण्याची कुठलीही संधी, हे औरंगाबादची जे पिलावळ आहेत, टिप्याचे जे पिलावळ आहेत, ते कधीच सोडणार नाही।
0: दरअसल उद्धव ठाकरे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मुंबई में राम रक्षा आंदोलन कर चुके हैं। नीतीश राणे ने कहा कि गजवाए हिंद का समर्थन करने वालों से हाथ मिलाने वाले उद्धव ठाकरे को राम मंदिर पर बोलने का हक नहीं है।
2: देखिए इसी को तो गजवाए हिंद कहते हैं ना, इस हिंदू राष्ट्र को जिसको हम भारत कहते हैं, जहां 90% हिंदू रहते हैं, उनको उस भारत देश को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना, यही इसको ही गजवाए हिंद कहते हैं और उसके अंडर ये सारे एक्टिविटीज शुरू है। मगर देश में, केंद्र और राज्य में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, इसके बारे में हम लोग अलर्ट है। कोई भी अगर हमारे हिंदू समाज के युवाओं की तरफ अगर गंदी नजर से देखता होगा तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी जगह दिखाएगी, इतना विश्वास से मैं कह सकता हूँ।
0: डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं कि जब उनकी सरकार में मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दान की चोरी हुई थी तब उद्धव मौन क्यों थे।
3: राम मंदिरामध्ये जे झालं त्याचं कोणी समर्थन करू शकत नाही। राम भक्तांना अतिशय वेदना झालेल्या आहेत आणि यावर कठोर चौकशी, कठोर कारवाई होते आहे। मोदीजी आणि योगीजी कुणालाही सोडणार नाहीत, ते जेलमध्ये तुरुंगात खडी फोडायला पाठवल्याशिवाय राहणार नाही। परंतु मी आपल्याला आठवण करू देऊ इच्छितोय की जे टीका करतायत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सिद्धिविनायकाच्या मंदिरामध्ये दानपेटी लुटण्याचं पाप केलं तेव्हा चौकशीचे आदेश का दिले नाहीत।
0: फिलहाल उद्धव और शिंदे एक दूसरे पर हिंदुत्व वाला वार कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सहूलियत वाली सियासत के शोर में विपक्ष जनता के असल मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
4: मुंबई के पायाधुनी इलाके में 8 वर्ष की मासूम से दरिंदगी का एक मामला सामने आया। बच्ची आरोपी के सामने चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, अंकल मुझे छोड़ दो, घर जाने दो, लेकिन आरोपी ने मासूम की एक नहीं सुनी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने इस दरिंदे को जमकर पकड़ कर पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। नाराज लोगों ने पुलिस स्टेशन पर भी जोरदार प्रदर्शन किया। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ा।
5: ऊपर जाके मैं देख रही हूँ तो कहीं है नहीं, एक ऑफिस में देखी, दूसरे ऑफिस में देखी, कहीं नहीं है। तीसरे ऑफिस में छोटी जो अकाउंटिंग रूम है वहां पर मैं देख रही हूँ, तो वहां भी मतलब मुझे ऐसा ध्यान नहीं आया कि नहीं है। उसके बाद जब मैं 2 कदम आगे चली तो बच्ची की आवाज आई,
6: जोर से चिल्ला
5: नहीं रही थी, मतलब ऐसा नॉर्मली बच्ची है ना वो नरम आवाज की है, तो ये बोल रही थी अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल मुझे छोड़ दो अंकल। तो मैं एकदम शॉक्ड आ गई कि पूरी ऑफिस बंद है, ये बच्ची का आवाज आ रहा कहाँ से। तो उसका आधा पार्टीशन में उसके फ्लाई बोर्ड है, आधा कांच है, तो वहां से ऐसा झाक के मैंने देखी हूँ उसको, ऐसा वो देखी हूँ, बस मुझे अब बर्दाश्त ही नहीं हुआ। फिर उस दरवाजे को लात मार के एकदम वो बच्ची को मैंने बाहर निकाली हूँ, फिर वो मेरे ऐसे आंग पे आने लगा, उसको ऐसे मारी हूँ और उसको उसी में बंद करके बच्ची को, उतने में उसकी मम्मी मेरे पीछे आई, हम लोग ऐसी भागे। उसके बाद अल्लाह ही जानता है जो हुआ है, और हम निकले, वो बच्ची को हम निकाले, बस उसके बाद फिर लोगों ने देखा, दुनिया देखी जो हो रहा है, बस फिर पब्लिक ने ऊपर भी आया, मैंने उसको ऊपर बंद करके रखी, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर मैं सबको चिल्ला के बोली उसकी मम्मी को, उसके हाथ में बच्चे को घर भेज के जो भी है, फिर ऊपर वापस गए। तो वो जिधर मैंने उसको बंद करी थी वहां से निकल के आके साइड की ऑफिस में छुप गया था वो। वहां पर फिर सब लोग ने जाके, 2-4 लोग ने ऊपर चढ़ के उसको वहां से निकाल के मारे, फिर हम भी गए ऊपर निकाल के, फिर पुलिस को बुलाए।
7: इस वक्त हम दक्षिण मुंबई के पायधोनी पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ रविवार को बहुत तेज हंगामा हुआ था, बहुत भारी भीड़ आ गई थी और इस पुलिस स्टेशन के बाहर दरअसल हंगामा इस वजह से हुआ था क्योंकि तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे के आसपास यहाँ पायधोनी पुलिस स्टेशन के पास ही एक गोडाउन है, एक दरअसल एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पर कि एक वॉचमैन, संडे का समय था, उसने एक माइनर जो लड़की है, 8 साल की एक लड़की है, उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल वो जब दुष्कर्म कर रहा था तभी बच्ची की जो माँ है और जो नेबर्स हैं वो उन्होंने देखा, उसको खींच के लेके आए और उन लोगों की डिमांड यही थी कि इसको फांसी की सज़ा, जो आरोपी है परवेज करके जिसका नाम बताया जा रहा है, वो झारखंड से छह महीने पहले ही आया था, वॉचमैन की नौकरी कर रहा था, कॉर्पोरेट का जो ऑफिस है वो बंद था, कुरियर ऑफिस था वहां पे वो बंद था, और उसकी वजह से उसका फायदा उठाते हुए, और जहां तक उसको पता था कि कहां पे सीसीटीवी है कहां पे नहीं है, तो जहां पे सीसीटीवी नहीं था वहां पर वो बच्ची को लेके गया उसके साथ।
4: वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी से नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 मृत भारतीयों के शव लेकर आई फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई। आंध्र प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों के शवों को सुबह 6:45 मुंबई से हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से हैदराबाद भेजा जाएगा, वहां से शवों को आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा। बेहद दर्दनाक हादसा।
8: वियतनाम फुकोक आइलैंड पर जो बोट हादसा हुआ जिसमें 15 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, आज उन सारे मृतदेहों को लेकर हो ची मिन्ह सिटी से फ्लाइट मुंबई पहुंची है। कुछ देर पहले ही ये फ्लाइट मुंबई पहुंची है। सारे मृतदेह सोर्सेस के हिसाब से उतार लिए गए हैं, और अब ये पता चल रहा है कि सारे जो मृतदेह हैं जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के रहने वाले थे, निवासी थे, उनके मृतदेहों को सवेरे 5:45 की फ्लाइट से हैदराबाद ले जाया जाएगा। हैदराबाद जो मुंबई से हैदराबाद की फ्लाइट होगी एयर इंडिया की, उसमें ले जाया जाएगा, और हैदराबाद से जो 3 मृतदेह हैं आंध्र प्रदेश के रहने नागरिक थे, उन 3 मृतदेहों को आगे रोड से एम्बुलेंस द्वारा आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा।
4: मुंबई मेट्रो में आपको हम बताएं

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया, अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा, कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकित शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, कपिल मिश्रा बोले ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया, यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा, जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स।

17 जुलाई को पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 110 वर्ष पुराना जालंधर कैंट स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण। पीएम मोदी 17 जुलाई को मध्य प्रदेश के बालाघाट रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, महाकौशल को सौगात। दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, 17 जुलाई तक चलेगा ये इवेंट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे भारत टैक्स 2026 का उद्घाटन, 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन पहुंचेंगे, 7000 से अधिक खरीदार शामिल होंगे। यूपी को मिली एक और एक्सप्रेसवे की सौगात, राजनाथ सिंह ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। अब 3 घंटे नहीं सिर्फ 40 मिनट में पहुंचेंगे कानपुर से लखनऊ, 4,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। 27वें 35वें किलोमीटर पर बनाए गए 2 आधुनिक कंट्रोल रूम। राजनाथ सिंह का पोस्ट विकास समृद्धि के नए द्वार खोलेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ में एलिवेटेड कॉरिडोर मेट्रो को मिली मंजूरी, राजनाथ सिंह का ऐलान। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई गई, 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी सभी की पेशी। चढ़ावा चोरी मामले में 80 का केंद्र यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस दिया गया, अगले मामले में सुनवाई सोमवार को होगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए विज्ञापन जारी, 18 जुलाई तक ईमेल के द्वारा आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट्स। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की पेशी, 4 दिन की हिरासत में। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर आमने सामने गणेश गोदियाल, हेमंत द्विवेदी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने हेमंत का इस्तीफा मांगा। हेमंत द्विवेदी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप, गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी करने वाले को बनाया था निजी सहायक। सीएम धामी का बद्रीनाथ धाम में दान चोरी पर कड़ा प्रहार, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 16वें नंबर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम। मध्य प्रदेश के दतिया पर आशुतोष तिवारी के नामांकन में नरोत्तम मिश्रा हुए शामिल, पार्टी में एकजुटता का दिया संदेश। दतिया में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद नरोत्तम मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद। पटना के बाकीपुर में सीट से पर्चा भरने के बाद प्रशांत किशोर बोले, ये केवल उपचुनाव नहीं, बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच तेज,

महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की, चर्चा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय अपने निर्वाचन क्षेत्र पेरम्बदूर पहुंचे, जन शिकायत ऐप की शुरुआत। मुंबई में पीसी में उद्धव ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा सभी राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे को अलग रखकर इनके आंदोलनों के साथ खड़ा होना चाहिए। ठाकरे बोले ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भावी पीढ़ी का भविष्य का सवाल। सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना से 92 लाख लाभार्थी बाहर, ई केवाईसी फेल और आयु सीमा बना मुख्य कारण। महाराष्ट्र सरकार ने महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे बोली किसी भी योग्य महिला के साथ नहीं होगा अन्याय। 15 लाख ऐसे आवेदक मिले जो इनकम टैक्स देते थे, धोखाधड़ी करते थे। महाराष्ट्र के डोंबिवली में मारपीट केस, शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे समेत 4 की जमानत पर आज होगी सुनवाई। महाराष्ट्र जालना में बंजर पहाड़ियों को हरा भरा बनाने का महाअभियान, 25 हेक्टेयर इलाके में ड्रोन से 2.5 क्विंटल बीजों की बुआई। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत का निर्णय, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, 6 बरी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 के दंगे के निर्णय का समर्थन किया, कहा यह हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश थी, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल की पार्टी। हैदराबाद में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन, अंतरिक्ष यात्रा चुनौतियां अनुभवों पर आधारित। देश को मिला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का 7वां इंजन अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस ने सौंपा। लुधियाना में निहंग सिखों का प्रदर्शन, इंसाफ की मांग को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर सड़क जाम। उदयपुर में नीमच माता रोपवे पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल की गई। जिला प्रशासन की देखरेख में संयुक्त मॉक ड्रिल, रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ शामिल। पूरी आस्था भक्ति के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के बावजूद पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए ओडिशा फायर सर्विस ने किए सुरक्षा के बड़े इंतजाम, 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। अहमदाबाद से सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, जगन्नाथ यात्रा से पहले मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को भेंट किया सोने चांदी का बना रथ और 3 घोड़े। अहमदाबाद के जमालपुर में जगन्नाथ मंदिर से 16 जुलाई को निकलेगी 189 भव्य दिव्य रथ यात्रा, हजारों लोग होते हैं शामिल। रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप, 16 जुलाई को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से 40 सदस्यों का दल पहुंचा यात्रा में शामिल होने के लिए, डीएम ने किया रवाना। अरुणाचल में बाढ़ का कहर, भारत चीन सीमा के पास इलाका जलमग्न, कुमे नदी का बढ़ा पानी। अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से स्थिति गंभीर, लोगों को अलर्ट रहने की सलाह। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश से पानी भरा, सड़कों पर पानी पानी, फंस गए वाहन। उत्तरकाशी में हरकीदून घाटी में बारिश में बह गया पुल, उफनता नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण पर्यटक। देहरादून के विकास नगर में उफनती नदी के ऊपर ग्रामीणों ने बताया खतरनाक पुल, सिस्टम की खुली पोल। रक्सौल में एक दिन की बारिश से सड़कों पर पानी भरा, भारत नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग पानी से प्रभावित। धनबाद में एक वर्ष भी नहीं टिक सकी 44 करोड़ की सड़क, निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया। देवास में बारिश के बाद बन रहे पुलिया की रिटेनिंग वॉल, क्षतिग्रस्त जांच के आदेश। सूरत में बाढ़ के बाद एक्शन मोड में सरकार, हजारों परिवारों को राहत, तेजी से चल रहा है सर्वे। सूरत में खाड़ी के ऊपर बना दी गई स्कूल की पार्किंग, प्रशासनिक स्वीकृति पर सवाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 4 गिरफ्तार, 1 की मौत। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मारवा में पेंड्रा रोड स्टेशन पर वोल्टेज ड्रामा, मालगाड़ी पर युवक चढ़ गया। भोपाल में दिन दहाड़ दुकान के बाहर कपड़ा व्यापारी की चाकू मारकर हत्या, बदमाशों ने पीछे से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी, कड़ी कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में बीच बाजार हिंदू संगठनों ने युवक युवती को जमकर पीटा, 5 नामजद और कुछ पर पुलिस ने केस दर्ज किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, बस कार की टक्कर में अमरनाथ यात्रियों समेत 18 श्रद्धालु घायल। ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे खड़ी कार में संदिग्ध अवस्था में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला, तमंचा भी बरामद। गुरुग्राम में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। बिहार के वैशाली में हाजीपुर में नशे में धुत दारोगा ने आर्मी जवान पर गोली चला दी, बाल बाल बची जान। इंदौर में मामूली कहासुनी में कार स्कूटी सवार के बीच विवाद, जमकर कार सवार दंपत्ति को पीटा।
महाराष्ट्र के जालना के नवोदय विद्यालय में रैगिंग, 9वीं के छात्र से कपड़े धुलवाए, मारपीट की, 11वीं के 7 छात्र सस्पेंड। महाराष्ट्र में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, मिलावटी दूध गंदे खाद्य व्यापार पर कार्रवाई। गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट से लाखों रुपए के लोहे और सरिये के सामान की चोरी, 7 गिरफ्तार। जूनागढ़ के चिड़ियाघर में पर्यटकों के खतरनाक करतूत, बाघ को उकसाया। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद। बूढ़ा में रेस्टोरेंट में फ्री में खाना नहीं मिलने पर विवाद, एएसआई ने रेस्टोरेंट पर फेंका पत्थर, हुआ सस्पेंड। फरीदकोट में दिन दहाड़े घर में घुसकर अकेली दिव्याल महिला से की हत्या, इलाके में सनसनी। लखनऊ में सीएनजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 किलोमीटर तक घसीटा। पटना के मनेर में प्रेमी को बुलाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई नाबालिग लड़की, चलता रहा ड्रामा। जयपुर में ट्रांसफार्मर में आधे घंटे तक होते रहे भीषण धमाके, अफरा तफरी, दमकल ने काबू पाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इतिहास, लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 270 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की बेटियों ने दिखाया शानदार खेल, इंग्लैंड को 170 और 186 दोनों पारियों में ऑल आउट किया। 285 पहली पारी में और दूसरी पारी में 341 रन बेटियों ने बनाया, इंग्लैंड को दिया पहाड़ से 457 का लक्ष्य। लॉर्ड्स में यष्टिका भाटिया ने शानदार शतक बनाया, पहला शतक बनाने वाली दुनिया की महिला क्रिकेटर बनी भाटिया। लॉर्ड्स में क्रांति गौड़ ने 5 विकेट लिए, शानदार खेल के लिए यष्टिका और क्रांति के नाम ऑनर बोर्ड पर। विजय की फिल्म जन जननायकन को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, नए पोस्टर में रौबदार अंदाज में थलापति। मुंबई में चाय बन मस्का का लुत्फ उठाते दिखे क्रिस्टोफर नोलान, टॉम हॉलैंड, मैट डेमन। ओटीटी पर रिलीज होगी तीसरी बेगम 18 जुलाई से, बोकाड़िया की फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित। धुरंधर फेम सिंगर जैस्मिन सैंडलर्स ने कॉन्सर्ट के बीच मंगेतर से कराया परिचय। इनकम टैक्स ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सख्त नियम बनाए, एआईएस और फॉर्म 26AS में काफी चेंज किए। सराफा व्यापारियों के प्रस्ताव पर सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने के लिए तैयार, पहले फेज में बाजार में 200 टन गोल्ड आने की संभावना। FSSAI ने असुरक्षित भोजन, गंदी किचन को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए लोगों से अपील की। मार्च मई में 24 बिलियन डॉलर निकालने के बाद जुलाई के पहले 10 दिन में FPIs ने करीब 24,500 करोड़ रुपए लगाए। स्विगी जोमैटो ने 200 रुपए के बजट लंच और डिनर पर फोकस बढ़ाया, महंगाई के बीच डिस्काउंट दे रहे हैं ये दोनों। ट्रंप ने हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की बात कही, बोले हम करेंगे निगरानी लेकिन देना होगा 20% टैक्स। ईरान के दक्षिण इलाके में भीषण अमेरिका का हमला, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर किया हमला। यमन की राजधानी सना में एयरपोर्ट पर है हवाई हमला, हूती ने सऊदी अरब पर लगाया यह आरोप। ईरान ने परमाणु घुसानों की जांच की मांग को खारिज किया, कहा संयुक्त राष्ट्र को हम नहीं करने देंगे जांच। यूक्रेन के हमलों पर पुतिन की कड़ी चेतावनी, कहा कई गुना शक्ति से हम हमला करेंगे। यूक्रेन पर रूस के प्रति हमलों के बीच पेरिस में कॉलिशन ऑफ द विलिंग की महत्वपूर्ण बैठक, फ्रांस जर्मनी समेत 9 देश शामिल। रूस का यूक्रेन के ओडिशा पर भीषण हमला, 4 घायल, काफी नुकसान। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक, सैन्य खुफिया अधिकारियों, हैकर्स, निजी कंपनियों पर प्रतिबंध। यूरोपीय संघ साझेदार देशों ने गाजा को $1 अरब की मदद का ऐलान किया। जुरासिक पार्क के अभिनेता ऑस्कर विजेता सैम नील का 78 वर्ष की उम्र में निधन।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा देने के नाम पर 20% शुल्क वसूलने का ऐलान किया। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज खुला है और खुला रहेगा, चाहे ईरान चाहे या न चाहे। आज आपको बताएंगे कि क्या अब अमेरिका और ईरान में हॉर्मुज में वसूली पर जंग होगी। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस ने भारत में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए विदेश में बैठे भारतीय मूल के लोगों को क्यों नाराज किया। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए और इसमें आए प्रवासी भारतीयों को भाड़े की भीड़ बताया, जिस पर कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भारतीय मूल के लोगों ने राहुल गांधी और खड़गे को चिट्ठी लिखते हुए माफी मांगने के लिए कहा। आखिर में आपको बताएंगे कि कोलकाता एयरपोर्ट के परिसर में बनी मस्जिद में नमाज रोके जाने को लेकर क्या विवाद है, जहां मस्जिद से जुड़े लोग इसकी ऐतिहासिकता को लेकर दावा कर रहे हैं लेकिन बंगाल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रही है। तो आइए सबसे पहले हम अमेरिका ईरान वॉर के राउंड 2 की बात करें, जिसमें हर दिन घमासान बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में ही ईरान के 14 प्रांतों के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। 17 जून को साइन हुए एमओयू के बाद ऐसा लगा था कि दोनों देश शांति बहाली के प्रयास में जुट गए हैं, लेकिन ये शांति प्रयास दिखावटी थे। असल में अमेरिका और ईरान के बीच अब लड़ाई का मुद्दा न्यूक्लियर हथियार नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति युद्ध से पहले थी, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वही स्थिति बनी रहे। युद्ध के दौरान ईरान को भी समझ में आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसका सबसे बड़ा हथियार और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण चाहता है और वो ओमान के साथ मिलकर टोल जैसी व्यवस्था बनाकर इसे अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहता है। ईरान की इस चाहत ने अमेरिका को फंसा दिया है। पूरा युद्ध अब न्यूक्लियर हथियारों से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई में बदल गया है। अगर अमेरिका अब पीछे हटता है तो पूरी दुनिया अमेरिका को विलेन मानेगी, जिसने अपनी लड़ाई के लिए दुनिया पर हॉर्मुज टैक्स का बोझ डाल दिया। इसीलिए अमेरिका हॉर्मुज से आवाजाही को फ्री फॉर ऑल करने के लिए ही बमबारी कर रहा है। हालांकि एक सच यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने की भी एक अलग कीमत मांगी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है और यह आगे भी खुला रहेगा, फिर चाहे ईरान हो या न हो। ट्रंप अमेरिका को द गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बता रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिन जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए सुरक्षित रास्ता चाहिए वो 20% पैसा उन्हें दें। यानी वसूली का दौर शुरू हो गया है, फिर चाहे ईरान टोल टैक्स बताकर वसूले या फिर अमेरिका सुरक्षा देने के नाम पर रंगदारी के तौर पर वसूले। अमेरिका की 20% वसूली का नियम लागू हो चुका है और इसीलिए वो ईरान पर भीषण बमबारी में लग गया है। अमेरिका के निशाने पर वही क्षेत्र हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हैं या ऐसे समुद्री इलाके जहां से ईरान को रणनीतिक फायदा मिलता है। लेकिन राउंड 2 में अमेरिका ने हमले की रणनीति को थोड़ा सा बदला है। अब की बार वो सिर्फ रणनीतिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है बल्कि वो इसके साथ साथ आर्थिक ठिकानों को भी निशाने पर ले रहा है। अमेरिका के निशाने पर ईरान का हॉर्मुज़गान प्रांत, बुशहर प्रांत, खुजेस्तान प्रांत और मरकजी प्रांत है। आप नक्शे पर देखें तो हॉर्मुज़गान प्रांत वही क्षेत्र है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहीं पर केशम, बंदर अब्बास, सिरिक, लवान, जास्क और मिनाब है, जो ईरान के लिए रणनीतिक रूप से हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए अहम है। अब फारस की खाड़ी में इसी से लगता हुआ बुशहर प्रांत है जहां खर्ग आइलैंड है। यह आइलैंड ईरान का एक महत्वपूर्ण तेल ठिकाना है। बुशहर में ईरान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, यानी ईरान की ऊर्जा का एक केंद्र इसी जगह पर है। हाल ही में ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका बुशहर पावर प्लांट के पास हमले कर रहा है। बुशहर प्रांत के पास ही फारस की खाड़ी से लगता हुआ ईरान का एक और महत्वपूर्ण खुजेस्तान प्रांत भी है। अमेरिका इस बार इसको भी निशाने पर ले रहा है क्योंकि खुजेस्तान को ईरान का एनर्जी कैपिटल माना जाता है। ईरान के तेल भंडार का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर है।
अमेरिका ने इसी प्रांत के अहवाज शहर पर हमले किए थे। अहवाज ईरान के तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है और माना जाता है कि आईआरजीसी को लॉजिस्टिक्स और ईंधन की सप्लाई इस जगह से होती है। खुजस्तान के पास ही मरकजी प्रांत है। मरकजी को ईरान के रक्षा उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यानी इस बार अमेरिका ने केवल रणनीतिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया बल्कि वो ईरान के ऊर्जा और समुद्री व्यापार से जुड़े केंद्रों पर भी हमले कर रहा है। मैप पर देखें तो खुजस्तान के अहवाज से लेकर बुशहर और फिर हुर्मुज़गान में बंदर अब्बास, केश्म, सिरिक, जास्क से होते हुए सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चबहार तक पर हमले हो रहे हैं। ध्यान दें तो फारस की खाड़ी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए ओमान की खाड़ी के ईरानी क्षेत्र तक को अमेरिका अपने निशाने पर लिए हुए है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पिछले एक हफ्ते के अंदर अमेरिकी सेना ने तीसरा बड़ा हमला किया है, जिसमें इस बार उन्होंने ईरानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, नेवी शिप और ईरान की छोटी बोट्स को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस युद्ध में पहली बार उन्होंने अपने आत्मघाती सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। हालांकि सी ड्रोन का आधिकारिक नाम अभी नहीं बताया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने 3 महीने पहले GARC यानी ग्लोबल ऑटोनोमस रिकॉनिसा क्राफ्ट की तैनाती की थी। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल शुरू शुरू में निगरानी के लिए किया गया, लेकिन इस बार अमेरिकी सेना ने इसके जरिए हमले भी किए हैं। GARC एक USV यानी अनक्रूड सर्फेस वेसल है। ये एक तरह की छोटी स्पीड बोट है जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लैक सी टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। GARC पूरी तरह से रिमोट ऑपरेटेड है। इसे आत्मघाती अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 75 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और अपने साथ विस्फोटक लेकर दुश्मन के जहाज, रडार स्टेशन या तटीय ठिकानों पर हमले कर सकती है। छोटा आकार होने के कारण इसे रडार में पकड़ना मुश्किल होता है। इसे स्वॉर्म अटैक यानी झुंड में एक साथ भेजकर भी हमला किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका जिस सी ड्रोन की बात कर रहा है वो GARC स्पीड बोट ही है, जिनके जरिए वो ईरान की स्पीड बोट्स को भी तबाह कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार उनका हमला ईरानी सेना द्वारा एक जहाज पर किए गए हमले का पलटवार था। अमेरिकी सेना ने बताया है कि IRGC की ओर साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज पर हमला किया था। ये कंटेनर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजर रहा था। इस हमले में जहाज का इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, इससे जहाज वहीं अटक गया। इस हमले के बाद ही अमेरिकी सेना ने ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी देते हुए तीसरा हमला शुरू कर दिया, जिसमें 140 ठिकानों पर बमबारी की गई।

0: ईरान ने भी अमेरिकी हमलों के जवाब में मिडल ईस्ट के देशों पर एक बार कई हमले किए हैं। अब ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर पर हमले किए। ये हमले इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए। सबसे घातक हमले बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर पर किए गए। आईआरजीसी ने इस हमले में दावा किया कि इसमें अमेरिकी सैन्य ठिकाने को बहुत नुकसान हुआ है। आईआरजीसी ने अमेरिकी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि पिछले दिनों हुई जंग और उसमें मिली हार से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। आईआरजीसी का कहना है कि उनके हमले में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर रिपेयर सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर और ड्रोन कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि कुवैत में उन्होंने जो हमले किए हैं वो एक यूएन का पुराना बेस था जिसे अमेरिका अपने हिमार्स अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, अमेरिका का एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शूट एंड स्कूट रणनीति पर काम करता है, यानी रॉकेट्स लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद ये अपनी जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन के लिए इसकी लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और इससे बहुत सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ईरानी सेना इस रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने को अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर जो हमला किया है उसमें MQ-4C टाइटन ड्रोन हैंगर भी तबाह हो गया है। इसी तरह से एक दावा यह भी है कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी एक हैंगर को तबाह कर दिया गया है।
1: नौ जा रहा।

0: भयानक युद्ध को दोबारा भड़कते हुए देखकर दुनिया ये सोच रही है कि जब दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था तो फिर हालात यहां तक कैसे पहुंच गए। तो इस सवाल का जवाब 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए अग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों में है। उन्हीं शर्तों की कुछ लाइनों से ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपनी बपौती समझने लगा और अमेरिका को यह समझ नहीं आया कि आखिर अग्रीमेंट की इस बात पर उनका ध्यान कैसे नहीं गया। अब अमेरिका फंस गया है। ट्रंप एंड टीम की इस क्लेरिकल मिस्टेक और भाषाई समझ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। अग्रीमेंट की इस कमी का पता अमेरिका को तब चला जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति लेने के लिए कहा। ईरान ने सभी जहाजों को अपने बताए समुद्री क्षेत्र से गुजरने का दबाव डाला और माना जा रहा है कि ऐसा करने वाले जहाजों से टोल वसूली होती। 6 जुलाई को 3 जहाजों ने ईरान से बात किए बगैर दक्षिणी हिस्से से गुजरने की कोशिश की थी जिस पर ईरान ने हमला कर दिया था। इसी के जवाब में 7 और 8 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए और सीज फायर को रद्द कर दिया था। अब सवाल यह है कि ईरान सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले क्यों कर रहा है। एमओयू के हिसाब से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सभी जहाजों की आवाजाही फ्री होनी थी। दरअसल 17 जून को जो एमओयू साइन किया गया था उसमें एक पेच था। वो पेच ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा गया था। उसमें जो बातें कही गई थी उसे समझने में अमेरिका ने गलती कर दी और हस्ताक्षर कर दिए। इस चूक के बारे में कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एमओयू का 5वां पॉइंट जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नियंत्रण को लेकर शर्तें लिखी गई हैं उसकी भाषा युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति तक ले जा सकती है। इसमें लिखा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जहाजों के लिए अपनी पूरी क्षमता से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक और वहां से वापस आने जाने का सुरक्षित रास्ता बनाने का इंतजाम करेगा। पैराग्राफ की इस लाइन से यह संदेश जा रहा था कि ईरान ही इस पूरे क्षेत्र की आवाजाही को अपने नियंत्रण में रखेगा। ईरान ने भी एमओयू के इस पॉइंट को इसी तरह से समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा नियंत्रण एक तरह से उसे मिल गया है। अमेरिका को यह तब समझ में आया जब ईरान ने जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिकी दखल को एमओयू का उल्लंघन माना। उनके मुताबिक हॉर्मूज की सारी आवाजाही ईरान से नियंत्रित होनी थी। ईरान को भी युद्ध के बाद एक बात समझ में आ गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण उसके लिए बहुत जरूरी है।
1: We're taking over the strait. They have nothing. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. You know, we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. They made all the money, and the United States was just, you know, not, they wouldn't, it's amazing. It's we guarded it for nothing. And now we're going to guard it, and we're going to get paid for guarding it. A lot of money.
0: अब स्थिति यह हो गई है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना है या नहीं गुजरना है। अमेरिका के भरोसा दिए जाने के बावजूद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों का खतरा भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर हाल ही में IRGC के एक कमांडर ने ईरानी मीडिया में दावा किया कि कोई भी विदेशी जहाज उनकी नजर में आए बिना हॉर्मूज से नहीं गुजर सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फैक्ट चेक टाइप जवाब देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जो सबके लिए खुला है।
2: बार इन असास एलाम मी गर्दात।
3: पहले दी गई चेतावनियों के बाद हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संचालन या नियंत्रण में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। इस्लामी गणराज्य और ईरान की सशस्त्र सेनाएं ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से बाहर और हमारी अनुमति के बिना चलने वाले अमेरिकी सैन्य जहाजों द्वारा कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों की आवाजाही में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कड़ा जवाब देंगी। हाल ही के दिनों में IRGC और ईरानी सेना द्वारा की गई सैन्य कार्रवाइयां इस का प्रमाण है।
2: पासदारान इंकलाब इस्लामी।
0: अब समस्या ये है कि कंटेनर जहाज जो कच्चा तेल एलपीजी या एलएनजी लेने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने के लिए खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो किससे लेनी है, अमेरिकी सेना से या ईरान से। कुल मिलाकर दुनिया इन दोनों देशों की लड़ाई में पिस रही है। पिछले करीब 60 वर्षों से दुनिया भर के जहाज इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल फ्री में कर रहे हैं। साल 1968 में ईरान ने समुद्री मार्ग को बनाने में यूएन की मदद की थी और किसी तरह का नियंत्रण करने की कोशिश या बातें नहीं की थी, जबकि ये रूट ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका ईरान युद्ध के पहले दुनिया को करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता रहा और तब सालाना 50,000 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही यहां से होती थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का उत्तरी किनारा ईरान से लगता है और दक्षिणी किनारा ओमान से लगता है। 1960 से पहले दोनों देशों का समुद्री क्षेत्र केवल 3 नॉटिकल माइल यानी करीब 5.5 किलोमीटर तक ही माना जाता था, बाकी क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा था। समुद्री कानूनों में बदलाव के बाद 1959 में ईरान ने और फिर 1972 में ओमान ने अपनी अपनी समुद्री सीमा को करीब 22 किलोमीटर तक कर लिया। इस फैसले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सबसे संकरा हिस्सा, जहां दोनों देशों के बीच की दूरी सबसे कम थी, वो क्षेत्र उनके हिस्से में आ गया। समुद्री आवाजाही के लिए बीच में एक ट्रांजिट लेन बनाया गया जो करीब 3.5 किलोमीटर का था। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसके और ओमान के समुद्री क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहां से होने वाली आवाजाही का फैसला वही लेंगे। अमेरिका इस पर तैयार नहीं है, वो इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के तौर पर देखता है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं चाहता। अब दरअसल स्थिति यह बन गई है कि ईरान ने जहाजों को हॉर्मूज से गुजारने के लिए एक नया रूट बना दिया है जो उसके समुद्री क्षेत्र से केशम आइलैंड के पास से होकर जाता है। इसे आप उत्तरी मार्ग कह सकते हैं। ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसकी अनुमति और उसकी निगरानी में इसी रूट का इस्तेमाल करें। ऐसा हुआ तो कल को ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली कर सकता है। पारंपरिक रूट ईरान के बताए रूट से हटकर था, यह ओमान और ईरान दोनों के समुद्री मार्ग में पड़ता था। युद्ध में ईरान ने इस रूट पर नाकेबंदी कर दी थी और हमले करता था, लेकिन सीज फायर के बाद अमेरिकी सेना ने एक नया दक्षिणी रूट बनाया जो ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता था। अमेरिकी सेना यहां से जाने वाले जहाजों को सुरक्षा देती थी, लेकिन ईरान ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए। 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच ईरान ने 6 जहाजों पर हमले किए, जिसमें 5 जहाजों पर जो हमले हुए वो ओमान की सीमा से लगते हुए इसी इलाके में किए गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो ईरान हॉर्मूज क्षेत्र में अपनी सीमा से लेकर ओमान की सीमा तक हर जहाज पर हमले कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने की एक वजह डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश भी है। इसराइल ने हाल ही में अमेरिका को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात स्वीकार की थी कि वो ईरान की हिटलिस्ट में टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोसाद से मिली इस जानकारी को चेतावनी की तरह लिया और खबर आ रही है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को पहले से ही निर्देश दिए हुए हैं कि अगर उनकी हत्या होती है तो ऐसी स्थिति में दुश्मन पर ऐसा हमला किया जाए जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ईरान ने उन्हें मारने या उनकी हत्या की कोशिश की, धमकी दी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 1,000 मिसाइलें पहले से तैयार की हुई हैं और सबके निशाने पर ईरान है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करवाता है तो उसके बाद हजारों और मिसाइलें तुरंत उन पर दागी जाएंगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हत्या की स्थिति में ईरान की बर्बादी का आदेश पहले से ही दे दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा कोई डेड मैन स्विच जैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें राष्ट्रपति की मौत के बाद तुरंत जवाबी हमला हो जाता हो। नियमों के हिसाब से देखें तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के संविधान के 25वें संशोधन की धारा 1 और 1947 के प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के तहत सत्ता तुरंत उपराष्ट्रपति को मिल जाती है। यानी ट्रंप के न रहने पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस तुरंत राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ बन जाएंगे और इसके बाद वो ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई का फैसला कर सकेंगे। अमेरिका में परमाणु हमला या किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में सरकार चलाए रखने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मौत के बाद अपने आप जवाबी हमला शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसके लिए राष्ट्रपति पहले से आदेश भी पारित नहीं कर सकता। अमेरिकी खुफिया अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का खतरा है। मुसाद की खुफिया जानकारी और ईरान में किल ट्रंप जैसे पोस्टर्स ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2024 में चुनाव अभियान के दौरान दो बार हत्या की कोशिश हो चुकी है। इसके बाद इसी साल 25 अप्रैल में व्हाइट हाउस में डिनर प्रोग्राम में एक हथियारबंद आदमी ने फायरिंग कर दी थी। उस वक्त मंच पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें तुरंत वहां से बचाकर निकाल लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मुज्तबा खामेनेई के एक बयान के बाद और बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की जनता उनके पिता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेना जारी रखेगी और बदला लेना जनता की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये बयान आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम क्रिया के दौरान आया था और अब यह भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मुज्तबा खामेनेई पहली बार दुनिया के सामने आने वाले। 28 फरवरी को हुए हमले में घायल होने के बाद से किसी ने मुज्तबा खामेनेई को नहीं देखा था। अगले हफ्ते मशहद में अली खामेनेई की याद में एक कार्यक्रम होने वाला है और यह माना जा रहा है कि आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दुनिया ऐसा मान रही थी कि ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो हमले हुए हैं उसे देखकर लगता है कि शांति बहाली केवल शब्दों का खेल था। हमने ईरान और अमेरिका के तेवर और ट्रंप की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी को लेकर इजराइल के राजदूत रुवेन अजार से बात की। When peace was coming, when everybody was trying for a ceasefire, the so-called naysayers said that it will be Israel because of which there will be no peace in the region. But ultimately, it's been Iran and its strikes on the ships crossing Strait of Hormuz. How do you analyze the present situation?
4: Well, first, namaste, and thank you, Shweta, for having me. I think it's very unfortunate that despite the fact that diplomacy was given a chance, the Iranian Revolutionary Guards are trying to completely derail this process by trying to impose a new reality on the world. And it's a reality that is not going to be accepted by anybody, because nobody is going to agree to change the nature of freedom of navigation in the world. And that's exactly what the IRGC is trying to do.
0: So you're constantly saying just IRGC. You think there is a distinct wedge between the IRGC and the government of Iran, and the government of Iran is negotiating for peace with the United States, but IRGC is actually controlling how they respond?
4: Absolutely. This is the situation. And, when Khamenei was there, he was the most extreme leader, but he had everybody under his control. Right now, we have a situation in which the Revolutionary Guards are trying to prove that they are in control of the country. They are trying to intimidate the Gulf countries. But you see that at the end of the day, they are intimidated. And if they decide they want to attack again Israel, we are going to retaliate with full force. They know now that they are completely exposed. So I hope that they don't make that mistake again. Israel doesn't have any interest whatsoever to renew the war.
0: But there is a distinct threat to Donald Trump, as there were reports that the Mossad had also said that probably top of the list.
4: Well, we've seen already two attempts on the life of President Trump even before he got elected. Well, this guy.
0: So it's not just after the Iran war, you're saying even before that he was.
4: Absolutely. Absolutely. We've seen it. It was out in the news. There were attempts on his life, including one attempt in Mar-a-Lago that was initiated by an Iranian cell. So this is not new. The only thing that is happening now, as I said, that the propaganda war coming from Iran has been pumped up in the context of the burial ceremony of the so-called supreme leader, because they want to create motivation within their own ranks against, for the continuation of the war. But I think that even inside Iran, people are sick and tired of this.
0: आज अमेरिकी सेनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंसे ग्राम की मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। लिंसी ग्राहम की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। शक जताया जा रहा है कि लिंसी की हत्या हुई है, इसमें रूस या ईरान का हाथ हो सकता है। शक जताए जाने के कुछ कारण भी सामने आ रहे हैं, जैसे 71 साल के लिंसी ग्राहम की मौत पर ईरान के लोग बहुत खुश हैं। ईरान के कई अखबारों ने लिंसी ग्राहम की मौत को ईरान की सांकेतिक जीत बताया है। हम आपको ईरानी अखबार की एक हेडलाइन दिखाते हैं। ईरान के अखबार वतन इमरूज ने लिंसी ग्राहम की मौत पर हेडलाइन लिखी है, मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि लिंसी ग्राहम ईरान विरोधी अमेरिकी नीतियों के पक्षधर थे और वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को हटाना चाहते थे। इसी तरह केहान नाम के एक ईरानी अखबार ने आर्टिकल के साथ जनता के विरोध प्रदर्शनों की एक फोटो लगाई, जिसमें लिंसी ग्राहम और डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं की तस्वीरें हैं। खास बात यह है कि इसमें इन तस्वीरों पर गन शॉट क्रॉस का निशान है और इसमें भी लिंसी ग्राहम की तस्वीर पर खास तौर से हाईलाइट किया गया है। इसकी हेडलाइन है, ईरान ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, युद्ध का नया दौर शुरू। इसी तरह की हेडलाइन की वजह से लिंसी ग्राहम की मौत को हत्या के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी साजिश के सूत्रधारों में ईरान का नाम लिया जा रहा है। लिंसी ग्राहम को रूस का भी सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। वो चाहते थे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार चलता रहे ताकि रूस कमजोर होता जाए। 10 जुलाई को वो कीव की आधिकारिक यात्रा से लौटे थे और 11 जुलाई को ही वॉशिंगटन डीसी में उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि दिल की बीमारी से पीड़ित लिंसी ग्राहम की मौत की वजह एओर्टिक डिसेक्शन यानी महाधमनी की भीतरी परत का फटने की वजह से यह हुआ है, लेकिन अभी उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। रूस पर शक इसीलिए है क्योंकि लिंसी ग्राहम रूस विरोधी थे और यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। यूक्रेन यात्रा के दौरान लिंसी ग्राहम ने वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी, एक ड्रोन फैक्ट्री का दौरा किया था। यह सबको पता है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस की सेना को परेशान करके रखा हुआ है। जिस ड्रोन फैक्ट्री में लिंसी ग्राहम ने दौरा किया था उसे रूस ने कुछ घंटों बाद हमला उस पर कर दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद लिंसी ग्राहम की मौत की खबर भी आ गई। इन्हीं वजह से रूस को अमेरिकी सेनेटर की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत अपना मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लॉन्च करने जा रहा है। 2028-29 के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत अपनी दावेदारी सामने रखने वाला है। हैशटैग इंडिया फॉर यूएनएससी 2028-29 पीस प्लैनेट प्रोग्रेस, ये भारत की दावेदारी की थीम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क के समय के अनुसार सोमवार दोपहर संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने वाले हैं। भारत इससे पहले 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है, 1950 से 51, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92, फिर 2011-12 और 2021-22। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यूएनएससी में भारत की यह दावेदारी बहुत अहम है। 2021-22 में जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था तब कोविड काल का साया था और अब ईरान अमेरिका युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष जैसी परिस्थितियां हैं। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का मुकाबला तजाकिस्तान से होने वाला है, जिसके लिए 2027 में यूएन के 82वें सत्र में चुनाव होंगे। अगर इस वोटिंग में यूएन के सभी 193 सदस्य देश मौजूद रहे तो जीत के लिए 129 वोटों की जरूरत पड़ेगी। 2020 में 2021-22 की भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में 184 वोट पड़े थे। तजाकिस्तान को 57 देशों के ब्लॉक ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का समर्थन है, इसीलिए यह भारत की बड़ी कूटनीतिक कोशिशों में से एक माना जा रहा है। भारत 2028-29 कि यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है, लेकिन भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार की मांग करने वाले देशों में है। भारत ने हमेशा यह आवाज उठाई है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों वाला मौजूदा यूएनएससी 21वीं सदी में दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का दुनिया के कई देश समर्थन कर चुके हैं। इसमें परमानेंट मेंबर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं, लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता पर चीन का अड़ंगा लगता रहा है। चीन ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आए प्रस्तावों पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे बचाया है। बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न मिलना अन्याय है। भारत आज आर्थिक, सैन्य और कूटनीति का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत को यूएनएससी में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश अब वैश्विक मामलों में बराबरी की भूमिका की मांग करते हैं।
5: आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता।
0: जिस वियतनाम को भारत के पर्यटक उसकी खूबसूरती, शांत समुंदर और बजट फ्रेंडली वेकेशन की वजह से अपने लिए जन्नत मान रहे थे, उस वियतनाम के फुकुओक द्वीप से 11 जुलाई की एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 32 भारतीयों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट समुंदर की लहरों के बीच पलट गई और इनमें से 15 लोगों की डूबने के कारण मौत हो गई। ये घटना शनिवार की है जब दोपहर बाद एक स्पीड बोट 32 भारतीय पर्यटकों और वियतनाम के 4 क्रू मेंबर्स को लेकर रवाना हुई। सभी लोग एक स्मार्टफोन कंपनी के सफल डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल पार्टनर्स थे जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से एक कॉरपोरेट ट्रिप पर आए थे। इस दौरान ये सभी लोग वियतनाम के इस मशहूर और खूबसूरत फुकुओक द्वीप से बोट में रवाना हुए, लेकिन किनारे से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर समुंदर की एक ताकतवर लहर ने इस बोट से टकराकर इस बोट को पलट दिया। इस बोट से के करीब चल रही दूसरी बोट में मौजूद नाविकों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का किसी को मौका नहीं मिला। इस घटना में 13 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हो गई और इस तरह एक इंसेंटिव ट्रिप और एक कामयाब बिजनेस का इनाम 15 भारतीय परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाला मातम बन गया। तमिलनाडु के पलानी के रहने वाले 44 साल के मुर्गा प्रभु भी एक मोबाइल कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर थे। टारगेट अचीव करने की खुशी में कंपनी ने उन्हें इस ट्रिप पर भेजा था। धर्मपुरी के बिजनेसमैन सेंथिल कुमार भी एक मोबाइल कंपनी के इसी तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनकर गए थे। किसे पता था कि बिजनेस की ये कामयाबी जिंदगी के आखिरी सफर में बदल जाएगी। यह हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इसके पीछे इंसानी लापरवाही और सिस्टम की बड़ी चूक भी सामने आ रही है। वियतनाम की पुलिस ने 57 साल के बोट के कैप्टन गुएन होंग हाई को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी रूल्स के उल्लंघन का आपराधिक मामला दर्ज किया है। जुलाई का महीना साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर मानसून और अचानक उठने वाले थंडर स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है। मानसून की वजह से इस क्षेत्र में लगातार बारिश, आंधी, तूफान जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे में मानसून के सीजन में इधर ट्रिप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा सकता। चश्मदीदों के अनुसार समुद्र में लहरें तेज थी, इसके बावजूद स्पीड बोट को समुद्र में उतारा गया। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल कुछ खास इलाकों में सभी स्पीड बोट ट्रिप को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सुरक्षा का यह ख्याल हादसे के बाद आया। साथ ही एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर वियतनाम अचानक भारतीयों के लिए इतना बड़ा वेकेशन हब क्यों बन गया, चाहे वो फैमिली वेकेशन हो या कंपनियों के टारगेट पूरा करने पर मिलने वाला डीलर इंसेंटिव प्रोग्राम। आजकल बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड, मलेशिया की जगह वियतनाम को चुन रहे हैं। इसकी पहली और बड़ी वजह है वियतनाम की समुद्र किनारे वाली ट्रिप का बजट फ्रेंडली होना। भारत के किसी बड़े शहर से गोवा या केरल जाने और वहां रहने का जो खर्च आता है उतने ही बजट में वियतनाम का इंटरनेशनल ट्रिप हो जाता है। दूसरी तरफ थाईलैंड या मलेशिया के मुकाबले वियतनाम का टूर 20 से 30% सस्ता पड़ता है। भारतीय रुपया वियतनामी डोंग के सामने मजबूत स्थिति में है, जिससे वहां जाकर खर्च करना जेब पर भारी नहीं पड़ता। दूसरी वजह है वीजा की आसान प्रक्रिया और डायरेक्ट फ्लाइट्स। पिछले कुछ सालों में भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई से वियतनाम के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई और वहां के लिए ई वीजा की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई। इस आइलैंड को वियतनाम का फुकेट कहा जाता है। यहाँ के कोरल रीफ और आइलैंड हॉपिंग यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने की प्रक्रिया युवाओं और कॉरपोरेट ग्रुप्स को बहुत आकर्षित करती है। इन्हीं सब वजहों से लोग वियतनाम जाना पसंद कर रहे हैं। सोचिए, आप देश के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपकी 3 स्तरीय सुरक्षा जांच होती है, बेल्ट जूते सब उतरवाए जाते हैं, चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है, जेब का सिक्का तक निकाल लिया जाता है क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। लेकिन भारत में एक अनोखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा भी है जहां सुरक्षा का एक बेहद उदार और अनोखा मॉडल दशकों से चल रहा था। हवाई अड्डे की दीवार पर लगी घंटी बजाओ, आधार या कोई भी पहचान पत्र दिखाओ, सीआईएसएफ की सरकारी बस में बैठो और सीधे एयरपोर्ट परिसर में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ। ये कहानी है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां हाई सिक्योरिटी रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर बनी बांकड़ा मस्जिद में नमाज के नाम पर सालों से सुरक्षा के साथ ऐसा अनोखा प्रयोग चल रहा था जो दुनिया के किसी भी देश में अकल्पनीय है। सोचिए, यह भारत का 6ठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां हर साल 2,60,00,000 यात्री सफर करते हैं, जहां 49 घरेलू और 15 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिन रात आसमान नापती हैं। लेकिन इसी एयरपोर्ट की दीवार के एक कोने में एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जहां पर इस तरीके से एयरपोर्ट से बिल्कुल लगते हुए एक मस्जिद थी। अब सवाल उठता है कि आज तक किसी ने इस पर उंगली क्यों नहीं उठाई? क्या इस देश में सुरक्षा से बड़ा वोट बैंक हो गया था? जब भी सुरक्षा की बात आती तो दलील दी जाती कि यह मस्जिद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दूसरी तरफ इस एयरपोर्ट की कहानी 1900 के दशक की शुरुआत में कलकत्ता एरोड्रोम के रूप में शुरू हुई थी। 21 दिसंबर 1924 को इसे दमदम एयरपोर्ट का नाम मिला। 1900 के दशक में एरोड्रोम का मतलब कोई आलिशान टर्मिनल नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन का एक खाली समतल मैदान था। यानी कानूनी और रणनीतिक रूप से ये जमीन 125 साल से विमानन और देश की सुरक्षा से जुड़ी है, और जब यह एयरपोर्ट परिसर में है तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। फिर भी दशकों तक पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के चश्मे से इस खतरे को देखा। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को धार्मिक आस्था का लेबल लगाकर ढका गया। रनवे के नियम कहते हैं कि किसी भी ढांचे की दूरी रनवे से कम 240 मीटर होनी चाहिए, लेकिन इस मस्जिद की वजह से एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे को 88 मीटर छोटा करना पड़ा। यानी देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजहबी दावों के आगे छोटा कर दिया गया। सुरक्षा पर मंडराते इसी खतरे को देखते हुए आखिरकार कड़ा फैसला लिया गया। शनिवार से इस मस्जिद में बाहरी लोगों के प्रवेश और पास जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और इस ढांचे को एयरपोर्ट परिसर से बाहर शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से यह फैसला लिया गया, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने धमकी भरा रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन अगर जबरदस्ती मस्जिद ली गई तो मुसलमानों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जहां प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी मेहमानों के विमान उतरते हैं, वहां सुरक्षा के नियम लागू करने पर प्रतिक्रिया की धमकी दी जा रही है। क्या धार्मिक दावे और कही सुनी बातें सुरक्षा से, राष्ट्र से ऊपर हो गई?
6: ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी अब तक, क्योंकि इसी गेट से कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि इस मस्जिद को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि पिछले कई दशकों से जो ये 136 साल पुराना मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर है, वो एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज कुछ मीटर दूर है, 160 मीटर दूर है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती बन चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए।
7: एक ये जो मस्जिद है एयरपोर्ट के अंदर, ये मस्जिद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी का लेवल 3 एरिया में है, जहाँ पे विमान कर्मी छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता है। इवन पैसेंजर को भी बस से जाना पड़ता है, आप ऐसे नहीं जा सकते और सीधे फ्लाइट में चढ़ जाना होता है, यू आर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड। लेकिन यहाँ पे सालों से प्रथा चल रहा था, यहाँ नमाज पढ़ने जाते थे।
8: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না।
9: ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। আমি বলবো শান্তিতে থাকবেন, রাস্তায় নামবেন না।
0: অস্ট্রেলিয়া কে মেলবোর্ন মে 9 জুলাই 2026 কো হুয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে মেলবোর্ন মিটস মোদী কার্যক্রম কো লেকার সিয়াসত গরমা গই হ্যায়। দরাসল মেলবোর্ন কে মার্ভেল স্টেডিয়াম মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অস্ট্রেলিয়া কে প্রধানমন্ত্রী কি মৌজুদগি মে ঐতিহাসিক মেলবোর্ন মিটস মোদী শো হুয়া থা। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया और इस भीड़ को पेड और मैन्युफैक्चर्ड बताते हुए तंज कसा। इस पर कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बेहद तल्ख और कड़ी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का खर्च न तो बीजेपी ने दिया, न भारत सरकार ने और न ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। हजारों प्रवासियों ने अपनी गाढ़ी कमाई से, अपनी जेब से टिकट और यात्रा का खर्च उठाया। आयोजकों ने राहुल गांधी और खड़गे को लिखे पत्र में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि इंडियन डायस्पोरा कोई राजनीतिक मोहरा नहीं है, उन्हें भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। आयोजकों ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए लिखा है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने, बीजेपी की आलोचना करने और नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अपने फायदे के लिए उन प्रवासियों को निशाना बनाना ठीक नहीं जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत कड़ी का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस से कहा कि इस आयोजन से जुड़े वॉलंटियर्स, आयोजकों और आम प्रवासियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कभी यूरोप की छुट्टियों का मतलब होता था ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम का आनंद, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने यूरोप के मौसम को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। जून के आखिर में यूरोप में पड़ी गर्मी से 10,000 अतिरिक्त मौतों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। इनमें 9,000 से ज्यादा मौतें 65 साल से ऊपर के लोगों की हुई हैं। WHO और यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से समर्थित यूरोमोमो नाम के नेटवर्क ने मौतों का यह आंकड़ा रखा है। यूरोमोमो के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से बार बार और बहुत भयंकर हीट वेव्स का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय देशों में 10,000 से ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा 27 देशों से जुटाया गया है। इन देशों में 22 से 28 जून के बीच फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन समेत यूरोप के देशों में हीट वेव्स अपने चरम पर थी। यूरोमोमो ने यूरोप में हुई मौतों पर हर देश का अलग अलग आंकड़ा तो नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस और बेल्जियम में सबसे ज्यादा मौतों की बात कही है। बेल्जियम के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार हीट वेव से ये साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा मौतों वाला साल है। इन यूरोपीय देशों में अत्यधिक गर्मी से पहले के 8 हफ्तों में औसतन हर हफ्ते 500 मौतें हुई थी। अत्यधिक गर्मी ने जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांस, स्पेन, यूके में न सिर्फ बिजली की सप्लाई बाधित की बल्कि स्कूल जैसी जगहों पर छुट्टी करनी पड़ी थी। यूरोमोमो से अलग एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि मई जून में

की वजह से हुई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।

बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
3: जातीय सुरक्षा एवं विमानबंदर निरापत्ता आगे देखते हैं। यही विमानबंदर लोकेशन खूब गुरुत्वपूर्ण निरापत्तार क्षेत्र, चीन बांग्लादेश सब काछे, आंतर्जातिक विमानबंदर এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: শুভেন্দু সরকার কা কহনা হ্যায় কি ইয়ে মসজিদ দো রানওয়ে কে বীচ মে হ্যায়, মসজিদ এয়ারপোর্ট কে দূসরে রানওয়ে সে কেবল 165 মিটার কি দূরি পর স্থিত হ্যায়।
4: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे,

0: और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
1: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
2: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक आलोचना करुक जोर करे मस्जिद निले नेबे मानुष बोलबे मोदी सरकार मस्जिद भेंगेछे शुभेंदु सरकार मस्जिद भेंगेछेन তিনি করছেন এই কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
1: सिद्दीकुल्लाह चौधरी के विरोध पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहां से हटाना बहुत जरूरी है।
3: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
1: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी जो अब बैन कर दी गई है।
4: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हुई छे, এখন আগে আগে কি বল, আমাদের তো কোনো খবর দিই।
5: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
1: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
6: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
1: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की, जी हां, अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
1: अयोध्या के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
8: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
9: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
10: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
11: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
1: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
12: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है, उसको बना के रहेंगे। जो भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे, और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
1: ये महंत रविन्द्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
13: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
1: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
14: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
1: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
15: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पे देखा जाना चाहिए।
1: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है, और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
16: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
1: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
1: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें यही गिरफ्तार कर लिया।
17: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
1: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
18: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीणा मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनराज के कैंडिडेट हैं, और वीणा मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
1: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी माँ के साथ करना चाहती है पुलिस।
19: भरत तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
1: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
20: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
1: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
21: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
1: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
7: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
22: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
0: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। किसने कहा? रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें।
2: किसने का चेक करने
0: का? रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें।
2: किसने कहा?
0: मैंने कहा।
2: आप कौन है?
0: मैं पत्रकार हूँ।
2: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
0: अच्छा
2: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
15: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
0: रियलिटी
15: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने? आपने पढ़ाई चल रही यहाँ पे?
0: पढ़ाई कराई।
15: चलो हो गया रिपोर्टिंग हो गई। चलो
0: रिपोर्टिंग हो गई।
15: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो
0: सर
2: बाहर जाइए।
15: धक्का तो बहुत सम्मान।
22: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया। लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
3: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है लेकिन ऊपर की मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है? फायर एनओसी है?
23: लाइब्रेरी का एनओसी?
3: फायर एनओसी है?
23: नहीं।
7: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
24: दो दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
22: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद।
24: ब्रेक के बाद
22: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
25: हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, बाकी हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
22: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है जबकि मौत अब भी हो रही है।
26: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मानसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
22: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
26: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर जी जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े। एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
22: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
4: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
5: ये 13 डेथ ये,
4: अरे 18 कैसे हो गई?
22: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
4: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर वन सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर टू आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
22: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी दो दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
6: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं। पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
22: इतना सब कुछ बोलकर आगे दो दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
4: ब्रेक के बाद
22: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है। जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
7: खबर उस हादसे की जिसने 27 लोगों की जिंदगी छीन ली। बैंकॉक में पब में भयानक आग लगी। आग लगने की जो तस्वीरें वायरल हुई वो बेहद खौफनाक है। धुएं के बीच लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखे।
8: 27 मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे। बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही ये कोशिशें भी नाकाम होती चली गईं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान बचाएं तो कैसे। ज्यादातर लोग वॉशरूम की तरफ भागे, एक तो पानी की वजह से और दूसरी कोशिश वहां से बाहर निकलने की थी, लेकिन बाहर निकलने का वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। जो एग्जिट पॉइंट थे भी वो बंद थे और लोग वहां से निकल ही नहीं पाए। पुलिस को भी ज्यादातर लाशें वॉशरूम में और बाहर निकलने वाले रास्तों के पास मिली। फोरेंसिक टीमों ने घटना स्थल पर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बाकी टीमें इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि पब के पास सारे जरूरी कागजात थे या नहीं। राहत दल ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तेजी से फैली आग और धुएं ने तब तक 27 लोगों की जान दे ली थी। जो बचे भी थे उनकी हालत काफी खराब थी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
7: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया। अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकित शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया। कपिल मिश्रा बोले, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा। जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में द्रौपदी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
3: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है। मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
5: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এ কথা আমি বলতে পারব না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
6: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হ্যায়, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিজ আ রহে হ্যায়, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হ্যায়, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কে বিরোধ পর টিপ্পনি করতে হুয়ে মুখ্যমন্ত্রী নে কাহা কি উনহোনে বহুত হি ধীমি আওয়াজ মে আপনি আপত্তি দর্জ করাই হ্যায়, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और धौंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहां से हटाना बहुत जरूरी है।
7: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है।
8: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हुई है, এখন আগে আগে কি বল, আমাদের তো কোনো খবর দিন।
9: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
10: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
11: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की, जी हां, अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
12: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए,
13: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
14: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
15: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
16: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है उसको बना के रहेंगे, जो भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
17: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है, इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
18: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
19: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से बीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
20: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
11: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
0: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
21: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए, एक महिला से ये लोग डर गया। कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते, मुझे नहीं पता भैया।
0: गिरफ्तारी के बाद जहां हंगामा मच गया,
22: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीना मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीना मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
0: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी मां के साथ करना चाहती है पुलिस।
23: भरत तिवारी के साथ जो हुआ ना वो मेरी मां के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
0: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
1: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
0: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
2: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये कुछ तय होगा। ये जो बाकी जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
0: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उससे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
11: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
3: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
4: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
24: किसने का?
4: रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। मैंने कहा
24: आप कौन है?
4: मैं पत्रकार हूँ।
24: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
4: अच्छा
24: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
19: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
4: रियलिटी
19: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने आपने। पढ़ाई चल रही है यहाँ पे?
4: पढ़ाई कर रहा
19: है। चलो हो गया रिपोर्टिंग हो गई। चलो
4: रिपोर्टिंग हो गई,
19: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
4: सर,
19: धक्का तो बहुत सम्मान।
3: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
25: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर के मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1-1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है? फायर एनओसी है?
26: लाइब्रेरी का एनओसी?
25: फायर एनओसी है?
26: नहीं।
11: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
27: 2 दिन के बाद
5: बाकी बाकी सब ब्रेक के बाद,
6: मंत्री जी जवाब दीजिए,
5: ब्रेक के बाद
6: मंत्री जी जवाब सुनो,
5: ब्रेक के बाद
7: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद,
5: ब्रेक के बाद।
7: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
8: हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, ताकि हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
7: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
9: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मॉनसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
7: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
9: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ्स हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ ही चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
7: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
9: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
6: ये 13 डेथ ही
9: है। अरे 18 कैसे हो गई?
7: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिमसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
9: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर वन सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर टू आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
7: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है, बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
10: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
7: इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद,
5: ब्रेक के बाद
6: मंत्री जी जवाब सुनो,
5: ब्रेक के बाद।
7: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
11: खबर उस हादसे की जिसने 27 लोगों की जिंदगी छीन ली। बैंकॉक में पब में भयानक आग लगी। आग लगने की जो तस्वीरें वायरल हुई वो बेहद खौफनाक है। धुएं के बीच लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखे।
12: 27 मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे। बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही ये कोशिशें भी नाकाम होती चली गईं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान बचाएं तो कैसे। ज्यादातर लोग वॉशरूम की तरफ भागे, एक तो पानी की वजह से और दूसरी कोशिश वहां से बाहर निकलने की थी, लेकिन बाहर निकलने का वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। जो एग्जिट पॉइंट थे भी वो बंद थे और लोग वहां से निकल ही नहीं पाए। पुलिस को भी ज्यादातर लाशें वॉशरूम में और बाहर निकलने वाले रास्तों के पास मिली। फोरेंसिक टीमों ने घटना स्थल पर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बाकी टीमें इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि पब के पास सारे जरूरी कागजात थे या नहीं। राहत दल ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तेजी से फैली आग और धुएं ने तब तक 27 लोगों की जान दे ली थी। जो बचे भी थे उनकी हालत काफी खराब थी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
11: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब, अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया, अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा, कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकेश शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, कपिल मिश्रा बोले ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया, यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा, जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई, मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
3: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है, मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं

0: लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
1: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक आलोचना करुक जोर करे मस्जिद निले नेबे मानुष बोलबे मोदी सरकार मस्जिद भेंगेछे शुभेंदु सरकार मस्जिद भेंगेछे तिनी करछेन ए कथा आमी बोलते पारबो ना ए खबर आमार काछे नेई किन्तु तिनी मुख्यमंत्री आलोचना रास्ता खोला आछे इस्लाम धर्मेर मध्ये বহু বিষয় তাদের অজানা বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক
2: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হে অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিজ আ রহে দূসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হে প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: सिद्दीकुल्ला चौधरी के विरोध पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहां से हटाना बहुत जरूरी है।
3: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी जो अब बैन कर दी गई है।
4: ঠিক আছে, নামাজ বন্ধ দেওয়া হয়েছে, এখন আগে আগে কি বলবো, আমাদের তো কোনো খবর দিই।
5: জব ভিজিবিলিটি জিরো হয়ে যাতে উস সময় পশ্চিম আমরা দমদম এয়ারপোর্ট মে ফ্লাইট ল্যান্ড নেই কর পাতে, এক্সপেনশন কে লিয়ে বহুত সারা প্রবলেম হ্যায়। ইয়ে কোই মন্দির মসজিদ কা লড়াই ঝগড়ে মে জানা নেই চলে, উসকা ভি সেফটি কা ব্যবস্থা হো রহা।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
6: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की, जी हां, अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
8: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए,
9: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
10: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
11: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
11: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है उसको बना के रहेंगे। ये भी आस्था रखते हैं, सभी वहां पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
12: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
13: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
14: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पे देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
15: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
16: 1 में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
17: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
16: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
18: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीणा मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनराज के कैंडिडेट हैं, और वीणा मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
16: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी माँ के साथ करना चाहती है पुलिस।
19: भरत तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
16: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
20: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आदि आबादी की बात कर रही थी।
16: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
21: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो बाकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
16: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
7: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के दो वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
22: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी मान, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया है कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
23: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
24: किसने का
23: रियलिटी चेक कर रहे हैं? रियलिटी चेक कर रहे हैं। मैंने कहा
24: आपको,
23: मैं पत्रकार हूँ,
1: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
2: अच्छा
1: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
14: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
2: रियलिटी
14: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने, आपने पढ़ाई चल रही यहाँ पे?
2: पढ़ाई कराई,
14: चलो हो गया रिपोर्टिंग हो गई, चलो
2: रिपोर्टिंग हो गई,
14: बहुत रिपोर्टिंग हो गई, चलो चलो
2: सर
1: बाहर जाइए,
14: धक्का तो बहुत सम्मान के साथ।
3: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
4: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर के मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए, तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है, फायर एनओसी है?
24: लाइब्रेरी का एनओसी,
4: फायर एनओसी है?
24: नहीं।
7: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
25: 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद,
3: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद,
25: ब्रेक के बाद।
3: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
26: हर 2 दिन बाद तो इनकी डायलिसिस होती है, और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाए जो बढ़िया है, बाकी हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
3: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंसकर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
27: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मानसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
3: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
27: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ्स हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के, हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके, हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
3: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद भी वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
27: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी? ये आपको मालूम नहीं है?
28: ये 13 डेथ,
27: अरे 18 कैसे हो गई?
22: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
25: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज अ मिनिस्टर रहा है, नंबर वन सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर टू आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
22: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी दो दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
5: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसान दे नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
22: इतना सब कुछ बोलकर आगे दो दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
25: ब्रेक के बाद
22: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है। जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
7: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया। अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकेश शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया। कपिल मिश्रा बोले, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा। जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
3: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है, मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
5: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এ কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
6: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হ্যায়, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিজ আ রহে হ্যায়, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হ্যায়, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কে বিরোধ পর টিপ্পণী করতে হুয়ে মুখ্যমন্ত্রী নে কাহা কি উনহোনে বহুত হি ধীমি আওয়াজ মে আপনি আপত্তি দর্জ করাই হ্যায়, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहां से हटाना बहुत जरूरी है।
7: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है।
8: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हो चे। एकोन आगे आगे की बोल, हमारे तो कोनो खबर दी।
9: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
10: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
11: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की, जहां अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी। चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई। अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
12: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
13: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
14: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
15: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
16: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है उसको बना के रहेंगे। जो भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
17: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
18: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
19: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
20: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
11: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
0: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी मगर पुलिस ने उन्हें यही गिरफ्तार कर लिया।
21: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, आपको लग रहा कुछ ना बताइए, एक महिला से ये लोग डर गया। कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
0: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
22: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीणा मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीणा मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
0: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी माँ के साथ करना चाहती है पुलिस।
23: भरत तिवारी के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
0: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
1: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जान बचा फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
0: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
2: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो लखीमपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
0: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
11: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
3: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
4: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
24: किसने का?
4: रियलिटी चेक कर रहे हैं।
24: किसने का चेक करने
4: के? रियलिटी चेक कर रहे हैं।
24: किसने का?
4: मैंने कहा।
24: आप कौन है?
4: मैं पत्रकार हूँ।
24: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
4: अच्छा
24: जी, नहीं, हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
19: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
4: रियलिटी
19: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने? आपने पढ़ाई चल रही है यहाँ पे?
4: पढ़ाई कर रहा
19: है। चलो हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। चलो
4: रिपोर्टिंग हो गई,
19: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
4: सर,
19: धक्का तो बहुत सम्मान।
3: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
25: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर की मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है? फायर एनओसी है?
26: लाइब्रेरी का एनओसी?
25: फायर एनओसी है?
26: नहीं।
11: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
27: 2 दिन के बाद
5: बाकी बाकी सब ब्रेक के बाद,
6: मंत्री जी जवाब दीजिए,
5: ब्रेक के बाद
3: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद,
5: ब्रेक के बाद।
3: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
7: हर 2 दिन बाद तो इनकी डायलिस होती है और डायलिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, बाकी हम डायलिस नहीं कराएंगे।
3: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
8: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मानसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
3: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
8: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर जी जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ ही चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
3: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद भी वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
8: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ्स हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ्स हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
6: ये 13 डेथ
8: है। अरे 18 कैसे हो गई?
3: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
8: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
3: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है, बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
9: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
3: इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद,
5: ब्रेक के बाद,
6: मंत्री जी जवाब सुनो,
5: ब्रेक के बाद,
6: ब्रेक के बाद।
3: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
11: खबर उस हादसे की जिसने 27 लोगों की जिंदगी छीन ली। बैंकॉक में पब में भयानक आग लगी। आग लगने की जो तस्वीरें वायरल हुई वो बेहद खौफनाक है। धुएं के बीच लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखे।
10: 27 मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे। बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही ये कोशिशें भी नाकाम होती चली गईं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान बचाएं तो कैसे। ज्यादातर लोग वॉशरूम की तरफ भागे, एक तो पानी की वजह से और दूसरी कोशिश वहां से बाहर निकलने की थी, लेकिन बाहर निकलने का वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। जो एग्जिट पॉइंट थे भी वो बंद थे और लोग वहां से निकल ही नहीं पाए। पुलिस को भी ज्यादातर लाशें वॉशरूम में और बाहर निकलने वाले रास्तों के पास मिली। फोरेंसिक टीमों ने घटना स्थल पर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बाकी टीमें इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि पब के पास सारे जरूरी कागजात थे या नहीं। राहत दल ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तेजी से फैली आग और धुएं ने तब तक 27 लोगों की जान दे ली थी। जो बचे भी थे उनकी हालत काफी खराब थी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
11: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

यहाँ शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
1: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है, मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
4: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दी, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদী সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এ কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
5: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হে, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিস্ট আ রহে হে, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হে, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কে বিরোধ পর টিপ্পণী করতে হুয়ে মুখ্যমন্ত্রী নে কাহা কি উনহোনে

0: बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और धौंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है।
1: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी जो अब बैन कर दी गई है।
2: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हो चे एखन आगे आगे की बोलो, हमारे तो कोनो खबर दी।
3: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, इसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
4: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
6: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
7: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
8: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
9: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
10: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है उसको बना के रहेंगे। ये भी आस्था रखते हैं, सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों, सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
11: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
12: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
13: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से बीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
14: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़का कर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
0: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
15: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, आपको लग रहा कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
0: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
16: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीना मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं, और वीना मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
0: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी माँ के साथ करना चाहती है पुलिस।
17: भरत तिवारी के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने, निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
0: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
18: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
0: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
19: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो बाकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
0: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
5: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
20: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
21: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। किसने का? रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। मैंने कहा
22: आपको ने?
21: मैं पत्रकार हूँ
22: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
21: अच्छा
22: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
23: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
21: रियलिटी
23: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने आपने। पढ़ाई चल रही है यहाँ पे?
21: पढ़ाई कराई।
23: चलो हो गया रिपोर्टिंग हो गई। चलो
21: रिपोर्टिंग हो गई,
23: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
21: सर,
23: धक्का तो बहुत सम्मान।
20: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
24: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर के मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से हैं भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है, फायर एनओसी है?
1: लाइब्रेरी का एनओसी,
24: फायर एनओसी है?
1: नहीं।
5: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें, 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
2: 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
3: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद।
2: ब्रेक के बाद
3: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
4: हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, ताकि हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
3: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
6: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मानसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
3: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
6: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ्स हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के, हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके, हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ ही चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
3: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
6: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
25: ये 13 डेथ ही
6: है। अरे 18 कैसे हो गई?
3: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
6: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
3: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है, बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
26: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
3: इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
2: ब्रेक के बाद
3: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है। जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और
4: कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया, अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा, कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकेश शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, कपिल मिश्रा बोले ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया, यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा, जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई, मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोकदी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
3: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है, मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
5: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদী সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এ কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
6: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হে, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিস্ট আ রহে হে, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হে, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কে বিরোধ পর টিপ্পণী করতে হুয়ে মুখ্যমন্ত্রী নে কাহা কি উনহোনে বহুত হি ধীমি আওয়াজ মে আপনি আপত্তি দর্জ করাই হে, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और धौंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहां से हटाना बहुत जरूरी है।
7: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना को भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है।
8: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हुई है, এখন আগে আগে কি বল, আমাদের তো কোনো খবর দিন।
9: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
10: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
11: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ, तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया, तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
12: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए,
13: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
14: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
15: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
16: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है उसको बना के रहेंगे, ये भी आस्था रखते हैं, सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है, 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
17: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है, इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
18: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
19: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से बीएचपी ने दूरी बनाए रखी है, लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
20: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
11: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
0: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
21: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, आपको लग रहा कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
0: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
22: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीना मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीना मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
0: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी मां के साथ करना चाहती है पुलिस।
23: भरत तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी मां के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
0: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
1: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
0: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
2: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो लखीमपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
0: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
11: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
3: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया है कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
4: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
24: किसने का
4: रियलिटी चेक कर रहे हैं? इसमें रियलिटी चेक कर रहे हैं?
24: किसने कहा?
4: मैंने कहा।
24: आपको?
4: मैं पत्रकार हूँ।
24: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
4: अच्छा
24: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
19: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
4: रियलिटी
19: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने? आपने पढ़ाई चल रही यहाँ पे?
4: पढ़ाई कराई?
19: चलो हो गया, हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। चलो
4: रिपोर्टिंग हो गई,
19: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
4: सर,
24: बाहर जाइए।
19: धक्का तो बहुत सम्मान के साथ।
3: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
25: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर के मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से? भाई साहब ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है? फायर एनओसी है?
26: लाइब्रेरी का एनओसी?
25: फायर एनओसी है?
26: नहीं।
11: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
27: 2 दिन के बाद
5: बाकी सब ब्रेक के बाद,
6: मंत्री जी जवाब दीजिए,
5: ब्रेक के बाद,
6: मंत्री जी जवाब सुनो,
5: ब्रेक के बाद
7: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते, ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद,
5: ब्रेक के बाद।
7: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
8: हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, बाकी हम डायलिस नहीं कराएंगे।
7: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
9: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मॉनसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
7: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
9: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के, हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके, हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ ही चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
7: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
9: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी लेकिन नहीं हुई थी, 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है? अरे 18 कैसे हो गई?
7: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
9: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
7: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती, बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
10: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसान दे नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
7: इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद,
5: ब्रेक के बाद,
6: मंत्री जी जवाब सुनो,
5: ब्रेक के बाद,
6: ब्रेक के बाद।
7: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
11: खबर उस हादसे की जिसने 27 लोगों की जिंदगी छीन ली। बैंकॉक में पब में भयानक आग लगी। आग लगने की जो तस्वीरें वायरल हुई वो बेहद खौफनाक है। धुएं के बीच लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखे।
12: 27 मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे। बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही ये कोशिशें भी नाकाम होती चली गईं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान बचाएं तो कैसे। ज्यादातर लोग वॉशरूम की तरफ भागे, एक तो पानी की वजह से और दूसरी कोशिश वहां से बाहर निकलने की थी, लेकिन बाहर निकलने का वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। जो एग्जिट पॉइंट थे भी वो बंद थे और लोग वहां से निकल ही नहीं पाए। पुलिस को भी ज्यादातर लाशें वॉशरूम में और बाहर निकलने वाले रास्तों के पास मिली। फोरेंसिक टीमों ने घटना स्थल पर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बाकी टीमें इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि पब के पास सारे जरूरी कागजात थे या नहीं। राहत दल ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तेजी से फैली आग और धुएं ने तब तक 27 लोगों की जान दे ली थी। जो बचे भी थे उनकी हालत काफी खराब थी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
11: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया। अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकित शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया। कपिल मिश्रा बोले, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा। जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
1: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
2: जातीय सुरक्षा एवं विमान बंदर निरापत्ता आगे देखते हैं। ये विमान बंदर लोकेशन খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: শুভেন্দু সরকার কা কহনা হ্যায় কি ইয়ে মসজিদ দো রানওয়ে কে বীচ মে হ্যায়। मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीक उल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
4: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদী সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এ কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
5: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হে, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিস্ট আ রহে হে, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হে, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: सिद्दीक उल्लाह चौधरी के विरोध पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है।
6: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी जो अब बैन कर दी गई है।
2: ঠিক আছে, নামাজ বন্ধ দেওয়া হয়েছে, এখন আগে আগে কি বলবো, আমাদের তো কোনো খবর দিই।
7: জব ভিজিবিলিটি জিরো হয়ে যাতে উস সময় পশ্চিম আমারা দমদম এয়ারপোর্ট মে ফ্লাইট ল্যান্ড নেই কর পাতে, এক্সপেনশন কে লিয়ে বহুত সারা প্রবলেম হ্যায়। ইয়ে কোই মন্দির মসজিদ কা লড়াই ঝগড়ে মে জানা নেই চলে, উসকা ভি সেফটি কা ব্যবস্থা হুয়া হ্যায়।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और

0: उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
1: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ, तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा। 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी। सियासत भारी। चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई। अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया, तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
3: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
4: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
5: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
6: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाए जाए।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे? क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
7: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है उसको बना के रहेंगे। जो भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों संन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
8: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
9: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है।
10: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
11: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़का कर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पिच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
0: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
12: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
0: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
13: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीना मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीना मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
0: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी मां के साथ करना चाहती है पुलिस।
14: भरत तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी मां के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने, निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
0: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
15: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
0: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
16: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है,
17: कि ये किसका दौर होगा, ये जो बाकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
0: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
2: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
18: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
19: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
20: किसने कहा?
19: रियलिटी चेक कर रहे हैं।
20: किसने कहा चेक करने का?
19: रियलिटी चेक कर रहे हैं।
20: किसने कहा?
19: मैंने कहा।
20: आप कौन है?
19: मैं पत्रकार हूँ।
20: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
19: अच्छा
20: जी, हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
10: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
19: रियलिटी
10: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने आपने। पढ़ाई चल रही है यहाँ पे?
19: पढ़ाई कराई।
10: चलो हो गया, हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। चलो
19: रिपोर्टिंग हो गई,
10: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
19: सर,
10: धक्का तो बहुत सम्मान के साथ।
18: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
21: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर की मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से हैं भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है, फायर एनओसी है?
22: लाइब्रेरी का एनओसी?
21: फायर एनओसी है?
22: नहीं।
2: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
23: 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
18: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद।
23: ब्रेक के बाद
18: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी।
1: पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक। मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
3: हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाए जो बढ़िया है, ताकि हम डायलिस नहीं कराएंगे।
1: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
4: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मॉनसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
1: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
4: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के, हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके, हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
1: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
4: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
5: ये 13 डेथ ही
4: है। अरे 18 कैसे हो गई?
1: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
4: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर वन सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर टू आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
1: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
24: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
1: इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
4: ब्रेक के बाद
5: मंत्री जी जवाब सुनो,
4: ब्रेक के बाद
1: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है। जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया। अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकित शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया। कपिल मिश्रा बोले, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा। जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
1: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है। मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
4: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এই কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
5: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হ্যায়, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিজ আ রহে হ্যায়, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হ্যায়, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: सिद्दीकुल्लाह चौधरी के विरोध पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है।
6: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है।
7: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हुई है, এখন আগে আগে কি বল, আমাদের তো কোনো খবর দিই।
8: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
9: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
10: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जी हां, अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
11: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए,
12: हमारे घर के पास बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
13: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
14: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
15: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है उसको बना के रहेंगे, ये भी आस्था रखते हैं, सभी वहां पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
16: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
17: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
18: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
19: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी। चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई। अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
20: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
12: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
13: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
14: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाए जाए।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान।
10: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
2: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
21: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
2: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
22: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीणा मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीणा मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
2: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी माँ के साथ करना चाहती है पुलिस।
23: तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
2: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
24: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आदि आबादी की बात कर रही थी।
2: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
25: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो लखीमपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
2: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
10: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
26: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी मान, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया है कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
27: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
28: किसने का
27: रियलिटी चेक कर रहे हैं?
28: किसने का चेक करने का?
27: रियलिटी चेक कर रहे हैं।
28: किसने कहा?
27: मैंने कहा।
28: आप कौन है?
27: मैं पत्रकार हूँ।
28: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
27: अच्छा
28: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
29: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
27: रियलिटी
29: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने? आपने पढ़ाई चल रही है यहाँ पे?
1: पढ़ाई करा दी।
3: चलो हो गया, हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। चलो
1: रिपोर्टिंग हो गई,
3: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
1: सर,
3: धक्का तो बहुत सम्मान के साथ।
4: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
5: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर के मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए, तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है, फायर एनओसी है?
6: लाइब्रेरी का एनओसी,
5: फायर एनओसी है?
6: नहीं।
10: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें, 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
7: 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद,
4: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद,
7: ब्रेक के बाद।
4: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
8: हर 2 दिन बाद तो इनकी डायलिसिस होती है, और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाए जो बढ़िया है, बाकी हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
4: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
9: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मानसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
4: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
9: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के, हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके, हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
4: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद भी वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
9: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है? अरे 18 कैसे हो गई?
4: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
9: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस,
7: नंबर टू आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
26: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी दो दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
1: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसान दे नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
26: इतना सब कुछ बोलकर आगे दो दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
7: ब्रेक के बाद
6: मंत्री जी, मंत्री जी जवाब सुनो।
7: ब्रेक के बाद
26: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
10: खबर उस हादसे की जिसने 27 लोगों की जिंदगी छीन ली। बैंकॉक में पब में भयानक आग लगी। आग लगने की जो तस्वीरें वायरल हुई वो बेहद खौफनाक है। धुएं के बीच लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखे।
11: 27 मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे। बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही ये कोशिशें भी नाकाम होती चली गईं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान बचाएं तो कैसे। ज्यादातर लोग वॉशरूम की तरफ भागे, एक तो पानी की वजह से और दूसरी कोशिश वहां से बाहर निकलने की थी, लेकिन बाहर निकलने का वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। जो एग्जिट पॉइंट थे भी वो बंद थे और लोग वहां से निकल ही नहीं पाए। पुलिस को भी ज्यादातर लाशें वॉशरूम में और बाहर निकलने वाले रास्तों के पास मिली। फोरेंसिक टीमों ने घटना स्थल पर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बाकी टीमें इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि पब के पास सारे जरूरी कागजात थे या नहीं। राहत दल ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तेजी से फैली आग और धुएं ने तब तक 27 लोगों की जान दे ली थी। जो बचे भी थे उनकी हालत काफी खराब थी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया। अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा। कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकेश शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया। कपिल मिश्रा बोले, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा। जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: मस्जिद शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
3: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है। मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
5: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এই কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
6: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হ্যায়, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিজ আ রহে হ্যায়, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হ্যায়, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কে বিরোধ পর টিপ্পণী করতে হুয়ে মুখ্যমন্ত্রী নে কাহা কি উনহোনে বহুত হি ধীমি আওয়াজ মে আপনি আপত্তি দর্জ করাই হ্যায়, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहां से हटाना बहुत जरूरी है।
7: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है।
8: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा है।

0: আগে আগে কি বলবো, আমাদের তো কোনো খবর দিই।
1: জব ভিজিবিলিটি জিরো হয়ে যাতে উস সময় পশ্চিম আমারা দমদম এয়ারপোর্ট মে ফ্লাইট ল্যান্ড নেই কর পাতে, এক্সপেনশন কে লিয়ে বহুত সারা প্রবলেম হয়। ইয়ে কোই মন্দির মসজিদ কা লড়াই ঝগড়ে মে জানা নেই চলে, উসকা ভি সেফটি কা ব্যবস্থা হো রহা হে।
2: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
3: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
2: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जी हां, अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ, तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
2: अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की कार मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया, तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
5: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए,
6: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
7: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, अब हम सच मानेंगे।
8: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
2: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
9: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है, मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
2: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
10: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
2: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
11: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
2: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है, जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
12: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
2: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से बीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
13: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
2: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थीं, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पिच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
2: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
14: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
2: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
15: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीना मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनसराज के कैंडिडेट हैं, और वीना मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
2: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी मां के साथ करना चाहती है पुलिस।
16: भरत तिवारी का के साथ जो हुआ ना वो मेरी मां के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
2: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
17: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
2: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
18: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो बाकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
2: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
4: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के 2 वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
19: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 2 साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया है कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
20: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। किसने का? रियलिटी चेक कर रहे हैं।
21: किसने का चेक करने
20: का? रियलिटी चेक कर रहे हैं।
21: किसने का? चेक कर
20: सकते। मैंने कहा
21: नहीं। आप कौन है?
20: मैं पत्रकार हूँ।
21: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
20: अच्छा
21: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
22: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
20: रियलिटी
22: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने। आपने पढ़ाई चल रही यहाँ पे?
20: पढ़ाई कराई।
22: चलो हो गया रिपोर्टिंग हो गई। चलो
20: रिपोर्टिंग हो गई।
22: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
20: सर
22: बाहर जाइए। धक्का तो बहुत सम्मान।
19: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
23: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर की मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है? फायर एनओसी है?
24: लाइब्रेरी का एनओसी?
23: फायर एनओसी है?
24: नहीं।
4: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
25: 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
19: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद।
25: ब्रेक के बाद
19: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
0: हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, बाकी हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
19: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
1: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मॉनसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
19: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
1: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
19: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद भी वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
1: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
3: ये 13 डेथ ये
1: अरे 18 कैसे हो गई?
19: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
1: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
19: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है, बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
5: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
19: इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
25: ब्रेक के बाद
19: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया, अगली सुनवाई सोमवार। बांकीपुर से दतिया तक नामांकन के अंतिम दिन जोश, नीरज सिन्हा ने भरा पर्चा, कड़वाहट भूलकर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को दिया समर्थन। अंकेश शर्मा हत्याकांड में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, कपिल मिश्रा बोले ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल एंड टीम। लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम का इतिहास, इंग्लैंड को 270 रनों से हराया, यष्टिका भाटिया का शानदार शतक। और ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, हॉर्मुज खुला है खुला रहेगा, जहाजों को सुरक्षा के बदले देना होगा 20% टैक्स। बात अब एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हां, शुभेंदु राज में 136 वर्ष पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई, मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई बल्कि इस 136 वर्ष पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है